0: कांग्रेस ने पलटवार किया कि जमीनों की बंदरबांट का चिट्ठा तो संजय सिंह पहले ही पहुंचा चुके हैं।
1: संजय सिंह ने तो सबूत दिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी। उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना।
0: आम आदमी पार्टी भी इस खत पर खफा हुई।
2: इससे ये बात साफ है कि विश्व हिंदू परिषद को बहुत परेशानी है कि चंदा चोरी की बात आज पूरे देश में की जा रही।
0: आरजेडी बोली, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
3: मतलब अपनी डकैती को कवर कर रहे हो, भगवान तक को नहीं छोड़ा, आज तक इंसानों का शोषण करते थे आप लोग, अब तो भगवान को नहीं बख्शना। अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है।
0: विश्व हिंदू परिषद शुरू से कह रहा है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इस मसले पर विहिप अयोध्या में एक बैठक करने वाला था, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। अब ये बैठक दिल्ली में होगी। उधर लखनऊ में डटे बीजेपी अध्यक्ष यूपी के सांसदों विधायकों को नसीहत दे रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है उसे तोड़े और लोगों को सनातनी सच्चाई बताएं। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: चढ़ावा चोरी में एक तरफ अयोध्या पुलिस आरोपियों से सवाल जवाब कर तथ्यों के पड़ताल में जुटी है, तो लगातार उठते सवालों के बीच चंपत राय के भविष्य पर कयासबाजी तेज है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट उनका इस्तीफा मंजूर करेगा या फिर नहीं।
5: चंपत राय पहले ही महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी पद छोड़ने की चिट्ठी भेज चुके हैं और गोपाल राव अभी भी मंदिर व्यवस्थापक बने हुए हैं। इन पर चढ़ावा गबन के गुनहगारों के गर्दन दबोचने की जिम्मेदारी थी। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गुनाह पकड़े जाने के फौरन बाद एक्शन के लिए एफआईआर दर्ज कराते, आरोपियों को गिरफ्तार कराते, प्रभु राम के भक्तों की आस्था को आहत होने से बचाते, लेकिन जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। चढ़ावा चोरी से हुई फजीहत और सवालों के चक्रव्यूह में फंसने के बाद मंदिर ट्रस्ट उससे निकलने में जुटा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज अहम बैठक बुलाई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक करने वाले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने आज होने वाली बैठक की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार होगा, साथ ही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्था पर भी बात होगी। अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये अहम बैठक होने जा रही है। तमाम आरोपों के बीच सभी की नजरें अयोध्या में आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि ट्रस्ट चंपत राय पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
4: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लगातार मैराथन बैठकें की। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में यह अहम मंथन था। नितिन नवीन ने 27 में प्रचंड जीत का दावा भी किया और साथ ही अब हलचल ये भी है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी।
0: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए। मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
6: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
0: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
7: कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा। अभी सीट शेयरिंग नहीं, आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
0: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
8: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
0: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें एसपी ने 17 सीटें दी थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: रीना दत्त और किरण राव से अलग होने के बाद अब आमिर खान ने तीसरी शादी रचा ली है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरिस पैटसन शादी रजिस्टर कर ली है।
0: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी लेडी लव गौरी स्प्रेड के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूलीवेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रेट के रूप में अपना नया हम सफर मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में मॉनसून की आमद ने प्रशासन के पोल खोलकर रख दी है। अभी बारिश की शुरुआत ही हुई कि अभी से मुंबई की दुर्गति हो रही है। बताया जा रहा कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 3 लोगों की जान चली गई, कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं।

0: किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले, किसको बनाते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा, हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में। आइए और देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। ये हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि सड़क बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि टोटी का पानी देने वाले आबे जमजम पीकर मस्त हो रहे थे। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तेज बारिश के बीच भांडू इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सुपारा, वसई हो या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही है कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सुपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
1: ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सुपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सनसिटी का इलाका है, इसके आसपास आप देख सकते हैं। तो ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है। कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर, इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है, ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट आधा घंटा लेट है।
0: अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देख लीजिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसून आफत के बीच कहीं भी आने जाने को मजबूर है।
2: बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है।
3: आप क्या कहना चाहेंगी?
4: क्या कहना चाहिए, इतना पानी भर गया है, हम लोग को दिक्कत तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है।
0: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को अगर बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी हुई है। आज तक ब्यूरो।
5: छत्तीसगढ़ के लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाले पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया और वो 70 साल के थे। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।
0: माटी का शरीर, माटी की सांसें, माटी की उड़ान, माटी की पांखें, माटी का मेला, माटी का खेला, माटी में मिल गई, माटी की बिट गया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई नहीं रही। वे 70 साल की थी। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थी।
3: वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को गीत के जरिए सुनाने की अद्भुत कला थी उनमें।
6: आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सब के आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से एक समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था।
0: तीजन बाई ने पंडवानी की कापालिक शैली को अपनाया। देश विदेश में उनके कार्यक्रम खासा पसंद किए गए। पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मान मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। तीजन बाई ने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। देश उनकी कला को और तीजन बाई को सदैव याद रखेगा। आज तक ब्यूरो।
5: तेहरान में खामिनेई के अंतिम संस्कार को लेकर जबरदस्त तैयारी है। खामिनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में रखा गया है, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनके लिए सड़कों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं।
7: सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामिनेई के आज अंतिम संस्कार का दूसरा दिन है, जब उनके पार्थिव शरीर के लिए यहां पर नमाज अदा की जा रही है। जो लोग ग्रैंड मुसल्ला नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लगातार यहां पर उनके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें हर चौराहे पर लगाई गई हैं ताकि वो अपनी जो उनकी नमाज है या फिर जो उनके जनाजे की नमाज है वो अदा करने के लिए यहां पहुंच सके। अगर आप देखें हर चौराहे पर आपको इस तरीके के लोग नजर आ जाएंगे जो यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को संस्कार देने के लिए फिर उनको आखिरी विदाई देने के लिए तैयार है। और देखिए ये हर चौराहे की, यानी जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो किस तरीके से गमजदा है, रो रहे हैं, कई लोग बिलख रहे हैं, कोई लगातार परेशान है। और शायद अगर आप देखें कि यहां पर ये सब जगह जा रही है, यानी वो जो लोग आप देखें कि बसेस जो हैं बसेस लगातार वहां से आ रही हैं और बसेस से जो लोग उतर रहे हैं वो यहां से आगे ग्रैंड मसल्ला की तरफ जा रहे हैं। ये वो रूट्स हैं जहां से लोग लगातार इन बसेस को लेकर ईरान के अलग अलग इलाकों से यहां पहुंच रहे हैं तेहरान में राजधानी में, और यहां पर उनको उतरने के बाद वो यहां से आगे जाते हैं जहां पर वो ग्रैंड मसल्ला के लिए जाते हैं जो यहां से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है, यानी पैदल उनको चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए स्क्रीन लगाई गई है, और अगर आप देखें स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर उस नमाज को अदा किया जा रहा है। ग्रैंड मसल्ला से लाइव तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही है और लोग यहां पर उसी नमाज को अदा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, गमजदा है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर पुरुष। और देखिए अब नमाज अदा करने के बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ग्रैंड मसल्ला की तरफ जाएंगे।
5: तेहरान में इस समय लाखों लोग मौजूद हैं जिनमें से कई शहर के बाहर से यहां पर खास खामिनेई के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। अब तेहरान की सड़कों पर जगह जगह फ्री पानी और उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है।
7: ईरान में खासतौर पर इस समय माहौल गर्म है। माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, गमजदा है, लगातार इस मातम में अपने लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के अगर तापमान की बात भी करें तब भी यहाँ का टेम्परेचर इस समय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और शायद इसी वजह से जो लोग पूरे दिन चल कर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्रैंड मसल्ला में पहुंचने के लिए करीबन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। ऐसे में लोग लंबी दूरी तय कर पैदल चलकर आते हैं, और शायद इसी वजह से हर 10 मीटर पर उनके लिए ठंडे पानी की बॉटल्स हो, खाने पीने का साजो सामान हो वो दिया जा रहा है। ये शायद 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। जी हाँ, रात में भी कई लोग जो है ग्रैंड मसल्ला में जाके बैठ जाते हैं, वो लगातार वहां पर कोशिश करते हैं वहां पर अजान या दुआ करने की। और अगर आप देखें मफिन्स हैं, पीने की पानी, ठंडे पानी की बॉटल्स हैं, और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो लोग थक जाते हैं या फिर जो गर्मी में उनको ऐसे शॉवर से स्प्रिंकल से की मदद से लगातार यहां पर उनको ठंडक पहुंचाने के लिए उनको कोशिश की जाती है राहत देने की। और अगर आप देखें IRGC या दूसरे कैमोफ्लाज उसके अंदर बच्चे आपको नजर आ जाएंगे, तो शायद हर कोई अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि देखिए वो किस तरीके से इस चीजों में जुड़ा हुआ है। और एक और चीज यहां पर अगर आप देखेंगे पैम्फलेट्स या अलग अलग तस्वीरें, जो सुप्रीम लीडर की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें, उनको रखा जा रहा है ताकि लोग अपने साथ लेकर जा सकें। और ये शायद इसी वजह से, क्योंकि लोगों को समझाया जा सके कि सुप्रीम लीडर हर किसी के दिल में बसता है। और सुप्रीम लीडर के आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में या नमाज जनाजे के अंदर हर कोई ये अपने साथ लेकर चल रहा है। अगर आप देखें, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हर किसी के हाथ में आपको ये पोस्टर्स और आपको ये उनकी फोटोज नजर आ जाएगी। और कई जगह पे तो आपको नजर आएगा कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं। और शायद ये यहाँ की एक ऐसी चीजें हैं जो आपको, अब से पहले मैंने तो कभी इस तरीके का, आप कह सकते हैं, प्रदर्शन या प्रोसेशन नहीं देखा जहाँ पर इतनी संख्या में लोग ऐसे एकजुट होते हों, इतनी भारी संख्या में, और सबका एक ही मोटिव, सबका एक ही फीलिंग है, सबको जो आप कह सकते हैं इस दर्द में अपने चीजों को महसूस करने का या उसको उजागर करने का, उसको दिखाने का एक ही तरीका है कि वो सुप्रीम लीडर के साथ, उसके उनके सेक्रीफाइस के साथ खड़े हैं। और लगातार ईरान के लोग उसके लिए उनके सामने झुककर उनको सलाम भी कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम लीडर ने जो सेक्रीफाइस किया है उसने ईरान को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है, एक बार फिर से वेस्टर्न या फिर अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
5: पूरा अमेरिका उत्सव में डूबा हुआ दिखाई दिया, खासतौर पर इस वीकेंड पर तो पूरा देश मस्ती में सराब हो रहा है। जगह जगह बच्चों के खेलने से लेकर लोगों के घूमने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इंतजाम किए गए हैं।
8: Tonight as we stand on the edge of our 250th year of independence, I am thrilled to declare that America is back.
0: अमेरिका में धूमधाम से मना आजादी की 250वीं सालगिरह का जश्न। सैन्य प्रदर्शन से आतिशबाजी तक में दिखा दमखम, जमीन से आसमान तक धूम धड़ाका। आसमान में एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान हैरतअंगेज कारनामे दिखा रहे थे। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी आसमान में अलग अलग रंग बिखेर रही थी। हर अमेरिकी जैसे इस जश्न का हिस्सा हो जाना चाहता था। मौका था अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह का। इस मौके पर लड़ाकू विमानों ने शानदार एयर शो और फ्लाई पास पेश किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के नए एयरफोर्स वन विमान ने भी हिस्सा लिया। F-22 के पायलट के कॉकपिट के नजारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्लाई पास कितना रोमांचक रहा होगा। अमेरिकी एयरफोर्स के पैरा जंपर्स ने भी इस मौके पर कमाल के करतब पेश किए। वहीं समुद्र में जंगी जहाजों ने भी अपना दमखम दिखाया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में इतनी आतिशबाजी हुई कि उसने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर ऐतिहासिक जहाजों की परेड निकाली गई, जिसमें USS किर्साज और RMS क्वीन मैरी समेत कई जहाज शामिल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में हुए भव्य समारोह में अपनी बात रखी और अतीत से लेकर भविष्य तक का खाका खींचा।
8: Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence, nothing like it. For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
0: 4 जुलाई 1776 को नॉर्थ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी के ऐलान के साथ ब्रिटेन से अलग होने का फैसला किया था। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे समारोह को अमेरिका 250 नाम दिया था। आजादी के 250 साल पूरे होने पर अमेरिका के हर राज्य, हर शहर में जश्न का दौर चल रहा है। वहां रहने वालों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है।
9: अमेरिका अपना 250th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और उसके लिए अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक उत्सव की तरह इसे मनाने की कोशिश की गई। और अभी हम जहां पे खड़े इसे नेशनल मॉल कहा जाता है वॉशिंगटन डीसी में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से एक फेरिस व्हील है यहां पे और किस तरह से यहां पे एक स्टेट फेयर बनाने की कोशिश की गई। और
10: अमेरिका 250 कमीशन ने इस समारोह की तैयारी 2016 में ही शुरू कर दी थी। अमेरिकी कांग्रेस ने इसके लिए करीब 1250 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया था। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बात है फुटबॉल की, मेसी पर खतरा लगातार बढ़ रहा है, एक बार फिर से फ्रांस के एम्बापे उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप इतिहास में मेसी को पीछे छोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं एम्बापे।
11: चीते सी रफ्तार, शॉट्स दमदार, प्रदर्शन इस बार भी धमाकेदार। मेसी पर डबल खतरा बरकरार, एम्बापे कर सकते हैं उनका रिकॉर्ड तार तार। वर्ल्ड कप फुटबॉल में फ्रांस की टीम ने पराग्वे के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल करने के साथ ही अंतिम आठ में जगह बना ली है और ये मुमकिन हुआ है उनके स्टार फॉरवर्ड एम्बापे के इस गोल की वजह से। फ्रांस को रिव्यू के जरिए पेनल्टी का मौका मिला तो एम्बापे ने इसे गोल में तब्दील करने में कोई गलती नहीं की। इस गोल के साथ ही एम्बापे इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी के बराबर पहुंच गए। दोनों ने 7-7 गोल दागे। सिर्फ इतना ही नहीं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मेसी के रिकॉर्ड 20 गोल के रिकॉर्ड से एम्बापे अब सिर्फ एक गोल दूर है। अब फ्रांस की टीम का क्वार्टर फाइनल में सामना मोरक्को से होगा, यानी मेसी की टीम के लिए एम्बापे की टीम आने वाले अहम मुकाबलों में खतरा बनने को पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो।
5: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ाव चोरी खुलासे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट पर भरोसे का सवाल। चंपत राय के इस्तीफे पर आज हो सकता है फैसला। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले चोरी की संपत्ति के सुराग। यूपी में चुनावी शंखनाद के बाद चढ़ावा चोरी पर नितिन नवीन की दो टूक। दोषियों को होगी सजा। विपक्ष पर भी वार। राम के अस्तित्व और भक्तों पर गोली चलाने वाले घड़ियाली आंसू न बहाए। बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर पर बवाल। गुस्सा है लोगों का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे ममता के घर बढ़ाई गई सुरक्षा। टीएमसी का आरोप, नजरबंद किया गया। लगातार बारिश से बेहाल माया नगरी मानखुर्द में मकान गिरा, 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुजरात के जूनागढ़ में भी बुरा हाल। सुपुर्दे खाक से पहले खामिनेई को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर घुमाया जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम संस्कार।

आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फीफा वर्ल्ड कप की आज की बड़ी खबर, 5 बार का चैंपियन ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। यकीन नहीं होता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से जीत दर्ज कर ब्राजील को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5 बार का विजेता, और सोचिए कि इस बार वो फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और नॉर्वे ने 2-1 से रास्ता दिखा दिया उसे बाहर का। ब्राजील नॉकआउट मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरा था, लेकिन एलिंग हॉलैंड के दोहरे गोल की वजह से नॉर्वे को ब्राजील पर शानदार जीत मिली। नॉर्वे की जीत में गोलकीपर ओर्जा नाइलैंड का प्रदर्शन भी शानदार था, जो ब्राजील के आगे दीवार बनकर खड़े रहे। नाइलैंड ने पूरे मैच में ब्राजील को परेशान किया। पहले हाफ में ब्रूनो गुमायरस की पेनल्टी रोकी और फिर कई शानदार बचाव करते हुए नॉर्वे को बढ़त दिलाई। इसके बाद हॉलैंड ने दूसरे हाफ में 2 गोल किए और स्कैंडिनेवियाई टीम को शानदार जीत क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार ने किया, लेकिन नेमार के इस गोल ने भी ब्राजील को जीत के मार्ग पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं की। नॉर्वे से हॉलैंड ने 79वें और 90 मिनट में 2 शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 2-0 से आगे किया। ब्राजील के लिए नेमार जूनियर ने इंजरी टाइम में पेनल्टी पर एकमात्र गोल किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और मैच के बाद ब्राजीली खेमे में बेहद भावुक कर देने वाला मंजर था। नेमार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते नजर आए, उनके साथ खिलाड़ी राफिना उन्हें सांत्वना देते नजर आए। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब ब्राजील क्वार्टर फाइनल में भी जगह नहीं बना पाया। मैच में 2 गोल करने के साथ एर्लिंग हालैंड इस फीफा विश्व कप में कुल 7 गोल हो चुके हैं और अब वो टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरों की सूची में किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी के बराबर पहुंच गए हैं। गोल्डन बूट की दौड़ अब और भी रोमांचक हो गई।

ब्राजील इस मैच में जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर उतरा था। न्यूजर्सी में ब्राजील के फैंस बेहद जोश में थे। मैच से पहले ये तस्वीरें देखिए, ब्राजील के फैंस का उत्साह। उन्होंने नॉर्वे के हॉलैंड का रोता हुआ कटआउट थाम रखा है, लेकिन जिस हॉलैंड को वो रुलाना चाहते थे उन्होंने दोहरे गोल से ब्राजील को ही सन्न कर दिया। आज ब्राजील के फैंस मातम में हैं, नॉर्वे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, 5 बार के विजेता को क्वार्टर फाइनल राउंड में ही नॉकआउट कर देना नॉर्वे के लिए अपने आप में बड़ी बात है। नॉर्वे के खिलाड़ी कई

0: ये एक गोल नेमार का नहीं होता तो ब्राजील के लिए स्कोर करना भी मुश्किल होता। और ये जो जश्न है नॉर्वे का, उनके समर्थकों का, उसी से पता चलता है कि उन्होंने किसको हराया है। ब्राजील को हराना एक असंभव को संभव कर दिया, और ब्राजील के लिए ये फीफा वर्ल्ड कप रास नहीं आया। फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। खबर यह है कि मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक इमारत गिर गई है, बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति इसमें घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए सर्च ऑपरेशन को तेजी दी जा रही है। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी जा रही है। 3 मंजिला इमारत थी, 6 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकी अगर मलबे में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं जिसकी संभावना है तो राहत बचाव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये 3 मंजिला इमारत है। मुंबई में बीते 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह भी बॉम्बे के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, कई शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद किया गया है। कल की हमने तस्वीरें देखी मुंबई कैसे पानी पानी हो गई, और अब ऐसे में एक हादसा हुआ है, एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, 6 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वहां पर पहुंचे और कोशिश ये की जा रही है कि क्या मलबे के भीतर किसी के जिंदा पाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जो विजुअल केबल से उसके जरिए खोजने की कोशिश की, उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्निफर डॉग को भेजा गया है ताकि अगर कहीं भी संभावना है पता किया जा सके कि क्या मलबे में और भी लोग हो सकते हैं। तेज मूसलाधार बारिश के बाद ऐसे में राहत बचाव कार्य थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति इसमें घायल है जिसे अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, और एनडीआरएफ के कर्मी इसमें मौके पर मौजूद है जहां पर यह 3 मंजिला इमारत गिरी है। और इस हादसे के बाद अब राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है। हालांकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए, खासकर मुंबई, रायगढ़, थाने इलाकों के लिए आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बरसात हो रही है जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ, और ऐसे में एक 3 मंजिला जो इमारत है वो गिर गई है, हादसा। और इस हादसे के बाद हमारे सहयोगी एजाज खान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द इलाके में जहां रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा जो है भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, तस्वीर में देख सकते हैं ये वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे के करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी, तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद अंदर से 7 लोगों का रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इसमें दुखद 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें मरने वालों में 5 बच्चे हैं जबकि एक महिला है, जबकि एक पुरुष का इलाज चल रहा है।
0: ऐसा कोई साल नहीं है जब आर्थिक राजधानी में मानसून की दस्तक हो, बारिश का महीना हो और हादसे ना हो, तो ये साल भी आखिर भला उससे इतर कैसे होता। मुंबई में मानसून की आमद आई, प्रशासन की पोल खुल गई, बारिश की शुरुआत अभी बस हुई ही है लेकिन मुंबई की दुर्गति हो रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई,

0: किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले, किसको बनाते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा, हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में है। आइए और देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। ये हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि सड़क बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि टोटी का पानी देने वाले आबे जमजम पीकर मस्त हो रहे थे। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। तेज बारिश के बीच भांडू इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सुपारा, वसई हो या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही है कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सुपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
1: ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सुपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सनसिटी का इलाका है, इसके आसपास आप देख सकते हो। ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है। कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर, इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है। ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट आधा घंटा लेट है।
0: अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देख लीजिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसून आफत के बीच कहीं भी आने जाने को मजबूर है।
2: बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है।
3: क्या क्या कहना चाहेंगी आप?
4: क्या कहना चाहिए, इतना पानी भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है।
0: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को अगर बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी हुई है। आज तक ब्यूरो।
5: उधर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच जारी है। एसआईटी की टीम अयोध्या जेल पहुंची, आरोपियों से बारी बारी पूछताछ की और पुलिस अब जानना चाहती है कि चढ़ावे की रकम का कैसे बंदरबांट किया जाता था, चढ़ावे के चुराए हुए गहनों का क्या किया जाता था। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल का कुछ डेटा बरामद हुआ है, जिसमें लूटकांड के काफी सबूत हैं।

0: अयोध्या कारागार की इन दीवारों के पीछे चढ़ावे की चोरी करने वाले आरोपियों से पूछताछ हुई, पड़ताल हुई कि राम मंदिर के धन को कितना लूटा, कितना खसोटा, कितनी बंदरबांट हुई, कैसे हुई।
1: जिन 5 आरोपियों से पूछताछ की जानी है उसमें अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और उसका भतीजा मनीष यादव है। इनसे पूछताछ की जाएगी। केस के जो आईओ हैं, सीओ रैंक के अधिकारी हैं, वो अंदर गए हैं अयोध्या जेल में। उन 5 आरोपियों से सिलसिलेवार पूछताछ की जाएगी। हाई सिक्योरिटी बैरक में सभी आरोपी रखे गए हैं, अलग अलग बैरक में रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ होगी, सवाल लगभग एक होंगे। सिर्फ पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब के बीच में प्लानिंग किस तरीके से रची जा रही थी, कैसे चोरी की रकम का बंटवारा हो रहा था और उस चोरी की रकम को कहां खपाया जा रहा था।
0: आरोपियों के मोबाइल का बैकअप अयोध्या पुलिस ने हासिल कर लिया है। मोबाइल डाटा से 2 करोड़ से अधिक की चोरी के पुलिस को चैट मिले हैं। साइबर सेल की मदद से अयोध्या पुलिस ने सभी आरोपियों का डिलीट किया हुआ 1 साल पुराना डाटा भी रिकवर कर लिया है। अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के खरीदे गए नए नए फोन का डाटा भी पुलिस ने रिकवर किया है। अनुकल्प मिश्रा और लोकेश मिश्रा के चैट से एक दूसरे की रकम की बंदरबांट का भी खुलासा हुआ है।
1: इन सभी आरोपियों से लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद अयोध्या जेल में पूछताछ की गई। अब ये अयोध्या पुलिस बाहर निकली है। कहा जा रहा है कि आज हुई इस पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अयोध्या पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी कोर्ट में अर्जी डालेगी।
0: अयोध्या पुलिस की टीम अब बैंक खाते से लेन देन और चैट में मिले डिटेल के मिलान में जुटी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के डीएसपी को चिट्ठी लिखी है। उन नेताओं से सबूत मांगे जाने को कहा है जिन्होंने कहा कि राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई है। विश्व हिंदू परिषद की चिट्ठी में लिखा है कि आरोपों को लगाने के लिए उन नेताओं के पास क्या प्रमाण हैं, किस आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि इतनी बयानबाजी हो रही, इतने आरोप लग रहे हैं, तो अब विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि जांच उन नेताओं की जाए कि बयान के आखिर स्रोत क्या है, जानकारी कहां से आ रही है।

0: राम गोपाल यादव ने कहा 20,000 करोड़ की चोरी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा हजारों करोड़ की चोरी हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा चढ़ावे की बंदरबांट कर्नाटक तक हुई। अरविंद केजरीवाल बोले कई करोड़ की चोरी हुई। संजय राउत ने कहा 40 दिन में 70 बार चढ़ावा लूटा गया। ये सब गंभीर आरोप थे, लिहाजा विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या पुलिस प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये लोग किस आधार पर ऐसे बयान दे रहे हैं, अगर कुछ सबूत है तो जांच टीम को दे दें।
1: तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
0: अब जब चिट्ठी आई तो अपने साथ सियासत भी लाई।
2: मैं उनके पत्र का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने पत्र लिखा। हो सकता है हमारी नहीं सुन रहा प्रशासन, उनकी ही सुन ले, उनकी ज्यादा चलती होगी।
0: चिट्ठे के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया कि जमीनों की बंदरबांट का चिट्ठा तो संजय सिंह पहले ही पहुंचा चुके हैं।
3: संजय सिंह ने तो सबूत दिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी। उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना।
0: आम आदमी पार्टी भी इस खत पर खफा हुई।
4: इससे ये बात साफ है कि विश्व हिंदू परिषद को बहुत परेशानी है कि चंदा चोरी की बात आज पूरे देश में की जा रही
0: है। आरजेडी बोली चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी,
5: मतलब अपनी डकैती को कवर कर रहे हो, भगवान तक को नहीं छोड़ा, आज तक इंसानों का शोषण करते थे आप लोग, अब तो भगवान को नहीं बख्शना। अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है।
0: विश्व हिंदू परिषद शुरू से कह रहा है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इस मसले पर विहिप अयोध्या में एक बैठक करने वाला था, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। अब ये बैठक दिल्ली में होगी। उधर लखनऊ में डटे बीजेपी अध्यक्ष यूपी के सांसदों विधायकों को नसीहत दे रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है उसे तोड़ें और लोगों को सनातनी सच्चाई बताएं। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: चढ़ावा चोरी में एक तरफ अयोध्या पुलिस आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है, तथ्यों की पड़ताल कर रही है, उन लगातार उठते सवालों के बीच चंपत राय के भविष्य पर भी कयासबाजी तेज है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट उनका इस्तीफा मंजूर करेगा? क्या वो अयोध्या में बने रहेंगे? ऐसे तमाम सवालों के बीच आज ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि मीटिंग में बड़े फैसले हो सकते हैं।
7: चंपत राय पहले ही महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी पद छोड़ने की चिट्ठी भेज चुके हैं और गोपाल राव अभी भी मंदिर व्यवस्थापक बने हुए हैं। इन पर चढ़ावा गबन के गुनहगारों के गर्दन दबोचने की जिम्मेदारी थी। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गुनाह पकड़े जाने के फौरन बाद एक्शन के लिए FIR दर्ज कराते, आरोपियों को गिरफ्तार कराते, प्रभु राम के भक्तों की आस्था को आहत होने से बचाते, लेकिन जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। चढ़ावा चोरी से हुई फजीहत और सवालों के चक्रव्यूह में फंसने के बाद मंदिर ट्रस्ट उससे निकलने में जुटा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज अहम बैठक बुलाई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक करने वाले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने आज होने वाली बैठक की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार होगा, साथ ही SIT की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी, राम मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्था पर भी बात होगी। अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये अहम बैठक होने जा रही है। तमाम आरोपों के बीच सभी की नजरें अयोध्या में आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रस्ट चंपत राय पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
6: उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लगातार मैराथन बैठक की, 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में मंथन किया। नितिन नवीन 27 में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही हलचल है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी।
0: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए। मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
8: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
0: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
9: कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा चर्चा अभी सीट शेयरिंग नहीं आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
0: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
10: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
0: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें एसपी ने 17 सीटें दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद आमिर खान ने अब अपनी तीसरी शादी रचा ली है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट संग रजिस्टर्ड मैरिज कर ली।
0: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी लेडी लव गौरी स्पैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूलीवेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रेड के रूप में अपना नया हम सफर मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
6: छत्तीसगढ़ की लोक कला और पांडवानी गायक को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। वे 70 साल की थी। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
0: माटी का शरीर, माटी की सांसें, माटी की उड़ान, माटी की पांखें, माटी का मेला, माटी का खेला, माटी में मिल गई, माटी की बिट गया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई नहीं रही। वे 70 साल की थी। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थी।
11: वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को गीत के जरिए सुनाने की अद्भुत कला थी उनमें।
12: आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सब के आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से, एक समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था।
0: तेजन भाई ने पनवानी की कापालिक शैली को अपनाया। देश विदेश में उनके कार्यक्रम खासा पसंद किए गए। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। तेजन भाई ने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। देश उनकी कला को और तेजन भाई को सदैव याद रखेगा। आज तक ब्यूरो।
6: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
14: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: To right field, and it will leave.
14: From the first pitch of the season to the stretch run,
15: and that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
17: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
18: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
19: परमिशन लेनी चाहिए ना,
18: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
20: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
18: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए

0: में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजों का उपहार देने से बचना चाहिए और राशि के अनुसार क्या उपहार दें जिससे संबंध हमेशा मधुर बने रहें। क्या है आपके उपहारों का आपके भाग्य से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पांच बार का चैंपियन ब्राजील। हॉलैंड के डबल गोल से नॉर्वे ने 2-1 से जीता मैच, बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। चढ़ावा चोरी खुलासे के बाद राम मंदिर परिसर में आज ट्रस्ट की पहली और अहम बैठक। चंपत राय के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले चोरी की संपत्ति के सुराग। बंगाल के बारूईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर पर बवाल, गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे ममता के घर बढ़ाई गई सुरक्षा, टीएमसी का आरोप। दीदी को नजरबंद किया गया। लगातार बारिश से बेहाल हुई मायानगरी मुंबई। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुजरात जूनागढ़ में भी बुरा हाल। और सुपुर्दे खाक से पहले खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर घुमाया जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम संस्कार।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 व्यक्ति घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। मुंबई में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई एक तरफ जहां पानी पानी हो रही है, वहीं दूसरी पुरानी जो इमारतें हैं, जर्जर इमारतें, उनके गिरने का भी सिलसिला जारी है। ये 3 मंजिला इमारत थी जो ढह गई, जिसके बाद 5-6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इसमें से 1 शख्स घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की गई है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। मुंबई पुणे के बीच ट्रेन सेवा स्थगित कर दी है। रायगढ़ और ठाणे मुंबई, ये वो इलाके जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द इलाके में, जहां रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा जो है भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल, तस्वीर में देख सकते हैं ये वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था, जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे के करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएमसी के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद अंदर से 7 लोगों का रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इसमें दुखद 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें मरने वालों में 5 बच्चे हैं जबकि 1 महिला है, जबकि 1 पुरुष का इलाज चल रहा है।
0: मुंबई में मानसून की आमद ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। बारिश की शुरुआत अभी हुई ही है लेकिन मुंबई की दुर्गति हो रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई, कई जगहों पर पेड़ गिरे, तबाही का मंजर देखने को मिला। मुंबई फिर एक बार पानी पानी हो गई।

0: किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले, किसको बनाते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा, हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में। आइए और देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। ये हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि सड़क बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि टोटी का पानी देने वाले आबे जमजम पीकर मस्त हो रहे थे। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। तेज बारिश के बीच भांडू इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सुपारा, वसई हो या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही है कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सुपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
1: ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सुपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सनसिटी का इलाका है, इसके आसपास आप देख सकते हैं। तो ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है। कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर, इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है। ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट आधा घंटा लेट है।
0: अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देख लीजिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसून आफत के बीच कहीं भी आने जाने को मजबूर है।
2: बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है।
3: आप क्या कहना चाहेंगी?
4: क्या कहना चाहिए, इतना पानी भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है।
0: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को अगर बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी हुई है। आज तक ब्यूरो।
5: चढ़ावा चोरी में एक तरफ अयोध्या पुलिस आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है, तथ्यों की पड़ताल जुटा रही है, वहीं लगातार उठते सवालों के बीच चंपत राय के भविष्य पर कयासबाजी तेज है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट उनका इस्तीफा मंजूर करेगा? क्या वो अयोध्या में बने रहेंगे? ऐसे तमाम सवालों के बीच आज ट्रस्ट की पहली और अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
6: चंपत राय पहले ही महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी पद छोड़ने की चिट्ठी भेज चुके हैं और गोपाल राव अभी भी मंदिर व्यवस्थापक बने हुए हैं। इन पर चढ़ावा गबन के गुनहगारों के गर्दन दबोचने की जिम्मेदारी थी। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गुनाह पकड़े जाने के फौरन बाद एक्शन के लिए FIR दर्ज कराते। आरोपियों को गिरफ्तार कराते, प्रभुराम के भक्तों की आस्था को आहत होने से बचाते, लेकिन जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। चढ़ावा चोरी से हुई फजीहत और सवालों के चक्रव्यूह में फंसने के बाद मंदिर ट्रस्ट उससे निकलने में जुटा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज अहम बैठक बुलाई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक करने वाले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने आज होने वाली बैठक की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार होगा, साथ ही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्था पर भी बात होगी। अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये अहम बैठक होने जा रही है। तमाम आरोपों के बीच सभी की नजरें अयोध्या में आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रस्ट चंपत राय पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
5: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच जारी है। एसआईटी की टीम अयोध्या जेल पहुंची, आरोपियों से बारी बारी पूछताछ की और पुलिस अब जानना चाहती है कि आखिर चढ़ावे की रकम का कैसे बंदरबांट किया जाता था, चढ़ावे के चुराए हुए गहनों का आखिर क्या किया गया। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कुछ डेटा बरामद हुआ है जिसमें अब लूटकांड के सबूत भी मिलने लगे हैं।
0: अयोध्या कारागार की इन दीवारों के पीछे चढ़ावे की चोरी करने वाले आरोपियों से पूछताछ हुई, पड़ताल हुई कि राम मंदिर के धन को कितना लूटा, कितना खसोटा, कितनी बंदरबांट हुई, कैसे हुई।
3: जिन 5 आरोपियों से पूछताछ की जानी है उसमें शाह अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और उसका भतीजा मनीष यादव है, इनसे पूछताछ की जाएगी। केस के जो आईओ हैं, सीओ रैंक के अधिकारी हैं, वो अंदर गए हैं अयोध्या जेल में। उन 5 आरोपियों से सिलसिलेवार पूछताछ की जाएगी। हाई सिक्योरिटी बैरक में सभी आरोपी रखे गए हैं, अलग अलग बैरक में रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ होगी, सवाल लगभग एक होंगे। सिर्फ पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब के बीच में प्लानिंग किस तरीके से रची जा रही थी, कैसे चोरी की रकम का बंटवारा हो रहा था और उस चोरी की रकम को कहां खपाया जा रहा था।
0: आरोपियों के मोबाइल का बैकअप अयोध्या पुलिस ने हासिल कर लिया है। मोबाइल डाटा से 2 करोड़ से अधिक की चोरी के पुलिस को चैट मिले हैं। साइबर सेल की मदद से अयोध्या पुलिस ने सभी आरोपियों का डिलीट किया हुआ 1 साल पुराना डाटा भी रिकवर कर लिया है। अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के खरीदे गए नए नए फोन का डाटा भी पुलिस ने रिकवर किया है। अनुकल्प मिश्रा और लोकुश मिश्रा के चैट से एक दूसरे की रकम की बंदरबांट का भी खुलासा हुआ है।
3: इन सभी आरोपियों से लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद अयोध्या जेल में पूछताछ की गई। अब ये अयोध्या पुलिस बाहर निकली है। कहा जा रहा है कि आज हुई इस पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अयोध्या पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी कोर्ट में अर्जी डालेगी।
0: अयोध्या पुलिस की टीम अब बैंक खाते से लेन देन और चैट में मिले डिटेल के मिलान में जुटी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
5: अब चंदा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के डीएसपी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि उन नेताओं से सबूत मांगे जाएं जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई है। वीएचपी ने चिट्ठी में लिखा है कि आरोपों को लगाने के लिए उन नेताओं के पास क्या प्रमाण हैं, किस आधार पर वो बयानबाजी कर रहे हैं।

0: राम गोपाल यादव ने कहा 20,000 करोड़ की चोरी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा 1,000 करोड़ की चोरी हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा चढ़ावे की बंदरबांट कर्नाटक तक हुई। अरविंद केजरीवाल बोले कई करोड़ की चोरी हुई। संजय राउत ने कहा 40 दिन में 70 बार चढ़ावा लूटा गया। ये सब गंभीर आरोप थे, लिहाजा विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या पुलिस प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये लोग किस आधार पर ऐसे बयान दे रहे हैं, अगर कुछ सबूत है तो जांच टीम को दे दें।
1: तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
0: अब जब चिट्ठी आई तो अपने साथ सियासत भी लाई।
2: मैं उनके पत्र का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने पत्र लिखा। हो सकता है हमारी नहीं सुन रहा प्रशासन, उनकी ही सुन ले, उनकी ज्यादा चलती होगी।
0: चिट्ठे के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया कि जमीनों की बंदरबांट का चिट्ठा तो संजय सिंह पहले ही पहुंचा चुके हैं।
3: संजय सिंह ने तो सबूत दिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी। उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना।
0: आम आदमी पार्टी भी इस खत पर खफा हुई।
4: इससे ये बात साफ है कि विश्व हिंदू परिषद को बहुत परेशानी है कि चंदा चोरी की बात आज पूरे देश में की जा रही।
0: आरजेडी बोली चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
5: मतलब अपनी डकैती को कवर कर रहे हो, भगवान तक को नहीं छोड़ा, आज तक इंसानों का शोषण करते थे आप लोग, अब तो भगवान को नहीं बख्शना है। अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है।
0: विश्व हिंदू परिषद शुरू से कह रहा है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इस मसले पर विहिप अयोध्या में एक बैठक करने वाला था, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। अब ये बैठक दिल्ली में होगी। उधर लखनऊ में डटे बीजेपी अध्यक्ष यूपी के सांसदों विधायकों को नसीहत दे रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है उसे तोड़े और लोगों को सनातनी सच्चाई बताए। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लगातार मैराथन बैठक की। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में मंथन किया। नितिन नवीन ने 27 में प्रचंड जीत का दावा किया और अब हलचल ये भी है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी।
0: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए, मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
7: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
0: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
8: कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा चर्चा अभी सीट शेयरिंग नहीं आगे है, सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
0: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
9: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है, तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
0: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें एसपी ने 17 सीटें दी थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: उपहार देने में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजों का उपहार देने से बचना चाहिए और राशि के अनुसार क्या उपहार दें जिससे संबंध हमेशा मधुर बने रहें? क्या है आपके उपहारों का आपके भाग्य से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
14: राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। अरे, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि ये लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम तेरे को। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं।
15: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी जी। लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है, वो इंडिया में काफी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है, उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
16: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पांच बार का चैंपियन ब्राजील। हॉलैंड के डबल गोल से नॉर्वे ने 2-1 से जीता मैच, बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। चढ़ावा चोरी खुलासे के बाद राम मंदिर परिसर में आज ट्रस्ट की पहली और अहम बैठक। चंपत राय के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले चोरी की संपत्ति के सुराग। बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर पर बवाल, गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे ममता के घर बढ़ाई गई सुरक्षा, टीएमसी का आरोप। दीदी को नजरबंद किया गया। लगातार बारिश से बेहाल हुई माया नगरी मुंबई। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुजरात जूनागढ़ में भी बुरा हाल। और सुपुर्दे खाक से पहले खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर घुमाया जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम संस्कार।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए हम उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। आज आपको बताएंगे कि उपहारों के लेने देने का किन ग्रहों से आपके भाग्य से क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की विशेषता क्या है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:57 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं उपहारों के लेन देन के बारे में। उपहारों के देने और लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जब भी आप किसी को उपहार देते हैं तो उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे विचारे उल्टे सीधे उपहार देंगे, गलत उपहार देंगे, तो संबंध खराब हो सकते हैं। सही भावना से, सही तरीके से, सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। आप जब उपहार देते हैं तो उसमें उपहारों की पैकिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस रंग के पेपर में पैक करके आप उपहार दे रहे हैं। उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष
मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन

तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो हम आज उपहारों की बात कर रहे हैं, अब ये जानते हैं कि उपहार लेते समय देते समय उपहार के लेन देन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। जो वस्तुएं नियमित प्रयोग में आएं, ऐसी वस्तु का उपहार देना शुभ है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे व्यक्ति को पास मत करें, दूसरे व्यक्ति को उपहार में ना दें। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं और ताजमहल सामान्यतः उपहार में नहीं देना चाहिए। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके चित्र भी उपहार में ना दें। देवी देवता हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं, वैसे किसी पूजा के अवसर पर आप ले जा करके दे सकते हैं, लेकिन उपहार के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र नहीं देने चाहिए। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अजीत ने हमें लिखा है और अजीत हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1981। जन्म का समय सुबह के 10:55। जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलने का काफी समय से प्रयास कर रहा हूं। मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने की कोशिश मार्च 2027 के बाद करिएगा। मार्च 2027 के बाद आपकी नौकरी बदलेगी और स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2026 में और 2027 में पैसा अगर कहीं लगाएंगे, पैसे का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें सावधानी थोड़ी बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग उद्देश्य के लिए किस तरह का उपहार देना चाहिए। अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या गुरुजन को उपहार देना चाहते हैं तो उनको कलम का या पुस्तक का उपहार देना ज्यादा बेहतर होगा। प्रेम के मामले में सुगंध का उपहार, सुंदर कपड़े या फूलों का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। विवाह के अवसर पर वस्त्र उपहार में दें, घर में काम आने वाली चीजें उपहार में दें, मिठाई जरूर दीजिएगा। संतान प्राप्ति के अवसर पर चांदी की कोई छोटी सी चीज, चांदी के कड़े, चांदी की चम्मच या चांदी की चेन, चांदी की किसी वस्तु का उपहार देना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ उपहार देना चाहते हैं तो घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मित्रता के मामले में चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं या संगीत की कोई चीज, म्यूजिक की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, सुगंधित धूप बत्ती और घड़ी, ये आप उपहार में दे सकते हैं। तो अगर जरूरत के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से आप उपहार दें तो उपहार को देने से आपके संबंध बेहतर होंगे।
उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार सामान्य रूप से क्या उपहार दें जिससे रिश्ते बेहतर बने रहें, जिससे रिश्तों में उन्नति होती रहे। अगर मेष राशि की बात करें तो इन लोगों को उपहार में दूसरों को सौंदर्य प्रसाधन या सुगंध का उपहार देना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को दूसरों को मीठी चीजों का उपहार देना बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सजावटी मूर्तियां, डेकोरेटिव चीजें उपहार में देना अच्छा रहेगा। कर्क राशि, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अगर आप उपहार में दें तो काफी बेहतर होगा। सिंह राशि, उपहार में जूते, बेल्ट या पर्स, इसका उपहार देना अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपको उपहार में दूसरों को कलम, किताब या लैंप आदि उपहार में देना चाहिए। तुला राशि, आप उपहार में चॉकलेट, मिठाई या शरबत का अगर उपहार दें तो बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आप उपहार में आभूषण दें या सुगंधित वस्तुओं का उपहार दें तो काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि, आप उपहार में दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु या बर्तन अगर उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, आप उपहार में चांदी की वस्तुएं दें या प्रकाश वाली वस्तुएं, लाइट, मोमबत्ती, दीपक, ये उपहार में देना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आप उपहार में लकड़ी की चीजें या आभूषण अगर उपहार में दें तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। मीन राशि, आप उपहार में अगर पौधे दें, पढ़ने लिखने की चीजें, कलम या किताब उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। अगर अपनी राशि के अनुसार आप दूसरे व्यक्ति को उपहार देते हैं, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा
और दोनों के बीच के संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपहार में कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कांच शुक्र से संबंध रखने वाली वस्तु है और कांच की चीजें सामान्यतः नाजुक होती हैं। जब आप किसी को कांच की वस्तु उपहार में देते हैं तो उससे रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब उपहार में दी गई कांच की वस्तु टूटती या खराब होती है तो रिश्तों के बिगड़ जाने की संभावना बन सकती है। इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है कि नाजुक चीजें और कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर में परिवर्तन होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अवनी ने हमें लिखा है और अवनी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 26 दिसंबर 2000 का जन्म है।
जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 5:10, जन्म स्थान है धूलिया महाराष्ट्र में, लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मैं अभी अच्छी नौकरी कर रही हूं लेकिन मैं मैनेजमेंट करना चाहती हूं, तो क्या नौकरी छोड़ करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करना मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अवनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी मत छोड़िए, नौकरी के साथ एग्जीक्यूटिव MBA या ऑनलाइन MBA करने का प्रयास करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उस MBA में आपको सफलता भी मिलेगी और नौकरी भी आपकी चलती रहेगी। आपके करियर की स्थिति अच्छी है, अप्रैल 2028 के बाद का जो समय है वो आपकी कुंडली में काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है, आज क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है। आज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा और आज शाम के समय शिव जी के मंदिर जाकर एक घी का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: मानखुर्द में भारी बारिश के बीच चार मंजिला चौल ढही, हादसे में छह लोगों की। मानखुर्द बिल्ली गिरने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ का दावा, सभी छह पीड़ितों को सुरक्षित निकाला गया, कोई घायल अब नहीं फंसा है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुंबई यूनिवर्सिटी का फैसला, आज होने वाली तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मुंबई के कई हिस्सों में आज भी बारिश का कहर देखने को मिला, बांद्रा बैंडस्टैंड से सामने आई बारिश की तस्वीर। मुंबई में तेज हवाओं के साथ जमाझम बारिश हुई, गेट ऑफ इंडिया के पास समंदर में ऊंची लहरें देखने को मिली। मुंबई के लोअर परेल से तेनिम जोशी मार्ग पर भारी बारिश का कहर, सड़कों पर जल जमाव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। पुणे में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, कैंप के ईस्ट स्ट्रीट सहित कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित हुआ है। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महालक्ष्मी फ्लाईओवर का मरम्मत किया गया, हिस्सा फिर से धंस गया, मलबा नीचे गिरा। सातारा रत्नागिरी में भी मानसून का कहर देखने को मिला, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई से सटे वाशी में भी लगातार बारिश के कारण पुल टूट गया, लोगों ने मंत्रियों से पुल के मरम्मत की गुहार लगाई है। ओडिशा के बौद्ध जिले में सलुंकी नदी में अचानक तेज बाढ़ आई, तेज बहाव के बीच दो महिलाएं फंस गई, चार घंटे बाद उनका सफल रेस्क्यू किया गया। संबलपुर में भी मानसून फिर सक्रिय हुआ, कई इलाकों में जलभराव के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर में तेज आंधी बारिश के दौरान होटल की छत से उखड़ा सोलर पैनल, सड़क पर गुजर रही स्कूटी पर दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, दो मासूम पोते घायल हो गए, एक गाय की भी जान गई। जोधपुर रेफर के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। भोपाल के बैरसिया में एक हादसा हुआ, पुल पार करते समय ट्रैक्टर नदी में पलट गया, ड्राइवर की जान बाल बाल बची। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश की वजह से 200 छात्र परीक्षा नहीं दे सके, 24 घंटे में 107 मिलीमीटर की औसत बारिश के चलते सड़क से संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के महासमंद में तेज बारिश के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर पानी में फंस गए, सेना की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के भावनगर में डोंगी नदी में कार फंस गई, सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचाया गया। डांग में भी मानसून ने जोरदार दस्तक दी है, सापुतारा समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और घना कोहरा देखने को मिला। गुजरात के अमरेली में 36 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा। मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, दुकान पर भारी पेड़ गिरने से 63 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई। मुंबई के गोरेगांव में केमिस्ट के दुकान के सामने पेड़ गिर गया, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पुणे में जन्मदिन के जश्न के नाम पर सड़क पर हुड़दंग देखने को मिला, युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को पुलिस ने फिर सबक सिखाया। दिल्ली में 1,00,000 रुपए का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार किया गया, नाबालिग लड़की का अपहरण और यौन शोषण का आरोप था। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन के आरोप पर हंगामा, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, जांच शुरू हो गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर आज फैसला हो सकता है, सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। आज दोपहर 3:30 बजे राम मंदिर परिसर में बैठक होगी, पहले मणि रामदास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होने वाली थी जिसे अब मंदिर परिसर में टाल दिया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान, चढ़ावे की गिनती में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, साथ ही मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की भी उन्होंने मांग की है। जांच के बीच वीएचपी ने अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट की अपनी केंद्रीय बैठक, अब 18 और 19 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के डीएसपी को चिट्ठी लिखी है, चढ़ावा चोरी पर नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है और बयान का आधार मांगा है। गोंडा में राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, कई अहम फैसलों की भी उम्मीद की जा रही है। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को बताया काल्पनिक, राम के नाम पर ये बाहर है घड़ियाल आंसू। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर अखिलेश यादव का तंज, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं तो क्या दर्शन करने नहीं जाएंगे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर बीजेपी नेताओं की मुलाकात, नितिन नवीन सीएम योगी और बीएल संतोष भी बैठक में शामिल। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर केंद्रीय बल तैनात किए गए, टीएमसी ने पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद दौरा करने वाली थी ममता। दक्षिण 24 परगना के बरीपुर की घटना पर सविनी घोष ने दुख जताया। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात, कहा एसआईटी गठित की गई है, पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने मिलते जुलते नाम के चक्कर में बेकसूर को थर्ड डिग्री प्रताड़ना दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह निंदनीय है, शर्मनाक है। गौतम अदानी मामले में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का बयान आया है कि ये केस कभी होना ही नहीं चाहिए था दर्ज, इसमें कानूनी रूप से खामियां हैं, निवेशकों को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर भीषण ब्लास्ट हुआ, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं, इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे, जनसुराज ने ऐलान किया है। नितिन नवीन के इस्तीफे से ये जगह खाली हो गई थी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 24 जुलाई तक चलेगी सदन की कार्यवाही। बिहार की जनता के नाम लालू यादव ने चिट्ठी लिखी, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रही है बीजेपी। बिहार में सम्राट सरकार के दावों की पोल खुल गई, बांका के बलिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने दो युवकों को गोलियों से भूना। पटना एम्स का विस्तार किया जाएगा, बिहार सरकार ने 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी है, सीएम सम्राट चौधरी ने इसका निरीक्षण भी किया। जींद में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, आज सीएम सैनी जींद की सुरक्षा का जायजा लेंगे। पद्म विभूषण पांडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हुआ, रायपुर एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया, अदानी ग्रुप 2500 करोड़ की लागत से तैयार करेगा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया, नए पुल से यातायात अब और सुगम हो जाएगा। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 60.5 लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, आंगनबाड़ी केंद्र, आर्टिफिशियल टर्फ, क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। बिजनौर में बारात में जमकर बवाल हुआ, फायरिंग के बाद भगदड़ हुई, एक पक्ष ने युवक को दौड़ा कर पीटा। नैनीताल में कॉर्बेट की आड़ में जिस्म फरोशी का खेल, लग्जरी रिजॉर्ट पर पुलिस ने बड़ा छापा मारा, 52 गिरफ्तार किए गए, 10 महिलाएं मुक्त हुई, अब पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। उत्तरी उड़ीसा तट से टकराया डिप्रेशन, दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय हो चुका है, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश नहीं, दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल दी, बीआरटी रोड पर लगभग 15 फीट लंबी सड़क धंस गई। महाराष्ट्र के पालघर आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी देते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 3 गिरफ्तार किए गए हैं, 4 पिस्टल, हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई, पुलिस अब छानबीन कर रही है। उज्जैन में 40 घंटे बाद चंबल नदी से गांव के सहायक सचिव का शव बरामद किया गया, गांव का माहौल अब गंभीर है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम की गई है, गांजा एमडी ब्राउन शुगर समेत 2 करोड़ रुपए का माल नष्ट किया गया। सूरत में शराब तस्करी में ऑटो चालक गिरफ्तार किया गया, शराब की 450 से ज्यादा बोतलें जब्त की गई। सूरत में नकली ब्रांडेड क्लीनर शैंपू तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 13 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया, एक गिरफ्तार हुआ है। दादरी से शुरू हुई रोडवेज बस 36 घंटे में राजस्थान से बरामद की गई, डीटीसी का बर्खास्त ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। झांसी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर फरार हुआ कार सवार, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। गाजियाबाद में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है, कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण की पहचान कर देते। बिहार के गोपालगंज में 1 करोड़ की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया गया, डीएम के आदेश पर नष्ट किया गया। इटावा में 16 दिन बाद सुलझी अज्ञात शव की गुत्थी, पत्नी से अफेयर के चक्कर में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद भारी तनाव, पीड़ित परिवार ने एक आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीटा। प्रतापगढ़ कुंडा में जमीनी विवाद में तहरीर देने गई महिला ने थाने में मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस ने मारपीट की घटना को गलत बताया। मेरठ में पेटीएम कर्मचारी से लूट के मामले में फरार चल रही महिला लुटेरी ज्योति चौधरी हरिद्वार से गिरफ्तार की गई, सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करके पुलिस को चुनौती दी थी। गोंडा में दलित किशोरी की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। एलिंग हॉलैंड के दो गोल और नाइलैंड की शानदार गोलकीपिंग से नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत हुई है। हार के बाद भावुक दिखे नेमार, ब्राजील 1990 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिर सजा है महिला टी20 वर्ल्ड कप का ताज, इंग्लैंड को धूल चटाकर रिकॉर्ड सातवीं बार जीता खिताब। लॉस में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व विजेता बनी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। ईरान की राजधानी तेहरान में अली खामनेई के कथित अंतिम दर्शन समारोह में उमड़ा जनसैलाब, एरियल दृश्यों में भारी भीड़ देखने को मिली। ईरान में खामनेई को राज्य स्तर पर अंतिम विदाई कार्यक्रम दी जा रही है। तेहरान में लोगों ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी, लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा। ईरान के तेहरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार के तीसरे दिन बेटे भी शामिल हुए, 3 बेटों ने नमाज अदा की। इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर के पास गोलीबारी हुई, पाकिस्तान वायुसेना के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की मौत हुई। पीएफ का दावा, अफसर ने महिला सहकर्मी को बचाने की कोशिश की, झड़प के दौरान गोली लगने से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की मौत हुई। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न देखने को मिला, शहर शहर शानदार आतिशबाजी हुई, लड़ाकू विमानों ने फ्लाईपोस्ट किया, पैरा जंपर्स ने भी कमाल के करतब दिखाए। ईरान में सुपुर्द खाक से पहले खामनेई को अंतिम विदाई देने भारी भीड़ उमड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नारे भी लगे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा, सड़कों पर उतरे लोग, आजादी के नारे लगाए। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी की मौत अज्ञात हथियारबंद की गोलीबारी में गई जान। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3300 के पार, 10,000 से ज्यादा घायल हैं, लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ उन्होंने शादी रचाई। अभिनेता आशुतोष राणा अब देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे पूजा अनुष्ठान, सुनाएंगे पौराणिक कहानियां, साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखी है तमाम कहानियां। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई, सलमान खान फिल्म से सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बेबुनियाद बताया। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म टाइटल तय, विकेट सनी के नाम से होगी रिलीज, अलग अलग अंदाज में कॉमिक किरदार में निभाते नजर आएंगे अक्षय कुमार। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलिना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक, इमोशनल दिखाई दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सतलुज हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का नया पोस्ट, पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा का जिक्र किया। सतलुज पर बोले हरभजन सिंह, कहा सत्ता के दुरुपयोग के घाव पीड़ितों तक रहते हैं, सच हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हरभजन सिंह ने कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा का साहस और उनकी कहानी को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जसवंत सिंह खालड़ा को श्रद्धांजलि दी, पंजाब 95 का भी जिक्र किया। सतलुज हटने के बाद पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा काफी तेज हो गई है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: और एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, भारी बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई पुणे राजमार्ग दोनों बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से इन दोनों रूट पर सफर न करने की अपील की है। एक्सप्रेसवे पर टनल में पानी भर गया है, मलबा गिरने से रूट बंद हो गया है, दोनों ही रास्तों पर यानी रूट पर अब आने जाने वाला ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। ये जानकारी उन तमाम लोगों के लिए जो इस रास्ते पर आगे सफर करना चाहते हैं। लैंडस्लाइड और पानी भरने की वजह से इस टनल के हिस्से को, आने जाने वाले रूट को बंद कर दिया है। प्रशासन ने दोनों रूट पर न जाने की अपील की है। मुंबई और आसपास के तमाम जिलों में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते तबाही का मंजर देखने को मिला है और अब अगले आदेश तक इस रूट को बंद कर दिया गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं, लोनावला कंडाला, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं कैसे अचानक मलबा गिरा है, और ये टनल का मुहाना है, इस मुहाने पर आप देख रहे हैं जल प्रपात दिखाई दे रहा है। ये मुंबई पुणे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको अब बंद कर दिया गया है। ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
3: K-pop takes center stage, bold sounds, global energy and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems. and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-Pop to start listening now.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: इन एसोसिएशन विद
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
11: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
12: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
13: परमिशन लेनी चाहिए ना,
12: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
14: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
12: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
15: अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पे सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, VHP के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम तेरे को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी जी। लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है। वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है। उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
4: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफ़ी कैलिब्रेटेड रहा है और काफ़ी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर रात के जरूरी काम निपटाने तक व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है, लेकिन जल्द ही आपकी चैटिंग का अंदाज और पर्सनल डेटा पूरी तरह से बदल जाएगा। व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लेकर आया है, जिसे लेकर सरकार ने फ्रॉड के खतरों पर चिंता जताई थी। सरकार के नोटिस के बाद कंपनी ने भारत के 53.5 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सुरक्षा से जुड़े नए नियम और गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। दरअसल नया फीचर आने के बाद व्हाट्सएप पर अपनी पहचान या फोन नंबर छिपाना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस यूजर नेम को बनाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और सरकारी विभागों के नामों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है, जिससे कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके अलावा स्कैमर्स और फेक अकाउंट से आम जनता को बचाने के लिए कंपनी ने एक बेहद एडवांस सिक्योरिटी लेयर तैयार की है। अनजान लोगों से सुरक्षित रहने के लिए व्हाट्सएप यूजर नेम की नाम का नया सेफ्टी फीचर दे रहा है। इसके बाद कोई भी नया व्यक्ति बिना इस की के आपको मैसेज नहीं भेज पाएगा। चैटिंग के दौरान किसी अनजान यूजर नेम से मैसेज आने पर स्क्रीन पर इसकी जानकारी और वार्निंग दिखाई देगी। इस नई व्यवस्था में फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ब्लॉक और रिपोर्ट होने वाले अकाउंट्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कई छोटे बिजनेसमैन और क्रिएटर्स जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी पहचान रखना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मौजूद अपने यूजर नेम को भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। साल के आखिर में पूरी तरह से रोल आउट होने वाले इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके सेटिंग्स के अंदर अकाउंट ऑप्शन से मनपसंद नाम रिजर्व कर सकते हैं। ये नया कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के इस ऐप पर दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जो रोजाना 140 अरब से ज्यादा मैसेज शेयर करते हैं। यूजर नेम के लाइव होने के बाद भी आज की तरह कोई भी अनजान व्यक्ति आपका नाम डायरेक्ट सर्च नहीं कर पाएगा। वही सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यूजर अपनी इस सीक्रेट की को कभी भी रीसेट कर सकते हैं, और दावा किया गया है कि मशहूर नामों को एडवांस में बुक करने के इंटरनेट पर चल रहे दावे पूरी तरह से अफवाह और झूठे हैं। सरकार के कड़े रुख की वजह से कंपनी इस फीचर को पूरी तरह से परफेक्ट और फूल प्रूफ बनाने में जुटी है। आम नागरिकों के फीडबैक को ध्यान में रखकर ही इसे फाइनल स्टेज में लाया जा रहा है। यूजर नेम और प्राइवेसी की इस नई जुगलबंदी के बाद आम लोगों का पर्सनल डेटा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित रहने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इस्तीफे पर हो सकता है फैसला, आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी। मानखुर्द में मकान गिरने के कारण 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुजरात के जूनागढ़ का भी बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर। 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्द खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम रस्म।

सुबह के 8 बजे और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, बात करेंगे मुंबई पर मॉनसून की आफत की, साथ ही खबर मायानगरी में हुए हादसे की भी आपको दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आपको ये बताएंगे कि चंपत राय को लेकर वो बड़ी खबर क्या है, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, साथ ही ये बताएंगे कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने पुलिस को क्या कुछ बताया है। बात यूपी के चुनावी संग्राम की भी होगी कि क्या है बीजेपी का 2027 वाला प्लान, और खबर बंगाल की जहां मासूम से हैवानियत मौत पर हिंसा भड़की है। खबर ममता बनर्जी की भी होगी जिनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सियासत तेज हो गई है, और साथ ही आपको बताएंगे कि गम में पूरा ईरान क्यों डूबा है। सुपर 8 में सबसे पहले खबर मुंबई की। दरअसल मुंबई में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, आज भी महानगर पर जोरदार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के तमाम इलाकों में इसका गंभीर असर दिख रहा है। रेड अलर्ट को देखते हुए आज शिक्षण संस्थान

0: सात लोगों का रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इसमें दुखद 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, मरने वालों में 5 बच्चे हैं जबकि एक महिला है, जबकि एक पुरुष का इलाज चल रहा है।
1: हमारे सहयोगी विद्या हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। विद्या, 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, ये पूरा हादसा आखिर क्यों हुआ है, जांच में क्या कुछ पता चल सका है?
2: जी देखिए, अगर मैं ये पूरा गली आपको दिखा दूं, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने जो झोपड़े हैं वही बने हुए हैं। अब अचानक ये झोपड़ा ही क्यों कोलैप्स हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और यही जांच पड़ताल में ये लोग पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये मलबा है, अब फिलहाल जो NDRF है और का ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, मतलब मलबा हटाने का बस काम है, लेकिन अब कोई इसके अंदर है नहीं, ऐसा लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया है। और यही वजह है कि फिलहाल जो ऑपरेशन, लेकिन जो मलबा हटाने का काम है बस अब वही रह गया है यहाँ पर मानखुर्द में।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। वही महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, पुणे और वाशिम समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर जलभराव, लैंडस्लाइड, पेड़ और दीवार गिरने के कारण ऐसी घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पर सड़कें बंद हैं तो कहीं पर वाहन मलबे में दब गए हैं और इसी वजह से लोग वहां पर परेशानी झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। कैंप इलाके के ईस्ट स्ट्रीट में जलभराव की वजह से लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं कोथरूड़ और साथ ही सिंहड़ रोड पर, इसके साथ ही शहर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है। सड़कों पर पानी भरने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है, जबकि बारिश ने मौसम को सुहाना तो बनाया ही है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना भी जताई है और लोगों से जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय हाईवे पर स्थित महालक्ष्मी फ्लाईओवर का मरम्मत किया जा रहा है और एक बार हिस्सा वहां का फिर से धस गया। 2 दिन पहले इसी जगह बने गड्ढे के कारण करीब 15 वाहन हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद NHAI ने तत्काल मरम्मत कराई थी, लेकिन ये मरम्मत ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकी और अब वही हिस्सा दोबारा धंसकर मलबे सहित फ्लाईओवर के नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो वही महाराष्ट्र के सतारा और रत्नागिरी जिलों में मॉनसून का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सतारा में लगातार बारिश के चलते कोयना डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं ओजड़े और साथ ही ठोसेघर और महाबलेश्वर का प्रसिद्ध वाटरफॉल पूरे उफान पर बह रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक इन प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। महाबलेश्वर का वेणा लेक भी ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और खतरनाक जगहों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील भी की है। तो ठाणे में खराब मौसम के बीच पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। कलवा रेलवे कॉलोनी और साथ ही चंदनवाड़ी इलाके में तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ गिर गए, जिससे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, प्रशासन और स्थानीय टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया है। ये पेड़ गिरने की वजह से बाल बाल ये 2 व्यक्ति वहां पर बच गए। कई गाड़ियों पर भी, यहाँ पर जो खड़ी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, उस पर ये जाकर पेड़ गिर गया। तो मॉनसून महाराष्ट्र में एक संकट भी लेकर आया है, जहां पर मौसम सुहावना हो गया है तो कहीं पर मलबा हटाने का काम अभी से जारी है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और बाल बाल ये दोनों शख्स बचते हुए यहां पर नजर आए हैं। अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है और इस मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लगातार गिरते मलबे और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला ये लिया है कि लैंडस्लाइड के गंभीर खतरों को देखते हुए पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों ही दिशाओं का ट्रैफिक अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी

0: यहाँ से कोई भी होकर नहीं गुजरेगा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही यहाँ पर मची है। जगह जगह पर मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और लोगों को नसीहत दी गई है, इसको बंद कर दिया गया है। बड़ा फैसला पुणे प्रशासन ने लिया है इस खतरे को देखते हुए। लब लगाव पर पानी बह रहा है। तो महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, पुणे और वाशिम समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर जलभराव, लैंडस्लाइड, पेड़ और दीवार गिरने जैसी घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पर सड़कें बंद हैं तो कहीं वाहन मलबे में दब गए हैं।
1: मुंबई से सटे वसई विरार में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बसंत नगरी और मधुबन इलाका चारों तरफ पानी से घिरा दिखाई दे रहा है। कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। वहीं वसई में एक सोसाइटी के कंपाउंड वॉल गिरने से बाहर खड़ी करीब 15 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी घटना में गोम्स गार्डन बिल्डिंग के रिफ्यूज एरिया का छज्जा गिरने से पार्किंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के बांद्रा और गोरेगांव में भी भारी बारिश के बीच बड़े पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। पेड़ गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बांद्रा में तीन खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं पुणे में विशाल पेड़ गिरने से कई वाहन दब गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवी मुंबई के पास मेट्रो पिलर के समीप लैंडस्लाइड होने से मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खारघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। वाशिम में लगातार बारिश के कारण शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने और स्थायी समाधान की मांग की है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
0: और अब खबर गुजरात के अमरेली जिले में। पिछले 36 घंटों से हो रही भारी बारिश ने हालात वहां भी बिगाड़ दिए हैं। राजूला, जाफराबाद, खंबा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये इलाके प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है, कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जबकि निचले इलाकों के कई घरों में भी पानी भर गया है। सावरकुंडला में चेक डैम का बांध टूटने के कारण और कई डैम के गेट खोले जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की गई है। तो वहीं गुजरात के नवसारी और डांग जिले में भी मॉनसून ने जोरदार वापसी की है। दरअसल सापुतारा, आहवा, वघई और सुबीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरा इलाका हरियाली और घने कोहरे की चादर में लिपट गया है। वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और मॉनसून के खूबसूरत नजारों का आनंद भी ले रहे हैं। हालांकि सापुतारा में तेज बारिश, घने कोहरे के बीच कुछ पर्यटक तालाब में बोटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, गुजरात से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बोटिंग कर रहे थे कुछ पर्यटक, मॉनसून का लुत्फ उठा रहे थे और वो वहीं पर फंस गए। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। गुजरात के बाद ये बारिश की वजह से जो गुजरात में नजारा देखने को मिला वो आपको। और चलिए अब अगली खबर, राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर आई तेज आंधी और बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल गांधी कॉलोनी में एक होटल की छत पर लगा सोलर पैनल तेज हवा में उखड़कर सड़क से गुजर रही एक स्कूटी पर गिर गया। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि उनके दो मासूम पोते भी घायल हो गए। हादसे में एक गाय की भी मौत हो गई है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल के पास बैरसिया में उफनती नदी पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया। हालांकि चालक समय रहते हुए सुरक्षित बाहर निकल गया। खरगोन में महादेव का प्राकृतिक झरना रौद्र रूप में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। वहीं श्योपुर में तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, जहां एक स्कूटी बहने लगी, लेकिन सवार जो सवार उस पर था स्कूटी पर वो बच गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के बौद्ध में बाढ़ के बीच 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 महिलाओं को बचाया गया। तो वहीं दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने बीआरटी रोड पर बड़ा गड्ढा बना दिया है, जिसमें टैंकर फंस गया और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें बारिश के बाद का हाल आप देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर अयोध्या की। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की जांच के बीच आज अहम दिन है, क्योंकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आज का जो दिन है वो पहले जेल में बंद 5 आरोपियों से पुलिस ने लंबी उससे पहले पूछताछ की है। तो आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उनसे चोरी की गई रकम को लेकर भी बात की है, साथ ही उनकी नौकरी को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। रविवार को पुलिस ने 5 आरोपियों से करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। तो सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय की ट्रस्ट से विदाई तय मानी जा रही है। इस्तीफा दे चुके सदस्य अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट से बाहर हो सकते हैं, और दोनों ने 26 जून को पद से इस्तीफा दिया था। मंदिर प्रबंधन से लेकर चढ़ावे की रकम की गणना तक की जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की थी, इसलिए ये दोनों शुरू से ही सवालों के घेरे में हैं। सूत्र बताते हैं कि इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ट्रस्ट का बड़ा मैसेज भी ट्रस्ट एक देना चाहता है। इसके पीछे की वजह मामले में ट्रस्ट की छवि धूमिल होना भी है। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है।
2: राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक है, वक्त तय है, जगह भी तय है और मुद्दे भी तय है। ट्रस्ट पर ट्रस्ट का सवाल है, लिहाजा मुद्दे पहले ही तय कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार होगा, साथ ही SIT की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्था पर भी बात होगी। सबसे अहम सवाल है चढ़ावा चोरी का और उसे लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा पर उठे सवाल का। आज की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट इन दोनों के इस्तीफे पर फैसला कर सकता है। चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को ट्रस्ट ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मामले के खुलासे के बाद ट्रस्ट पर भी सवाल उठे हैं। तमाम विवादों के बीच ट्रस्ट की आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंदिर परिसर में दोपहर 3 बजे बैठक तय है। अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हो सकते हैं।
3: दोपहर को 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी लोगों को सूचना गई है, हमारे अपेक्षाएं सब लोग।
2: सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा की संभावना है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी के एक आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो कथित गबन की जांच कर रही पुलिस को नए वित्तीय सुराग मिले हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने परिवार और दोस्तों पर किए गए खर्च की जानकारी दी है। उसने बताया है कि अपने एक भाई की शादी के लिए करीब 6 लाख रुपए दिए और दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए गए। सूत्रों का दावा है कि अविनाश ने एक दोस्त को लगभग 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसी व्यक्ति को एक महंगा मोबाइल फोन भी तोहफे में दिया गया। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि कई अन्य लोगों को भी छोटी छोटी रकम दी गई। तो वही पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 11 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। लड़की एक दिन पहले लापता हो गई थी। घटना के बाद इलाके में एक मॉब लिंचिंग भी हुई और गुस्साए लोगों ने एक व्यक्ति को मार डाला। दरअसल बारुईपुर में हालात तनावपूर्ण होने और ममता बनर्जी के संभावित दौरे के बीच उनके कोलकाता आवास पर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है और SIT का गठन भी किया गया। नाबालिग से हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई, इसमें आरोपी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है। इसके बाद पूरे बंगाल में बवाल मचा है और ममता बनर्जी आज खुद मौके पर भी पहुंचेंगे।
4: बहुत दुखजनक घटना है, लेकिन हमारा इधर हमारा शुभेंदु अधिकार का सरकार में किसी का कोई महिला के ऊपर अत्याचार करेगा तो उसका रिहाई नहीं होगा। जो बच्ची का बलात्कार हुआ है ऐसा बोला जा रहा है और खून हुआ है, उसको जो किया है उसका शास्ति होगा, ये हमको हम आपको 200% एश्योरेंस देते हैं।
0: तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बरोई पर जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता में उनके घर के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी को नजरबंद कर लिया गया है और उन्हें बरोईपुर जाने से रोका भी गया है। बरोईपुर कांड को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, राज्य सरकार पर ममता ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी में कई दिनों तक चल रहे अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान शोक, धार्मिक अनुष्ठान और राजनीतिक नारों का मिश्रण देखने को मिला। हालांकि समारोह के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लगाए गए नारे और कुछ वक्ताओं के भड़काऊ बयान भी चर्चा का विषय बन गए हैं। तो ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी के लिए भारत सरकार और जनता का धन्यवाद किया है। ईरानी दूतावास ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी दोनों देशों की गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसके लोग भारत के इस सद्भावपूर्ण कदम को कभी भी नहीं भूलेंगे। और चलिए अब खबर आईसीसी T20 विमेंस वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड एक बार फिर से चैंपियन बन गई है। दरअसल बीती रात लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व विजेता बन गई। ये 7वां मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया और इंग्लैंड की महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 17 गेंद रहते हुए 151 के लक्ष्य को हासिल कर लिया और 7 विकेट से मात दे दी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की इस कामयाबी पर उन्हें जीत की बधाई दी। चलिए अब बात कर लेते हैं फीफा की। फीफा वर्ल्ड के आज एक बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर 5 बार की चैंपियन ब्राजील को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मैच में नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे, जबकि गोलकीपर ओरजान नाइलैंड ने कई बेहतरीन बचाव कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। ब्राजील की ओर से एकमात्र गोल नेमार ने इंजरी टाइम में पेनल्टी पर किया। और चलिए यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओह, अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: हमने तब भी सवाल किया था।
13: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं।
13: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
13: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
17: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
18: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
19: परमिशन लेनी चाहिए ना,
18: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
20: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
18: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच के बाद श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी। मानखुर्द में मकान गिरने के कारण 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश और उज्जैन के साथ ही गुजरात के जूनागढ़ का भी बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर। 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जन सैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम रस्म। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। मुकाबले से बाहर हुआ 5 बार का चैंपियन ब्राजील। होलैंड के डबल गोल से नॉर्वे ने 2-1 से जीता मैच। बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह।

में भारी बारिश और भूस्खलन का बड़ा असर पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई पुणे हाईवे अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद। पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों दिशाओं में यातायात रोका गया। प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने की अपील की। लगातार बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट का पिलर गिरा। सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही बंद की गई। लोहगढ़ किले के पास पाटन गांव में भूस्खलन, एक परिवार के प्रभावित होने की सूचना। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मावल और तामिहिणी घाट में बाढ़ जैसे हालात। वैकल्पिक सड़क मार्ग भी प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से केवल अत्यंत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की। मुंबई के मानखुर्द में भारी बारिश के बीच चार मंजिला चौलडही हादसे में छह लोगों की मौत। मानखुर्द बिल्डिंग गिरने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ का दावा, सभी छह पीड़ितों को सुरक्षित निकाला गया, कोई घायल नहीं फंसा। भारी बारिश के बीच अलर्ट में मुंबई यूनिवर्सिटी का एक फैसला। आज होने वाली परीक्षाएं टली, नई तारीख जल्द होगी घोषित। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश का कहर। बांद्रा बस स्टैंड और साथ ही इसके सामने आई बारिश की तस्वीरें। मुंबई में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में उठी ऊंची लहरें। मुंबई के लोअर परेल स्थित एनएम जोशी मार्ग पर भारी बारिश का कहर। सड़कों पर जलभराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। पुणे में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कैंप के ईस्ट स्ट्रीट सहित कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महालक्ष्मी फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम जारी था, फिर से वहां पर एक हिस्सा धस गया, मलबा नीचे गिरा। सतारा रत्नागिरी में मॉनसून का कहर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। पाशी में लगातार बारिश के कारण टूटा पुल। लोगों ने मंत्रियों से पुल की मरम्मत की लगाई गुहार। ओडिशा के बौद्ध जिले में सलंकी नदी में अचानक से बाढ़ आई। तेज बहाव के बीच फंसी दो महिलाएं, चार घंटे बाद सफल रेस्क्यू। ओडिशा के संबलपुर में मॉनसून फिर से सक्रिय। कई इलाकों में जलभराव के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। जैसलमेर में तेज आंधी बारिश के दौरान होटल की छत से उखड़ा सोलर पैनल। सड़क पर गुजर रही स्कूटी पर गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत, दो मासूम होते घायल, एक गाय की भी गई जान। जोधपुर रेफर के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम। भोपाल के बैरसिया में बड़ा हादसा हुआ। पुल पार करते समय ट्रैक्टर नदी में पलटा, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। एमपी के हरदा में बारिश की वजह से 200 छात्र नहीं दे सके परीक्षा। 24 घंटे में 107 मिलीमीटर की औसत बारिश के कारण सड़क से संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तेज बारिश के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर पानी में फंसे। सेना की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के भावनगर में डोंगी नदी में फंसी एक कार, सभी लोगों को सुरक्षित वहां से बचा लिया गया। डांग में मॉनसून की जोरदार वापसी। सापुतारा समेत कई इलाके ऐसे जहां पर मूसलाधार बारिश और घना कोहरा छाया हुआ है। अमरेली में 36 घंटे में मूसलाधार बारिश, कई नदियां उफान पर, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। दुकान पर भारी पेड़ गिरने के कारण 63 साल के बुजुर्ग की मौत। मुंबई के गोरेगांव में केमिस्ट की दुकान के सामने गिरा पेड़, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पुणे में जन्मदिन के जश्न के नाम पर सड़क पर हुड़दंग, युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को पुलिस ने सिखाया सबक। दिल्ली में 1 लाख रुपए का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार किया गया, नाबालिग लड़की का अपहरण, यौन शोषण का आरोप। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन के आरोपों पर हंगामा, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, जांच शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक होने वाली है। चौपतराय अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर हो सकता है फैसला। आज दोपहर 3:30 बजे राम मंदिर परिसर में होगी बैठक। पहले मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की होने वाली थी बैठक। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान, चढ़ावे की गिनती में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। साथ ही मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ट्रस्ट की मीटिंग और जांच के बीच वीएचपी ने अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट की केंद्रीय बैठक। अब 18 और 19 जुलाई को होगी मीटिंग। वीएचपी ने अयोध्या के डीएसपी को लिखी चिट्ठी, चढ़ावा चोरी पर नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की गई, बयान का मांगा आधा। गोंडा में राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम फैसलों पर उम्मीद की गई। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस ने प्रभु श्रीराम को बताया काल्पनिक, राम के नाम पर ये बहा रहे घड़ियाली आंसू, चढ़ावा चोरी करने वालों पर कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर अखिलेश यादव का तंज, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर बीजेपी नेताओं की मुलाकात, नितिन नवीन, सीएम योगी और बीएल संतोष शामिल। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर केंद्रीय बल तैनात, टीएमसी ने पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का लगाया आरोप। दक्षिण 24 परगना के बुराईपुर में 12 साल के एक बच्चे के साथ दरिंदगी के बाद दौरा करने वाली थी ममता बनर्जी।
दक्षिण 24 परगना के बुरईपुर की घटना पर सयोनी घोष ने जताया दुख। सीएम शुभेंदु अधिकारी से की बात, कहा एसआईटी गठित, पीड़ित परिवार के साथ होगा न्याय। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस से मिलते जुलते नाम के चक्कर में बेकसूर को दी थर्ड डिग्री प्रताड़ना, अखिलेश यादव ने बताया निंदनीय शतनाम। गौतम अडानी मामले में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का बयान, ये केस कभी नहीं होना चाहिए था दर्ज, इसमें कानूनी रूप से खामियां, निवेशकों को नहीं हुआ वित्तीय नुकसान। हरियाणा के रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर भीषण ब्लास्ट, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, जांच जारी। प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ेंगे उपचुनाव, जनसुराज ने किया ऐलान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी जगह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 24 जुलाई तक चलेगी सदन की कार्यवाही। बिहार की जनता के नाम लालू यादव ने लिखी चिट्ठी, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमले संस्थाओं को कमजोर कर रही है बीजेपी। बिहार में सम्राट सरकार के दावों की खुली पोल, बांका के बलिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने दो युवकों को गोलियों से भुना। पटना एम्स का होगा विस्तार, बिहार सरकार ने दी 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी, सीएम सम्राट चौधरी ने किया निरीक्षण। जींद में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, आज सीएम सैनी जींद की सुरक्षा का लेंगे जायजा। पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है, रायपुर एम्स में ली आखिरी सांस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का किया शिलान्यास, अडानी ग्रुप 2500 करोड़ की लागत से तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया, नए पुल से यातायातों का अधिक सुगम। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 लाख की विकास परियोजना का किया शुभारंभ, आंगनवाड़ी केंद्र आर्टिफिशियल टर्फ क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। बिजनौर में बारात में जमकर हुआ बवाल, फायरिंग के बाद भगदड़ मची, एक पक्ष ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नैनीताल में कॉर्बेट की आड़ में जिस्म फरोशी का खेल, लग्जरी रिजॉर्ट पर पुलिस का बड़ा छापा, 52 गिरफ्तार, 10 महिलाएं मुक्त, अब पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी। उत्तरी ओडिशा तट से टकराया डिप्रेशन, दरअसल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश में खोल दिया दिल्ली सरकार की पोल, बीआरटी रोड पर लगभग 15 फीट लंबा रोड धंसा। महाराष्ट्र के पालघर आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश की चेतावनी देते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 4 पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उज्जैन में 40 घंटे बाद चंबल नदी से मिला गांव के सहायक सचिव का शव, गांव का माहौल गंभीर। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, गांजा एमडी ब्राउन शुगर समेत 2 करोड़ का माल नष्ट किया गया। सूरत में शराब तस्करी में ऑटो चालक गिरफ्तार, शराब की 450 से ज्यादा बोतलें जब्त। सूरत में नकली ब्रांडेड क्लीनर, शैंपू, तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 13 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ, एक गिरफ्तार। दादरी से चोरी हुई रोडवेज बस 36 घंटे में राजस्थान से बरामद, डीटीसी का बर्खास्त ड्राइवर गिरफ्तार। झांसी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर फरार हुआ कार सवार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले नेटवर्क का खुलासा, कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से करते थे भ्रूण का पहचान। बिहार के गोपालगंज में 1 करोड़ की जब्त शराब पर चला बुलडोजर, डीएम के आदेश पर किया गया नष्ट। इटावा में 16 दिन बाद सुलझा गया शव की गुत्थी, पत्नी से अफेयर के चक्कर में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद भारी तनाव, पीड़ित परिवार ने एक आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। प्रतापगढ़ कुंडा में जमीनी विवाद में तहरीर देने गई महिला ने थाने में मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस ने मारपीट की घटना को ठहराया गलत। मेरठ में पेटीएम कर्मचारी से लूट के मामले में फरार चल रही महिला लुटेरी ज्योति चौधरी हरिद्वार से गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर पुलिस को दी गई थी चुनौती। गोंडा में दलित किशोरी की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप से किया बाहर। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल और नाइलैंड की शानदार गोलकीपिंग से नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत। हार के बाद भावुक दिखे नेमार, ब्राजील 1990 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर। ऑस्ट्रेलिया के सिर सजा महिला टी20 वर्ल्ड कप का ताज, इंग्लैंड को धूल चटाकर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता के था। लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व विजेता बनी, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को दी बधाई। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ की शादी। अभिनेता आशुतोष राणा कराएंगे देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, दिखाएंगे पूजा अनुष्ठान और सुनाएंगे पौराणिक कहानियां, साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखी है कहानियां।
मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई। सलमान खान फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया बेबुनियाद। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय हो गया है, विकेट सनी के नाम से होगा रिलीज। अलग अंदाज में कॉमिक किरदार निभाते नजर आएंगे अक्षय कुमार। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलिना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक, हुई मुश्किल। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सतलुज हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का नया पोस्टर, पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा का किया से। सतलुज पर बोले हरभजन सिंह, कहा सत्ता के दुरुपयोग के घाव पीढ़ियों तक रहते हैं, सच हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हरभजन सिंह ने कहा जसवंत सिंह खालड़ा का साहस और उनकी कहानी को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी, पंजाब 95 का जिक्र किया। सतलुज हटने के बाद पंजाब 95 और जसवंत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:57 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

थकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदूइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जांच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
5: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है इसमें अलग अलग, पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिग्रस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस।

चुनावा चोरी में एसआईटी जांच के बाद श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। टनल में भरा पानी। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 की मौत। मध्यप्रदेश के उज्जैन और गुजरात के जूनागढ़ में बुरा हाल। भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। टनल में भरा पानी। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 की मौत। मध्यप्रदेश के उज्जैन और गुजरात के जूनागढ़ में बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर। 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम रस्म। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। मुकाबले से बाहर हुआ 5 बार का चैंपियन ब्राजील। हॉलैंड के डबल गोल से नॉर्वे ने 2-1 से जीता मैच। बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। के साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन नई शुरुआत, बिना ब्रेक के आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर खबरों की झलकियों पर डाल लेते हैं। शहर शहर पहुंच गया है मॉनसून और उससे जुड़ी आफत। महाराष्ट्र से उड़ीसा तक पानी की मार से है त्राहिमाम। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। पश्चिम बंगाल में नाबालिग के रेप और मर्डर मामले पर भारी बवाल। ममता का आरोप, पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने के लिए पुलिस ने किया नजरबंद। चुनाव के मैदान प्रशांत किशोर की एंट्री से गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी गई बांकीपुर सीट से लड़ेंगे उपचुनाव। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें मुंबई में आफत की बारिश के साथ।

0: और अब बात मानसूनी आफत की करेंगे। मुंबई इस समय मानसून की मार से जूझ रही है, करा रही है, और सिर्फ मुंबई नहीं, ये कहिए कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया है। सड़कें डूब गई हैं, घर में पानी भर गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, शहर की रफ्तार थम गई है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में कल रात एक 3 मंजिला इमारत ढह गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, तो वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मलबा आ गया। मुंबई पुणे के बीच रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ है, ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं और आज भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलर्ट जारी है।
1: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते 4 से 5 दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं।

0: रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है, जहां पानी में घर है या घर में पानी ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
1: साफ तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 साफ मारे यहाँ पे ही। बहुत साफ साफ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी से कहाँ पे लेके जाएंगे।
0: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।
2: और इस बीच पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक ठप होने की खबर है। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लगातार गिरते मलबे और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। गंभीर खतरों को देखते हुए पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों ही दिशाओं का ट्रैफिक अगले आदेश तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे इस मूसलाधार बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। इस एक्सप्रेस वे पर कई जगहों पर मलबा गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और ऐसे में वहां पर आवाजाही सुरक्षित नहीं है।

0: दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सायन में उनकी मौजूदगी है। दीपेश, वहां पर आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि क्या आलम है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में प्रशासन भी लाचार दिखाई दे रहा है।
1: जी नेहा, बिल्कुल, देखिए बारिश लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से मुंबई में हो रही है। पहले दो दिन थे, कल और परसों के दिन, उसके लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया था। फिलहाल आज के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते और मुंबई की परिस्थिति को देखते हुए बीएमसी ने कल ही जो मुंबई के स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी, जिसकी वजह से आज स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। हम फिलहाल मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में हैं, जो मुंबई का एक लो लाइंग एरिया है और बहुत जल्द यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन चूंकि बारिश रुकी हुई है कुछ देर से, इसीलिए यहाँ पर जल जमाव नहीं है। बीएमसी के कर्मचारी तैनात हैं, जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, मैनहोल खुले हुए हैं, लेकिन जो है हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। कई जगह पर पानी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली थी मुंबई की सड़कों पर, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव हुआ है मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर। वेस्टर्न रेलवे की जो लोकल ट्रेन हैं वो 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वैसे ही विरार क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, खास करके बारिश की वजह से, और तेज हवाओं के साथ फिलहाल मुंबई में बारिश हो रही है और इसी का अलर्ट दिया गया है। दोपहर को हाई टाइड का समय दिया गया है, लेकिन हाई टाइड के समय अगर मूसलाधार बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलेगी। हो सकता है मुंबई की सड़कें तालाब में भी तब्दील होती हुई नजर आए। फिलहाल प्रशासन जो है सड़कों पर नजर बनाए हुए, मुंबई की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन रेल यातायात हो या सड़क यातायात हो, दोनों ही लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। नेहा,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। महाराष्ट्र का हाल आपने देख ही लिया, अब आपको देश के अन्य हिस्सों का हाल दिखाते हैं। बारिश चौतरफा मार है, 6 तस्वीरें आपके सामने, हर तस्वीर मूसलाधार बारिश से जिंदगी पर आए संकट की गवाही दे रही है। भोपाल के ग्रामीण इलाके में टक्ट नदी में के उफान में समा गया, उड़ीसा के सलुंकी नदी में अचानक सैलाब आया तो

0: लहरों से खेलना इस ट्रैक्टर चालक को किस तरह भारी पड़ गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भोपा के बैरसिया तहसील के दिल्लूद गांव की यह तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से नदी में उफान आया। ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो पानी की लहरों से ट्रैक्टर निकाल ले जाएगा, लेकिन पुल के ऊपर से बह रही पानी की लहरों की मार से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहरों में त्राहिमाम जैसी स्थिति है। हरदा जिले में 24 घंटे में हुई 107 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण माचक, सियानी, देदली, मटकुल, अजलाल और गंजाल सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां और नाले उफान पर आ गए। तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई छात्रों की परीक्षा छूट गई।
1: पानी बहुत ज्यादा है और हमारे एग्जाम्स थे और हम आ भी नहीं पा रहे थे, फिर ट्रैक्टर से निकल कर आए हैं।
2: और फिर ये पुलिस वाले अंकल ने क्या मदद की आपकी?
1: इनसे हमने बोला और उन्होंने हमारी सुन भी ली और एक ही बार में हमको छोड़ने के लिए चले।
0: मध्य प्रदेश के श्योपुर में करीब एक घंटे की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। चूड़ी मार्केट और पुल दरवाजा रोड सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सड़कें तालाब बन गई। इस दौरान पानी में एक स्कूटी बहने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बचा लिया। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीरें ओडिशा के बौद्ध जिले की हैं। सलुंकी नदी में अचानक आई बाढ़ में दो महिलाओं की जिंदगी आफत में फंस गई। महिलाओं के बाढ़ में फंसने की खबर लगते ही स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों महिलाओं की जान बचा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। बगनाई नदी में अचानक उफान से 14 मजदूर यहां फंस गए। ये मजदूर नदी में बन रहे पुल के निर्माण कार्य से जुड़े थे और पुल के नीचे बने अस्थाई शेड में रह रहे थे। नदी के उफान में मजदूरों के फंसने की सूचना मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा की है। सांबा जिले में लगातार बारिश के बीच बसंतर नदी में अचानक उफान आ गया। पानी अचानक आया जिस वजह से उस वक्त नदी में मौजूद एक महिला समेत पांच लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। नदी में पांच लोगों के फंसने की सूचना सांबा पुलिस को दी गई और फिर एसडीआरएफ तक बात पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने साझा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पांचों लोगों को सुरक्षित बचा लिया। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और तेज बहाव वाले इलाकों के आसपास जाने से बचें। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज दोपहर 3 बजे अयोध्या में श्रीराम मंदिर सेवा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है और इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि आज ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई लगभग तय है। 26 जून को दोनों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब तक इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

0: क्या आज श्रीराम मंदिर ट्रस्ट से हो जाएगी चंपत राय की विदाई? क्या चंपत के साथ अनिल मिश्रा भी होंगे ट्रस्ट से बाहर? चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। चंपत राय श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर चढ़ावा चोरी के खुलासे से पहले तक चंपत राय राम मंदिर आंदोलन के नायकों में एक थे। जब से वो ट्रस्ट से जुड़े उनकी हैसियत सर्वे सर्वा जैसी थी, लेकिन चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद चौतरफा हमला झेल रहे चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे पर आज ट्रस्ट की बैठक में फैसला होगा। ये बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय की ट्रस्ट से विदाई तय मानी जा रही है। इस्तीफा दे चुके सदस्य अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट से बाहर हो सकते हैं। दोनों ने 26 जून को पद से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 27 जून को इस्तीफे की पुष्टि की थी। मंदिर प्रबंधन से लेकर चढ़ावे की रकम की गणना तक की जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की थी, इसलिए ये दोनों शुरू से ही सवालों के घेरे में हैं।
1: 3 बजे बैठक है
2: सर, बैठक कौन शामिल
1: हो रही है? मंदिर में।
2: कहाँ पे हो रही है?
1: मंदिर परिसर, मंदिर परिसर में हो रही
3: है।
1: नित्य गोपाल दास जी करेंगे।
0: सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ट्रस्ट बड़ा संदेश भी देना चाहता है, क्योंकि चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है। एक के बाद एक कई आरोप अब भी लग रहे हैं। ट्रस्ट के नियम के मुताबिक ट्रस्ट के किसी सदस्य को हटाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ट्रस्ट अपना निर्णय सुनाएगा। ट्रस्ट की बैठक हर तीसरे माह होती है। बैठकों में निर्माण सहायक गोपाल राव बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल होते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चूंकि मामले में गोपाल राव पर भी सवाल उठे हैं, लिहाजा उन्हें शायद इस बार बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस्तीफे के एजेंडे के अलावा अन्य बिंदु भी शामिल हैं, जैसे न्यास के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट रखी जाएगी। आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं पर विचार होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिट संबंधी जानकारी रखने के साथ कई चीजों की स्वीकृति भी दी जाएगी। आज पहली बार ट्रस्ट की बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। इससे पहले अयोध्या धाम के मणिराम दास छावनी में बैठकें होती रही हैं। चर्चा है कि इस बार चढ़ावा चोरी की वजह से बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं, इसलिए गोपनीयता बरतते हुए मंदिर परिसर में बैठक होगी। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, ये बात तो तय है कि इतना दबाव है इस वक्त कि इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाए, दोनों की छुट्टी कर दी जाए, अनिल मिश्रा चंपत राय, लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि दोनों के ऊपर जाहिर तौर पर लंबे समय से दबाव था और ये भी कहा गया कि इस्तीफा बहुत देरी से आया।
5: बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला खराब हो गया, उसके बाद दबाव में ये इस्तीफा दिया, ये तो सभी जानते हैं। या यूं कहें कि इस्तीफा लिया गया, हालांकि उसका जो प्रोसेस है वो आज जाकर के पूरा होगा। याद करिए, पहले 11 तारीख रखी गई थी इस ट्रस्ट की मीटिंग की डेट, फिर उसको घटा करके 6 तारीख किया गया। लगातार चूंकि इस मामले पर दबाव बना हुआ था, जिस तरीके से देश भर में चढ़ावा चोरी का कांड सुर्खियों में है, इसके बाद से ट्रस्ट को भी लग रहा है कि उसका ट्रस्ट लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज महंत नित्य गोपाल दास के नेतृत्व में ये बैठक होगी, हालांकि अमूमन ये छावनी में ही होती रही है, लेकिन निश्चित तौर पर गोपनीयता इसकी का अहम पार्ट है। साथ साथ इन दोनों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, ये भी बात सच है। तमाम जो चेहरे हैं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए, सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग सीधे आएंगे, कुछ लोग ऑनलाइन भी होंगे, जैसे परासरन जैसे लोग जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो हो सकता है वहां से जुड़े। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि पहला एजेंडा इनके इस्तीफे का है, तो जैसे ही एजेंडा रखा जाएगा उसके तुरंत बाद इन्हें मौका दिया जाएगा। 3 बजे का वक्त है और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनका इस्तीफा मंजूर हो सकता है। तो आज की सबसे बड़ी चर्चा यही है। इसके अलावा ट्रस्ट में जो पैसे का वित्तीय जो लेन देन हुआ है, इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। इस ट्रस्ट को किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मेन एजेंडा यही है कि आज कितनी जल्दी ये काम होता है और क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा अपनी सफाई में क्या कहते हैं, इस पर ही तमाम नजरें रहेंगी। नेहा,
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और ट्रस्ट की बैठक के बारे में कुछ और जानकारी सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव पद के लिए वीएचपी के केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा पहली पसंद बताए जा रहे हैं। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम भी सचिव पद की संभावित दावेदारी में शामिल है। बजरंग लाल बांगड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े हुए। बैठक में दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर नए ट्रस्टी को चयनित करने पर भी फैसला संभव है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अभी तो इस्तीफा हुआ है, अभी एक्सेप्टेंस होगी, उसके बाद अगला कौन वो पद संभालेगा, इस पर भी चर्चा तेज है, कौन है फ्रंट रनर?
6: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि जो अगला फ्रंट रनर है उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है ट्रस्ट के द्वारा, चूंकि उनको भी कॉल कर दिया गया है अयोध्या पहुंचने के लिए, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके साथ साथ अन्य नाम भी हैं, लेकिन जो बताया गया है कि जिस तरीके से 2024 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की प्रवेश मंडल की एवं प्रबंध समिति की बैठक थी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी चुना गया था और उनका जो कार्य क्षेत्र है हालांकि वो दिल्ली है, लेकिन जबकि इस वजह से भी माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय भूमिका निभाने से पहले वो कई जगह पर रहे, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी राम मंदिर की, जहां पर ट्रस्ट में किसी को जगह दी जाएगी, चूंकि जो आरोप लगे उन आरोपों से निकलना भी है और इसको स्वच्छ छवि को सामने भी लाना है, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की साख पर भी एक बहुत बड़ा इस समय दाम लगा हुआ है, और इसीलिए बजरंग बांगड़ा और नीरज जैसे नाम चल रहे हैं, और ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनको पहले से कॉल किया गया है 3 बजे की जो बैठक है उसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा तो होगी, साथ साथ नए नाम पर भी चर्चा होगी। ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं खुलासा है कि जिस तरीके से जो नए नाम है उन पर भी क्या सहमति बनती है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। तो पूरी तरीके से बैठक के लिए तैयार हैं सभी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उनमें एक तो पहली चर्चा ये होगी कि किस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो कार्यकाल है उसको कैसे सस्पेंड किया जाए, किस तरीके से जो उनका है, और दूसरा नए नामों पर भी चर्चा होगी, क्या इनको किस तरीके से शामिल किया जाए। तो बड़ी बैठक है और इस लिहाज से भी है कि कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारी के साथ और पुराने जो पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके से इस्तीफा उनका एक्सेप्ट किया जाए और कैसे उनको किस रोल में रखा जाए ट्रस्ट में, क्योंकि जिस तरीके से ट्रस्ट में हटाया नहीं जा सकता है किसी को, उस वजह से भी कहीं ना कहीं उनको रखा जाएगा। इस वजह से भी माना जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल आरोपियों से 5 घंटे की पूछताछ हुई है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बात की भी कितनी संभावना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है थोड़े वक्त बाद और अन्य गिरफ्तारियां होंगी इनकी निशानदेही पर?
7: देखिए, ये बिल्कुल संभव है कि इनके पूछताछ की जा रही है और जो पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और इनके इनके बयानों के आधार पर कुछ और लोग भी रडार पर आ सकते हैं और इनकी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन उससे पहले जो पुलिस की अगर पूछताछ की बात करें, जो कल अयोध्या पुलिस ने 5 घंटे तक अयोध्या जेल में जाकर पूछताछ की, रमाशंकर यादव, टन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और तर्णेश पांडे से, तो इन लोगों से पूछताछ के बाद अब माना जा रहा है कि पुलिस इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आज अर्जी डाल सकती है। वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रही है और उसके बाद वो कोर्ट में अर्जी डालेगी कि इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाए। सबसे बड़ी बात कि एक साथ पुलिस इनको पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी या फिर बारी बारी से लेगी, यह अभी तय करना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूछताछ में, 5 घंटे की पड़ताल में, जांच में और जो पूछताछ हुई है, तो बहुत अहम जानकारियां पुलिस को हाथ लगी हैं। कुछ जो चीज़ें चोरी की रकम से खरीदी गई उनके बारे में जानकारी मिली है, तो अब पुलिस इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है और संभवतः आशंका जताई जा रही है कि आज ये पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी डाली जा सकती है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, यहाँ पर दक्षिण 24 परगना जिले में 11 साल की लड़की से रेप मामले में अब लड़की एक दिन पहले लापता हुई थी। घटना के बाद इलाके में मॉब लिंचिंग भी हुई है। गुस्साए लोगों ने एक व्यक्ति को मारा है। बारुईपुर में हालात तनावपूर्ण होने और ममता बनर्जी के संभावित दौरे के बीच उनके कोलकाता आवास पर फोर्स तैनात कर रहे उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है और एसआईटी का गठन कर दिया है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बरुईपुर जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले उनके आवास पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को नजरबंद किया गया है, उन्हें बरुईपुर जाने से रोका जा रहा है।
8: ये तो सही है ना, किसी को किसी तो नारा लगाना पड़ेगा। आप एक तरफा जुलूमबाजी करते रहेंगे और जनता उसको मानते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे आपको आरजी कर में साइट फॉर जस्टिस फॉर आरजी कर, तेमनी तो बारीपुर में भी तो जस्टिस होना चाहिए।
9: बहुत दुखजनक घटना है, लेकिन हमारा इधर हमारा शुभेंदु अधिकार का सरकार में किसी का कोई महिला के ऊपर अत्याचार करेगा तो उसका रिहाई नहीं होगा। जो बच्ची का बलात्कार हुआ है ऐसा बोला जा रहा है और खून हुआ है, उसको जो किया है उसका शास्ति होगा, ये हमको हम आपको 200% एश्योरेंस देते हैं।
4: अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलना चाह रही थी, लेकिन क्या वाकई माहौल इतना तनावपूर्ण है वहां पर कि उन्हें जाने से रोका गया और यहां तक टीएमसी अब आरोप लगा रही है कि उन्हें नजरबंद किया गया?
10: जी देखिए, अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये टीएमसी का क्लेम है और कल अचानक शाम 8-9 बजे के बाद से देखा गया कि भारी पुलिस बल ममता बनर्जी का जो कालीघाट का आवास है उसके बाहर डिप्लॉयमेंट किया गया, जिसमें कोलकाता पुलिस की तो टीम है ही, साथ ही सेंट्रल फोर्सेज की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ममता बनर्जी को संभवतः वहां जाने से रोकने के लिए ही ऐसा किया गया है। दरअसल कल सारा दिन बारुईपुर में भारी बवाल हुआ है। वहां पर जब इस 12 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ, उसके बाद एक आरोपी को लिंच कर दिया गया, पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और उसके बाद ट्रेन अवरोध किया गया, सड़कें अवरोध की गई, पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, एक पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई, और उसके बाद काफी घंटों बाद ये पूरा माहौल शांत हो पाया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो पीड़ित के पिता है उनसे बात की, उनको मंगलवार को भवानी भवन जो पुलिस का हेडक्वार्टर है कोलकाता में वहां बुलाया गया है। शुभेंदु अधिकारी मुलाकात करेंगे और शुभेंदु अधिकारी ने जो पीड़ित के पिता हैं उनको कहा है कि हर संभव सहायता की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने भी फोन पर बातचीत की है और क्लेम किया है कि उनको वहां जाने से रोका जा रहा है।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात फीफा वर्ल्ड कप की करेंगे। 5 बार का चैंपियन ब्राजील इस चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। जी हाँ, प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से ब्राजील को हरा दिया है और यही वजह है कि ब्राजील अब इस चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। ब्राजील इस नॉकआउट मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरा था, लेकिन एर्लिंग हॉलैंड के दोहरे गोल से नॉर्वे को ब्राजील पर शानदार जीत मिली। नॉर्वे की जीत से गोलकीपर ओरजान नाइलैंड का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जो ब्राजील के आगे दीवार बनकर खड़े रहे। नाइलैंड ने पूरे मैच में ब्राजील को परेशान किया। उन्होंने पहले हाफ में ब्रूनो गुइमारेस की पेनल्टी रोकी और फिर कई शानदार बचाव करते हुए नॉर्वे को बढ़त दिलाई। इसके बाद हॉलैंड ने दूसरे हाफ में 2 गोल करके स्कैंडिनेवियाई टीम को शानदार जीत और क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार ने किया। वहीं ब्राजील इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार था और न्यूजर्सी में ब्राजील के फैंस भी बेहद जोश में दिखाई दिए थे। मैच से पहले की तस्वीरें देखिए ब्राजील के फैंस का उत्साह। उन्होंने नॉर्वे के हॉलैंड का रोता हुआ कटआउट थाम रखा है, लेकिन जिस हॉलैंड को वो रुलाना चाहते थे उन्होंने दोहरे गोल से ब्राजील को ही सन्न कर दिया। आज ब्राजील के फैंस मातम में है और नॉर्वे में जीत का जश्न मन रहा है।

0: वहीं फीफा वर्ल्ड कप में आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने मेक्सिको को मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया है। तो क्वार्टर फाइनल में अब इंग्लैंड पहुंच चुका है, मेक्सिको को हराकर ये जीत हासिल की गई है। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच के बाद श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। टनल में भरा पानी। रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 की मौत। उज्जैन और जूनागढ़ का बुरा हाल। आज से 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर। 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामने के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जनसैलाब। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान। शहर शहर जाएगा जनाजा। 9 जुलाई को अंतिम रस्म। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलट फेर। मुकाबले से बाहर हुआ 5 बार का चैंपियन ब्राजील। हॉलैंड के डबल गोल से नॉर्वे ने 2-1 से जीता मैच। बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह।

0: गुजरात के अमरेली में भारी बारिश का बड़ा असर। सावन कुंडला अमरेली स्टेट हाईवे तेज बहाव में टूटकर दो हिस्सों में बट गया। गिर सोमनाथ मूसलाधार बारिश के बीच हाईवे पर शेरों के झुंड का बेखौफ मूवमेंट। सड़क पर वन्य जीवों की मौजूदगी से दहशत का माहौल। बारिश के बीच हाईवे पर शेरों के दिखने से इलाके में अफरा तफरी। लोगों ने रिकॉर्ड किया वीडियो। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे पूरी तरह जलमग्न। पानी भरने के बाद सुबह तड़के सबवे बंद। ओडिशा के कटक में महानदी के तेज बहाव में दर्दनाक हादसा। तीन युवक नदी में बहे, दो को बचाया गया, एक की मौत। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नाला सुफारा पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर स्टेशन तक पहुंचने को मजबूर हैं लोग। आंधी तूफान के कारण एक विशाल होर्डिंग गिरने की घटना सामने आई है। हादसे में कोई जनहानि नहीं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने किया विकराल रूप धारण। जलमग्न हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। चमोली में अलकनंदा नदी में उफान आने के बाद नदी किनारे स्थित सभी घाट डूबे। लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। अलकनंदा में आई उफान को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नदी किनारे जाने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन का बड़ा असर। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुरानी मुंबई पुणे हाईवे अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद। पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों दिशाओं में यातायात रोका गया। प्रशासन लोगों से यात्रा टालने की अपील की। लगातार बारिश के चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कॉन्क्रीट का पिलर गिरा। सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही बंद। लोहगढ़ किले के पास पाटिल गांव भूस्खलन। एक परिवार की प्रभावित होने की सूचना। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मावल और तामिडी घाट में बाढ़ जैसे हालात। वैकल्पिक सड़क मार्ग प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की। मुंबई के मानखुर्द में भारी बारिश के बीच चार मंजिला चौल ढही। हादसे में छह की मौत। मानखुर्द बिल्डिंग गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ का दावा, सभी छह पीड़ितों को सुरक्षित निकाला गया, कोई घायल नहीं फंसा। भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुंबई यूनिवर्सिटी का फैसला। आज होने वाली परीक्षाएं टली, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश का कहर। बांद्रा बैंडस्टैंड से सामने आई बारिश की तस्वीरें। मुंबई में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में उठी ऊंची लहरें। लोअर परेल स्थित एनएम जोशी मार्ग पर भारी बारिश का कहर। सड़कों पर जलभराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। पुणे में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कैंप के ईस्ट स्ट्रीट सहित कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महालक्ष्मी फ्लाईओवर का मरम्मत का हिस्सा फिर ढहा, मलबा नीचे गिरा। सतारा रत्नागिरी में मानसून का कहर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। वाशी में लगातार बारिश के कारण टूटा पुल। लोगों ने मंत्रियों से पुल के मरम्मत की लगाई गुहार। उड़ीसा के बौद्ध जिले में सलुंकी नदी में अचानक आई बाढ़। तेज बहाव के बीच फंसी दो महिलाएं, चार घंटे बाद सफल रेस्क्यू। उड़ीसा के संबलपुर में मानसून फिर सक्रिय। कई इलाकों में जलभराव के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। जैसलमेर में तेज आंधी बारिश के दौरान होटल की छत से उखड़ा सोलर पैनल। सड़क पर गुजर रही स्कूटी पर गिरने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत, दो मासूम पोते घायल, एक गाय की गई जान। जोधपुर रेफर कर बुजुर्ग ने तोड़ा दम। भोपाल के बैरसिया में हादसा। पुल पार करते समय ट्रैक्टर नदी में पलटा, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। एमपी के हरदा में बारिश की वजह से 200 छात्र नहीं दे सके परीक्षा। 24 घंटे में 107 किलोमीटर की औसत बारिश से सड़क का टूटा संपर्क। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तेज बारिश के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर पानी में फंसे। सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के भावनगर में डोंगी नदी में फंसी कार, सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। डांग में मानसून की जोरदार वापसी। सापुतारा समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और घना कोहरा। 37 घंटे की मूसलाधार बारिश से अमरेली में कई नदियां उफान पर। गांव में घुस गया है बाढ़ का पानी। मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा। दुकान पर भारी पेड़ गिरने से 63 साल के बुजुर्ग की मौत। मुंबई के गोरेगांव में केमिस्ट दुकान के सामान गिरा के सामने गिरा पेड़, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पुणे में जन्मदिन के जश्न के नाम पर सड़क पर उड़दंग। युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को पुलिस ने सिखाया सबक। दिल्ली में 1 लाख रुपए का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का अपहरण, यौन शोषण का मामला। मुजफ्फरनगर में हिंदू धर्म परिवर्तन के आरोप पर हंगामा। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, जांच शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला हो सकता है। आज दोपहर 3:30 बजे राम मंदिर परिसर में होगी बैठक। पहले बनी रामदास छावनी में ट्रस्ट की होने वाली थी बैठक। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान, चढ़ावे की गिनती में उनकी कोई भूमिका नहीं है। साथ ही मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग। ट्रस्ट की मीटिंग और जांच के बीच बीएचपी ने अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट की केंद्रीय बैठक। 18-19 जुलाई को होगी मीटिंग। बीएचपी ने अयोध्या के डीएसपी को लिखी चिट्ठी, चढ़ावा चोरी पर नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की। बयान का मांगा आधार। गोंडा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, जांच पूरी होने के इंतजार करने की बात। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट मीटिंग, कई अहम फैसलों पर उम्मीद। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने विपक्ष पर सहनशाना। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को बताया काल्पनिक, राम के नाम पर बाहर हैं घड़ियाली आंसू, चढ़ावा चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास में बीजेपी नेताओं की मुलाकात। नितिन नवीन, सीएम योगी और बीएल संतोष शामिल। पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर रवाना। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करेंगे यात्रा। पीएम मोदी की यात्रा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया होते हुए न्यूजीलैंड तक जाएगी। तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने पर केंद्रित रहेगी। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का किया शिलान्यास। अडानी ग्रुप 2500 करोड़ की लागत से तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का किया उद्घाटन। नए पुल से यातायात होगा सुगम। तूतुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 लाख की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्र, आर्टिफिशियल टर्फ, क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। कोलकाता में ममता बैनर्जी के घर के बाहर केंद्रीय बल तैनात। टीएमसी ने पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का लगाया आरोप। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद दौरा करने वाली थी ममता। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में घटना पर सायोनी घोष ने जताया दुख। सीएम शुभेंदु अधिकारी से की थी बात। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस से मिलते जुलने के नाम पर बेकसूर को दी गई 3rd डिग्री प्रताड़ना। अखिलेश यादव ने बताया निंदनीय और शर्मनाक। गौतम अडानी मामले में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का बयान, ये केस कभी नहीं होना चाहिए था दर्ज, इसमें कानूनी रूप से खामियां हैं, निवेशकों को नहीं हुआ वित्तीय नुकसान। हरियाणा के रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर भीषण ब्लास्ट, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, फोरेंसिक टीम ने जुटाया सबूत। प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ेंगे उपचुनाव। जनसुराज ने किया ऐलान, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी जगह। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू, 24 जुलाई तक चलेगी सदन की कार्रवाई। बिहार की जनता के नाम लालू यादव ने लिखी चिट्ठी, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमले संस्थाओं को कमजोर कर रही है बीजेपी। बिहार में सम्राट सरकार के दावों की पोल खुली, बांका के बलिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोलियां। पटना एम्स का होगा विस्तार, बिहार सरकार ने 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी। सीएम सम्राट चौधरी ने किया निरीक्षण। बिजनौर में बारात में जमकर बवाल, फायरिंग के बाद भगदड़, एक पक्ष को ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नैनीताल में कोविड की आड़ में जिस्म फरोशी का खेल, लग्जरी रिजॉर्ट पर पुलिस की रेड, 52 गिरफ्तार, 10 महिलाएं मुक्त, अब पूरे नेटवर्क की कार्रवाई पर जांच। उत्तरी ओडिशा तट से टकराया डिप्रेशन, दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने खोल दिया पोल, बीआरटी रोड पर 15 फीट लंबी रोड धंस गई। महाराष्ट्र के पालघर में आज भी रेड अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी देते हुए प्रशासन लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 4 पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उज्जैन में 40 घंटे बाद चंबल नदी से मिला गांव के सहायक सचिव का शव, गांव का माहौल गमगीन। प्रेमप्रीत चिंचवार पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, गांजा, एमडी, ब्राउन शुगर समेत 2 करोड़ का माल नष्ट। सूरत में शराब तस्करी में ऑटो चालक गिरफ्तार, शराब की 450 से ज्यादा बोतलें जब्त। सूरत में नकली ब्रांडेड क्लीनर, शैंपू तेल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 लाख रुपए का सामान जब्त, 1 गिरफ्तार। दादी से चोरी हुई रोडवेज बस 36 घंटे में राजस्थान से बरामद, डीटीसी का बर्खास्त ड्राइवर गिरफ्तार। झांसी पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर फरार हुआ कार सवार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले नेटवर्क का खुलासा, कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से करते थे भ्रूण की पहचान। बिहार के गोपालगंज में 1 करोड़ की जब्त शराब पर चला बुलडोजर, डीएम के आदेश पर शराब नष्ट। इटावा में 16 दिन बाद सुलझी अज्ञात शव की गुत्थी, पत्नी से अफेयर के चक्कर में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद भारी तनाव, पीड़ित परिवार ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीटा। प्रतापगढ़ कुंडा में जमीनी विवाद में तहरीर देने गई महिला ने थाने में मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने मारपीट की घटना को ठहराया गलत। मेरठ में पेटीएम कर्मचारी से लूटपाट में फरार चल रही महिला लुटेरी ज्योति चौधरी हरिद्वार से गिरफ्तार। गोंडा में दलित किशोरी की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप से किया बाहर। एर्लिंग हालैंड के 2 गोल, अनाइल की शानदार गोलकीपिंग से नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत। हार के बाद भावुक दिखे नेमार, ब्राजील 1990 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल से हुआ बाहर। ऑस्ट्रेलिया के सर सजा महिला T20 का ताज, इंग्लैंड को धूल चढ़ाकर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता खिताब। लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व विजेता बनी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को दी बधाई। 3री बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्ट्राट के साथ की शादी। अभिनेता आशुतोष राणा कराएंगे देश में प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, दिखाएंगे पूजा अनुष्ठान और सुनाएंगे पौराणिक कहानियां। साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखी है ये कहानियां। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई, सलमान खान फिल्म ने सर्टिफिकेशन रुकी होने के बावजूद खबरों को बताया बेबुनियाद। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय, विकेट सानी के नाम से होगी रिलीज। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलिना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक, हुई इमोशनल। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सतलुज हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का नया पोस्ट, पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा का किया जिक्र। सतलुज पर बोले हरभजन सिंह का, सत्ता के दुरुपयोग के घाव पीढ़ियों तक रहते हैं, सच हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हरभजन सिंह ने कहा जसवंत सिंह खालड़ा का साहस और उनकी कहानी को हमेशा याद रखना चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जसवंत सिंह के खालड़ा को दी श्रद्धांजलि, पंजाब 95 का जिक्र किया। सतलुज हटने के बाद पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, पुणे और वाशिम इलाकों में जलभराव, लैंडस्लाइड, पेड़ और दीवार गिरने जैसी घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हो गई तो कहीं वाहन मलबे में दब गए।
1: मुंबई से सटे वसई विरार में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बसंत नगरी और मधुबन इलाका चारों तरफ पानी से घिरा दिखाई दे रहा है। कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। वहीं वसई में एक सोसाइटी के कंपाउंड वॉल गिरने से बाहर खड़ी करीब 15 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी घटना में गोम्स गार्डन बिल्डिंग के रिफ्यूज एरिया का छज्जा गिरने से पार्किंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के बांद्रा और गोरेगांव में भी भारी बारिश के बीच बड़े पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। पेड़ गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बांद्रा में 3 खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं पुणे में विशाल पेड़ गिरने से कई वाहन दब गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवी मुंबई के पास मेट्रो पिलर के समीप लैंडस्लाइड होने से मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खारघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। वाशिम में लगातार बारिश के कारण शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने और स्थायी समाधान की मांग की है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
0: रुकेंगे ना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
9: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
10: वाह वाह वाह वाह।
9: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: इन एसोसिएशन विद
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
17: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
18: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
19: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
20: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
21: परमिशन लेनी चाहिए ना,
20: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
22: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
20: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीओजेके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज है। जेएएससी ने पाकिस्तान सरकार की मांगें पूरी करने के लिए 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने एक बयान में कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 8 जुलाई को धरने वाली जगह से आगे के आंदोलन का आगाज होगा। समर्थकों से तैयार रहने की अपील कर दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम तेरे को। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं।
5: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी जी। लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है, वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है, उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
6: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफ़ी कैलिब्रेटेड रहा है और काफ़ी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी। रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। उज्जैन और जूनागढ़ का भी बुरा हाल।

0: पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्द खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जन सैलाब, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, शहर शहर जाएगा जनाजा, 9 जुलाई को अंतिम रस्म। पाकिस्तान के अत्याचारों से पीओजेके में जबरदस्त उबाल, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 8 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम, कहा मांगों को माने पाक सरकार वरना अंजाम भुगतने को रहे तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

अंजलि इस्टवा। सुबह के 10 बज चुके हैं और मॉर्निंग प्राइम टाइम शो आज सुबह में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच आज बेहद अहम दिन है। आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को ट्रस्ट ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। मामले के खुलासे के बाद ट्रस्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम विवादों के बीच ट्रस्ट की आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक नित्य गोपाल दास अयोध्या में होने वाली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो बैठक में शामिल हो सकते हैं।

और इस वक्त रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के बैठक में जाने या ऑनलाइन जुड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी सस्पेंस है कि वो किस तरीके से बैठक का हिस्सा बनेंगे। उनके करीबियों का दावा है कि जब से महंत गोपाल दास अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अयोध्या वापस लौटे हैं, ट्रस्ट का कोई भी सदस्य उनका हालचाल लेने गया ही नहीं। और हालांकि कहा जा रहा है कि बैठक नित्य गोपाल दास की ही अध्यक्षता में होनी है, जिसमें कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के सदस्यों में विश्व तीर्थ प्रश्नाचार्य स्वामी परमानंद गिरी, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, डॉक्टर अनिल मिश्र, महासचिव चंपत राय शामिल होंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, राज्य सरकार के पदेन अधिकारी गृह सचिव संजय प्रसाद, केंद्रीय सरकार के पदेन अधिकारी सचिव प्रशांत लोखंडे, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रस्ट संयोजक के परासन की भी उपस्थिति रहेगी। तो ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में महंत नित्य गोपाल दास कैसे जुड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है। तो अयोध्या राम मंदिर का ये जो चढ़ावा चोरी का पूरा मामला है, इसका एजेंडा क्या है, ये जो आज बैठक होने वाली बेहद अहम बैठक है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन बैठक में होगा क्या क्या, सबसे बड़ी बात, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन दोनों ने इस्तीफा दिया है लेकिन ये इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है, तो इस पर फैसला होना है। SIT की जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी, जो सौंप दी गई थी, उस पर भी चर्चा होनी है। साथ ही मंदिर में पैसे का लेन देन, दान चढ़ावा, ये सारी वित्तीय जो जानकारियां हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ में कोशिश ये की जाएगी कि कोई ना कोई नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाई जाए, जैसे एक CEO की नियुक्ति की जाए, कोई रिटायर्ड IAS अफसर हो, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी रहा हो वो आए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो एजेंडे पर रहेंगे, जिस पर आज इस बैठक पर चर्चा होगी और बड़े बड़े नाम इस पर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे ये बैठक आज क्यों अहम हो जाती है, और साथ ही में ये जो खबर आ रही है कि जो अध्यक्षता है उसके लिए

0: डंडे पर मोहर लगेगी।
1: बिल्कुल, और नजर रहेगी हमारी इस बैठक पर, आप बने रहे हमारे साथ। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो रही है, दूसरी ओर चंपत राय के भविष्य पर कयासबाजी जारी है। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करेगा या वो ट्रस्ट में बने रहेंगे। दरअसल चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय की जिम्मेदारी बनती थी कि एक्शन के लिए FIR दर्ज कराते, आरोपियों को गिरफ्तार कराते, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सवाल उठे तो जवाबदेही गिनाते हुए और नैतिकता की बात करते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन आगे क्या? अब तक ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। वहीं गोपाल राव अब तक मंदिर व्यवस्थापक बने हुए हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद चंपत राय के भविष्य को लेकर होने वाले फैसले पर सबकी नजर है। आज तक के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बैठक में ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। दोनों पदाधिकारियों यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ट्रस्ट के नियम के अनुसार किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण लिए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चंपत राय अनिल मिश्रा को हटाने के लिए ट्रस्ट के नियमों के अनुसार आवश्यक बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। अभिषेक, ये तो जाहिर है, ट्रस्ट के अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन ये इस्तीफा जो अटका पड़ा है वो इन नियम कायदों के बीच में कैसे अटका है, हमें समझाएं और कैसे फैसला होगा?
0: देखिए, निश्चित तौर पर कारण बताओ नोटिस भी जारी होगा, लेकिन जो पहला एजेंडा है कि क्या इनका इस्तीफा जो इन्होंने दे दिया है स्वीकार होगा या नहीं, जो चर्चा है, जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि पहले एजेंडे पर पहले मुहर लगेगी और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद इनसे इन्होंने हालांकि अपनी बातें लिख करके बताई भी हैं, इनसे पूछताछ भी हुई है और जो SIT के पास इनका जो अपना वर्जन है वो भी मौजूद है। बावजूद इसके ट्रस्ट के पास कुछ नहीं, यानी कि ट्रस्ट को अब इन्हें ये कारण बताओ नोटिस के बाद ये बताना होगा कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए या फिर उनका पूरा पक्ष क्या है, क्योंकि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो दोनों बातें हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट की तरफ से एक और बात बताई गई वो ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी जब ट्रस्ट की बैठक खत्म होगी। पहले कहा जा रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आज अगर ये बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद गोविंद गिरी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं और इस बैठक में क्या क्या बातें हुई उसकी भी बात रख सकते
1: हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय के भविष्य पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से पहले संत समाज खुलकर उनके समर्थन में उतर आया है।
2: जो है चंपत राय जी का इस्तीफा ट्रस्टों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा पे जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, उनकी जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, उनका जो बलिदान है, वह अपने आप में जो है स्वर्णिम है, ऐसे स्वर्णिम चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। वह अपने आप में व्यक्तिगत जो है निष्कलंक है, निष्पाप है, उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वह निराधार है। उनसे भी निवेदन करूंगा इस प्रकार से किसी के व्यक्तिगत छवि जो है धूमिल नहीं किया जाए।
3: बार बार चंपत राय, बार बार चंपत राय, चंपत राय जी भाई साहब का क्या दोष है?
4: अनिल जी को दोषी मानते
3: हैं। मैं अनिल जी का नाम, मैं किसी के नाम क्यों लूं? कई लोगों को व्यवस्था दी गई थी, पूरे ट्रस्ट के लोगों को व्यवस्था दी गई थी। मैं आप एक पर टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट मत करिए। उसमें अनिल जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, नृपेन्द्र मिश्रा जी भी हैं, सब लोग हैं। मंदिर निर्माण का कार्य नृपेन्द्र मिश्रा जी देख रहे थे, बाहर की व्यवस्था अनिल जी भाई साहब देख रहे थे, मंदिर व्यवस्था गोपाल जी देख रहे थे, तो सब जगह व्यवस्था गड़बड़ हुई है ना। बार बार चंपत राय जी को दोषी ठहराना ये गलत है। मैं केवल चंपत राय जी भाई साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको दोषी बनाया जा रहा है और किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। पूरी मीडिया चंपत, जो भी देखो चंपत राय, जो भी देखो चंपत राय, गलत है ना। आप सबका नाम लीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ दोनों के पदों के लिए नए विकल्पों पर भी मंथन होने की संभावना है। संभावित नामों में बजरंग बांगड़ा और नीरज दोनेरिया शामिल बताए जा रहे हैं। सचिव पद के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बांगड़ा पहली पसंद माने

जा रहे हैं। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम भी सचिव पद की संभावित दावेदारी में शामिल बताया जा रहा है। बजरंग बांगड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर है कि बैठक में दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की जगह पर नए ट्रस्टी के मनोनयन पर भी फैसला मुमकिन है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा युक्त करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर है कि बैठक में दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की जगह पर नए ट्रस्टी के मनोनयन पर

0: अवस्था से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है और ये जिम्मेदारी स्थानीय ट्रस्टी ही संभालते हैं। और साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जारी तफ्तीश के बीच वीएसपी के अपने सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। पहले यह बैठक 25 जून से 29 जून के बीच अयोध्या में तय थी, जो बाद में टल गई थी। अब इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। यह बैठक अब 18 से 19 जुलाई को दिल्ली में होगी। चंपत राय वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में जांच के बीच दिल्ली में होने वाली इस बैठक में उनके शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर उठे सवालों के बीच ये बैठक बेहद अहम है। सूत्रों की माने तो वीएचपी की नजर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक और उसमें किए जाने वाले फैसले पर है।
1: चंपत राय जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, इस नाते से बैठक में अपेक्षित है। अपनी राम जन्मभूमि से संबंधित व्यस्तताओं को देखते हुए कभी कभी शामिल नहीं भी होते हैं, होंगे कि नहीं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे, लेकिन हमारी तरफ से वो बैठक में अपेक्षित है।
0: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच इस पर जबरदस्त सियासत भी चल रही है। अब इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने अयोध्या के डीएसपी को पत्र लिखा है और मांग की है कि अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो बयान दिए हैं उसे लेकर कार्रवाई हो। वीएचपी ने मांग की है कि उस सभी नेताओं के बयान दर्ज किए जाएं और उनके साथ प्रमाण की भी मांग की जाए कि किस आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्षी नेता लगातार बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी पर हमलावर रहे हैं और अब वीएचपी ने अयोध्या के डीएसपी को पत्र लिखा है और कहा है कि इनके बयान दर्ज कर जांच की जाए।
2: प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
0: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, आज बड़ा दिन है, बैठक भी है, सबकी फैसले पर भी नजर है, लेकिन वहीं सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। शुरुआत से बयानबाजी है, अब वीएचपी की भी मांग आ गई है।
3: आप बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर लगातार हजारों करोड़ों की चंदा चोरी की बात कही जा रही, जिसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा और राजनीतिक दल हो, तो लगातार कहते आए हैं कि चोरी सिर्फ चोरी नहीं है और इसमें हजारों करोड़ों की चोरी हुई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत शुरू हुई और ये भी कहा जा रहा है कि अगर चोरी हुई है तो या एसआईटी जो फॉर्म हुई है उसको दिए जाए, यही लोग जांच कर रहे हैं और जांच में सहयोग करें, क्योंकि शुरुआत में ही कहा गया था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो एसआईटी।
0: जी आशीष, जी आशीष, आपकी आवाज में थोड़ा सा खलल आ रहा है। हम इस वक्त आगे बढ़ते हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच और ट्रस्ट की बैठक के बीच योगी कैबिनेट की एक बैठक जारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक जारी है, लगातार मुख्यमंत्री इस पर बोलते आए हैं। चढ़ावा विवाद में उन्होंने पहले भी कहा है कि जो जांच है एसआईटी की वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और लगातार उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि एसआईटी की जांच सब कुछ साफ कर देगी। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का एक बार फिर से, इस बैठक के बारे में क्या पता चल रहा है अभी आशीष?
3: ये पहली बैठक हम कह सकते हैं कि जो पांच कालीदास यानी कि मुख्यमंत्री के आवास पर हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले लोकभवन में होते हैं, लेकिन आज पांच कालीदास पर उनके आवास पर है।
4: और इस कैबिनेट

0: बैठक को उसी दिन आयोजित किया गया जब अयोध्या में एक बड़ा डिसीजन होना है, तो कई कैबिनेट बैठक तो जरूर है। हालांकि इसके साथ साथ जो एसीएस सोम है और अन्य अधिकारी है जो इस ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हैं, वो तो भी सीएम के साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट बैठक जरूर है, लेकिन एक चर्चा का विषय भी है। बड़े डिसीजन लिए जाएंगे इसमें कैबिनेट के इस तरीके से, और बाकी चीजों से भी डिस्कशन होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि ये कैबिनेट बैठक आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करने के बाद बनारस जाएंगे और प्रयागराज जाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि आज वो जो सबसे बड़ी मूर्ति का भी अनावरण करेंगे, विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें वो ठीक 2 बजे के आसपास, क्योंकि वो उस समय होगा जब 3 बजे ये मीटिंग है, उससे पहले एसपी के नेता सिंघल जी जो मूर्ति है उसका भी अनावरण करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जोर देखा जा रहा है कि एक तरफ कैबिनेट आज सुबह ही उन्होंने की मीटिंग की, अब उसके बाद वो प्रयागराज जाएंगे, वहां पर सिंघल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और उसके बाद बीएसपी की बैठक भी है, यानी कि ट्रस्ट की जो बैठक है वो यहाँ पर है अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं सब नजर बनी हुई है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की कि आखिर इस बैठक में डिसीजन क्या होता है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं चंपत राय पर, जो आरोप लगे अनिल मिश्रा पर, उन पर बैठक डिसीजन क्या लेती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान आ सकता है। कहीं ना कहीं सरकार जो इसमें एक्शन ले रही है लगातार 8 आरोपियों के खिलाफ, उनके खिलाफ
1: जी
0: कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ा दिन है, क्योंकि आज कैबिनेट के बाद सीधे आगे बढ़ेंगे चीफ
1: बिल्कुल
0: मिनिस्टर, और वहां पर भी अनावरण है, और दूसरी तरफ 3 बजे जो ट्रस्ट की बैठक है। तो कहीं ना कहीं आपस में सब कनेक्ट
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: और एक दूसरे पर नजर बनी
1: बिल्कुल
0: हुई है।
1: आशीष, और सबकी नजर इसी बैठक पर भी बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
4: इफ यू लव पॉडकास्ट्स, यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज, दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। हियर्स अ क्विक टिप, यू कैन लिसन एनी टाइम इवन विदाउट द इंटरनेट, जस्ट ओपन अ पॉडकास्ट, टैप द 3 डॉट्स नेक्स्ट टू एन एपिसोड एंड हिट डाउनलोड। Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: Papa.
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है। हाँ
6: ओले, ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
6: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
8: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
7: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
8: अर्ज किया है
7: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
9: वाँ वाँ वाँ वाँ।
7: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सम।
7: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ रोड भारी बारिश की वजह से बंद है, वहां भूस्खलन भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये जम्मू किश्तवाड़ सड़क है जिसमें आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो गई है भारी बारिश की वजह से, और कई गाड़ियां भी इस मलबे में फंस गई हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब ये सड़क धसी है, ऊपर से मलबा आया है बारिश की वजह से, तो कई बड़ी गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस वक्त वहां पर JCB भी नजर आ रही है, यानी कि मलबा हटाने का काम भी कोशिश शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से धस गई हैं वहां पर गाड़ियां, और वो भी नीचे नीचे तक, ये बेहद चौंकाने वाला दृश्य है। मलबा जो पानी के जरिए ऊपर से पहाड़ से बहता हुआ आया, उसमें ये गाड़ियां फंस गई। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
20: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
21: Swing and a foul out of play off to the left.
20: Big 12 Radio.
22: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
20: Talk Sport.
23: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
20: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
24: हमने तब भी सवाल किया था,
25: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
24: हम आज भी सवाल करते हैं,
0: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
1: ऑपरेशन अग्नि,
0: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
6: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
10: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
26: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
27: परमिशन लेनी चाहिए ना,
26: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
28: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
26: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच के बाद श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। आगे की प्रशासनिक भूमिकाओं पर भी मंथन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, उज्जैन और जूनागढ़ का भी बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर आया जनसैलाब, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, शहर शहर जाएगा जनाजा, 9 जुलाई को अंतिम रस्म। पाकिस्तान के अत्याचारों से पीओजेके में जबरदस्त उबाल, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 8 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम, कहा मांगों को माने पाक सरकार वरना अंजाम भुगतने को हो तैयार।

और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपियों से जेल में हुई 5 घंटे की पूछताछ के बाद अब पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। कल जेल में हुई थी पूछताछ और इसमें पुलिस को चढ़ावे की रकम से खरीदी गई कुछ और अचल संपत्तियों की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों को पुलिस एक साथ या बारी बारी से रिमांड पर ले जा सकती है। इस बारे में फैसला जल्द लिया जाएगा।

0: और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी के एक आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों की माने तो कथित गबन की जांच कर रही पुलिस को नए वित्तीय सुराग मिल रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने परिवार और दोस्तों पर किए खर्च की जानकारी दी है। उसने बताया कि अपने एक भाई की शादी के लिए करीब 6 लाख रुपए दिए और दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए। सूत्रों का दावा है कि अविनाश ने एक दोस्त को लगभग 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसी व्यक्ति को एक महंगा मोबाइल फोन भी तोहफे में दिया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि कई अन्य लोगों को छोटी छोटी रकम उसने दी थी। तो आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला वो आरोपी है जिस पर 5 जून से ही नजर थी। उस वक्त ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन बाद में उसे आरोपी बना करके गिरफ्त में लिया गया। इससे बाद में बाहर निकाल के रिमांड पे लेके पुलिस ने निशानदेही भी की थी, जानकारी लेने की कोशिश की थी कि कहां कहां पैसा रखा गया, किस किस को दिया गया, कहां है ये मनी ट्रेल। तो अब ये मनी ट्रेल सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है और पुलिस को पता चल रहा है पूछताछ से कि अविनाश शुक्ला इस पैसे को अलग अलग लोगों पर खर्च करता रहा है। भाइयों की शादी हो, दोस्तों को लोन देना हो या उनके लिए महंगे फोन खरीदने हो, ये सब अविनाश शुक्ला ने किया। ये भी पता चल रहा है कि कुछ कुछ लोगों को उसने छोटी छोटी रकम भी दी। तो अविनाश शुक्ला ये सारा पैसा निकाल कर इस्तेमाल लगातार करता रहा है, अपने भाइयों की शादी के लिए, मकान बनवाने के लिए। ये सब खबरें सामने अब आ रही हैं। हमारे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संतोष, जिस तरह की अब डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये पैसा मनी ट्रेल लगता है काफी इसका हिस्सा खर्च भी किया गया है।
1: देखिए, बिल्कुल काफी हिस्सा खर्च किया गया है, तभी तो लवकुश मिश्रा ने 8,85,000 का डॉक्यूमेंट्स में मकान खरीद प्लॉट खरीदा, उसके बाद मकान बना रहा था करीब 25 लाख का। इसके साथ ही जो अविनाश शुक्ला, जिसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया, उसने ब्रेजा गाड़ी खरीदी। तो ये जो पैसा जो बरामद हुआ करीब 80 लाख और 1100 से अधिक का डॉलर सोने चांदी के जेवरात, इसके अलावा जो पैसा इन लोगों ने खर्च कर दिया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और जो 5 घंटे की कल पूछताछ की गई अयोध्या पुलिस के द्वारा जेल में जाकर इन 5 आरोपियों से, तो उनसे ये बात भी पूछी गई कि जो चोरी की रकम है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की गई, क्या क्या चीज़ें खरीदी गई, और जो चीज़ें खरीदी गई अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में से है तो उनको रिकवर भी कराएगी अयोध्या पुलिस। यही वजह है कि 5 घंटे की पूछताछ बहुत अहम थी कल, और उसी पूछताछ के आधार पर माना जा रहा है कि जल्द पुलिस कस्टडी रिमांड 5 आरोपियों की ली जाएगी।
0: जी संतोष, जी संतोष, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले। ये बड़ी खबर है कि इस्तीफा अगर स्वीकार होता है, और जैसे ही होता है, चंपत राय और अनिल मिश्रा आजीवन ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वो सदस्य नहीं रहेंगे, कोई उनका इससे लेना देना नहीं रहेगा और ये आजीवन होगा। आपको बता दें बड़ी खबर, इस वक्त चंपत राय और अनिल मिश्रा जिनके इस्तीफों पर आज मंथन होना है, वीएचपी की माफ कीजिएगा, एक बड़ी बैठक है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, और उस बैठक के दौरान जो सभी ट्रस्टी हैं वो शामिल होने वाले हैं, साथ ही और भी कई गणमान्य लोग इसमें जुड़ेंगे। और इसमें अगर इस्तीफा स्वीकार हो गया तो कानून कहता है, कायदे कहते हैं कि उन्हें आजीवन ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो चंपत राय जिनके लिए संत समाज भी अब उतर आया है और उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्या उन्हें आजीवन अलग किया जाएगा इस ट्रस्ट से, जिस ट्रस्ट को और जिस राम मंदिर को वो संभालते आए हैं, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है, क्या उससे उन्हें आजीवन अलग कर दिया जाएगा अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो ऐसे में उनका इस्तीफा एक बड़ी बात हो जाता है, उसका स्वीकार होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ कुछ पेचीदगियां जुड़ी हुई आती हैं, और वो सबसे बड़ी पेचीदगी है कि उन्हें आजीवन अलग कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं, आइए सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। कुमार, ये बड़ी बात है, यानी कि अगर इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ तो हमेशा के लिए अलग।
2: बिल्कुल अंजलि, इस्तीफा एक्सेप्ट होना ही है, ये महज औपचारिकता है और पहला एजेंडा, या यूं कह लें मुख्य एजेंडा भी इस्तीफा ही है। तो कहा यह जा रहा है कि बैठक शुरू होते ही आधे घंटे के भीतर ये इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, ऐसा जो सूत्र है उनकी जानकारी है। और जो बात निकल करके आ रही थी कि अगर इनका इस्तीफा होता है तो क्या ये आजीवन सदस्य बने रहेंगे, तो इनका आजीवन सदस्य भी ये नहीं रह पाएंगे। एक बार इस्तीफा होने के बाद पूरी तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों इस ट्रस्ट से हमेशा के लिए बाहर होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अगर किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं है या कोई इस्तीफा नहीं देता या बाहर किया जाता है, ऐसी स्थिति में चाहे वो किसी पद पर हो या फिर सदस्य के तौर पर है पर हो, ये दोनों स्थितियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यानी कि चंपत राय, जो कि जानकारी मिल रही है कि आज उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, स्वीकार होने के साथ ही वो पूरी तरीके से ट्रस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये बात एक और कही जा रही है कि आज ट्रस्ट उनसे लिखित में भी चीजें ले सकता है कि उनका स्टैंड क्या है, लेकिन बिल्कुल साफ है कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, पूरी मीटिंग ही इसीलिए रखी गई थी कि इनके इस्तीफे पर विचार हो, बाकी अंतरिम व्यवस्था आज बना दी जाएगी।
0: जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट में इस वक्त खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि बड़े बदलाव की तैयारी है। SIT की जो रिपोर्ट है उसके बाद कई ऐसे बदलाव हैं जो मुमकिन है, ये सूत्र बता रहे हैं। बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से इसकी जानकारी दी जाएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, तो क्या क्या बदलाव होंगे इसकी जानकारी साझा भी की जाएगी। तो रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। तो अभिषेक, ये कौन से संभावित बदलाव हैं जिसकी खबर आ रही है?
2: अंजलि देखिए, जो बड़ा मेजर जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं वो SIT की पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद होगी। यानी कि कोई भी नया सदस्य इसमें तभी नामित होगा, बताया जा रहा है कि SIT की पूरी रिपोर्ट के बाद। लेकिन आज जो बैठक है उसमें नए तरीके से एक इंटरिम अरेंजमेंट किया जाएगा, एक अंतरिम व्यवस्था बनाई जाएगी और ऐसे लोग जो इस वक्त ट्रस्ट में हैं उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि चूंकि पूरी तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा आज अलग हो जाएंगे या उनको कह लिया जाए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो पूरी तरीके से वो अब बाहर हो जाएंगे, तो एक अंतरिम व्यवस्था की जरूरत है। और इसके लिए आज की इस बैठक में जो नाम है वो तय हो जाएंगे कि कौन लोग होंगे जो अब इस आगे के कामकाज को तब तक देखेंगे जब तक ट्रस्ट पूरी तरीके से नई व्यवस्था नहीं बनाता। लेकिन नई व्यवस्था के बारे में ही कहा जा रहा है कि SIT की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद नए तरीके से पुनर्गठन होगा और तब नए तरीके से, चाहे वो CEO को नया बिठाना हो या फिर नया महासचिव लाना हो, ये सब कुछ SIT की पूरी रिपोर्ट और कुछ कार्रवाई के बाद होगी। लेकिन आज एक अंतरिम जो व्यवस्था है वही तय होगी। अंजलि
0: जी, शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर बनी रहेगी इस बैठक पर। अयोध्या, जहां हर रोज हजारों लोग श्रद्धा के साथ श्री राम मंदिर के दर्शन करने आते हैं, उसी राम मंदिर में चढ़ावा विवाद की खबरों को आए हुए अब एक महीना होने वाला है। सरयू में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन जांच की सुई 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर टिकी हुई है। सरकार से लेकर संघ तक कह चुका है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जांच के बीच सभी को राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी करने वालों पर कड़े एक्शन का इंतजार है। मेरी झोपड़ी के बाद आज
3: खुल जाएंगे राम आएंगे। लोग चर्चा करने लगे, कहने लगे हैं कि कहां तुम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। भजन की लाइन का मतलब शबरी की झोपड़ी में श्री राम के प्रवेश से रहा। और कहां तो अब अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को चुराकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले आरोपियों ने इस भजन की लाइन का मतलब ही बदल दिया। जिन्होंने अपने भाग्य बदलना चाहा, वो भी राम के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने के बाद उन्हीं का चढ़ावा चुराकर। तभी तो जो अविनाश शुक्ला कभी पानी अयोध्या में बेचता था, फिर राम मंदिर में चढ़ावा गिनने लगा। महीने के 16,000 रुपए पाने वाले आरोपी, जिसका घर वाकई पहले झोपड़ी वाला था, वो कुछ दिनों में फिर पक्का हो जाता है, बड़ा घर बन जाता है, जिसके घर से 20 लाख कैश पकड़ा जाता है। भक्तों के चढ़ावे से 12 लाख की वो कार खरीदता है, जिसका परिवार झोपड़ी में रहता था, लाखों का नया घर बनवाता है।
1: ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था, 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था।
3: झोपड़ी में रहकर भाग्य तो लवकुश मिश्रा के भी अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से कहते हैं खुल गए। जो महीने के 15,000 रुपए कमाने वाला अयोध्या में 8,80,000 रुपए में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर जमीन खरीदता है, अब इस पर एक आलीशान मकान बन रहा है। बाजार में इस मकान की कीमत 25,00,000 रुपए बताई जा रही है, जिससे दावा है कि गोबर के उपलो तक में पैसा छिपाया था।
4: तो केवल घर ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखें तो गांव में जो यूजुअली कंडे रखे होते हैं, यहाँ भी तलाशी हुई। ये सब देखें कि ये कंडे हैं, ये आपको कई घरों में गांव के मिलेंगे और पुलिस ने इनको भी खंगाला था। और बताया इस सूत्रों के मुताबिक ये भी जा रहा है कि इन कंडों के बीच में भी काफी कुछ कैश जो है वो लवकुश के घर से बरामद हुआ है।
3: झोपड़ी से आलीशान मकान वाले हालत में श्रीराम का चढ़ावा चुरा कर कैसे किस्मत पलटी जाती है, इसकी गवाही अनुकल्प मिश्रा के इस घर से मिलती है। वो अनुकल्प मिश्रा जिसकी कमाई 16,000 रुपए महीने मंदिर में व्यवस्था कार्यकर्ता के रूप में रही, वो 50,00,000 रुपए खर्च करके राम कथा कराता है, 45,00,000 रुपए का मकान बनवाता है।
1: कैसे मामूली तनख्वाह पर राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले आरोपी ने लाखों की कीमत का अयोध्या में मकान बनवा लिया।
3: टिन्नू यादव का नाम तो जब से चढ़ावा चोरी का खेल सामने आया है तब से चर्चा में है। एक मामूली ड्राइवर कब राम जी के नाम पर भ्रष्टाचार का सारथी बन गया पता ही नहीं चला, जिसने 80,00,000 रुपए का हॉस्टल तैयार करा दिया। इतनी चोरी कि दावा है कि चोरी पता चलने से पहले जहां श्री राम मंदिर में रोज चढ़ावा 16 से 18,00,000 रुपए तक आता रहा, चोरी पता चलने के बाद रोज चढ़ावा बढ़कर 24 से 26,00,000 रुपए तक गिना जाने लगा, तो क्या पहले रोज 6 से 8,00,000 रुपए चढ़ावे से चुरा लिए जाते थे? अगर 7,00,000 रुपए औसत रोज चुराने का अनुमान भी लगाया जाए तो एक साल में 25,55,00,000 रुपए की चोरी, और अगर रोज 7,00,000 रुपए 2 साल से चुराए गए तो 51,10,00,000 रुपए केवल कैश क्या राम मंदिर से चोरी हुआ। और ये सब तब हुआ जब दान की गिनती करने वालों के साथ नियमित बैठक की जाती थी। आज आपको 10 अप्रैल की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जब दान काउंटिंग वाले कमरे के बाहर ही चढ़ावा गिनने वालों के साथ बैठक में दो सबसे अहम चेहरे देखिए, पहला चेहरा चंपत राय का, दूसरा चेहरा अनिल मिश्रा का। दो सबसे बड़े चेहरे जब लगातार चढ़ावा गिनने वालों संग बैठक करते रहे तो क्या ये कभी देख नहीं पाए कैसे राम के मंदिर से श्री राम का चढ़ावा चुरा लिया जा रहा है?
5: देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ, और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ, और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था।
3: खेल लंबे वक्त से चल रहा है तो क्या अब खेल खत्म होने का वक्त आ गया?
6: सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा।
0: आस्था क्या है? विश्वास है। विश्वास इस बात का कि प्रभु राम है। उन्हीं राम के मंदिर से जब चढ़ावा विवाद गूंजने लगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस तक को कहना पड़ा कि समूचे हिंदू समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। अब इस आघात को दूर कैसे किया जाएगा? तो जवाब है, जब छोटे नहीं बल्कि बड़े चेहरे कार्रवाई की जद में आएंगे।

0: प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये गर्व और आस्था से जुड़ी भावनाओं का क्षण बना।
1: एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक जगत मेरा।
2: हमारा देश आज राम में हो गया है, पूर्ण रूप से राम राज्य है।
3: भव्य मंदिर 500 साल के अपमान के बाद सनातन संस्कृति के लिए आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है।
4: बढ़िया इंतजाम कर रखा है कि ट्रेन से लेके दर्शन तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया इंतजाम।
0: करोड़ों राम भक्तों की आस्था, वर्षों की तपस्या और करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होता है तो करोड़ों भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया। इसमें से एक ये है, दावा है कि सोने चांदी और हीरे से जड़ी करोड़ों की प्रतिमा राम मंदिर को एक गुमनाम भक्त ने दे दी। इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई गई। 24 दिसंबर 2025 को दान की गई इस प्रतिमा की खूबसूरती देखकर कोई भी इस पर मोहित हो जाए। 5 क्विंटल वजनी इस प्रतिमा को स्पेशल वैन से लाए गए। राम मंदिर को भेंट करने वाले भक्त ने तो अपना नाम छिपाकर शास्त्रों के हिसाब से अपने दान का दिखावा नहीं किया, लेकिन जिन लोगों के कंधों पर भक्तों की इस पवित्र भावना को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी वो अपने कर्तव्य में बुरी तरह नाकाम हो गए, जबकि आम और खास सभी ने दिल खोल कर दान दिया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि अप्रैल 2024 में ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल वजन की विशेष रामचरितमानस ट्रस्ट को भेंट दी, जिसके 1000 पन्नों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई थी और उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। बावजूद इसके उन्हें अब तक इसकी रसीद नहीं दी गई। अब डर है कि ये कहीं बाकी चढ़ावे की तरह रामचरितमानस भी मंदिर परिसर से गायब तो नहीं हो गए। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव का दावा है कि उनकी बातचीत चंपत राय से हुई, जिन्होंने कहा वो जो चाहेंगे वही राम मंदिर में होगा, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों ने हर राम भक्त को संशय से भर दिया कि जो भेंट वो अपने प्रभु को देते आए क्या गारंटी कि वो चोरी नहीं हुई।
5: ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
6: और जिन्होंने भी चोरी की है इनकी 7 पुश्तें इस कर्म का फल भोगेगी।
7: चोरी की घटना सुनने में आई है, ये बहुत अशोभनीय लग रही है और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है।
8: तो एक बड़ी खबर आ रही है, सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस जो हम अभी आपको दिखा रहे थे उसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सफाई सामने आई है। ट्रस्ट की ओर से अब कहा गया है कि जिस रामचरितमानस की जानकारी न मिलने की बात कही जा रही है दरअसल वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस बात का खंडन कर रहे हैं वो कि वो गायब हो गई है और उसका कुछ अता पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो सोने की रामचरितमानस जिसके पन्नों पर 24 कैरेट गोल्ड है वो अब बिल्कुल सुरक्षित है। ये दावा है राम मंदिर ट्रस्ट का कि वो मिल चुकी है, वो कहीं नहीं गई है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, All engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: Schwarber to right field, and it will leave.
14: From the first pitch of the season to the stretch run.
15: And that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाएं तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
17: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है। इसमें अलग अलग, पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस।
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: चढ़ावा चोरी मामले पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार। आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर महासचिव के रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन।
1: भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मांद खुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, उज्जैन जूनागढ़ का बेहाल बुरा।
0: आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम।
1: सुपुर्द खाक से पहले खामिनी के अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर जन सैलाब, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, शहर शहर जाएगा जनाजा, 9 जुलाई को अंतिम संस्कार।
0: पाकिस्तान के अत्याचारों से पीओजेके में जबरदस्त सवाल, ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी ने 8 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम, कहा मांगों को माने पाक सरकार वरना अंजाम भुगतने को रहे तैयार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शतक आज तक के साथ। पीओके में 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी, रावलकोट में ईदगाह ग्राउंड पर विशाल रैली, प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद की अपील करते हुए हालात पर गंभीर उठाए सवाल। प्रदर्शनकारियों का आरोप है पाकिस्तान ने पिछले 3 हफ्तों में खाद्य और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी है, पूरे इलाके में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। रावलकोट में जुटी भीड़ ने नियंत्रण रेखा को की ओर मार्च करने की बात भी उठाई है और भीड़ का जवाब था कि आगे बढ़ो, हालात और तनावपूर्ण हुए। झेलम वैली, दादियाल और पुंछ में विरोध प्रदर्शन तेज, हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे गूंज रहे हैं। मीरपुर के दादियाल में फायरिंग की घटना भी, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ा। भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ से जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 बंद, अधिकारी युद्ध स्तर पर मलबा और कीचड़ हटाने के काम में जुटे। पुणे के चाकरणी इलाके में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, पुणे नासिक हाईवे पर लगा भारी जाम, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चाकन में भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग में 80 लोग फंस गए, फायर ब्रिगेड ने हालात पर काबू पाया और बचाव अभियान चलाया। भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे भी प्रभावित हुआ है, नागोठाने के पास में पानी भरने से ट्रैफिक में रुकावट, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। पुणे के आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद इंद्रायणी नदी उफान पर है, आणंदी को जोड़ने वाला पुल भी पानी में डूब गया।
0: महाराष्ट्र, भारी बारिश और भूस्खलन का बड़ा असर, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई पुणे हाईवे अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद। पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों दिशाओं में यातायात रोका गया, प्रशासन लोगों से यात्रा टालने की अपील की। लगातार बारिश के बीच एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट का पिलर गिरा, सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही बंद। लोहगढ़ किले के पास पाटन गांव में भूस्खलन, एक परिवार प्रभावित होने की सूचना, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मावल और तामड़ी घाट में बाढ़ जैसे हालात, वैकल्पिक सड़क मार्ग प्रभावित, प्रशासन लोगों से केवल अत्यंत जरूरी होने पर यात्रा करने की अपील की। मुंबई के मानखुर्द में भारी बारिश के चलते 4 मंजिला चौल ढही, हादसे में 6 की मौत। मानखुर्द बिल्डिंग गिरने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ का दावा, सभी 6 पीड़ितों को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुंबई यूनिवर्सिटी का फैसला, आज होने वाली परीक्षाएं टली। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश का कहर, बांद्रा बैंडस्टैंड के सामने आई बारिश की तस्वीरें। तेज हवाओं के साथ मुंबई में झमाझम बारिश, गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर से उठ रही हैं ऊंची लहरें।
1: मुंबई के लोअर परे स्थित एमएम जोशी मार्ग पर भारी बारिश का कहर, सड़कों पर जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार थम हुई। पुणे में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कैंप से ईस्ट स्ट्रीट समेत कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित हुआ। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महालक्ष्मी फ्लाईओवर का मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा था और वो धंस गया। सतारा रत्नागिरी में मानसून का कहर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रहे हैं, बारिश का भी अलर्ट। वाशी में लगातार बारिश के चलते पुल टूट गया, लोगों ने मंत्रियों से पुल के मरम्मत की गुहार लगाई। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश का बड़ा असर, सावरकुंडला अमरेली स्टेट हाईवे तेज बहाव के चलते टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश के बीच में हाईवे पर शेरों के झुंड का बेखौफ मूवमेंट दिखी, सड़क पर वन्य जीवों की मौजूदगी से दहशत। बारिश के बीच हाईवे पर शेरों के देखने से इलाके में अफरा तफरी, लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे पूरी तरह जलमग्न, पानी भरने के बाद सुबह तड़के सबवे बंद करना पड़ा, यातायात प्रभावित। ओडिशा के कटक में महानदी के तेज बहाव में दर्दनाक हादसा, 3 युवक नदी में बहे, 2 को बचाया गया, 1 की मौत।
0: लगातार हो रही बारिश के बीच नाला सुपारा पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर में भारी जलभराव, जान जोखिम में डालकर स्टेशन तक पहुंचने को मजबूर है लोग। आंधी तूफान के ओडिशा के बौद्ध जिले के सलुंकी नदी में अचानक बाढ़, तेज बहाव के बीच फंसी 2 महिलाएं, 4 घंटे बाद सफल रेस्क्यू। ओडिशा के संबलपुर में मॉनसून फिर सक्रिय, कई इलाकों में जलभराव के साथ भारी बारिश। जैसलमेर में तेज आंधी बारिश दौरान होटल की छत से उखड़ा सोलर पैनल, सड़क पर गुजर रही स्कूटी गिरने से दर्दनाक हादसा, 60 साल की हादसे में मौत, 2 मासूम पोते घायल, 1 गाय की गई जान। भोपाल के बैरसिया में हादसा, पुल पार करते समय ट्रैक्टर नदी में पलटा, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। एमपी के हरदा में बारिश की वजह से 200 छात्र नहीं दे सके परीक्षा, 24 घंटे में 107 किलोमीटर की औसतन बारिश से 7 मिलीमीटर की औसतन बारिश से सड़क से टूटा संपर्क। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तेज बारिश के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर पानी में फंसे। गुजरात के भावनगर में डोंगी नदी में फंसी कार, सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। डांग में मॉनसून की जोरदार वापसी, सापुतारा समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और घना कोहरा। अमरेली में 36 घंटे में मूसलाधार बारिश, कई नदियां उफान पर, गांव में घुसा बाढ़ का पानी।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ही आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास करेंगे, जिसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी समेत कई प्रमुख सदस्य होंगे शामिल। बैठक में विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य स्वामी परमानंद गिरी, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन और डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत ट्रस्टी रहेंगे मौजूद। प्रशासनिक स्तर पर भी बैठक अहम भागीदारी इसमें रहेगी, जिसमें जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, राज्य सरकार के गृह सचिव संजय प्रसाद और केंद्र सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे भी शामिल होंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

0: कौन करेगा ये भी तय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा और ट्रस्टी कृष्ण मोहन की मुलाकात जारी। सूत्रों के मुताबिक बीएचपी के बजरंग लाल बांगड़ा और कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में मौका मिल सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कहा कि दोनों के इस पर चर्चा करने का अधिकार ही नहीं है।
1: पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर रवाना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया होते हुए न्यूजीलैंड तक जाएगी। तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने पर केंद्रित रहेगी। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का किया शिलान्यास। अडानी ग्रुप 2,500 करोड़ की लागत से तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग हब। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का किया उद्घाटन, नए पुल से यातायात होगा सुगम। तूतुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 लाख की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। आंगनवाड़ी केंद्र, आर्टिफिशियल टर्फ, क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 4 पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उज्जैन 40 घंटे बाद चंबल नदी से मिला गांव के सहायक सचिव का शव, गांव का माहौल गमगीन। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, गांजा, एमडी, ब्राउन शुगर समेत 2 करोड़ का माल नष्ट। सूरत में शराब तस्करी में ऑटो चालक गिरफ्तार, शराब की 450 से ज्यादा बोतलें जब्त।
0: सूरत में नकली ब्रांडेड क्लीनर, शैंपू, तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, यहां पर 13 लाख रुपए का सामान भी जब्त, एक गिरफ्तार। दादरी से चोरी हुई रोडवेज बस, 36 घंटों में राजस्थान से बरामद, डीटीसी का बर्खास्त ड्राइवर गिरफ्तार। झांसी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर फरार हुआ कार सवार, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले नेटवर्क का खुलासा, ये कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण की पहचान करते थे। बिहार के गोपालगंज में 1 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, डीएम के आदेश के बाद किया गया नष्ट। इटावा में 16 दिन के बाद सुलझी अज्ञात शव की गुत्थी, पत्नी से अफेयर के चक्कर में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद तनाव, पीड़ित परिवार ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। प्रतापगढ़ कुंडा में जमीनी विवाद में तहरीर देने के लिए गई महिला ने थाने में मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने घटना को गलत बताया। मेरठ में पीटीएम कर्मचारी से लूट के मामले में फरार चल रही महिला लुटेरी ज्योति चौधरी हरिद्वार से गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस को चुनौती भी दी थी। गोंडा में दलित किशोरी की हत्या का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया।
1: ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप से किया बाहर। एर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल और नायलन की शानदार गोलकीपिंग से नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत। हार के बाद भावुक दिखे नेमार, ब्राजील 1990 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के सिर सजा महिला T20 वर्ल्ड कप का ताज, इंग्लैंड को धूल चटाकर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता खिताब। लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर कप पर कब्जा किया। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग की शादी। अभिनेता आशुतोष राणा कराएंगे देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, दिखाएंगे पूजा अनुष्ठान और सुनाएंगे पौराणिक कहानियां। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई है, सलमान खान फिल्म से सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया बेबुनियाद। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय, विकेट सैनी के नाम से होगी रिलीज, अलग अंदाज में कॉमिक किरदार निभाते नजर आएंगे अक्षय। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलिना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक।
0: ओटीटी प्लेटफॉर्म से सतलुज हटाने के बाद दिलजीत दोसांझ का नया पोस्ट, पंजाब 95 और जसपंत सिंह खालड़ा का उन्होंने जिक्र किया। सतलुज पर बोले हरभजन सिंह, कहा कि सत्ता के दुरुपयोग के घाव पीढ़ियों तक रहते हैं, सच हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हरभजन सिंह ने कहा कि जसपंत सिंह खालड़ा का साहस और उनकी कहानी को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी, पंजाब 95 का जिक्र किया। सतलुज हटने के बाद से पंजाब 95 और जसवंत सिंह खालड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते नेटो समिट में तुर्की पहुंचेंगे, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी करेंगे मुलाकात, ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा से भी मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़्या पर ग्लाइडेड बम से हमला, रूसी हमले में 1 पुलिस अधिकारी की मौत, कम से कम 13 घायल। आज से शुरू होने जा रहा चीन और रूस का साझा सैन्य अभ्यास, चीन के शहर किंगदाओ के पास में समुद्र और हवाई क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेनाएं दिखाएंगी अपनी ताकत। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मतभेद की खबरों को खारिज

0: कहा कि दोनों नेता 99% मामलों में सहमत। ईरान के दिवंगत नेता आयतुल्ला अली खामेनी को दो दिनों तक श्रद्धांजलि सभा खत्म हुई है और तेहरान में आज निकाला जा रहा है जुलूस। 9 जुलाई को अंतिम रस्म।
1: फ्रांस के विपक्षी नेता मरीन ले पेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे नहीं, मंगलवार को कोर्ट करेगा फैसला। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने इमरजेंसी और आपदा प्रबंधन के लिए नई मिलिट्री यूनिट बनाने का ऐलान किया है। विनाशकारी भूकंप के बाद फैसला। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर, नॉर्वे ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराया। विंबलडन के चौथे राउंड में महिलाओं की टॉप सीड एरिना असांबालेंका ने नाओमी ओसाका को हराया। जापानी खिलाड़ी ओसाका ने सेंटर कोर्ट पर 6-2, 7-6 से शानदार जीत हासिल की। डिफेंडिंग चैंपियन जेनी सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल दिखाते हुए जापानी क्वालिफायर शिंतारो मोचिज़ुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया।

0: और बात जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की, यहां पर भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हैं।
1: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये नेशनल हाईवे 244 पर आप पानी की तेज धारा आप देख सकते हैं। पानी की तेज धारा आई और उसके बाद बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मलबा सब हाईवे पर आ गए और हाईवे पर बस, कार जो जहां पर थे वो वहीं पर फंस गए। इसके अलावा किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर भी मलबा आ गया। निर्माण कार्य में लगे वाहन मलबे में फंस गए। भारी भरकम गाड़ियों में कई फीट तक मलबा भर गया। ये वो हैरान करने वाले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल फ्लाई हाईवे पर यह एकाएक फ्लैश फ्लड आया, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया।
2: जहां पे है वहीं पे सेफ जगह पे रहे। ये देखिए जो गाड़ियां जो है ना, गाड़ियां फंस चुकी हैं कुछ।
0: अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे नेशनल हाईवे पर मलबा आने से वहां पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। कई गाड़ियां, कई वाहन वहां पर फंसे हुए आप देख सकते हैं। अब ये किस तरह से रेस्क्यू होंगे ये बड़ा सवाल है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
1: तो मानसून के साथ ही पहाड़ों में ये समस्याएं शुरू हो जाते हैं, जहां अचानक फ्लैश फ्लड का आना, और यही हुआ भी है किश्तवाड़ में। फ्लैश फ्लड आया, कैसे आया, गाड़ियां खड़ी थी, वहां चालक थे, आसपास ही थे, लेकिन आप देखेंगे कि किसी को लगा भी नहीं कि यहां पर एकाएक फ्लैश फ्लड ऐसे आ जाएगा। और इतने बड़े बड़े आप देखेंगे, ये बड़े बड़े ट्रक विशाल का है जो कई क्विंटल वजनी है, वो आधे धंसे हुए आपको इस हाईवे पर दिखाई देंगे। हाईवे का हाईवे है, किसी हम नदी की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। हाईवे पर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का भी ऐसा लग रहा है कि काम चल रहा था वहां पर, और इसीलिए तमाम मशीनें वहां पर थी। और समय ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट की साइट है, पावर प्रोजेक्ट की साइट है, वहां काम चल रहा था, लेकिन एक वहां पर एक फ्लैश फ्लड आ गया।
0: तो आलम ये है कि काम तो रुक ही गया, उसके बीच कई ऐसे वाहन है जो फंस गए हैं, कई फीट तक कीचड़ भर गया है। आगे पीछे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे मलबे के बीच ये गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही
1: हैं। तो बड़ी बड़ी मिक्सिंग करने वाली मशीनें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे भी फंसी हुई दिखाई दे रहे हैं। फ्लैश फ्लड आने के बाद ये स्थिति है। हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई किश्तवाड़ की।
0: बात मुंबई की, जहां पर मॉनसून की मार से मुंबई कराह रही है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन मूसलाधार बारिश से हाहाकार है। सड़क डूब गई है, घरों में पानी भर गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, शहर की रफ्तार थम गई है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है।
1: मुंबई में तो कल रात एक 3 मंजिला चौल भी गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मलबा आ गया। मुंबई पुणे के बीच में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ है, ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा, रोकनी पड़ी है। और आज भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलर्ट जारी किया गया है।
0: तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, जैसे पालगढ़, ठाणे, विरार में हाहाकार है, सभी स्कूलों की छुट्टी है और कई यूनिवर्सिटीज में एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है।

0: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते 4 से 5 दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के वीवीआईपी इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है।
1: फिलहाल लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क यातायात हो या रेल यातायात हो, दोनों ही प्रभावित हुए हैं। ट्रेनें जो हैं 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। जो मुंबई से सटे इलाके हैं, वसई विरार, थाने, पालघर, यहां पर भी है भारी जल जमाव ट्रैक्स पर, और साथ ही जो उनके अंदरूनी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल तेज हवाएं चल रही हैं।
0: भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये एक 3 मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई।
2: इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में हैं, जहां पर कि एक अचानक से एक बड़ी सी इमारत जो है पत्थरों के ऊपर का जो घर था उसमें उस पर गिर गई और अचानक से तकरीबन 8 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। दरअसल रविवार को तेज बरसात मुंबई पूरे शहर भर में हो रही थी और मानखुर्द में भी तेज बरसात हो रही थी, और हमने देखा अक्सर ईस्टर्न सबर्ब्स में ज्यादा बरसात हो रही है इस बरसात के दौरान, पूरे मौसम के दौरान, और ये समय अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पत्रे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गया।
0: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं, बावजूद इसके मानसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहां कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है, जहां पानी में घर है या घर में पानी, ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
3: सांप तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 सांप मारे यहाँ पे ही। बहुत सांप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी से कहाँ पे लेके जाएंगे।
0: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।
4: भारी बारिश की वजह से मुंबई की व्यवस्थाएं चरमरा गए हैं। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं और ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है।
5: वसई से विरार तक लोकल लाइन पर जगह जगह जलभराव है। कुछ स्टेशन पर पटरियों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में धीमी भी है लोकल और कई जगहों पर आवाजाही बंद है।
4: तो ये लोकल ट्रेन का हाल है, क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ है। लाइफ लाइन माने जाते हैं मुंबई की, खचाखच भरी रहती है, लेकिन अब यही इनकी ही रफ्तार धीमी हो गई है, तो स्वाभाविक है कि मुंबई की रफ्तार को भी धीमा कर देगा। अब आप ये स्टेशन की तस्वीर देखें। स्टेशन के पूरे प्लेटफॉर्म तक इतना पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा ट्रैक पानी से लबालब है। निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं।
5: हर साल मुंबई का यही हाल। बारिश के समय जो मुंबई की लाइफ लाइन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है। रोज़ाना कई लोग इसी पर निर्भर रहते हैं, अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने काम की जगह जाने के लिए, लेकिन ऐसे में रफ्तार रुक सी गई है। और आप स्टेशन का हाल देखिए, वहाँ तक पहुँचना भी लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है।
4: अब आप एक ये तस्वीर देखिए, जो शख्स ट्रेन में था उन्होंने इस तस्वीर को कैद किया, देखिए मोबाइल फोन में। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। वैसे में प्रकृति के आगे सिस्टम भी क्या करेगा, यहां पर तो सब बेबस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। दूर दूर तक जो रेलवे के जितने भी ट्रैक्स हैं वो सब जलमग्न दिखाई दे रहे हैं और कई कई फीट तक पानी यहाँ भरा हुआ दिखाई दे रहा है।
5: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा शुरू हो चुकी है। आज सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हुए, सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उन्हें जाना है। ये दौरा कई मायनों में खास है, इंडोनेशिया और भारत में कई समझौते हो सकते हैं। इंडोनेशिया का दौरा क्यों है खास, कौन कौन से समझौते यहां हो सकते हैं, इस पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती से बातचीत की है।
6: तो मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। पिछले साल हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट किया है, उन्हें आगे बढ़ाया, विस्तार दिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा हो रही है। बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, ब्रह्मोस डील से लेकर QRIS और UPI के बीच साझेदारी से लेकर सबांग पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बनाने को लेकर। किन मायनों में माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित होगी?
7: आपने सही फरमाया कि हमारे बीच व्यापक सामरिक साझेदारी है 2018 से और वो काफी फला है, फूला है। और इस वक्त भारत और इंडोनेशिया के बीच में कई स्तंभों पर कार्य हो रहा है, चाहे वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, एजुकेशन हो, शिक्षा के माध्यम में, स्वास्थ्य के माध्यम में। भारतीय अस्पताल यहाँ पे अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ यहाँ अस्पताल खोलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, शुरू होने वाला है। और कई मुद्दों पे हम लोगों की जो डिस्कशन है, चर्चा है, वो काफी एडवांस स्टेज पे है। और प्रधानमंत्री के आने से देखिए, हम लोग अपने लेवल पे काम तो करते हैं लेकिन जब हाई लेवल विजिट होती है, जैसे प्रेसिडेंट प्रोवोवो भारत गए थे, उससे एक बहुत बड़ा फिलिप बूस्ट मिला हमारे हमारे संबंधों को। उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कई मुद्दों पे बातचीत होगी और कई समझौते किए जाएंगे।
4: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
9: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: एयू
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: इन एसोसिएशन विद
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
10: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
11: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
12: परमिशन लेनी चाहिए ना,
11: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
13: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
11: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: चढ़ावा चोरी पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर। महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन।
1: भीषण बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर भी लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर्द में मकान गिरा, 6 लोगों की मौत, उज्जैन जूनागढ़ का भी हाल बुरा।
0: आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम।
1: सुपुर्द-ए-खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम रस्म।
0: पाकिस्तान के अत्याचार से पीओजेके में जबरदस्त उबाल, ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी ने 8 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम, कहा मांगों को माने पाक सरकार वरना अंजाम भुगतने को रहे तैयार।

0: करोड़ों राम भक्तों की आस्था को हिला देने वाले अयोध्या चढ़ावा लूटकांड में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब से करीब चार घंटे बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। इसका बड़ा एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला करना है।
1: अब अयोध्या से आ रहे संकेत बता रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर ट्रस्ट की बैठक में मुहर लगना तकरीबन तय है। कुछ नए चेहरों को ट्रस्ट में शामिल किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बजरंग लाल बांगड़ा का नाम इस समय सबसे आगे है।
0: और इस बीच बड़ी खबर यह कि क्या चंपत राय का इस्तीफा आज मंजूर होगा या फिर ट्रस्ट का चंपत राय पर विश्वास बरकरार रहेगा, इस सवाल पर आज मोहर लगेगी क्योंकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक सर्वसम्मति से फैसले के दो तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी है।
1: आपको याद होगा कि चंपत राय ने 26 जून को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार सिर्फ ट्रस्ट को है। इसीलिए ट्रस्ट की आज की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि संकेत ये मिलने लगे हैं कि उनका ट्रस्ट से बाहर जाना लगभग तय है, यानी कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की राय चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार करने में एक हो सकती है। और दोपहर लगभग 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी मंदिर परिसर में। और चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला संभव है, और इसके साथ साथ नए चेहरे कौन होंगे इन पर भी चिंतन मंथन।

0: एक खुलासा हुआ और चंपत राय का दामन दागों से भर गया। प्रतिष्ठा जैसे अर्श से फर्श पर आ गिरी। सवालों की बौछार होने लगी। इस्तीफा देना पड़ गया तो एफआईआर दर्ज करने की मांग बुलंद होने लगी। राम मंदिर आंदोलन का नायक खलनायक नजर आने लगा। अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा, क्या चंपत राय पर भी मुकदमा दर्ज होगा, क्या चंपत राय की गिरफ्तारी हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म हो सकता है। जिस राम मंदिर के अहाते से चढ़ावे की लूट पर आरोपों के बवंडर उठे थे, उसी राम मंदिर में आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हो रही है और चंपत राय के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब इसी बैठक में मिलने वाले हैं।
1: तीन बजे बैठक है
2: सर, बैठक
1: कहाँ पे हो रही है? मंदिर में।
2: कहाँ पे हो रही
1: है? मंदिर परिसर, मंदिर परिसर में हो रही है। नित्य गोपाल दास जी, नित्य गोपाल दास जी करेंगे।
0: दोपहर 2 बजे ट्रस्ट की बैठक का वक्त तय हो चुका है, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय की विदाई तकरीबन तय हो चुकी है। अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट से बाहर हो सकते हैं। दोनों ने 26 जून को पद से इस्तीफा दिया था।
3: बेशक चंपत राय ने यह कहा हो कि वो अयोध्या से कलंक लेकर वापस नहीं जाएंगे, राम की नगरी में कलंक लगा है, राम ही इस कलंक को हटाएंगे, लेकिन आज जब ये बैठक हो रही है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होने जा रहा है। सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि जो आजीवन सदस्य मेंबर के तौर पर रहने की बात है वो भी पूरी तरीके से उससे भी बाहर होंगे, यानी कि चंपत राय अब पूरी तरीके से ट्रस्ट से आज बाहर हो जाएंगे और एक नई अंतरिम जो व्यवस्था है वो लागू कर दी जाएगी।
0: 26 जून को चंपत राय ने इस्तीफा दिया था और आज 6 जुलाई की तारीख है। सवाल है कि आखिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर फैसला लेने में इतनी देर क्यों लगी? तो जवाब है ट्रस्ट के नियम। ट्रस्ट के नियम के मुताबिक ट्रस्ट के किसी सदस्य को हटाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों पदाधिकारियों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ट्रस्ट अपना निर्णय सुनाएगा। तो इंतजार कीजिए दोपहर 3 बजे का, जब ट्रस्ट के सदस्य आमने सामने होंगे और चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट मंथन करेगा। इस मंथन से किसके लिए विष निकलता है और किसके लिए अमृत, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट विश्वास बहाल करने में कामयाब होगा। इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के ट्रस्ट का सवाल है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: अब आपको बता दें कि आज ट्रस्ट की बैठक का पूरा क्रम क्या रहने वाला है। सबसे पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से बैठक बुलाने के उद्देश्य से जानकारी दी जाएगी। महंत नृत्य गोपाल दास खुद मौजूद नहीं रहेंगे, उनकी तबीयत दरअसल ठीक नहीं, इसीलिए उनकी ओर से उनके सहयोगी प्रस्तावना रखेंगे।
5: इसके बाद सबसे पहले चंपत राय अपनी बात रखेंगे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ट्रस्ट के सामने रखेंगे। चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंपेंगे। तीसरे क्रम में अनिल मिश्रा अपनी बात रखेंगे और नैतिक आधार पर इस्तीफे की पेशकश करेंगे।
4: अब इसी क्रम में बैठक चलेगी और फिर अंत में ट्रस्ट में नए सदस्यों या पदाधिकारियों के नामों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। सचिव पद के संभावित नामों में बजरंग बांगड़ा का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है। नए प्रस्तावों पर भी ट्रस्ट के द्वारा मतदान करके अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
5: आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, आज ही पूरी कर ली जाएगी?
6: अब बिल्कुल नया, देखिए जो सीक्वेंस है मीटिंग का अयोध्या का वो पूरी तरीके से आज का ही है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो चंपत राय जिन पर आरोप लगा है उनको मौका दिया जाएगा अपनी बात कहने का और उसके बाद एक मोरल ग्राउंड पर नैतिक आधार पर उनसे इस्तीफा लेने की बात कही जाएगी। दूसरा सबसे अनिल मिश्रा को भी इस स्टेप में लाया जाएगा और जो गोविंद गिरी है कोषाध्यक्ष वो अपनी एक राय भी रखेंगे कि किस तरीके से फाइनेंस में अगर कोई चूक हुई है तो उसको लेकर भी रिपोर्ट वो पेश करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया इसमें जो हमारे पास महेंद्र धीरेन्द्र दास और वरिष्ठ अधिवक्ता पराशरन ने अपने सुझाव और विचार रखेंगे कि आखिर इसमें पूरी तरीके से किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कैसे कानूनन ये पूरा पेच फंसा है। साथ ही साथ कृष्ण मोहन ये बताएंगे कि तथ्यों पर आधार पर जो FIR दर्ज हुई है उसके क्या मायने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मतदान में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है, ये भी शोर से खबर आ रही है। और इसके बाद जो शुरू होती है प्रक्रिया की, जो बजरंग बांगड़ का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है कि उनको सामने रखा जाता है ट्रस्ट के सामने कि इनके चुनाव पर लोगों के मत क्या है, वहां पर राय क्या है, तो जो नए प्रस्ताव पर ट्रस्ट का जो मतदान है वो भी अंतिम निर्णय भी मुख्य होगा।
4: और जो इन सब पर तो चिंतन मंथन होगा ही, लेकिन क्या इस बात पर चर्चा करेंगे कि राम भक्तों का भरोसा जो ट्रस्ट टूट गया है इस ट्रस्ट पर, सिर्फ दो ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, बाकियों पर भी ऐसा नहीं कि आम लोगों को भरोसा हो गया, क्या उस टूटे हुए भरोसे को बहाल कैसे करें, इस पर भी करेंगे चिंतन मंथन।
6: बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है कि अगर दो लोग इस्तीफा नैतिक पर देते हैं तो बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसको लेकर भी एक चर्चा है बैठक में, और कैसे उस ट्रस्ट को पूरी तरीके से जनता के ट्रस्ट के साथ खड़ा किया जाए भरोसे के साथ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी वजह से वहां पर जो सारे जितने भी महेंद्र नेत्र गोपाल दास के नेतृत्व में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे वो इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि जो नया अगर कोई सचिव आता है तो किस तरीके से प्रक्रिया होगी, क्या बदलाव होगा, क्या इसमें नया कोई फॉर्मेशन रखा जाए जिससे कि जनता की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और भक्तों को ठेस ना लगे, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और शायद इसके आगे भी CEO की तरफ भी बढ़ सकते हैं कि इस पर भी कोई नया रुख हो। लेकिन ये तो बहुत अहम हो जाता है कि जो और लोग इसमें शामिल हैं उन पर FIR जिस एंगल से दर्ज हुई है उस पर कानूनी राय भी रखी जाएगी कि क्या और लोगों पर भी FIR दर्ज की जा सकती है, और अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, क्योंकि गोविंद गिरी इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से फाइनेंस के बारे में वो रखेंगे डिटेल और खाका कि चूक आखिर कहां हुई है, और अगर उस चूक में पाया जाता है कि कोई बड़ा पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त है तो ये पूरा ट्रस्ट उस पर रिकमेंड कर सकता है कि FIR भी कराई जा सकती है, यानी कि जो जनता बात कह रही है उस पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफी अहम है इन मुद्दों पर जहां पर ये चर्चा।
5: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राम मंदिर दान गबन मामले की जांच के बीच आज अयोध्या में आज फैसले का दिन है, ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस्तीफा स्वीकार होते ही चंपत राय अनिल मिश्रा पूरी तरह से ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे, ट्रस्ट के पदाधिकारी पद से ही नहीं बल्कि आजीवन सदस्यता खत्म हो जाएगी। सूत्र के हवाले से खबर यह है कि उसके मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में आज चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय है, औपचारिकता है सिर्फ उसे एक्सेप्ट करने की। मीटिंग के तुरंत बाद ट्रस्ट की तरफ से प्रेस नोट जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अंतरिम व्यवस्था पर फैसला होना है। चंपत राय अनिल मिश्रा के बाद ट्रस्ट का कामकाज कौन देखेगा यह भी आज तय हो जाएगा। हालांकि ट्रस्ट में स्थायी परिवर्तन SIT की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगा।
4: तो यूं ही राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, आंदोलन से राम मंदिर निर्माण तक मंदिर का इतिहास गवाह है त्याग और बलिदान का। लेकिन आज त्याग बलिदान और आस्था के उन अध्यायों पर अविश्वास का घना कोहरा छाया है जो तभी दूर होंगे जब मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले ये तय करेंगे कि चढ़ावे की लूट करने वालों को दंड मिलेगा, लूटकांड के जिम्मेदार बड़े चेहरों पर एक्शन होगा।

0: देश की निगाहें इस वक्त राम मंदिर पर है। तलाश है उन सवालों के जवाब की जो करोड़ों राम भक्तों को लगातार बेचैन कर रहा है। तब जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से विदाई तकरीबन तय लग रही है, देश जानना चाहता है कि चढ़ावे के राम धन में दोबारा सेंध ना लग पाए, इसकी गारंटी कैसे मिलेगी। आज तक ने भी एक मिशन की तरह उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। सवाल ये है कि चंपत जाएंगे तो कौन आएंगे, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेंगे, ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बदलाव होंगे। लखनऊ से दिल्ली तक हमने इन सवालों के जवाब तलाशे। आज तक को मेरी जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होने की पूरी संभावना है। इन दोनों की जगह किन्हें दी जाए, उन विकल्पों पर भी चर्चा होना तकरीबन तय है। खबर है कि बजरंग लाल बागड़ा को ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है।
1: विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता बजरंग लाल बांगड़ा और नीरज दनेरिया जैसे जो नेता हैं उनको अयोध्या बुलाया गया है। साफ तौर से ये वो नेता हैं जब जगह खाली होने पर इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। बजरंग लाल बांगड़ा जो कि अकाउंट भी देखते रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ चाहे वो जनसंख्या मामले हो, धर्मांतरण मामले हो, वो इन मामलों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अब ऐसे में वरिष्ठता का अनुभव है और कहीं ना कहीं इनके नाम पर मोहर लग सकती है। जैसे कि ये पद खाली होते हैं, उस पद पर नए पदों की नियुक्ति भी की जानी है।
0: आज की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ही हैं। बैठक से पहले चंपत राय के इस्तीफे की मांग हो रही है तो उनके समर्थन में भी आवाज उठ रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस्तीफे के एजेंडे के अलावा अन्य बिंदु भी शामिल हैं, जैसे न्यास दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट रखी जाएगी, आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं पर विचार होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 की ऑडिट संबंधी जानकारी रखने के साथ ही कई चीजों की स्वीकृति भी दी जाएगी। लेकिन सबकी नजर इसी बात पर होगी कि आखिरकार चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। अगर इनके इस्तीफे मंजूर भी हो जाते हैं तो इनकी जगह कौन लेगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट में सचिव के तौर पर बजरंग लाल बागड़ा की एंट्री हो सकती है। बागड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े हैं। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम भी सचिव पद की संभावित दावेदारी में शामिल बताया जा रहा है। देखा जाए तो आज की बैठक उन संगठनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं जिन पर ट्रस्ट के कामकाज पर नजर रखने और मंदिर प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आज की बैठक से कोई ठोस मॉडल या समाधान निकल पाएगा, इस बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, ट्रस्ट को अगर वापस विश्वास हासिल करना है तो आपको नहीं लगता कुछ न्यूट्रल लोगों को इस पूरे बोर्ड में शामिल करना चाहिए? तो फिर से वही बात हो गई, पहले भी आप अपने विश्वसनीय लोगों को लाए थे, एक बार फिर से फ्रंट रनर्स की दौड़ में वही लोग हैं जो आपके विश्वास पात्र हैं, ये फिर से लूटकांड नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?
3: देखिए नेहा, अभी तो जो पहला एजेंडा है वो इस्तीफा है, क्योंकि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर जो बात कही गई है अब वो सिर्फ औपचारिकता शेष है। माना जा रहा है कि आज उनका इस्तीफा हो जाना है, होना तय है। इसके साथ साथ जो आजीवन सदस्य की बात है उस पर भी मुहर लग गई है कि अब इस्तीफा होगा तो पूरी तरीके से इस ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब नए नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन बताएं कि आज इस बोर्ड में, आज इस बैठक में सिर्फ इंटरिम अरेंजमेंट्स होंगे, यानी कि अभी जो लोग इस बोर्ड में हैं, इस ट्रस्ट में हैं, उनको ही प्रभार दिया जा सकता है अंतरिम तौर पर। जो SIT की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसका पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन होगा, पुनर्गठन होगा। ये नाम जरूर चल रहे हैं, बजरंग लाल बांगड़ा के नाम है, कृष्ण मोहन के नाम है, यहाँ तक कि नृपेंद्र मिश्रा की भी चर्चा है, लेकिन इसमें से दो लोग, चाहे तो आप कृष्ण मोहन को देख लें जो कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, बेदाग चरित्र रहा है और दलित समुदाय से आते हैं, उनके ही शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। तो क्या ऐसे लोगों को फिलहाल इंटरिम अरेंजमेंट में जगह दी जा सकती है, इसकी चर्चा है। हाँ ये जरूर है कि जितने नाम, चाहे बजरंग लाल बांगड़ा या दूसरे विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हों, बजरंग दल के लोग आए हों, उनसे चर्चा चल रही है, लेकिन कोई भी फाइनल रिस्ट्रक्चरिंग में अभी वक्त लगेगा और वे SIT की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद ही होगा।
4: जी
3: नेहा
4: आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू होने से पहले हालचाल बहुत तेज हो गए हैं। वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ दान गबन के मामले के शिकायतकर्ता कृष्ण मोहन भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बजरंग लाल बांगड़ा को ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक महासचिव चंपत राय के विकल्पों की तलाश भी की जा रही है। इसके साथ ही वीएचपी महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा पहली पसंद भी हो सकते हैं और उनके नाम की चर्चा चल भी रही है।
5: अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की दोपहर 3 बजे होने वाली एक अहम बैठक से पहले एक और बैठक चल रही है और ये बैठक चल रही है कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की कृष्ण मोहन और बजरंग बांगड़ा के साथ जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं श्री वैदेही भवन पुष्प वाटिका के पास और यहीं पर वो अहम बैठक चल रही है। सचिव पद के लिए विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा पहली पसंद बताए जा रहे हैं। ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। कृष्ण मोहन वो शख्स हैं जिन्होंने वो FIR करवाई थी जिसमें चंदा चोरी के जो 8 आरोपी कुल मिलाकर हैं उनके नाम थे। कृष्ण मोहन पुराने यहाँ के काफी एक्टिव रहे हैं। इसके अलावा बजरंग जो हैं उनका नाम भी अब चर्चा मंच में चल रहा है। चंपत राय अनिल मिश्रा की जगह उन्हें ट्रस्ट में जगह मिल सकती है और ये सूत्र बता रहे हैं कि गोविंद देवगिरी जो यहाँ पर अंदर इस वक्त हैं उनके साथ ये बैठक काफी अहम है और ट्रस्ट की मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों को इसलिए बुलाया गया हो क्योंकि ट्रस्ट में इनका कहीं ना कहीं स्थान बन रहा हो, इन्हें नई जिम्मेदारियां दी जा रही हो और अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद खाली हुई जगह पर बजरंग और कृष्ण मोहन को जगह दी जा रही हो। आप देखें तो यहाँ पुलिस फोर्स फिलहाल आपको तैनात नजर आएगी क्योंकि एक बड़ी बैठक इस वक्त अयोध्या में ये चल रही है। कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में सेवानिवृत्त रहे हैं तो वहीं जो कहीं ना कहीं बजरंग लाल बांगड़ा है वो VHP के केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और नालको जो है उसके चेयरमैन भी बजरंग बांगड़ा रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से चंपत अनिल के विकल्प में बांगड़ा को भी देखा जा रहा है और एक नाम नीरज दनौरिया का भी चल रहा है। तो फिलहाल ट्रस्ट की बैठक से पहले जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और अंदर खाने में इस बैठक में ट्रस्ट को लेकर पदाधिकारियों के नाम को लेकर काफी कुछ निर्णायक सामने आने वाला है और गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं वो कल ही इस बात को कह चुके हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। तो इस बीच में क्या बजरंग और कृष्ण मोहन को नई जिम्मेदारी मिलेगी, फिलहाल कुछ क्षणों में ये साफ होने वाला है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई आई है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि जिस रामचरितमानस की जानकारी न मिलने की बात हो रही थी वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कहा जा रहा था कि इसे भी चोरी कर लिया गया लेकिन अब ट्रस्ट ने अपनी सफाई में इसकी तस्वीरें दिखा दी। खबरों का खंडन कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा था कि रामचरितमानस चोरी हो गई है लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से इसकी तस्वीर जारी कर दी गई।
4: यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कई सारी बातें कही हैं और राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुए इस मामले पर भी उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।
6: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया, जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं जवान सिले हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और
2: वक्त एक ब्रेक का हौसला बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
8: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
13: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ballgame.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: चाहे अयोध्या प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने होगी हम तेरे को। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिर अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक चंपत्र और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर। महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, उज्जैन और जूनागढ़ का भी हाल बुरा। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामिनेई के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें, ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम रस्म।

0: रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या चंदा चोरी केस की। आज श्रीराम जन्मभूमि सेवा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी हुई लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। खबर है कि इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट से पूरी तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा बाहर हो जाएंगे। पूरी तरह दोनों न सिर्फ ट्रस्ट के पदाधिकारी पद से विदा होंगे बल्कि आजीवन सदस्यता भी इनकी खत्म हो जाएगी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा और अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। खबरों के मुताबिक दोनों का इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट की अंतरिम व्यवस्था तय की जाएगी। उनकी जगह ट्रस्ट के कामकाज की देखरेख कौन करेगा, ये बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन खबर है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव पद के लिए VHP के विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा पहली पसंद बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट कृष्ण मोहन नाम का नाम भी सचिव पद की संभावित दावेदारी में शामिल बताया जा रहा है।
1: अयोध्या में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक है। ये एक बैठक ही नहीं बल्कि एक निर्णायक निर्णयों वाली एक मंत्रणा है जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के बड़े चेहरे चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई लगभग तय है। 2/3 वोट के साथ माना जा रहा है कि उन दोनों के इस्तीफे को आज ट्रस्ट कबूल कर सकता है, जिसके बाद दो नए चेहरों के नाम चर्चा में हैं, कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बांगड़ा, जो इस वक्त गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष के साथ वैदेही भवन में बैठक में हैं। और ये जो बैठक दोपहर की बैठक से पहले हो रही है, ये भी बेहद अहम बताई जा रही है कि गोविंद गिरी, जिन्होंने कल एक पत्र लिखकर सवाल उठाए चंदा चोरी पर, आज उनकी बैठक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन, जिन्होंने FIR करवाई, उनके साथ होना, कहीं ये अंदेशा तो नहीं है कि ये दो नए चेहरे अनिल मिश्रा और चंपत राय की जगह लेने वाले हैं, ये वक्त बताएगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट भी अयोध्या से है। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कल जेल में लगभग 5 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक कल जेल में हुई पूछताछ में पुलिस को चढ़ावे की रकम से खरीदी गई कुछ और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। खबर है कि चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी लेने की तैयारियां चल रही है। 5ों की कस्टडी पुलिस एक साथ भी ले सकती है और अलग अलग भी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष शर्मा।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में जाकर की गई पूछताछ के आधार पर अयोध्या पुलिस इन 5 आरोपियों रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के साथ करुणेश पांडे को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में है। 5 घंटे में की गई पूछताछ में पुलिस ने उन तमाम चीजों के बारे में भी जानकारी ली जो चोरी से खरीदी गई। बताया जा रहा है कि इनके पास से बरामद हुए 80 लाख रुपए के अलावा भी इनके द्वारा पहले की गई चोरी की रकम को गाड़ी, जेवरात और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया था। अब अयोध्या पुलिस ने उन तमाम संपत्तियों का भी ब्यौरा हासिल कर लिया है और इनसे बरामदगी के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है।
0: तो एक तरफ चढ़ावा चोरी की जांच जा रही है तो दूसरी तरफ सियासी घमासान भी तेज है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। अब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।
3: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं ये सुनिश्चित नहीं है और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं।
4: अब पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी परंपरा है झूठ बोलने की, जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, भीप में, अब उसके तहत ये लोग सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इनके प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि 900 से ज्यादा बार अखिलेश यादव, टुन्नू यादव की बात हुई, दिन में इतनी बार बात होती थी, अखिलेश यादव के कहने पर टुन्नू ने यह किया। मैं अयोध्या का एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूं, मुझसे आज तक टुन्नू यादव नहीं मिले हैं, हमारी टुन्नू यादव से आज तक फोन पर कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ भीप के नेताओं को चुनौती देकर कह रहा हूं, अगर आप में दम है, आप ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेट नहीं है, तो साबित करिए।

0: आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो पीड़ित हैं उसके पिता से भी मिलने वाले हैं और उसे आश्वासन भी दिया गया है कि इस पूरे मामले की तह तक जांच होगी और आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा।
1: उत्तरी 24 परगना में रेप और हत्या पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी आजकर की याद दिला रहे हैं, बीजेपी बैकफुट पर है।
2: ये तो सही है ना, किसी को किसी तो नारा लगाना पड़ेगा। आप एक तरफा जुलूमबाजी करते रहेंगे और जनता उसको मानते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे आपको आरजी कर में साइट फॉर जस्टिस फॉर आरजी कर, तो बाड़ीपुर में भी तो जस्टिस होना चाहिए।
3: बहुत दुखजनक घटना है, लेकिन हमारा इधर हमारा शुभेंदु अधिकार के सरकार में किसी का कोई महिला के ऊपर अत्याचार करेगा तो उसका रिहाई नहीं होगा। जो बच्ची का बलात्कार हुआ है ऐसा बोला जा रहा है और खून हुआ है, उसको जो किया है उसका शास्ति होगा, ये हमको हम आपको 200% एश्योरेंस देते हैं।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगले रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से ही है। टीएमसी बनाम टीएमसी, असली टीएमसी कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ममता या ऋतव्रत की आज चुनाव आयोग में इस पर अहम सुनवाई। ममता की पार्टी तोड़कर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हथियाने वाले ऋतव्रत बैनर्जी असली टीएमसी का दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए शाम 5:30 बजे तक का समय दिया है।
4: तृणमूल कांग्रेस का कमान किसके हाथ में रहेगा, कौन है असली टीएमसी, इसका फैसला अब करने वाला है चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग में दस्तावेज सबमिट करेंगे ममता बनर्जी के शिविर के नेता कल्याण बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन। दरअसल पिछले हफ्ते जो बागी कैंप है जिसको लीड कर रहे हैं नेता विपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय, उन्होंने फुल बेंच के साथ मुलाकात की थी पिछले हफ्ते और अपना दस्तावेज और दावा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था, ये कहते हुए कि ज्यादातर एमएलएज 65 से ज्यादा एमएलएज उनके समर्थन में हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने गए हैं और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस का कमान उनको सौंप देना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा कि एक नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई गई थी ऋतव्रत बंदोपाध्याय का नेतृत्व में, जो शिविर तृणमूल कांग्रेस का है बागी विधायक का, उन्होंने अलग से एक गुट बना के एक मीटिंग किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस का नया नेशनल वर्किंग कमेटी बनाया गया था और ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया गया था। लेकिन इस बार अब ममता बनर्जी के शिविर फिर से इलेक्शन कमीशन के सामने अपना दावा पेश करेंगे, अपना दस्तावेज देंगे।
1: अगली रिपोर्ट बिहार से है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी एंट्री करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की गई सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विधानसभा चुनाव जोर शोर से लड़ा था, लेकिन वो खुद तो चुनाव उस समय नहीं लड़े थे। अब उपचुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बांकीपुर के लोगों की मांग पर चुनावी मैदान में उतरे हैं।
5: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है और अब सबकी नज़रें बीजेपी पर टिकी है कि वो इस हाई प्रोफाइल सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को टक्कर देने के लिए बीजेपी इस सीट से कोई दमदार और चर्चित चेहरे को मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां ये चुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगा, वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी पिछले 4 दशक से जीतती आ रही है।
1: चुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने क्या कहा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
6: बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए, मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा और अगर आपका आशीर्वाद मिला जीत कर आए तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे।
7: वो झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खेती उनका समाप्त हो चुका है। उनका

0: चेहरा बेनकाब हो चुका है जनरल इलेक्शन में, इसलिए अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है।
1: अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर आज दिल्ली से रवाना हो गए। पीएम मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जाना है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है, इंडोनेशिया और भारत में कई समझौते भी हो सकते हैं।
2: 6 दिन 3 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा विदेश दौरा भारत की रणनीतिक, सामरिक और व्यापारिक साझेदारियों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए नया बूस्टर डोज साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचेंगे, वो देश जो हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी भी है और एक नया रणनीतिक साझेदार भी। भारत के इंडोनेशिया के साथ सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन हाल के दिनों में देखने को मिला है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ऊर्जा, व्यापार, कारोबार और कृषि के संबंध मजबूत हुए हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में न केवल वहां की संसद को संबोधित करेंगे, बल्कि उस सदियों पुराने परमानंद शिव मंदिर में भी जाएंगे जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंधों का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जो भारत के लिए क्वाड का सहयोगी भी है और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, कारोबारी और रणनीतिक साझेदार भी। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद में न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां पर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का करीब 40 बरस बाद दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये नया विदेश दौरा न केवल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके के अंदर भारत की रणनीतिक पैठ को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को एक नया विस्तार भी देगा।
1: 12:12 रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट तेहरान से। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज सुबह तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर राष्ट्रगान बजाकर अंतिम यात्रा शुरू की गई। खामेनेई के जनाजे में उनके 3 बेटे मसूद, मेसन और मुस्तफा समेत देश का शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ। हालांकि सुरक्षा कारणों से खामेनेई के उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। अंतिम यात्रा में लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू से बदला लेने के नारे लगाए।
3: 2 दिन से लगातार उनके पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला में रखा गया था। वहाँ पर नमाज जनाजा जो अदा की जाती है वो लगातार लोग कर रहे थे। तमाम दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तेहरान और ईरान के अलग अलग इलाकों से भी, हिस्सों से भी वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे। लेकिन आज एक अलग पड़ाव पर ये अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम जाएगा, जब उनके पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से निकाल कर आज़ादी स्क्वायर ले जाया जाएगा। दरअसल अब तक ये सड़कें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमेशा आप कह सकते हैं पिछले 48 घंटे से लोगों से भरी हुई थी। 24 घंटे लगातार लोग यहां पर जाते थे, यहां से नजर आते थे ग्रैंड मसल्ला की तरफ, जो यहां से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज ये सड़कें खाली हैं, इनको ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है, क्योंकि जो ग्रैंड मसल्ला से आजादी स्क्वायर का रास्ता है उसमें कई पॉइंट्स पर, यानी करीबन 3 से 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से मीडिया को उनके कवरेज करने की, यानी जो प्रोसेशन चलेगा उनके साथ, जत्था चलेगा, लोग उनके साथ उनके पार्थिव शरीर के पीछे चलेंगे, वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का दायरा बनाया गया है, जिसमें ग्रैंड मसल्ला से वाली स्क्वायर से उसके बाद आजादी स्क्वायर तक जाएगा, और उसके बाद आजादी स्क्वायर पे ले जाने के बाद वहां पर लोग इकट्ठा होंगे और फिर उसके बाद उनको वहां से उनके पार्थिव शरीर को कुंभ ले जाया जाएगा, जो कल वहां पर फिर इसी तरीके का कार्यक्रम होगा।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर एक बार फिर से उबल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद मांगी और आज हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की है और इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है, कई लोग घायल भी हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने शहबाज सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, अगर 8 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो एक निर्णायक कदम उठाने की चेतावनी दी गई है।
4: तो क्या पाकिस्तान में बड़े हलचल की सुगबुगाहट है? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को मिला है अगले 48 घंटों का अल्टीमेटम। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों में आंदोलन तेज हो रहे हैं और आवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की लीडरशिप को 8 जुलाई तक की मोहलत दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। अब पाकिस्तान से आजादी की मांग उठने लगी है। POJK में जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जो प्रदर्शनकारी है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और ऐलान कर दिया है कि उनकी जो मांगे हैं अगर 8 जुलाई तक पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन की रूपरेखा बदलेगी और उग्र होगा और ये अल्टीमेटम अब पाकिस्तान की पूरी सत्ता के लिए भारी पड़ सकता है।
1: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म Z5 से हटा दिया गया है। और इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए ही अटकी रही। इससे पहले इसका टाइटल पंजाब 95 था, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप Z5 पर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वहां से हटा दिया गया है। फिल्म को लेकर दिलजीत दोसांझ ने रिएक्शन दिया जो वायरल है। उन्होंने लिखा कि इसे जल्दी से देख डालिए।
5: ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की बायोग्राफी या जीवनी पर आधारित सतलुज ओटीटी प्लेटफॉर्म से अचानक हटा दी गई है, जिससे एक सियासी उबाल आ गया है पंजाब में। खासतौर पर दिलजीत दोसांझ अपने आप पे कई बार आशंका जता चुके हैं कि इस पिक्चर को हटा दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिलहाल उनका कहना है कि उन्हें चिंता नहीं, क्योंकि ये पिक्चर अब डाउनलोड हो चुकी है और इसमें अब एक पोटेंशियल है जहां पे तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया सियासी आई है, और खासतौर पर हमने देखा है कि सुखबीर बादल हैं, उन्होंने सवालिया निशान उठाए। इसके साथ साथ कांग्रेस के कई नेता हैं, उन्होंने भी सवालिया निशान उठाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के भी नेता पूछ रहे हैं कि ये पिक्चर हटाई क्यों गई है। आपको बता दें कि जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
1: 12:12 रिपोर्ट। हमें अब अगली रिपोर्ट मौसम की है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर पानी की तेज धारा आ गई, उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर भी आ गए। हाईवे पर बस कार जहां थे वहीं पर फंस गए। इसके अलावा किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर भी मलबा आया, निर्माण कार्य में लगे हुए वाहन फंस गए। भारी भरकम गाड़ियों में कई फीट तक मलबा भर गया।
6: बीती रात से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। इसके कारण ज्यादातर अगर हम देखें तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है, पहाड़ों से पत्थर गिरे हैं और बाढ़ भी कई स्थानों पर आई है। अगर हम बात करें किश्तवाड़ जिले की, तो किश्तवाड़ जिले में जो है काफी क्षति हुई है। वहां पर जो क्वाड जो पार प्रोजेक्ट है, वहां कई गाड़ियां जो है, खासतौर पर जो ट्रक्स हैं, वो मलबे में धंस गई हैं, और वहां जो सड़क मार्ग है वहां यातायात भी जो है बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग की, तो ये राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि डोडा जिले के पास प्रेमनगर में वहां भूस्खलन हुआ है, वहां बाढ़ आई है, और जो यातायात है वो बंद कर दिया गया है। वहां पर जो राजमार्ग है वहां मलबा है, इस समय पत्थर भी गिराए हैं। प्रशासन जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्राथमिकता यही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके, ताकि ट्रैफिक जो है वो बहाल हो सके। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो किश्तवाड़ जिले में जो पावर परियोजना है, वहां जो क्वाड पावर परियोजना है, उस क्षेत्र के पास बाढ़ आई है, वहां पर मलबा गिराया है सड़क पर, और कई ट्रक्स जो हैं वो मलबे में धंस गई हैं। प्रशासन के लोग लगातार कार्य में जुटे हुए हैं, और प्राथमिकता यही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके।
1: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच में मानगुर्द इलाके में एक तीन मंजिली आवासीय इमारत भर भरा कर गिर गए। हादसे में मलबे के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत हो गए, कई लोग घायल भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान उन्होंने शुरू किया।
7: इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में हैं, जहां पर कि एक अचानक से एक बड़ी सी इमारत जो है पत्थरों के ऊपर का जो घर था उसमें उस पर गिर गई, और अचानक से तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। दरअसल रविवार को तेज बरसात मुंबई पूरे शहर भर में हो रही थी, और मानखुर्द में भी तेज बरसात हो रही थी, और हमने देखा अक्सर ईस्टर्न सबर्ब्स में ज्यादा बरसात हो रही है इस बरसात के दौरान, पूरे मौसम के दौरान। और ये समय अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पत्रे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे, इसकी वजह से वो कंक्रीट की जो इमारत है वो, और साथ ही यहाँ पर जो झोपड़े बने थे उस पर उनको भी क्लियर कर दिया गया था, उनको लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोग निकल जाइए। लेकिन दरअसल पूरी जो परिवार है बाहर था, पूरी तेज़ बरसात भी थी, और शाम तक जब कुछ नहीं हुआ तो जो परिवार की जो महिला थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने जाएंगी। उनके 4 बच्चे और बगल के घर से एक आलिया नाम की एक बच्ची जो उनके बच्चों के साथ खेल रही थी, वो सब के सब एक साथ इस जो अपने घर के अंदर घुसे। वो घर का पत्थरों का बना हुआ था तो ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया है। जैसे ही ये कंक्रीट की इमारत गिरी वैसे ही वो सारे के सारे लोग उसके नीचे दब गए। अब परिवार में सिर्फ एक मोहम्मद मोइन करके एक इंसान है जिसका पूरा परिवार था, जो बच्चे थे, आलिया जो बगल से बच्ची आई थी वो और उसकी पत्नी, वो सब के सब जो खाना बनाने के लिए खाने के लिए अंदर घर के अंदर घुसे थे।
1: अब बात फीफा वर्ल्ड कप की बड़ी खबर की, पांच बार के चैंपियन ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से जीतकर ब्राजील को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नॉर्वे की तरफ से हालैंड ने 79वें और 90वें मिनट में दो शानदार गोल दागे, अपनी टीम को 2-0 से आगे किया था।
8: फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील का सफर समाप्त हो गया है। वर्ल्ड कप की सबसे सबसे सबसे बड़ी टीम ब्राजील, जिसने पांच बार इस टाइटल को अपने नाम किया था, अब वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नॉर्वे के साथ हुए मुकाबले में ब्राजील को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा और इसी राउंड में उनका सफर हो गया समाप्त। लेकिन इसी जीत के साथ नॉर्वे पहुंच गई आखिरी 8 में। अगर ब्राजील की बात करें, पांच बार की चैंपियन है, पहले का जमाना हमें वो याद है। और अगर हम इसके आखिरी वर्ल्ड कप टाइटल की बात करें तो 2002 में ब्राजील ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप टाइटल जीता था। लेकिन अब निराशाजनक प्रदर्शन इस साल 2026 में देखने को मिला, जिसका नतीजा हुआ कि ब्राजील अब बाहर। इसी हार के साथ नेमार, जो कि इस टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। दूसरे मुकाबले की बात अगर की जाए, वहां पर इंग्लैंड और मैक्सिको का मुकाबला हुआ था, जहां इंग्लैंड ने मैक्सिको को हराकर 3-2 से आखिरी यानी कि जो राउंड ऑफ 8 होगा वहां पर अपनी जगह बना ली है।
1: 12:12 रिपोर्टर में आप रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
13: Now in India.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
5: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
4: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
6: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: Mabi hamesha P-Mark mustard oil mein khana banati thi.
4: Kuch to baat hai is dil mein.
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
7: Money, money, money, money, every month.
8: Soch batlo aur bank bhi.
9: Papa.
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
11: हाँ।
10: ओ ला भाई मेरा बैट।
12: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
13: मेरा तो चार्ज हुआ यार।
14: ओला बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
17: हमने तब भी सवाल किया था,
18: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
17: हम आज भी सवाल करते हैं,
18: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
17: ऑपरेशन अग्नि,
18: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
17: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
19: In association with
20: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
22: शेयर बाजार ने ज्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर? अब
23: ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी लार्ज। तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, उसके पहले एक क्रैश आई थी, दैट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर बेयर मार्केट। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपये खत्म हो गए। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी मैं प्रॉफिट ले लूं। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है।
24: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमायूं कुरैशी। ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
25: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल।
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा चोरी पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार। आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर। महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नित्य गोपाल दास का बयान, कहा दान चोरी से आहत हो दोषियों को मिले कड़ी सजा, पीएम मोदी और योगी पर भरोसा है। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, उज्जैन जूनागढ़ का भी बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों पर मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्द खाक से पहले खामिनई के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें, ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम रस्म।

कहावा चोरी मामले पर महंत विनेत्र गोपाल दास का बड़ा बयान, बोले कि दान चोरी से काफी आहत हूं, जिसने भी पाप किया उसे सजा मिलनी चाहिए। महंत विनेत्र गोपाल दास ने कहा कि मुझे सीएम योगी और पीएम मोदी पर भरोसा पाप करने वाले को ढूंढ कर दिलाएंगे सजा। संसद की बैठक की शुरुआत महंत विनेत्र गोपाल दास की ओर से बैठक बुलाने के उद्देश्य की जानकारी से होगी। महंत विनेत्र गोपाल दास के अस्वस्थ होने के चलते उनके सहयोगियों की ओर से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाएगी और इसके बाद सबसे पहले चंपत राय घटनाक्रम की जानकारी सामने रखेंगे। इसके बाद चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंपेंगे। तीसरे क्रम में अनिल मिश्रा अपनी बात रखेंगे और नैतिक आधार पर इस्तीफे की पेशकश करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत विनेत्र गोपाल दास करेंगे, जिसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी समेत कई प्रमुख सदस्य होंगे। बैठक में विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य स्वामी परमानंद गिरी, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी बैठक बहुत अहम भागीदारी इसमें रहेगी, जिसमें जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, राज्य सरकार के गृह सचिव संजय प्रसाद, केंद्र सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे शामिल होंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इस बैठक में अयोध्या में नहीं आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा, आजीवन सदस्यता से भी बाहर होंगे। दोनों के इस्तीफे के स्वीकार होते ही ट्रस्ट की अंतरिम व्यवस्था भी होगी, इसमें दोनों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कामकाज की देखरेख कौन करेगा यह भी तय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा और ट्रस्टी कृष्ण मोहन की मुलाकात जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीएचपी के बजरंग लाल बांगड़ा या फिर कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस और सपा को घेरा, कहा कि दोनों को इस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 4 पिस्टल और हथियार बनाने वाला उपकरण बरामद। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर फरार हुआ कार सवार, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में अवैध भ्रूण लिंग की जांच करने वाले नेटवर्क का खुलासा, कार में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण की पहचान करते थे। इटावा में 16 दिन के बाद सुलझे अज्ञात शव की गुत्थी, पत्नी से अफेयर के चक्कर में युवक की बेरहमी से की गई हत्या, 2 गिरफ्तार।

और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष का पहला बयान सामने आ गया। महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से पहला बयान आया और इस पूरे प्रकरण पर पहली चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने सीएम योगी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का पर भरोसा जताया है, दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद जताई है। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में क्या आज राम मंदिर ट्रस्ट बड़ा फैसला कर पाएगा? क्या ट्रस्ट के सर्वे सर्वा का किरदार निभाते हुए चोरी नहीं रोक पाने के आरोपी महासचिव चंपत राय की ट्रस्ट से विदाई होगी या सबूतों के अभाव में उन्हें ट्रस्ट की बैठक में सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपसे कुछ घंटों के अंदर मिलने वाले हैं जब अयोध्या में ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी।

0: अयोध्या के राम मंदिर का वो ट्रस्ट जिसमें भारत की सरकार ने ट्रस्ट जताया था, अयोध्या मंदिर का वो ट्रस्ट जिस पर असंख्य राम भक्तों की आस्था, भक्ति, चढ़ावा, दान और चंदे की हिफाजत की कानूनी जिम्मेदारी है। अयोध्या के उस ट्रस्ट की पहली बार राम मंदिर के परिसर के अंदर बैठक होने वाली है। वैसे तो इस बैठक में सभी 14 सदस्यों को बुलाया गया है और दावा है कि पिछले दिनों अस्पताल से निकले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।
1: जय सियाराम।
2: सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है, मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे।
3: गोविंद महाराज ने सबको आमंत्रित किया है।
2: हाँ जी।
0: ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा? हर 3 महीने पर होने वाली ट्रस्ट की बैठक इस बार चढ़ावा चोरी के बड़े मुद्दे को लेकर हो रही है, जिसमें ट्रस्ट के सामने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मौजूद है। लिहाजा ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बैठक में सबसे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से ही जवाब तलब किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों से लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। बैठक में SIT की शुरुआती रिपोर्ट रखी जाएगी और मंदिर से जुड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही ट्रस्ट के ढांचे में बदलाव के साथ साथ CEO या COO तैनात करने जैसे प्रशासनिक फैसले भी हो सकते हैं। ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से खाली हुई सीट पर भी नए ट्रस्टी के मनोनयन का फैसला हो सकता है। इसके अलावा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होता है तो उन पदों पर नई तैनाती को लेकर भी विचार हो सकता है। चंपत हटे मिटे सब पीरा। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भांडा फूटा है, तभी से चंपत राय सवालों के घेरे में है, क्योंकि बतौर महासचिव चंपत राय पर ही मंदिर के चढ़ावे, दान, चंदे वगैरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उसमें नाकाम चंपत राय ने काफी दिनों तक चोरी की वारदात से ना नुकुर वाला रुख पेश किया और सातवें आसमान तक पहुंचा तो FIR दर्ज हुई और इस बीच जांच में खुलासे हुए कि चंपत राय ट्रस्ट की रूल बुक ही नहीं फॉलो कर रहे थे। मनमाने तौर पर चोरों की भर्ती खजाने की रखवाली के लिए की जा रही थी। यही वजह है कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो सबसे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट की ओर से की गई। चंपत को हटाना आसान है। चढ़ावा चोरी कांड के सामने आने के बाद जिस तरह चंपत राय पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा और इस्तीफे की खबर आई, उसके बाद से ही चंपत राय के समर्थन में बयानबाजियां भी शुरू हो गई।
4: ट्रस्ट के जो है चंपत राय जी का इस्तीफा ट्रस्टियों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे।
5: बार बार चंपत राय, बार बार चंपत राय, चंपत राय जी भाई साहब का क्या दोष है? मैं अनिल जी का नाम, मैं किसी के नाम क्यों? कई लोगों को व्यवस्था दी गई थी, पूरे ट्रस्ट के लोगों को व्यवस्था दी गई थी। मैं आप एक पर टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट मत करिए। उसमें अनिल जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी भी हैं, सब लोग हैं। मंदिर निर्माण का काम नृपेंद्र मिश्रा जी देख रहे थे, बाहर की व्यवस्था अनिल जी भाई साहब देख रहे थे, मंदिर व्यवस्था गोपाल जी देख रहे थे, तो सब जगह व्यवस्था गड़बड़ हुई है ना। बार बार चंपत राय जी को दोषी ठहराना ये गलत है।
0: साधु संतों के अलावा ट्रस्ट में वोटिंग का अधिकार रखने वाले लोग भी चंपत राय पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे। वैसे भी ट्रस्ट के हित के खिलाफ काम करने वाले को ट्रस्ट से निकालने में 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। चंपत राय को ऐसे नोटिस की खबर नहीं है। इसके अलावा ट्रस्ट के बायलॉज के मुताबिक किसी भी ट्रस्टी को हटाने का अधिकार सिर्फ ट्रस्ट के ही पास है, जिसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव मंजूर होना चाहिए और इस बहुमत का फैसला वोटिंग से होगा। लेकिन 14 लोगों के ट्रस्ट में वोटिंग का अधिकार सिर्फ 10 लोगों के पास ही है। ट्रस्ट के इन 10 में से 2 लोग खुद ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ही हैं। बाकी बचे 8 लोगों में से कुछ लोगों के बयान से चंपत राय के बचाव का रुख छलक चुका है। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि ट्रस्ट की बैठक में फौरन ही चंपत राय के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं भी हो। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: तो अब से 2.5 घंटे के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से होने वाली इस बैठक में आज क्या हो सकता है, उसका संभावित घटनाक्रम कुछ ऐसा हो सकता है। ट्रस्ट की बैठक की शुरुआत महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से बैठक बुलाने के उद्देश्य की जानकारी के साथ होगी। महंत नृत्य गोपाल दास के अस्वस्थ होने के कारण उनके सहयोगियों की ओर से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद सबसे पहले चंपत राय घटना के पूरे घटनाक्रम की जानकारी ट्रस्ट के सामने रखेंगे। चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंपेंगे। तीसरे क्रम में अनिल मिश्रा अपनी बात रखेंगे, नैतिक आधार पर इस्तीफा पेश करेंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कोष से जुड़े हुए नियमों कथित चूक पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ट्रस्ट के समक्ष अपने विचार रखेंगे। युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज अपने आगे की कार्रवाई करेंगे और फिर निर्णय को लेकर अपनी राय देंगे। फिर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी इस बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। महंत दिनेन्द्र दास और वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरन भी अपने विचार अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। फिर अंत में कृष्ण मोहन बताएंगे कि किन तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज कराएंगे। इसके बाद गोविंद गिरी की ओर से वोटिंग का प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मतदान में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा सकते हैं। दोनों पदाधिकारी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की औपचारिक पेशकश भी कर सकते हैं। बैठक में ट्रस्ट में नए सदस्यों या पदाधिकारियों के नामों पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। सचिव पद के संभावित नामों में बजरंग बांगड़ा का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। नए प्रस्तावों पर भी ट्रस्ट के द्वारा मतदान करके अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
3: सुनिए, हाँ सुनिए, मैं अभी कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं चार दिन यहाँ पर हूँ। आज रात के बाद कल परसों
7: आप तो मीडिया बहुत फ्रेंडली हैं,
3: आप
7: शामिल हो रहे हैं, बैठे बनाए हैं, हम लोग बहुत अस्तर हैं।
3: मैं
7: आप तो हम शामिल हो रहे हैं, आप लोगों के शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आप बताइए, कुछ बताइए।
3: मैं बतलाता हूँ आपको, आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। तीन दिन मैं यहाँ पर हूँ।
7: कौन कौन?
3: सुनिए, तीन दिन यहाँ पर हूँ, आपके सब के साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। बिल्कुल होगी।
8: कहाँ होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप
3: लगा? अभी बोलूंगा क्या।
7: महाराज जी, कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन?
6: ट्रस्ट और उच्च पदस्थ सूत्रों से ये भी खबरें आ रहे हैं कि ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप में बदलाव तो तय है और ये बदलाव बिना मतदान प्रक्रिया के संभव नहीं है। ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ट्रस्ट में वोटिंग का अधिकार रखते हैं, क्योंकि वोट डालने वाले 10 में से 2 सदस्य आरोपों में यानी कि कटघरे में और 5 सदस्य भी फैसला कर सकते हैं। वैसे फिलहाल इस ट्रस्ट में के पराशरन, महंत नृत्य गोपाल दास, वासुदेवानंद सरस्वती, विश्व प्रसन्न तीर्थ, गोविंद देव गिरी, महंत दिनेन्द्र, परमानंद गिरी, विमलेंद्र मिश्र जो कि जीवित नहीं, कृष्ण मोहन, चंपत राय और अनिल मिश्र, ये वो लोग हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी, राज्य के प्रतिनिधि अधिकारी और अयोध्या के जिलाधिकारी भी ट्रस्ट में हैं और हालांकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर है, ट्रस्ट ने चंपत राय की जगह नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। खबर है कि VHP ने चंपत राय की जगह VHP के ही अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा के नाम पर विचार शुरू कर दिया है। बजरंग लाल बांगड़ा को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया महासचिव चुना जा सकता है। बजरंग लाल अभी ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, लेकिन आज की बैठक से पहले ही वो अयोध्या पहुंच भी चुके हैं।
9: अरे यार,
10: क्या कहेंगे
9: बैठक के बाद में कहेंगे रे?
10: अरे यार, क्या कहेंगे
9: बैठक के बाद में कहेंगे रे?
6: बजरंग लाल बांगड़ा राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं, VHP में सक्रिय हैं और इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पहले वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद VHP के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाले, बाद में अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी बने। फरवरी 2024 में अयोध्या में ही आयोजित VHP की बैठक में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट में संभावित बदलावों में बजरंग बागड़ा के साथ साथ नीरज दौनेरिया के नाम पर भी विचार सचिव पद के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा मौजूदा ट्रस्ट के कृष्ण मोहन का नाम भी सचिव पद के संभावित दावेदारों की सूची में शामिल है। अब बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में BJP ने अपनी मोर्चेबंदी अब तेज कर दी है। 2 दिनों के लिए यूपी के दौरे पर गए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर बूथ प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात की। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के घर पर लंच से लेकर मौर्य के घर पर मुलाकात तक तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और इन तमाम मुलाकातों और लखनऊ के संवाद केंद्र में जो बैठक हुई, BJP के अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार नीति को लेकर तो गहन समीक्षा मंथन की, लेकिन बड़ी चर्चा आगामी चुनावों में गठबंधन को लेकर भी हुई है।
11: पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
12: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सहयोगी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में संजय निषाद की पार्टी हो या अपना दल की पार्टी हो या इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, सभी के साथ चर्चा हुई सीट शेयरिंग को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर। ये तो साफ है कि पहले से ज्यादा सीटों की बात भी कही गई सभी दलों के द्वारा। अब ऐसे में नितिन नवीन ने सवनम स्थापित करने के बाद जातिगत देखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसके लिए भी एक मूल मंत्र दिया है। यानी कि साफ है कि 2027 की तैयारी के लिए एनडीए के सहयोगी दलों को निराश नहीं किया जाएगा और साथ लेकर बड़ी जीत दर्ज करने की बात भी कही गई। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लखनऊ में जो घटक दलों के साथ बैठक की उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी समेत एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों के इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि सीटों को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। यूपी में गठबंधन की राजनीति की चर्चा सिर्फ एनडीए में नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन भी घटक दलों के अंदर भी गठबंधन को लेकर तमाम कोशिशें चल रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा दलित वोटों पर कब्जे की कोशिश की है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि कथित तौर पर दलित समर्थक दल से उनका गठबंधन हो जाए, दूसरी ओर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मायावती का साथ मिल जाए। नए दलित नेता होने का दावा करने वाले चंद्रशेखर के गठबंधन की कोशिशें अलग हैं, लेकिन दलित वोटों को पाले में लाने के लिए एनडीए के नई पैतरेबाजी हो रही है। एनडीए के घटक दल और बिहार में दशकों से दलित राजनीति कर रहे रामविलास पासवान के दल की ओर से यूपी में तेजी से सक्रियता दिख रही है। चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है कि बिहार के बाद अब यूपी में दलितों की आवाज और इंसाफ की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। अब इस कोशिश में एलजेपी के लखनऊ के पास में कंसा पासे किले के मामले की आवाज उठाने से लेकर धरना प्रदर्शन तक और मार्च तक की रणनीति उन्होंने बना रखी है। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर यूपी में आयोजित विशेष समारोह के मौके पर चिराग पासवान से यूपी की चुनावी राजनीति को लेकर आशीष श्रीवास्तव ने बातचीत की। चिराग ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको।
13: हमारे साथ चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। चिराग जी, 2027 का इलेक्शन है और आज यूपी में आप हैं
14: क्योंकि आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। बचपन में उनके साथ बिताए गए पल, उनके साथ व्यतीत किया गया जीवन के अलग अलग लम्हों की यादें दिमाग में कौंधती हैं, पर आज के दिन का महत्व और ज्यादा मेरे लिए तब बढ़ता है क्योंकि उनके जाने के बाद पहली बार ऐसा है कि उनका जयंती दिवस का समारोह बिहार में ना मनाते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। यकीनन राज्य का ही बिहार और देश के हर राज्य में मना रही है, पर हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश मेरे नेता के लिए क्या महत्व रखता था। उनके विचारों को जब आज आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, पार्टी का विस्तार करने की सोच रख रहा हूं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हम लोग कार्य कर।
13: सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से नितिन नवीन से बात हुई, आप तो बिहार में उनके लाइन से
14: नहीं, हम लोग केंद्र में हम लोग गठबंधन में हैं, बिहार में हम लोग गठबंधन में हैं, झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, किसी कारणवश नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा जहां पे हम लोग के दो विधायक हैं। पर ऐसे में मौजूदा स्वरूप उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो है उस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग उस स्वरूप का हिस्सा नहीं है। ऐसे में हर दल और हर गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, हम लोगों के गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा मैं मानता हूं ये फैसला राज्य इकाई को लेना है।
13: कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप, चूंकि एक दलितों के लिए के हक की बात उठा रहे हैं, आपके नेता मौजूद हैं, आपके सांसद मौजूद हैं, यहाँ पर कई मिशन के तरीके से काम चल रहा है।
14: नहीं बिल्कुल, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा नहीं होगा। जब तक हम लोग अपने जनाधार, अपनी ताकत, अपने अस्तित्व को और ज्यादा मजबूती नहीं देते, इन बातों को करने का कोई महत्व नहीं है।
13: आपका एक नारा है, क्यों मांगे हम उधार का नेता जब अपने पास है तैयार, क्या मायने हैं उसके, क्या कहना चाहते हैं?
14: देखिए, ये पार्टी के लोगों ने अपनी सोच को उस कैनवस पे उतारने का काम किया। मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर उस वंचित वर्ग की आवाज है जिसकी सुनवाई आज भी दबाने का प्रयास कई विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है, उसकी आवाज हम लोग बने।
13: क्या गठबंधन में और भी संभावना है दलों की, बसपा है या कांग्रेस है या भाजपा?
14: देखिए, मैं अपने आप को कम से कम इन दलों के साथ, इनके विचारधारा के साथ जोड़कर नहीं देख पाता, जिन्होंने भ्रष्टाचार, जिन्होंने जातिवाद, जिन्होंने सांप्रदायिकता को, भेदभाव बांटने की राजनीति को अपना आधार बनाया, कम से कम मैं इनके विचारों से सहमत नहीं हूँ।
13: क्या नारा है ब्राह्मण दल?
14: देखिए, मेरे मन से तमाम इन नारों का जिक्र मेरी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, बट मैं ये मानूंगा कि मैं यहाँ पर कोई नारा देने, कोई वादा करने नहीं आया हूँ।
13: लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया ये नया वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगले चुनाव में विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वापस वनवास जाते दिखाया जा रहा है।

0: समाजवादी पार्टी के इस वीडियो पर सरकार के नेता अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं।
1: जो गाना बजा रहे हैं ना कि राम बन गए कब आएंगे, तो जब अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे तब राम जी आ जाएंगे।
0: राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष का सुर एक है।
2: राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदूइज्म को आपने फिनिश किया।
3: ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में।
0: इस सियासत के बीच एसआईटी सूत्रों की माने तो अयोध्या में प्रतिदिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बैंक के लेन देन से जुड़े दस्तावेज और हिसाब किताब अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। अयोध्या में चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खाते में प्रतिदिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। चोरी का खुलासा होने के बाद अब प्रतिदिन जमा होने वाली राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल वही, क्या ये जांच बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? पूरी सियासत अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

चढ़ावा चोरी मामले पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर। महासचिव के रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नित्य गोपाल दास का बयान, कहा दान चोरी से आहत हूं, दोषियों को मिले कड़ी सजा। पीएम मोदी और योगी पर है भरोसा। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल से भरा पानी। रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद। मानखुर्द में मकान गिरने से 6 की मौत, उज्जैन और जूनागढ़ का भी बुरा हाल। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्दे खाक से पहले खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें। ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम संस्कार।

खामेनेई के अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब, तेहरान की सड़कें श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हैं। 4 से 9 जुलाई तक अंतिम विदाई, तेहरान, कोम, करबला, नजफ होते हुए मशहद में होगा खामेनेई का सुपुर्द दिखा। जुलूस के दौरान शोक मनाने वालों ने शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान ट्रंप की फोटो पर पत्थर फेंके। दक्षिण पश्चिमी चीन में टाइफून मेसाक के कारण हुई मूसलाधार बारिश से ग्वांगशी प्रांत के कई हिस्सों में बाढ़, बाढ़ का पानी कंस्ट्रक्शन साइट पर घुसा। पेंगचेंगगांग शहर के निचले इलाकों और निर्माण स्थलों पर बाढ़ से तबाही, कई निर्माण रिहायशी इलाके जलमग्न। चढ़ावा चोरी मामले में महेंद्र नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान, बोले दान चोरी से काफी आहत हूं, जिसने भी पाप किया उसे सजा मिलनी चाहिए। महेंद्र नृत्य गोपाल दास ने कहा, मुझे सीएम योगी और पीएम मोदी पर भरोसा, पाप करने वालों को ढूंढकर सजा देंगे। ट्रस्ट की बैठक की शुरुआत महेंद्र नृत्य गोपाल दास की ओर से बैठक बुलाने के उद्देश्य से जानकारी जारी की जाएगी। महेंद्र नृत्य गोपाल दास के अस्वस्थ होने के कारण उनके सहयोगी उनकी ओर से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सबसे पहले चंपत राय घटनाक्रम की जानकारी सामने रखेंगे। इसके बाद चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंपेंगे। तीसरे क्रम में अनिल मिश्रा अपनी बात रखेंगे और नैतिक आधार पर इस्तीफे की पेशकश करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे चालू होगी, परिसर में आयोजित की जाएगी ये बैठक। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास करेंगे, जिसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल रहेंगे। बैठक में विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य स्वामी परमानंद गिरी, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन और डॉक्टर अनिल मिश्र जैसे ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी बैठक में अहम भागीदारी रहेगी, जिसमें जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, राज्य सरकार के गृह सचिव संजय प्रसाद और केंद्र सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे शामिल होंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष उपेन्द्र मिश्रा बैठक के लिए अयोध्या नहीं आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट की पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा, आजीवन सदस्यता से बाहर होंगे दोनों। दोनों के इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट की अंतरिम व्यवस्था होगी बहाल, जिसमें इन दोनों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कामकाज की देखरेख कौन करेगा यह तय किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा और ट्रस्टी कृष्ण मोहन की मुलाकात जारी। सूत्रों के मुताबिक वीएचपी के बजरंग लाल बांगड़ा या कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सारा निशाना, कहा दोनों को इस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर रवाना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाएगी। तीनों देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने पर केंद्रित रहेगी। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का किया शिलान्यास। अडानी ग्रुप 2,500 करोड़ की लागत से तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्व ब्रिज का उद्घाटन किया, नए पुल से यातायात होगा सुगम। तूतुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आंगनवाड़ी केंद्र, आर्टिफिशियल टर्फ, क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। भारी बारिश के चलते अचानक आई जम्मू किश्तवाड़ में NH244 बंद, अधिकारी युद्ध स्तर पर मलबा और कीचड़ हटाने के काम में जुटे, अलर्ट जारी। पुणे के चाकण में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पुणे नासिक हाईवे पर लगा जाम, लोगों को करना पड़ा है दिक्कतों का सामना। चाकण में भारी बारिश के कारण एक बिल्डिंग में 80 लोग फंसे, फायर ब्रिगेड का लगातार बचाव अभियान।

मरम्मत की लगाई गुहार। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश का बड़ा असर। सावरकुंडला अमरेली स्टेट हाईवे तेज बहाव में टूटकर दो हिस्सों में बटा। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश के बीच हाईवे पर शेरों के झुंड का बेखौफ मूवमेंट। सड़क पर वन्य जीवों की मौजूदगी से दहशत का माहौल। बारिश के बीच हाईवे पर शेरों के दिखने से इलाके में अफरा तफरी और चर्चा। लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे पूरी तरह जलमग्न। पानी भरने के बाद सुबह तड़के सबवे बंद करना पड़ा। यातायात प्रभावित। उड़ीसा कटक की महानदी में तेज बहाव में दर्दनाक हादसा। तीन युवक नदी में बहे, दो को बचाया गया, एक की मौत। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नाला सुपारा पूर रेलवे स्टेशन परिसर में भारी जलभराव। जान जोखिम में डालकर स्टेशन को पहुंचने को मजबूर है लोग। आंधी तूफान के चलते एक विशाल होर्डिंग गिरने की घटना सामने आई। हादसे में कोई हताहत नहीं। यातायात प्रभावित। रुद्रप्रयाग में नकनंदा नदी ने किया विकराल रूप धारण। जलमग्न हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। चमोली में नकनंदा नदी में उफान आने के बाद नदी किनारे स्थित सभी घाट डूबे। लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। अलकनंदा में आए उफान को लेकर प्रशासन जारी की एडवाइजरी। नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। उड़ीसा के बौद्ध जिले में सलुंकी नदी में अचानक बाढ़। तेज बहाव के बीच फंसी दो महिलाएं। चार घंटे बाद सफल रेस्क्यू। उड़ीसा के संबलपुर में मॉनसून फिर सक्रिय। कई इलाकों में जलभराव के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। जैसलमेर में तेज आंधी बारिश के दौरान होटल की छत से उखड़ा सोलर पैनल। सड़क पर गुजर रही स्कूटी पर गिरने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 7 साल के बुजुर्ग की मौत। दो मासूम पोते घायल। एक गाय की गई जान। जोधपुर रेफर कर बुजुर्ग ने तोड़ा दम। भोपाल के बैसिया में हादसा। पुल पार करते समय ट्रैक्टर नदी में पलटा। ड्राइवर की बाल बाल बची जान। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। तीन गिरफ्तार। चार पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद। हापुड़ में कार सवार ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उज्जैन में 40 घंटे बाद चंबल नदी से मिला गांव के सहायक सचिव का शव। गांव का माहौल गमगीन। पिंपरी चिंचवार पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम। गांजा एमडी ब्राउन शुगर समेत 2 करोड़ का माल नष्ट। सूरत में शराब तस्करी में ऑटो चालक गिरफ्तार। शराब की 450 ज्यादा बोतलें जब्त। ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप से किया बाहर। एरलिंग हालैंड ने 2 गोल और आयरलैंड की शानदार गोलकीपिंग से नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत। हार के बाद भावुक दिखे नेमार। ब्राजील 1990 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर। ऑस्ट्रेलिया के सिर सजा महिला T20 वर्ल्ड कप का ताज। इंग्लैंड को धूल चढ़ाकर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता खिताब। लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व विजेता बनी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को दी बधाई। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे अब बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग की शादी। अभिनेता आशुतोष राणा कराएंगे देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। दिखाएंगे पूजा अनुष्ठान और सुनाएंगे पौराणिक कहानियां। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई है। सलमान खान फिल्म ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय। विकेट सनी के नाम से होगी रिलीज। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलिना जेटली की वापसी। सिस्टर निवेदिता की बायोपिक में करेंगी कमबैक। हुई इमोशनल। ओडीटी प्लेटफॉर्म से सतलुज हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का नया पोस्ट। पंजाब 95 और जसवंत सिंह कालरा का किया जिक्र। सतलुज से बोले हरभजन का सत्ता के दुरुपयोग के घाव पीढ़ियों तक रहते हैं। सच हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हरभजन सिंह ने कहा जसवंत सिंह कालरा का साहस और उनकी कहानी हमेशा याद रखी जानी चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जसवंत सिंह कालरा को श्रद्धांजलि दी। पंजाब 95 का जिक्र किया। सतलुज हटने के बाद पंजाब 95 और जसवंत सिंह कालरा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। पीओजेके में 26वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। रावला कोर्ट में ईदगाह ग्राउंड में विशाल रैली। प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद की अपील करते हुए हालात पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप पाकिस्तान ने पिछले 3 हफ्तों से खाद और दवाओं की आपूर्ति रोक दी है जिसे पूरे इलाके में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। रावलकोट में जुटी भीड़ ने नियंत्रण रेखा और मार्च करने की बात उठाई। भीड़ का जवाब था आगे बढ़ो। हालात और तनावपूर्ण हुए। झेलम वैली दादियाल और पुंछ में विरोध प्रदर्शन तेज। हम आजाद रहेंगे आजादी के नारे गूंजे। मीरपुर के दादियाल में फायरिंग की घटना। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते नाटो समिट के लिए तुर्की में होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़्या पर ग्लाइड बम से हमला। रूसी हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत। 13 लोग घायल। आज से शुरू हो जा रहा है चीन और रूस का साझा सैन्य अभ्यास। चीन के शहर किंगदाओ के पास समुद्र और हवाई क्षेत्र में दोनों देश की नौसेनाएं दिखाएंगी अपनी ताकत।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। दोनों नेता 99% मामलों में

सहमत। फ्रांस के विपक्षी नेता मरीन ले पेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, मंगलवार को कोर्ट करेगी फैसला। राहत मिलती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति मैक्रों को देगी टक्कर। वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने इमरजेंसी और आपदा प्रबंधन के लिए नई मिलिट्री यूनिट बनाने का ऐलान किया है। फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लटफेर नौवे ने पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराया। विंबल के चौथे राउंड में महिलाओं की टॉप सीड एरिना सांबालेका ने नाओमी ओसाका को हराया। जापानी खिलाड़ी ओसाका ने सेंटर कोर्ट पर 6-2, 7-6 से शानदार जीत हासिल की। डिफेंडिंग चैंपियन जेनिक सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। शानदार खेल दिखाते हुए जापानी क्वालिफायर शिंतारो मोचिज़ुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में एसी में धमाके के बाद मकान में आग लग गई। हादसा तकरीबन सुबह 10 बजे हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली इलाके के आसपास की घटना है। शुरुआती जांच माना जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से एसी में धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग पूरे घर में फैल गई। ये मकान कुछ दिन पहले प्लॉट खरीद कर बनवाया गया था, लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। दनकौर की ये घटना जहां पर आप देख रहे हैं आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, दूर तक धुएं का गुबार भी है, यानी कि पूरे के पूरे मकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अक्सर गर्मी के मौसम में एसी में शॉर्ट सर्किट होने से इसी तरह की आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये आग लगी घर में मौजूद कोई था या नहीं इस पर कोई जानकारी नहीं है। मुंबई की बात करेंगे जहां पर मॉनसून की आफत है। एमडी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने सभी नागरिकों से जरूरी काम के अलावा अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। पेड़, टूटी फूटी इमारतें, होर्डिंग्स, बिजली के खंभे और दूसरी खतरनाक जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। लोगों से कहा गया कि पेड़ों के नीचे गाड़ी पार्क ना करें, समंदर किनारे जाने से बचें। मॉनसून आने के बाद लगातार हादसों की बाढ़ आ गई है। मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला आवासीय इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे घंटों बंद रहा। विद्या ने आपसे कुछ ही देर पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
1: इस वक्त मुंबई पुणे के आसपास में और पुणे का रूरल इलाका है, वहां पर आप देख सकते हैं तेज बरसात की वजह से पूरे गांव के गांव पानी से भरा हुआ है और यही वजह है कि पूरा पानी जो है वो
0: तो जबरदस्त बारिश इस एक्सप्रेसवे पर हो रही है जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। बात पुणे की करेंगे जहां के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश से लोगों को भारी परेशानी है। सड़क पर पानी भर गया और लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। जलभराव के बीच आसमान से बादल का बरसना जारी है। वहीं भारी बारिश की वजह से मुंबई की व्यवस्था चरमरा गई है। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, ट्रेन की रफ्तार थम गई है। वसई से विरार तक लोकल लाइन पर जगह जगह जलभराव है। कुछ स्टेशन पर पटरियों पर कई फीट पानी भर गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोकल कैसे इस वक्त भरे हुए पानी के बीच रेंग रही है। वसई का ये इलाका जहां पर पटरियां तक इस भरे हुए पानी में दिखाई नहीं दे रही हैं। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल पर भी जबरदस्त बारिश का असर देखा जा सकता है। स्टेशन लगभग खाली दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही स्टेशन पर हैं। वैसे ट्रेन से ही ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया, अब आपको देश के अन्य हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं। बारिश तो तरफा त्राहिमाम है। 6 तस्वीरें आप देखिए कैसे मूसलाधार बारिश से जिंदगी पर आए संकट की ये कहानी कह रही है। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में एक ट्रैक्टर नदी में समा गया। उड़ीसा में सलुंकी नदी में अचानक सैलाब आया तो 2 महिलाओं की जान मुसीबत में फंस गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और जम्मू कश्मीर के सांवा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई।

0: लहरों से खेलना इस ट्रैक्टर चालक को किस तरह भारी पड़ गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भोपा के बैरसिया तहसील के दिल्लूद गांव की यह तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से नदी में उफान आया। ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो पानी की लहरों से ट्रैक्टर निकाल ले जाएगा, लेकिन पुल के ऊपर से बह रही पानी की लहरों की मार से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहरों में त्राहिमाम जैसी स्थिति है। हरदा जिले में 24 घंटे में हुई 107 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण माचक, सियानी, देदली, मटकुल, अजलाल और गंजाल सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां और नाले उफान पर आ गए। तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई छात्रों की परीक्षा छूट गई।
1: पानी बहुत ज्यादा है और हमारे एग्जाम्स थे और हम आ भी नहीं पा रहे थे, फिर ट्रैक्टर से निकल कर आए हैं।
2: और फिर ये पुलिस वाले अंकल ने क्या मदद की आपकी?
1: इनसे हमने बोला और उन्होंने हमारी सुन भी ली और एक ही बार में हमको छोड़ने के लिए चले।
0: मध्य प्रदेश के श्योपुर में करीब एक घंटे की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। चूड़ी मार्केट और पुल दरवाजा रोड सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सड़कें तालाब बन गईं। इस दौरान पानी में एक स्कूटी बहने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बचा लिया। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीरें ओडिशा के बौद्ध जिले की हैं। सलुंकी नदी में अचानक आई बाढ़ में दो महिलाओं की जिंदगी आफत में फंस गई। महिलाओं के बाढ़ में फंसने की खबर लगते ही स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों महिलाओं की जान बचा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। बगनाई नदी में अचानक उफान से 14 मजदूर यहां फंस गए। ये मजदूर नदी में बन रहे पुल के निर्माण कार्य से जुड़े थे और पुल के नीचे बने अस्थाई शेड में रह रहे थे। नदी के उफान में मजदूरों के फंसने की सूचना मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा की है। सांबा जिले में लगातार बारिश के बीच बसंतर नदी में अचानक उफान आ गया। पानी अचानक आया, जिस वजह से उस वक्त नदी में मौजूद एक महिला समेत पांच लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। नदी में पांच लोगों के फंसने की सूचना सांबा पुलिस को दी गई और फिर एसडीआरएफ तक बात पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने साझा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पांचों लोगों को सुरक्षित बचा लिया। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और तेज बहाव वाले इलाकों के आसपास जाने से बचें। आज तक ब्यूरो।
3: और अब आज जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की यहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हैं। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर पानी की तेज धारा आई, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर भी आ गए। हाईवे पर बस कार सब एक जगह फंस गए हैं। किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर भी मलबा आया। निर्माण कार्य में लगे वाहन मलबे में फंस गए। भारी भरकम गाड़ियों में कई फीट तक मलबा भर गया है। वाहन देखिए जहां तहां मलबे में फंस गए हैं, टायर इनके जाम हो गए हैं इसी मलबे में। अब ऐसे में से बाहर निकालना मुश्किल है। हाईवे तो दुरुस्त होना दूर की बात है, सबसे बड़ी चुनौती इन वाहनों को यहां से निकालना है। और चीन में तूफान मेसाक की वजह से हुई भारी बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन के ग्वांगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के गुईगांग में कंस्ट्रक्शन साइट पर बाढ़ आ गया। ये तूफान मेसाक शुक्रवार को दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हेनान में कहर बरपा ने पहुंचा और इस तूफान से हेनान के साथ साथ ग्वांगडोंग, गुईझोउ और हुनान प्रांत और ग्वांगशी क्षेत्र में भारी बारिश हुई। और बात जयपुर की करेंगे, जो गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंसने लगी हैं। टोंक रोड की तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये रोड धंसने के बाद कालावाड़ रोड पूरी तरह से गड्ढे में समा गई। गुर्जर की थड़ी पर भी सड़क धंसने से आसपास के लोगों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। रात को इनोवा गाड़ी इस गड्ढे में समा गई। हालांकि खड़ी वक्त एक ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
6: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
9: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
8: More top sports.
10: And he's gonna go! There's the tying goal!
8: And everything in between.
11: This game is over!
8: Upgrade now for the premium listening experience.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
2: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
4: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
5: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
6: परमिशन लेनी चाहिए ना,
5: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
7: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
5: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
8: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा छोड़ी पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक, चौपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर, महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का बयान, कहा दान चोरी से आहत हूं, दोषियों को मिले कड़ी सजा, पीएम मोदी और योगी पर है भरोसा। भयंकर बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, टनल से भरा पानी, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर्द में मकान गिरने से 6 की मौत। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। पहले खामने के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम रस्म।

0: ईरान के इतिहास में आज का दिन सबसे मायूस या सबसे ज्यादा मातम भरे दिनों में से एक है। आज आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और परंपरा को लेकर आज तीसरा दिन है। लोग गमजदा हैं, परेशान हैं और दरअसल इस मातम में डूबने या फिर इसमें शामिल होने के लिए ईरान के अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। इन लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। 28 तारीख को जो स्ट्राइक्स की गई थी उसमें उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, लेकिन अपनी संवेदना, अपना प्यार दर्ज कराने के लिए या दिखाने के लिए ये लोग यहाँ तेहरान की सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं। इस समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर, जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहाँ पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। लगातार जो सैंक्शन ईरान पर लगाए गए थे, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को मारा गया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं मिनाब का इंसिडेंस हुआ, उसने ईरान को जरूर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ईरान एक बार फिर से मजबूत है, एक साथ खड़ा है। इस समय तेहरान के आजादी स्क्वायर के बिल्कुल करीब है और यहाँ से अभी उनके पार्थिव शरीर को आगे ले जाया गया है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि लोग खासतौर पर उनके साथ साथ उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और आजादी स्क्वायर की तरफ आगे रुख कर रहे हैं। अभी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट है और एक नया सिंबल है, इसी को क्रॉस करते हुए लोग यहाँ से आजादी स्क्वायर के ठीक आगे बढ़ रहे हैं। इस समय आज तक की टीम अकेली ऐसी टीम है जो यहाँ पर मौजूद है, आपको वर्ल्ड रिपोर्ट पहुंचा रही है, आपको बता रही है कि पिछले तीन दिनों में आखिरकार ईरान के इतिहास में सबसे बड़े, आप कह सकते हैं एक मातम या फिर एक बड़ी घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग इस समय तेहरान की सड़कों पर है। हर एक तस्वीर, हर एक पिक्चर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, जहां पर अब उनके पार्थिव शरीर को अब ग्रैंड मसल्ला से आगे आजादी स्क्वायर ले जाया जा रहा है और इसके बाद कहा जा रहा है कि कल सुबह उनको कुंभ के लिए उनके पार्थिव शरीर को कुंभ ले जाया जाएगा। लेकिन आप तैयारियां देखें और आपको हर तरफ इस समय ईरान के झंडे और ऐसे झंडे या फिर ऐसे फ्लैग नजर आ जाएंगे जो कहते हैं कि हमको लड़ना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, और शायद इसी वजह से ईरान के लोग ज्यादा यहां पर एकजुट नजर आ रहे हैं।
1: दिवंगत सर्वोच्च नेता के गम में डूबा ईरान, पूरा ईरान रो रहा है, गम का समंदर उमड़ा है। तेहरान की सड़कों पर मातम है, खामनेई के लिए बेहिसाब गम है। ईरान के लिए ये बेहद भारी पल है। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी, अमेरिकी हमले में उनकी जान चली गई थी, अब उन्हें दफनाए जाने की तैयारी है। सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान गमगीन है। सदमा ऐसा है कि हर किसी की आंखें नम है और जुबां पर जबरदस्त गुस्सा। आज सुबह से तेहरान में मानो पूरा ईरान उमड़ पड़ा है। अपने दिवंगत नेता को आखिरी विदाई देने के लिए हर कोई तेहरान पहुंचा है या पहुंचना चाहता है।
0: 70-80 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और आज भी लोगों का आना उसी तरीके से जारी है। ईरान के अंदर अभी मौजूदा हालात ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ ईरान से बल्कि कई और देशों से भी यहाँ पहुँचे हैं। कल भी कई फ्लाइट थी जो लगातार यहाँ पहुँची थी, लैंड किया था और लोग लगातार इन आप कह सकते जो अंतिम संस्कार देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार ग्रैंड मसल्ला पहुँच रहे हैं। अभी के ताज़ा हालातों में अगर आप देखें, अभी चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और धीरे धीरे जैसे दिन बीतेगा ये भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है।
1: तेहरान में आज आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा निकली है। ग्रैंड मुसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर तक मातम में डूबे लोग बस अंतिम विदाई की एक झलक पाना चाहते हैं। आज इस अंतिम यात्रा की शुरुआत ईरान के समय के अनुसार सुबह 6 बजे ही हो गई। तब से अब तक इस अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों का तांता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 जुलाई को पहली बार आयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा सभी के सामने लाया गया। ये ईरान के लिए बेहद भारी पल था। तब से अब तक तेहरान में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। 4 और 5 जुलाई को वहां ग्रैंड मुसल्ला में शोक सभा आयोजित की गई। अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचे। ईरान के कोने कोने से भीड़ खींची चली आई। ये तस्वीरें उसी इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला की हैं, जहां अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने अंतिम यात्रा में शिरकत की है। पूरा देश पूर्व सर्वोच्च नेता के ताबूत को एक बार निहार लेना चाहता है, अपना सलाम देना चाहता है और संकट की इस घड़ी में ईरान के लिए एकजुटता दिखाना चाहता है। इसी चाहत की वजह से पूरे तेहरान में काली पोशाक पहने लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है और आज के दिन तेहरान में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने दिवंगत नेता को अश्रुपूर्ण विदाई देने पहुंचे हैं। हालात को संभालने के लिए यहां स्क्रीन भी लगाई गई है,
0: लेकिन अगर आप देखें जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए स्क्रीन लगाई गई है। और अगर आप देखें स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर उस नमाज को अदा किया जा रहा है। ग्रैंड मसल्ला से लाइव तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही हैं और लोग यहां पर उसी नमाज को अदा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, गमजदा हैं, चाहे वो महिलाएँ हों, बच्चे हों या फिर पुरुष। और देखिए अब नमाज अदा करने के बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ग्रैंड मसल्ला की तरफ जाएंगे।
1: ईरान में राष्ट्रीय शोक है। आज पूरे मुल्क में अंतिम यात्रा को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी गई है। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है। और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है, तो इस सिम्बॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है। दरअसल आजादी स्क्वायर अपने आप में एक बड़ा सिम्बॉलिक, आप उनके ईरानियन रेवोल्यूशन के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। और शायद इसीलिए, क्योंकि उनके इसी हाथ को उनकी पहचान के तौर पर देखा जाता था। आपको याद होगा कि जब उनको 28 फरवरी को मारा गया, एयर स्ट्राइक की गई, तब उनके हाथ की वजह से, उनकी अंगूठी की वजह से ही उनकी पहचान की गई थी, उनके पार्थिव शरीर की। और शायद अब उसी को उनकी पहचान, उनकी सिंबॉलिक या फिर उनकी ताकत मान लिया गया है। और आज तेहरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आजादी स्क्वायर पर इस बड़े आप कह सकते हैं सिंबल को हमेशा के लिए यहाँ पर प्लेस किया गया है। और ये कहा जाता है कि अगले पिछले 3 से 4 दिनों में ही इसको तैयार किया गया है, 4 दिनों के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको बनाया गया है। और ये इसलिए एक तरीके का संदेश है खासतौर पर अमेरिका और इसराइल को कि अब कि ईरान के लोग जो हैं एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, वो लगातार इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो अब ऐसे लगातार इन ताकतों के खिलाफ अपने इंसाफ के लिए, अपनी अपने देश को बचाने के लिए, अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए एकजुट खड़े हैं। पूरा देश इस समय अपने सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर या फिर यहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन अब भी उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई अब भी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। दरअसल उनको सार्वजनिक रूप से अब तक किसी ने नहीं देखा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी सुरक्षा। दरअसल ये माना जा रहा है कि अगर वो सामने आए तो फिर उनको कभी भी टारगेट या मारा जा सकता है। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो अपने वालिद के जनाजे में या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो रहे हैं।

0: आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। 9 जुलाई को उन्हें दफनाए जाने के साथ ही इसका समापन होगा। ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उससे पहले तेहरान में आज अंतिम यात्रा जारी है। तेहरान के बाद 7 जुलाई को कुम शहर में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 8 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को इराक ले जाया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब देश की सीमा से बाहर दूसरे देश में ईरान के किसी सर्वोच्च नेता की अंतिम यात्रा निकलेगी, जहां नजफ और करबला में अंतिम यात्रा की तैयारी है। 9 जुलाई को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान मानो टूट सा गया है। हर आम और खास अपने दिवंगत नेता की याद में फूट फूट कर रो रहा है। एक दिन पहले तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए ईरान की पूरी लीडरशिप पहुंची। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्रद्धांजलि दी, स्पीकर गलिबाफ और विदेश मंत्री अराल्ची ने भी नमन किया। रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी भी मौजूद रहे। आयतुल्लाह अली खामनेई के 3 बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने भी शिरकत की, लेकिन एक चेहरा नजर नहीं आया। इसमें ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर और आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा अंतिम दर्शन में नहीं पहुंचे। मुस्तफा खामनेई इस कार्यक्रम से दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा खामनेई सुरक्षा वजहों से संस्कार में शामिल नहीं हुए। खबरों के मुताबिक अन्य कार्यक्रमों से भी वो दूर रहेंगे, ताकि किसी तरह की सुरक्षा चूक न हो। अमेरिका और इसराइल की ओर से लगातार मुस्तफा खामनेई की जान को खतरा है। 28 फरवरी के बाद से वो अब तक सामने नहीं आए। युद्ध के दौरान एक दो मौकों पर उनका बयान जरूर आया, लेकिन वो अब तक सेफ जोन में ही रहे हैं। अब आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच भी खतरा टला नहीं है, लिहाजा सुरक्षा अधिकारी चिंतित हैं कि मुस्तफा खामनेई की कोई भी जानकारी सार्वजनिक हुई तो उनकी हत्या हो सकती है।
1: के साथ उनके पार्थिव शरीर के पीछे चलेंगे। वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का दायरा बनाया गया है, जिसमें ग्रैंड मसल्ला से वली स्क्वायर, वली स्क्वायर से उसके बाद आज़ादी स्क्वायर तक जाएगा, और उसके बाद आज़ादी स्क्वायर पे ले जाने के बाद वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कुम ले जाया जाएगा, जो कल वहाँ पर फिर इसी तरीके का कार्यक्रम होगा। कुम के बाद फिर कल उनको पूरे दिन कुम में आप कह सकते हैं उनके अंतिम संस्कार की यात्रा निकाली जाएगी, और फिर उनको इराक के नजफ और करबला ले जाया जाएगा, और फिर आखिरी में मसद यानी 9 तारीख को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
0: 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया गया। वो खामनेई के दूसरे बेटे हैं, जिनका ईरान में जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। ऐसे में ईरान मुस्तफा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, लिहाजा शोक की इस घड़ी में भी मुस्तफा तमाम कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सुप्रीम लीडर कोई इंडिविजुअल नहीं, सुप्रीम लीडर एक इंस्टीट्यूशन है, और शायद यही इस समय यहाँ के एसोसिएशन में समझाने के लिए अपने यूथ को कोशिश भी की जा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर युवाओं को ऐसी किताबें, ऐसी लिटरेचर या फिर ऐसे बुक्स दी जा रही हैं जिनमें उनके तमाम सुप्रीम लीडर्स के बारे में जिक्र है। चाहे वो आप सबसे पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब की बात कर लीजिए, फिर अली खामनेई की साहब की बात कर लीजिए, और फिर अब मुस्तफा खामनेई, जो अब सुप्रीम लीडर के एक नए चेहरे हैं। यानी हर किसी के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने समाज के लिए कहां तक वो काम करते रहे, ये सारी जानकारियां दी जा रही है। उनके पोस्टकार्ड भी ऐसे साझा किए जाते हैं जिसमें जो बच्चे हैं खासतौर पे उनको दिए जा रहे हैं। अगर आप देखें यहां पर कुछ बच्चे हैं जो उनको खरीद रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, और शायद यही ईरान चाहता था। ईरान हमेशा से चाहता था कि अमेरिका और इसराइल जो आप कह सकते हैं एजेंडा या फिर जो प्रोपेगेंडा लगातार ईरान के खिलाफ, उनके सुप्रीम लीडर के खिलाफ, उनके रिजिम के खिलाफ फैला रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए एक मौका शायद अमेरिका और इसराइल ने इस समय ईरान को दे दिया। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि देखिए उनके सेक्रीफाइस को यानी उनकी किले को यहाँ पर ईरान में शहादत के तौर पर जिक्र किया जाता है, और शायद इसी शहादत के बेसिस पर वो अपने यूथ को समझाने और अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ ईरान के लोगों की आंखें नम है, लोग लगातार इस मातम के साए में या मातम के अंदर बहुत ज़्यादा गमगीन है, लेकिन गुस्सा, नाराज़गी या आक्रोश भी उतना ही है, और ये गुस्सा, आक्रोश, नाराज़गी है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। दरअसल उनके लीडर को या उनके सुप्रीम लीडर को मारे जाने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसी वजह से इन सड़कों पर हर जगह पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश दिख भी रहा है। लेकिन वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रुके, वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जो ईरान के लोगों को, ईरान को और ज़्यादा भड़काने वाला है।

0: पूरा ईरान अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहा है। मुल्क सदमे में डूबा है, लेकिन सवाल सुरक्षा का भी है। लंबी लड़ाई के बाद ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। युद्ध विराम थम चुका है, लेकिन एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला नहीं रुका। जब ईरान शोक में डूबा है और अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहा है, उस वक्त भी जुबानी जंग तेज है। ये तेहरान की तस्वीरें देखिए। पूरा ईरान एक आवाज में अमेरिका के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी, अभी भी इसका गुस्सा ईरान के लोगों में है। अंतिम यात्रा में पहुंचे लोग डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। तेहरान में आयोजित एक शोक कार्यक्रम के दौरान एक ईरानी कवि मोहम्मद रसौली का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने अपनी पंक्तियों के जरिए ट्रंप के खिलाफ आग उगला।
1: اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست
0: ایران میں ابھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست غصہ ہے ہر شخص اپنا غصہ جتا رہا ہے उधर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ पर ट्रंप ने बयान दिया। कहा कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में कुछ ईरानियों को रोते हुए देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि लोग आयतुल्लाह अली खामनेई से नफरत करते हैं, लेकिन कुछ सोचने के बाद ट्रंप ने कहा कि शायद ये आंसू असली नहीं। बात यही नहीं रुकी, ट्रंप ने एक बार फिर धमकी भरे अंदाज में कह दिया कि अमेरिका अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए ईरान के नेताओं पर हमला कर सकता है। समाचार एजेंसी एक्सियोस की माने तो ट्रंप ने कहा है कि एक शॉट और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई मौका नहीं बचेगा। ऐसी बयानबाजी के बीच ईरान में आज जबरदस्त सुरक्षा है। लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अंतिम संस्कार को देखते हुए सेना और पुलिस की भी भारी तैनाती की गई है। तेहरान नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। दुनिया के कई देशों का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा है। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ ईरान में पहुंचे थे। इसमें भारत का प्रतिनिधिमंडल भी था और कई नेता भी थे। इसमें महबूबा मुफ्ती भी थी जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है। उनसे मैंने खास बातचीत की है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
3: हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी, मैम भी मौजूद है। मैम खुद यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई थी। भारत की संस्कृति या सभ्यता के साथ ईरान का जो जुड़ाव रहा है, सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पहुंची थी। मैम आपका ये विजिट पहला विजिट था ईरान का, क्या कुछ रहा आपका, क्योंकि आप 2 से 3 दिन तक लगातार ईरान में मौजूद रहे, ईरान के साथ एक जुड़ाव रहा है भारत का, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
4: आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था और बहुत ही दुखी था, बिकॉज आपने देखा ईरान के लोग बहुत गमजदा हैं, मौन कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि जो इमाम खामनेई साहब की जो शहादत हुई है, उसने न सिर्फ ईरान को इकट्ठा किया, जोड़ के रखा, बल्कि जो पूरी जो दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको भी एक साथ लाया और लोगों को, यहाँ के लोगों को उनकी शहादत ने इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने अमेरिका जैसा सुपर पावर उसको घुटनों पे लाया और दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर या कोई बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप में डिटर्मिनेशन होगा, रिजिलियंस होगा, तो आप बहादुरी से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। एंड दैट्स समथिंग यू नो, मुझे लगता है पूरी दुनिया में और हमको भी सीखना चाहिए कि अगर आप किसी भी मुश्किल मुकाम जो अगर आप आ सकती है तो आपका हिम्मत से अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो जीत ज़रूर आपकी होगी।
3: मैम एक और बात, क्योंकि आपने क्योंकि अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के तमाम देशों के लिए अलग अलग रहता है और ख़ासतौर पर भारत के लिए भी जो दोस्ती थी वो टूट गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा कड़ा रुख उन्होंने अपनाया। ईरान का एग्जाम्पल आपने सेट किया, क्या भारत को भी कुछ स्टैंड ईरान की तरह लेना चाहिए, खासतौर पर जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं अमेरिका को हैंडल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को करना चाहिए अभी मौजूदा हालात में?
4: मैं समझती हूँ ईरान हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है, साइज़ में भी, आबादी के हिसाब से भी। हमारा जो मुल्क इंडिया है वो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना ज़्यादा मैन पावर है, हमारा मार्केट इतना बड़ा है, तो हम उसका शायद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक जगह खड़ा कर दिया, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है हमारे मुल्क के पास, तो हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं अमेरिका के सामने? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी रह गई है।
5: ईरान की राजधानी तेहरान से इस लाइव बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरें और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
10: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
11: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
10: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
11: They score!
10: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: पीमाक, the mustard specialist since 1933.

0: माटी का शरीर, माटी की सांसें, माटी की उड़ान, माटी की पांखें, माटी का मेला, माटी का खेला, माटी में मिल गई माटी की बिटिया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई नहीं रही। वे 70 साल के थे। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे।
1: वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: तीजनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को गीत के जरिए सुनाने की अद्भुत कला थी उनमें।
2: आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सब के आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से, एक समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था।
0: तीजन बाई ने पंडवानी की कापालिक शैली को अपनाया। देश विदेश में उनके कार्यक्रम खासा पसंद किए गए। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। तीजन बाई ने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। देश उनकी कला को और तीजन बाई को सदैव याद रखेगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

चढ़ावा मामले पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन रहेंगे ट्रस्ट से बाहर। महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का बयान, कहा दान चोरी से आहत हूं, दोषियों को मिले कड़ी सजा, पीएम मोदी और योगी पर है भरोसा।

एक्सप्रेसवे बंद, टनल में भरा पानी, रेलवे रूट पर लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। आज से 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम। सुपुर्द-ए-खाक से पहले खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ लोगों से पटी सड़कें, ट्रंप के खिलाफ नारे से गूंजा ईरान का आसमान, 9 जुलाई को अंतिम रस्म।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक आंदोलन चले, जिस राम मंदिर ने देश में हिंदुत्व को नई धार, नई रफ्तार, नई परिभाषा दी, जिस राम मंदिर ने देश की सियासत की दिशा बदल दी, वही राम मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो एक नए विवाद के भंवर में फंस गया। राम मंदिर में आस्था और भक्ति से चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी की खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले अब बड़ी खबर आ रही है। आज की जो कार्रवाई है उसके अनुसार इस्तीफे चंपत राय के खासकर स्वीकार होने और उससे बढ़कर यह देखना है कि क्या आजीवन ट्रस्ट के कामकाज से, ट्रस्ट से दूर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय का जाना तय है, अनिल मिश्रा की भी विदाई तय है, लेकिन क्या इसके आगे कदम उठाए जाएंगे ये अभी देखना होगा। इस पूरे मामले में पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि चढ़ावे जैसे पवित्र राम धन में भी सेंधमारी हो सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे कि चंदे की चोरी होती रही और जिस राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर प्रबंधन का जिम्मा था वो कुंभकर्णी नींद सोता रहा। अब तो इस मामले में SIT की रिपोर्ट आ चुकी है, FIR हो चुकी है, चंद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इतने भर से ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अब से तकरीबन एक घंटे बाद ट्रस्ट की बैठक हो रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर ट्रस्ट का फैसला आना है और इससे भी बढ़कर ट्रस्ट को ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना है कि भविष्य में राम धन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रस्ट की बैठक में महासचिव पद के लिए बजरंग बागड़ा का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। महासचिव पद पर अंतिम निर्णय के लिए अगले महीने अलग से ट्रस्ट की बैठक बुलाए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में था, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और इसीलिए अब बजरंग बागड़ा ट्रस्ट के महासचिव बन सकते हैं। उनका नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, ट्रस्ट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। सीधे पहले हम कुमार अभिषेक के पास चलते हैं जो कि अयोध्या में इस समय मौजूद हैं। अभिषेक, किस तरह की अभी तक आपको सुगबुगाहट लग रही है? ट्रस्ट को भी मालूम है कि अगर भरोसा वापस कायम करना है तो कदम ऐसा उठाना होगा जो एक मिसाल बने।
1: बिल्कुल श्वेता, जो ट्रस्ट की अभी 3 बजे बैठक शुरू होने वाली है उसके में मैं कहूं कि कोई एकमात्र एजेंडा है, हालांकि कई और भी हैं, लेकिन एकमात्र एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा है। तो ये तो आप मान लीजिए, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी है इनका इस्तीफा होना तय है। इनके इस्तीफे के साथ ही जो एक बात चलती है कि क्या वो आजीवन सदस्य रहेंगे, ट्रस्ट में रहेंगे, तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब वो ट्रस्ट में नहीं रहेंगे। तो आज इस इस्तीफे के साथ ही जो जानकारी आ रही है, चंपत राय का ट्रस्ट से संबंध खत्म हो जाएगा। नए लोग आएंगे, कौन आएंगे ये बाद की बात होगी, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है। कई ऐसे नाम पहले से हैं ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं, गोपाल मोहन की बात कर ली जाए जो कि जिन्होंने FIR किया था, इसके अलावा गोविंद गिरी महाराज हैं वो पहले से हैं, इनफैक्ट उनके नेतृत्व में ही आज का ये बैठक हो रही है। ज्यादातर लोग यहाँ आने के बजाय ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, जिसमें नृपेंद्र मिश्र भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आप देखें तो चाहे होम सेक्रेटरी हो, उनके बारे में भी है कि वो भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही इस मीटिंग में जुड़ेंगे और गोविंद देवगिरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बात जरूर है कि चंपत राय अपनी बात वहां पर कहेंगे, लेकिन ये एक औपचारिकता मात्र रह गया है कि अब उनका इस्तीफा स्वीकार हो। बाकी ये कहा जा रहा है कि SIT की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इसे बड़े तौर पर इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नाम पिछले काफी समय से यहाँ वो लोग डेरा जमाए बैठे हैं, और इस ट्रस्ट को आगे किस तरीके से ले जाया जाए, कौन कौन नाम हो जो इसको चलाएं, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में इस वक्त चूंकि आज का मेन एजेंडा जो है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा है, तो उससे इतर कौन कौन आने वाले वक्त में होंगे इस पर अभी आगे चर्चा होगी। श्वेता
0: अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ आशुतोष जी इस समय मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, परवेश चौधरी उसके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ में कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा की मुलाकात हुई है। इसके बाद गोविंद देवगिरी ने चढ़ावा चोरी मामले में शिकायतकर्ता कृष्ण मोहन से भी मुलाकात की है। क्योंकि अब पूरे ट्रस्ट के भीतर नए पदाधिकारियों को हम देख सकते हैं, उस लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम हो सकती है।
2: सुनिए, हाँ सुनिए।

0: शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं, आप बताइए कुछ बताइए।
1: मैं बतलाता हूँ आपको, आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा।
0: बिल्कुल,
1: तीन दिन मैं यहाँ पर हूँ।
0: कौन कौन शामिल?
1: सुनिए, तीन दिन यहाँ पर हूँ, आपके सब के साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। बिल्कुल होगी।
2: कहाँ पर होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा? जो आरोप लगा
1: अभी बोलूंगा क्या।
0: महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन?
3: तो पहले नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ ये बैठक होनी थी, लेकिन अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए ये बैठक अब जो ट्रस्ट का दफ्तर है लगा हुआ है राम मंदिर से। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मंदिर के शिला पूजन से लेकर जब भूमि पूजन से लेकर यहां तक कि उसके शिखर पर जब ध्वज लहराया गया, एक एक पल इस देश में बहुत कौतूहल, बहुत उत्सुकता, बहुत श्रद्धा के साथ देखा गया। आज का ये दिन भी आया जब जितने भी लोग हैं इस पूरे मामले को आज आस्था को ठेस पहुंचने के कारण देख रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या परिवर्तन आप देखना चाहेंगे, क्या एक्शन आप देखना चाहेंगे आज ट्रस्ट की इस बैठक के साथ?
4: दोनों चीज। सबसे पहले तो जो लोग ट्रस्ट हैं, जिन्होंने ये चढ़ावा चोरी की, ये दान चोरी की है, जितने भी लपेटे में, पूरे ट्रस्ट को भंग करके इन पे कार्रवाई होना चाहिए, फिर दूसरा ट्रस्ट बनना चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो मतलब क्या निकलेगा? जिस कमेटी का, जिस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष जो है, जिसको मालूम ही नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ छोटी छोटी कमेटी होती है, संविधान हमारे यहाँ भारत के संविधान है, यदि कोई कमेटी बनेगी, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। यदि पैसा जमा निकालने का बैंक का खाता होता है तो उसमें कोषाध्यक्ष तो होता ही है, उसमें चाहे अध्यक्ष जुड़ जाए और चाहे महासचिव जुड़ जाए। पर यहाँ तो देखिए, इतने बड़ा मामला है, इसमें कोषाध्यक्ष महोदय को कुछ नहीं पता है कि कैसे पैसा आ रहा, कैसे जा रहा। इसका मतलब है ये सब रबर स्टैंप है, ये केवल रबर जो है स्टैंप, ये सील लगा देते, इनका कोई काम नहीं था। फिर करता कौन था? चंपत राय, और चंपत राय का जो मूल मामला है, इनको बचाया जा रहा है, ये हमारा कहना है, संतों का कहना है, इनको बचाया ना जाए, इनको सख्ती से पूछताछ हो, इन्हें जेल में किया जाए, क्योंकि सारी अहम भूमिका चंपत राय और ये जो गोविंद गिरी है कोषाध्यक्ष है, ये भग नहीं सकते। और ट्रस्ट बनाइएगा, मैं नहीं कहता हूं ट्रस्ट नया बनना चाहिए, पर पुराने को, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं इन पर कड़ी कार्रवाई हो, और जो बुलडोजर, यदि इन पर सजा भी हो और इन पर बुलडोजर भी चले, इनके मकान में बुलडोजर चलना चाहिए, दोबारा कभी हिम्मत ना पड़े। आज कौन दो रुपए डालेगा हमारे मंदिरों में, हमारे सनातन के मंदिरों में कौन दो रुपए डालेगा? भारत में कितने मंदिर है? ये राम मंदिर के लोग सीख लेंगे कि अब पैसा नहीं देंगे। हमारे संतों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं, लाखों लाखों रुपए दिए, सोना चांदी नाना प्रकार के दिया, कौन खा गया? मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया है, तो माननीय मोदी जी को चाहिए कि दूध का दूध पानी करे, सीबीआई की जांच कराए। और रहा सवाल योगी जी, तो योगी जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा, जब चंपत राय अंदर नहीं होंगे, पूछताछ कड़ी नहीं होगी, तो कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा? हमें विश्वास नहीं है।
3: परवीर जी, बहुत बहुत आसान होता है कभी भी जब धर्म का मामला होता है, एक छोटी सी चीज होती है और उसे एक स्टीरियोटाइप के तौर पर देख लिया जाता है। यहां पर तो छोटी चीज भी नहीं हुई, यहां पर तो देखिए किस स्तर पर यह चलता रहा। यानी कि अगर लोगों का भरोसा वापस बहाल करना है तो आज की इस ट्रस्ट की बैठक पे कोई बहुत बड़ा फैसला निकलना बहुत आवश्यक है।
5: बिल्कुल श्वेता जी, देश का हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद दोनों ही, हम एक ही हैं। हम सबकी अपेक्षा है ट्रस्ट में, न्यास में क्या होता है, न्यास के द्वारा क्या निकाला जाता है, क्या निर्णय आता है। जैसे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपसे अलग नहीं है। आप देखिए, जब हिंदू समाज ने प्रश्न खड़ा करा कि अयोध्या जी के राम मंदिर में कुछ मामला आया इस प्रकार का, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका तय करी और उसके लिए प्रश्न खड़े करे। हमने मांग करी, SIT की मांग करी, हमने FIR की मांग करी, हमने जांच की मांग करी। और श्वेता जी, जिस भी स्तर की जांच कराने की इच्छा हमारे पूज्य संत जी रखते हैं या हिंदू समाज के और लोग रखते हैं, ऐसी सारी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं कि राम के साथ जो द्रोह करता है वो फिर तो देश दो हर किसी से द्रोह कर सकता है, वो इस समाज का नहीं हो सकता। कि समाज के काम

0: नहीं, हिंदू
1: लोगों के,
0: समाज किस
1: परवेश जी
0: काम
1: इस
0: का नहीं
1: बात
0: है
1: को आप
0: कि
1: मानेंगे ना कि
0: वाम फ्लो
1: लोगों
0: ही
1: के
0: हो
1: मन
0: जाए।
1: में, लोगों के मन में एक चिंता यह हो जाती है कि बड़े नाम को भाई कौन छुएगा, कौन उंगली उठाएगा और कौन हाथ रखेगा कि भाई इसको हटाओ। अब लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि इस्तीफा हुआ है, आज स्वीकार होगा कि नहीं। मतलब यही चीज अब 8 लोगों की, जब को जब धरा गया, जब पूरी SIT जांच हुई। मैं ये नहीं कहती हूं कि जांच से पहले आप किसी को दोषी करार दें, लेकिन अगर हम उस विश्वसनीयता की बात करते हैं तो क्या ट्रस्ट की ओर से एक्शन पहले नहीं होना चाहिए था कि आज आप सोचेंगे कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है और हम उस पर निर्णय लें और लोग इंतजार करें कि क्या निर्णय किसके हक में होगा।
0: श्वेता जी, न्यास, जब कोई न्यास बनता है तो उसकी प्रक्रिया भी तय होती है ना, उसके क्लोजेस भी होते हैं, उसके उसका अपना एक कानून बनता है, एक संविधान बनता है, जो भारत के संविधान, भारत की कानून व्यवस्था और जो सोसाइटी एक्ट होता है उसके तहत ही बनता है। तो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई इस्तीफा देता है, फिर उसको बुलाया जाता है, उससे चर्चा की जा सक की जाती है, उसके बाद फिर सामूहिकता में निर्णय लिया जाता है। एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए श्वेता जी, मेरे और आपके कहने से ना कोई अपराधी होता है, ना मेरे और आपके कहने से कुछ और होता है। हम तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून के हिसाब से अगर कोई कानून साबित करता है कि चंपत राय जी या और व्यक्ति जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके पास भी चीजें निकली हैं, लेकिन उनको भी जो है न्याय व्यवस्था में जाने का अधिकार है, उनके लिए भी वकील खड़ा होगा, वो भी बात करेगा। तो श्वेता जी, कानून व्यवस्था से, कानून के हिसाब से देश चलता है। हम ये मानते हैं कि हम बिना किसी निर्णय के किसी को अपराधी ना घोषित करें, किसी को कुछ ना करें। और चंपत जी जैसे व्यक्ति को, जिसने श्वेता जी अपने जीवन के 40-42 साल केवल राम जी के काज में लगा दिया, राम मंदिर में लगा दिया। हाँ, हम मानते हैं कि चूक हुई है न्यास से, वो चंपत राय जी से भी चूक हो सकती है, जिसमें उन्होंने लोगों पर विश्वास किया और लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, यही तो है। और तो उसमें क्या दिख रहा है स्पष्टता, जिस प्रकार से टुन्नू और तमाम मिश्रा और ये तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए हैं, ये विश्वास का ही तो खेल है सारा। श्वेता जी, आपने किसी में विश्वास किया गरीबी देख करके, उसकी परेशानी देख करके, और बाद में उसने आपको डिच कर दिया, और ये सारी चीजें
1: बड़ा
0: सामने आई, तो अब सब पकड़े तो जा रहे हैं ना। और आप देखिए श्वेता जी, किसी व्यक्ति ने अपने ही ऊपर SIT की मांग करी है क्या? ये चंपत राय जी ने
1: लेकिन
0: मांग करी,
1: जी
0: अपने ही
1: परवेश जी,
0: ऊपर
1: लेकिन
0: SIT की
1: विडंबना
0: मांग कर दी।
1: विडंबना ये है ना कि ट्रस्ट का न मतलब भी भरोसा ही होता है। आज ट्रस्ट को, उस
0: देखिए
1: भरोसे को दोबारा बहाल करना, आशुतोष जी आपकी आपकी राय इस पर।
2: मुझे तो इस बात को लेकर बड़ी हैरानी हो रही कि अभी भी चंपत राय का खुला समर्थन किया जा रहा। इतनी बड़ी चोरी हो गई और उसमें चंपत राय जी का कोई रोल ही नहीं है, खुलेआम चंपत राय जी को डिफेंड किया जा रहा है। ऐसे में कैसे ये मान लिया जाए कि इस चोरी में जो लोग पूरी तरीके से लिप्त हैं उन तक कानून पहुंचेगा? और दूसरी बात जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्या राम मंदिर का ट्रस्ट विश्व हिंदू परिषद की निजी संपत्ति है? क्या वो संघ परिवार की निजी संपत्ति है या वो राम भक्तों का है, हिंदू समाज का है? ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। अगर चंपत राय जी को हटा के अब आप फिर विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति को लाके बना रहे, इसका मतलब विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहता है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि राम मंदिर अब राष्ट्र को समर्पित है, हिंदू समाज को समर्पित है, और उसको संचालन, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी शुद्ध तौर पर प्रोफेशनल लोगों की होगी, जो किसी संगठन के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ना वो विश्व हिंदू परिषद के प्रति जवाबदेह होंगे, ना वो RSS के प्रति जवाबदेह होंगे, ना जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे, ना केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे, वो सिर्फ हिंदू समाज के प्रति जवाबदेह होंगे। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती है तब तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज चंपत राय को बचाया जा रहा, कल किसी और को बचाया जाएगा, परसों किसी और को बचाया जाएगा, क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा। 2020-21 में महिपाल सिंह ने कहा कि इसमें चोरी हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कहा कि जमीनों का घोटाला हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बनाई, SIT की रिपोर्ट का आज तक किसी को मालूम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। अब तिबारा ये मामला हुआ है और ये तीनों चीजें चंपत राय की मौजूदगी में हुई हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा भाई? ट्रस्ट का एक इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि ट्रस्ट के कोई लोग नहीं बोल रहे, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? तो कहीं और से संचालित हो रहे हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक चंपत राय के खिलाफ किसी तरीके की FIR दर्ज नहीं हुई, अनिल मिश्रा के खिलाफ किसी तरीके की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो साफ है कि छोटे छोटे मोहरों को, जो बेचारे प्यादे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको सजा मिल जाएगी। जो बड़े लोग हैं वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक किसी का इस पूरी जो जो कुछ हो रहा है इसमें कोई भरोसा नहीं होगा।
1: ठीक है परवेश जी, मैं आती हूँ आपके पास, आपको जवाब देना है, लेकिन हम बड़ी खबर ये भी दिखा रहे हैं कि ट्रस्टियों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जो शुरू होने वाली है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इस्तीफा स्वीकार होते ही दोनों ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता से बाहर हो जाएंगे। ट्रस्टियों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है, समर्थ
3: जी? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, ट्रस्टियों का पहुंचना और अपने अपने आवासों से निकलना भी शुरू हो गया। हम इस वक्त जहां पर हैं वहां पर गोविंद गिरी यानी कि जो कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट के वो हैं और कुछ ही क्षणों में उनका काफिला यहां से निकलने वाला है। बजरंग लाल बांगड़ा पहला नाम और कृष्णदास जो की ट्रस्टी ही है उन दोनों के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। पहला नाम जो बांगड़ा का है वो विश्व हिंदू परिषद में महामंत्री है, तो वहीं जो कृष्णदास है वो ट्रस्टी है और उनके द्वारा ही FIR पूरी कराई गई थी। जो 8 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं। अब कहानी यह है कि आज जो है वो निर्णायक समय इसलिए भी है, चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या, ये सवाल सबके जहन में है। आपको मैं दिखा दूं फोर्सेस जो है वो यहां बढ़ा दी गई हैं क्योंकि यहीं से जो है वो काफिला यहां से निकलना है। बैरिकेडिंग भी यहां पीछे करी गई है। ये पूरा वो मार्ग है जहां से कुल मिलाकर जो ट्रस्ट की मीटिंग का एरिया है यहीं से वो गाड़ियां निकलकर जाएंगी। नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, नजरें उन पर भी हैं, वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि उनकी तबीयत नाजुक रही है, वेदांता अस्पताल में भर्ती भी रहे, लेकिन सामने उनकी छावनी भी आपको दिखा दें जहां पर उनकी छावनी है, जहां पर वो रहते हैं। और इस बीच में जो गाड़ियों का आवागमन है वो एक तरफ कर दिया गया है क्योंकि ये सब रास्ते जो हैं वहीं जाते हैं जहां पर निर्णय होना है टेंपल ट्रस्ट के वर्तमान का, टेंपल ट्रस्ट के भविष्य का और उस आस्था का जो कहीं ना कहीं राम भक्तों की है जो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, उनका जवाब भी मिलेगा। और अगर ट्रस्ट यहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकारता है तो जरूर यह भी कहा जाएगा कि एक बड़ा संदेश भी दिया गया है क्योंकि गबन हुआ, चोरी हुई, जो भी हुआ उसके बाद निर्णय बड़े हुए हैं और इस बीच में कार्यवाही भी लगातार चल रही है। तो कुल मिलाकर नजरें इस वक्त गोविंद गिरी पर है। आप फोर्सेज को देखें लगातार इधर एक्टिव हो गई है, कुछ ही देर में बताया जा रहा है यहां से मूवमेंट होगा। समय हालांकि 3 बजे का है, 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें हालांकि जो जानकारी मिली है नृपेंद्र मिश्रा शायद ऑनलाइन तरीके से जुड़ने वाले हैं, अयोध्या वो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लेकिन जो दो नाम मैंने आपको बताए बजरंग लाल और कृष्णदास, ये दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। हालांकि बजरंग दल के नीरज जो है उनको भी सदस्य बनाया जा सकता है क्योंकि 2 जगहें वेकेंट होंगी, खाली होंगी, एक सचिव के तौर पर और एक जो सदस्य के तौर पर है, उसमें किसको लाएंगे और एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, क्योंकि जिस तरह से छवि ट्रस्ट की धूमिल हुई है शायद इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये हम आपको जगह दिखा रहे हैं सामने, अगर कैमरामैन गौरव जूम करके दिखा दें तो वो जगह जहां है जहां बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी, ये गोविंद गिरी है जहां पर एक बहुत अहम बैठक हुई है आज। और बड़ा इन दोनों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं वो भी दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है, गोविंद गिरी जहां पर वेदांती आवास है वहां के आगे जो है एक बड़ी बैठक चली है, 4 घंटा वो बैठक चली है जिसमें कृष्णदास उसमें मौजूद रहे हैं और बजरंग लाल उसमें मौजूद रहे हैं। तो सवाल कुल मिलाकर ये भी होता है कि आखिर एकदम से उनके साथ बैठक क्यों शुरू हो गई। अब देखिए यहां पर गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो चुका है और यहां पर आप देखेंगे तो पहली गाड़ी पुलिस की आई है और हम कोशिश भी करेंगे कि गोविंद गिरी से अगर बातचीत हमारी हो जाए। आप देखें काफिला यहां श्वेता निकलना शुरू हो गया है, पहली गाड़ी पुलिस की यहां से आती हुई और पीछे गोविंद गिरी की गाड़ी है। ये देखिए बैरिकेड यहां पर किया है और यहां पर गोविंद गिरी की गाड़ी यहां पर देख पा रहा हूं मैं, ये गोविंद गिरी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इस गाड़ी में गोविंद गिरी महाराज है। गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी। तो ये देख सकते गोविंद गिरी को आपको हम दिखा रहे हैं, ये कोषाध्यक्ष है यानी कि बहुत अहम छवि, बहुत अहम है इनका रोल। ये गाड़ी अब सामने जा रही है राम जन्मभूमि मार्ग पर और राम जन्मभूमि मार्ग से होते हुए ये जाएगी आगे, यानी कहां ये जाएगी और आगे आपको हम दिखाते हैं चलकर, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, कोशिश करते हैं कि अगर उनसे बात हो पाए। फिलहाल वो निकल चुके हैं, ये राम जन्मभूमि मार्ग है सामने की तरफ जहां से गेट नंबर 11 जहां से एंट्री होनी है। और 3 बजे लगभग मेरी घड़ी में इस वक्त हो रहा है 2:22 और कुछ क्षणों में ये कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। इस बीच भारी पुलिस की तैनाती, सब इंस्पेक्टर, CO सब यहाँ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं और फिलहाल पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। 3 बजे का समय, लगभग 40 मिनट बाद अयोध्या के ट्रस्ट के लिए एक निर्णायक बैठक, या आसान भाषा में कहें तो चंपत राय अनिल मिश्रा के लिए एक निर्णायक बैठक है। हालांकि कुछ मूवमेंट वहां पर है, हम थोड़ा आगे चलकर एक बार कोशिश करते हैं कि अगर गोविंद गिरी की गाड़ी वहां हो तो हम एक बार कोशिश करें और उनसे एक वक्तव्य ले पाए। हालांकि गोविंद गिरी ने जो मीडिया से बातचीत की और उसमें यह साफ कहा गया था उनकी तरफ से कि हम बात करेंगे और हम पूरी बात मीडिया के सामने रखेंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ है, ये गोविंद गिरी की तरफ से कहा गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे
1: कि इसके लिए पहले जो बैठक है वो होनी तो भी जरूरी है, उसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स है उस पर भी चर्चा होने जरूरी है। परवेश जी पहले अपनी बात कर लीजिए फिर मैं आगे। जी
0: अभी आशुतोष जी ने विश्व हिंदू परिषद की भूमिका के बारे में बताया कि विश्व हिंदू परिषद ये कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद वो कर रहा है। श्वेता जी, विश्व हिंदू परिषद को संतों ने, महंतों ने उसके कंधे पर एक जिम्मेदारी दी थी 80 के दशक में, ये श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। आशुतोष जी जानते हैं, संतों ने दी थी, यही दिल्ली के अंदर हुआ था फैसला। और विश्व हिंदू परिषद ने मजबूती के साथ उस आंदोलन को चलाया, जन जन तक पहुंचे, लोगों लोगों तक पहुंचे, कोर्ट में भी जाना पड़ा, कोर्ट में भी गए। और जिस दिन कोर्ट से निर्णय आया, श्वेता जी सुनिए, उस दिन से विश्व हिंदू परिषद ने अपने को इस सारे विषय से अलग किया, नहीं गए। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय में न्यास ने फिर एक चिट्ठी लिखी विश्व हिंदू परिषद को, भी सब मीडिया में है। उस चिट्ठी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का अभियान चलाया, एक चीज। दूसरा इसमें काम था कि जितने भी देश भर के मठ हैं, मंदिर हैं, उनसे मिट्टी लाना और उनसे जल लेके आना, क्योंकि राष्ट्रीय एकात्मकता का एक मंदिर के रूप में यह स्वरूप ले रहा है राम मंदिर। इसके लिए हमारी दूसरी भूमिका समाप्त होगी। तीसरी भूमिका आशुतोष जी हमारी तब बनी जब आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों ने कुछ प्रश्न खड़े करे और राम मंदिर न्यास में कुछ गड़बड़ी हुई, राम मंदिर के अंदर कुछ चोरी हुई, ऐसी कुछ सूचना मिली हिंदू समाज को लगा, तो हमने हिंदू समाज के बिहाफ पर आवाज उठाई, SIT की मांग करी, जांच की मांग करी, जांच के हर स्तर की मांग करी। हमने हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही दिन शब्द में कहा समग्रता में जांच होनी चाहिए, हर पहलू पर जांच होनी चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मीडिया ट्रायल के नाम पर किसी एक व्यक्ति पर या किसी को भी कटघरे में खड़ा करना और बार बार ये कहना चंपत ने चपत लगा दी, ये शब्द ठीक नहीं लगते, उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं लगते श्वेता जी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का पूरा समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगाया। मैं भी एक प्रोफेसर हूं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो, उस प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर लग गए। ऐसे व्यक्ति पर बिना कोई सिद्ध हुए, कुछ सिद्ध नहीं हुआ, बिना किसी सिद्धता के, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाते रहना, ये कहीं भी न्यायसंगत नहीं हो सकता। ये संविधान के विरुद्ध भी है, ये कानून के विरुद्ध भी है कि नहीं है, आप बताइए श्वेता।
1: परवेश जी दो चीजें हो जाती हैं इसमें, एक सीधे तौर पर कोई लेना देना, दूसरा जो जिम्मेदारी दी गई, यानी कि जो जिम्मेदारी ये थी कि आपको पूरी तरीके से पारदर्शिता रखनी थी, अब जो पूरा स्टाफ था वो भी अगर कोई गलती करेगा तो वह सीधा वहां पर पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई लेना देना उनका नहीं है, फिर भी जिम्मेदारी नंबर वन ये उनकी थी। दूसरा, शिकायतें समय समय पर परवेश जी आई थी सामने, शिकायतें सामने आई थी, मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोग भी उनसे पूछते थे और वो, हालांकि उनके व्यवहार को लेके, व्यवहार और जो उनका आचरण है उसको हम अलग अलग श्रेणियों में भी अगर रख दें तो अपने व्यवहार वश वो सीधा मना कर देते थे कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन खैर तो मैं उस पर आती
2: हूँ। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को दोषी नहीं होना चाहिए, तो ये सिर्फ चंपत राय पे कैसे लागू होगा, ये तो जिनके ऊपर 2G के आरोप लगे उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था, जिन्हों पर कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था, बोफोर्स जिनके ऊपर है उनके भी लागू होना चाहिए था। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि चंपत राय के मसले पर आप बोले मीडिया ट्रायल हो रहा, बाकी के मसले मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा। वो जो 8 लोग जो जेल के अंदर हैं उन पे भी लागू होना चाहिए, उनके बारे में भी कोई नहीं कहना चाहिए चोर है, चोरी इन्होंने की है। देखिए ये जो बुनियादी सवाल है जो मैं बार बार पूछता हूँ, किसी मेरी बात सुन ले फिर मैं आपको पूछूंगा। प्रवेश जी मेरी बात सुन ले फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं बहुत मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कम से कम परिषद की तरफ से बहुत ही संयमित तरीके से बात हो रही है। ये जो प्रश्न जो खड़ा हो रहा है वो प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है कि किसी आदमी ने जीवन लगाया राम के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद है उनका, लेकिन अगर गंभीर आरोप लगे हैं तो उन आरोपों की अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ये तो राम के भक्त होने के नाते और राम के जीवन को जानने वाले लोग मानते हैं। किसी ने नहीं कहा कि मां सीता ने कुछ गलत काम किया था, लेकिन जब लांछन लगा तो उनको भी राम तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो दूसरा है। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर को अपनी निजी संपत्ति समझता है क्या? जब राम मंदिर का निर्माण हो गया तो उसके बाद इसको राष्ट्र को समर्पित क्यों नहीं किया गया, ताकि कल भी, क्योंकि देखिए चोरी कहीं भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता राम मंदिर में चोरी हुई, चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन आगे भविष्य में अगर फिर कभी गड़बड़ होगा तो फिर विश्व हिंदू परिषद का नाम आएगा। इसलिए मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है, आपने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, निर्माण कराया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, हिंदू समाज आपके प्रति अनुग्रहित है, लेकिन क्या आज वक्त नहीं आ गया है जब इस राम मंदिर को राष्ट्र के नाम, हिंदू समाज के नाम समर्पित किया जाए और आप उसके प्रबंधन से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लें?
1: ठीक है, हम ट्रस्ट का स्वरूप कैसा हो उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपके अनुसार अभी जो कुछ चल रहा है और पूरी तरीके से जो चंपत राय को लेकर ये पूरे आरोप लग रहे हैं, उसमें आपका मत क्या है? अभी इंतजार करें हम कि पूरी तरीके से जांच हो जाए, न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें, ये उम्मीद करें कि SIT छोटे बड़े किसी के दामन तक अपना हाथ बढ़ाने से नहीं हिचकेगी?
4: श्वेता जी, निश्चित ही बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीर आरोप है, हृदय विदीर्ण है सभी हिंदू समाज का, करोड़ों राम भक्तों का। लेकिन आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से प्रशासन, मंदिर प्रबंधन, SIT का गठन हुआ, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित की, उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई, प्राइमा फेसी आधार पर जिन लोगों की बातें की गई उनकी गिरफ्तारियां हुई, तो हमें न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। और आप ये बात गौर करिए, हर व्यक्ति, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों, चाहे हमारे माननीय सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हों, या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, या आज अभी जो गोविंद गिरी महाराज जी की जो चिट्ठी आई है, हर जगह ये बात कही जा रही है कि पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच हो, कोई भी जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की जांच चल रही है, जांच होने देते हैं। निश्चय ही श्वेता जी, ये जो अंधकार के बादल हैं ये छटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ताज्जुब तब होता है श्वेता जी कि जो लोग भगवान प्रभु श्री राम थे या नहीं थे, उनके अस्तित्व को लेकर अयोध्या थी या नहीं थी, प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ के भवन में कितने कमरे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, राम भक्त कारसेवकों पर गोलियां चलवाकर सरयू जी को लाल करने वाले, अवांछित लांछित आरोप लगाने वाले, आज बैठकर जिस प्रकार से उनका जो है प्रभु श्री राम भक्ति के प्रति प्रेम जगा हुआ है, वो वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या है वास्तव में प्रेम है या ये एक अवसरवादिता है कि किस तरीके से बदनाम करके जो है येन केन प्रकार कोई अनुचित लाभ उठाया जाए। तो वो तो अपने मंतव्य में सफल नहीं होंगे। जांच हो रही है और जांच होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम देख रहे हैं लगातार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कई बार सार्वजनिक मंच से भी ये बात कह चुके हैं। तो धैर्य रखिए। और रही बात आरोप लगाने की, तो श्वेता जी वही वाली बात है कि जब प्रभु वो लक्ष्मण जी को जब वो लगी थी, शक्ति लगी थी, तो जिस प्रकार से हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लाने के लिए, तो रास्ते में उनको मिले थे ना कुछ, वो रावण का जो दूत था वो प्रभु श्री राम के वेश में मिला था ना, तो उसने क्या कहा था वो याद होगा आपको, इस वो है कि राक्षस कपट भेष तह आवा, और मायापति दूत ही तह आवा, जाई पवन सुत नावही माथा, लगा तो कहे राम गुण गाथा। आज लग रहा है कितने सब राम भक्ति में ओत प्रोत हैं कि किस प्रकार से नई अनर्गल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो तथ्य नहीं है उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
1: तो राम जी का जीवन ऐसे भी बहुत कठिन रहा है,
4: तो वो हाँ, और राम जी, राम है,
1: लेकिन
4: तो
1: उसके बावजूद मर्यादा के साथ ही जो कुछ हुआ है सो होने की बात राम जी के ही जीवन से सीखते हैं।
2: मेरा एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, ना तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता दे रहे हैं, ना ये महोदय दे रहे हैं, कि भाई क्या राम मंदिर ट्रस्ट का प्रबंधन सिर्फ विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में होगा या राम मंदिर जो है वो राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को समर्पित होगा?
1: ठीक है, हम इस सवाल
2: अच्छा
1: के साथ आगे चर्चा,
2: इसके मंदिर बनाया, मेरा प्रश्न इस बात को,
1: हम इस सवाल के साथ आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको बता देते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजीवन सदस्यता इनकी जाएगी, बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों के साथ कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। ट्रस्ट की अंतरिम व्यवस्था पर चर्चा होगी। ये तय होगा कि ट्रस्ट के कामकाज की देखरेख कौन करेगा। इसके साथ खबर है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। बड़े बदलाव की तैयारी, अब ये क्या तैयारी हो सकती है और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? कंप्यूटर बाबा, आप पूरी चर्चा भी सुन रहे हैं और उसमें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कहा जा रहा है, आप बताइए किसे संभालना चाहिए राम मंदिर को? अच्छा, चलिए अभी कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन समर्थ ये बताइए पहले कि अगर ट्रस्ट की एक नया स्वरूप अगर हम देख सकते हैं, क्या कुछ चर्चाओं में है वहां के, खासकर अयोध्या के जो संत हैं वो क्या चाह रहे हैं?
3: श्वेता, देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है, कई संत महंतों से हमारी बातचीत हुई, उनको ये है, उनके लिए ये सबसे जरूरी है कि जो राम भक्तों का फेथ है, जो उनकी आस्था है, वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और इसलिए ट्रस्ट में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हम इस वक्त जहाँ पर हैं वो नृत्य गोपाल दास जी की छावनी है, अध्यक्ष राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, और सबसे बड़ा संशय ये बना हुआ है क्या वो बैठक में जाएंगे। कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद है। ये वो छावनी है, श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज जी की छावनी, श्री अयोध्या जी, और इसी में है, इसी में रहते हैं, निवास करते हैं नृत्य गोपाल दास। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं दर्शकों को समझाऊं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे नृत्य गोपाल दास, हालांकि उनकी तबीयत नासाज रही है, संशय है कि वो यहां बैठक में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या उनकी तरह से उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जाएंगे, इसको लेकर संशय है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी यहां जो है वो बढ़ा दी गई है, यहां रस्सियां भी लगा दी गई हैं, और ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है इसमें या तो नृत्य गोपाल दास जी जाएंगे या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करता हुआ यहाँ पर जा सकता है। जो आला अधिकारी हैं आप देखें तो एसपीसीटी की गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ एसपीसीटी की गाड़ी लगी हुई है, ये देखिए, और इसके आगे एडीएम की गाड़ी लगी हुई है। यानी कि जो इस वक्त अंदर कहानी चल रही है वो ये है कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस वक्त जो है वो इस उसमें है कि जो है यहां से जल्दी किसी को प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां से ले जाया जाए, और इसी वजह से यहां पर एसडीएम की गाड़ी है, देखिए ये मैंने एसपीसीटी की गाड़ी दिखाई, ये गाड़ी है एसडीएम की, यानी कि जितना प्रशासनिक अमला इस क्षेत्र का है वो इस वक्त कहां पर है, वो इस वक्त इस छावनी में है जहां से दिशा और दशा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तैयार होती है। और इसी बीच में उनका एक लेटर आता है जिसमें वो ये कहते हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर पूरा यकीन है और बड़ा एक्शन हो, ये भी वो कुल मिलाकर यहां मांग करते दिखाई पड़ते हैं। तो इस बीच में जो छावनी है उसे एक पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है, और यहां पर आप देखें तो एक के बाद एक गाड़ियां जो है फिलहाल लगनी शुरू हो गई हैं, और इस बीच में किसी भी समय यहां से कुल मिलाकर निकलना हो सकता है या तो महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का, और या फिर उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी या किसी प्रतिनिधित्व का। जो जानकारी मिल रही है कमल नयन दास जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नृत्य गोपाल दास जी महाराज की जो तबीयत है वो नासाज, अब देखना यह है कि बैठक में कौन जाता है, नृत्य गोपाल दास जी महाराज जाते हैं या फिर कोई और जाता है। कुछ ही क्षणों का इंतजार और उसके बाद यहां पर सुन रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है फिलहाल होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर अलर्ट जो है वो यहां हो गया है और किसी भी क्षण यहां से जो है वो निकल सकते हैं नृत्य गोपाल दास या फिर उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने यहां से आ सकते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नृत्य गोपाल दास जी की छावनी, यानी कि महाराज की छावनी
1: से। अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास क्या बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सब देख रहे हैं, लेकिन बैठक से पहले महंत नृत्य गोपाल दास का बयान सामने आया। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि दान चोरी से वो बहुत आहत है, जिसने भी पाप किया उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी पर भरोसा है कि वो दोषियों को सजा दिलवाएंगे। यही उनके उनका वो पत्र है, यही उनकी वो चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है, लेकिन अब यही देखना है कि अपने स्वास्थ्य के कारण क्या वो दूर रहेंगे इस बैठक से या फिर इस बैठक का हिस्सा बन पाएंगे। कुछ देर में यह स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि समर्थ वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि वो निकले और जाए इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए। कंप्यूटर बाबा जुड़ गए हमारे साथ। कंप्यूटर बाबा, ये समझाइए कि जो ट्रस्ट की बात हम कर रहे हैं ना, कि ट्रस्ट किसके हाथों में हो, कौन उसका संचालन करे तो सबसे अधिक भरोसा होगा, कौन रहेगा या फिर किस तरह का उसका स्वरूप हो, किस संगठन से। हालांकि देखिए, अदालत की तरफ से भी एक बताया गया था कि कैसा होना है उसको, और उसके आधार पर ही ये ढांचा तैयार हुआ था। कंप्यूटर बाबा
5: देखिएगा, जैसे कि प्रदेश का संचालन माननीय योगी जी कर रहे हैं, तो उसी प्रदेश में जो मंदिर है, क्यों ना उस मंदिर का संचालन हमारे साधु संतों का जो उचित समझे, जो मोदी जी योग्य समझे, जो योगी जी योग्य समझे, उन संत को दिया जाए। और पूरा संत समाज चाहता है कि आप आरएसएस संघ को आप देना चाहते हैं, आप बार बार फिर आरएसएस संघ को आप देंगे तो ये आरएसएस संघ की संपत्ति नहीं है, ये पूरे देश की संपत्ति है, पूरे सनातन की संपत्ति है। ऐसी स्थिति में पूरा देश चाहता है कि अब साधु संतों के हाथ में ये बागडोर देना चाहिए, हमारी मांग है। और जो जिन्होंने भी ये कार्य किए हैं, ये गलत का महापाप किया है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने चढ़ावा में चोरी की है, दान में चोरी करी है, उन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चंपत राज जैसे लोगों पे पूछताछ होना चाहिए, कड़ी पूछताछ होना चाहिए। ट्रस्ट तो बनना अपनी जगह में है, और जो दोषी है उन पे सजा होना चाहिए, उनके घरों में बिल्डोजर चलना चाहिए। और बागडोर जो इसकी है वो मंदिरों की बागडोर जो है वो अधिक से अधिक संतों को मिलना चाहिए, जिससे एक बार संतों को भी देखा जाए।
1: पर कंप्यूटर बाबा एक मतलब ये मैं माफी के साथ आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या अखाड़ों में सहमति होगी कि कौन किसे ये जिम्मेदारी मिले, किसके संत को जिम्मेदारी मिले? अगर निर्मोही अखाड़ा सबसे प्रमुखता से इस आंदोलन का हिस्सा रहा तो उन्हें सबसे अधिक स्थान उसमें मिले, ये समन्वय कौन, ये सहमति कौन बनाएगा?
5: नहीं, क्यों नहीं, अखाड़ा समिति सहमति बनाएगी। आप एक बार मौका तो दीजिए, अखाड़ा से कहिए कि हमें एक प्रतिनिधि चाहिए, अखाड़ा ये प्रस्तुत करेगा, बैठक करेगा, उसके बाद एक नाम निर्णय करेगा और भेजेगा। अखाड़ा में एक से एक 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े बड़े बड़े, एक से एक महात्मा है, सभी अखाड़ों में महात्मा है। आप एक बार चांस तो दीजिए, आप केवल केवल केवल जो है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पर भरोसा करते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आरएसएस संघ ने भी इस बात को कहा है कि इसकी कड़ी निंदा की है कि जिन्होंने ये पाप किया, महापाप किया, चोरी की है। इसका मतलब है कि वहां चोरी हुई है, तो चोरी हुई है तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उसकी कड़ी पूछताछ होना चाहिए, और नहीं तो विश्वास उड़ जाएगा सब लोगों का। लोग तो विश्वास हटा देंगे, कह रही यार आप मंदिरों में कोई
1: आप चाह रहे आरएसएस वीएचपी पूरी तरीके से बाहर हो जाए और केवल संतों के हाथ में रहे या उनका भी प्रतिनिधित्व?
5: नहीं, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ एक प्रतिनिधि कोई रखे जाए। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आता है कि जिन संतों ने इसमें सहयोग किया है, करोड़ों करोड़ रुपए दिए भी हैं, और हमारे महात्माओं, हजारों महात्माओं ने अपनी बलि दी है, अपनी गर्दन कटवाई है वहां पे, तो संतों को नहीं होना चाहिए? अब आप ऐसे संतों को देते हैं जिनके हाथ है नहीं चल पा रहे, अस्वस्थ हैं उन पर, और ऐसे संतों को जिन्होंने जिनको गोविंद गिरी जैसे को मालूम ही नहीं है, उनको अपने अधिकार का नहीं मालूम कि मैं कोषाध्यक्ष हूं, तो अपने यदि कोषाध्यक्ष का काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर होइए, आप बाहर होइए। पर ऐसे संतों को दीजिए जो आज हमारे 13 अखाड़ों में एक से एक संत है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मोदी जी से, योगी जी से, इसकी निष्पक्ष जांच हो और नया नया ट्रस्ट बनाया जाए और इस ट्रस्ट को भंग करके इस पर कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए और इन पे अधिक से अधिक सजा दी जाए, बजाय कि आप इस पे उस पे दोषारोपण देने के बजाय ना करके आप संतों को आगे करें।
1: परवेश चौधरी जी, हालांकि मेरे अनुसार शायद अखाड़ों को ये निमंत्रण जब ट्रस्ट का गठन हो रहा था तब था, पर जो कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं ना, और जो पहले भी हमने चर्चा इस बात को लेकर की है कि न केवल उन अखाड़ों के संत बल्कि जिनकी जिनके पास और कईयों के पास ऐसी क्षमता होती है जो वो इस तरह की चीजों को मैनेज कर सकें, और सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो वो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्वस्थ हो, जो चलते फिरते हो, ऐसा नहीं कि बहुत बुजुर्ग हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, अस्वस्थ हो, उनको ना दी जाए ये जिम्मेदारी।
0: श्वेता जी, पूज्य महाराज जी ने जो बातें कही हैं वो बातें भी हिंदू समाज सुन रहा है, उसके भी ध्यान में है, न्यास के सदस्य भी इसको सुन रहे होंगे और सभी लोग सुन रहे होंगे। अब वो सब चर्चा का विषय है, क्या होना है क्या नहीं होना है वो अलग है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जो आशुतोष जी ने कही और जो पूज्य महाराज जी भी कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस। श्वेता जी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का उसमें क्या भूमिका है? मुझे तो नहीं लगता कोई भूमिका है। मैं प्रवेश हूँ, प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस समय पढ़ाते हुए जेएनयू में मैं आरएसएस तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा, मैं किताब पढ़ा रहा हूं, जो लिखा है लोगों ने वो पढ़ा रहा हूं। तो क्या एक व्यक्ति की दो भूमिकाएं नहीं हो सकती, तीन भूमिकाएं नहीं हो सकती? क्या ये आप मान लें कि कोई अगर आरएसएस का सदस्य है या विश्व हिंदू परिषद के दायित्व पर है तो निश्चित ही वो वहां पर जाकर के उसका एजेंडा इंप्लीमेंट करता है? तो ये सारा जो भ्रम है ना, इसको दिमाग से पूज्य महाराज जी निकाल देना चाहिए। कारण क्या है कि विश्व हिंदू परिषद को मैंने बार बार ये कहा है, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, हमारा दोनों ही रूपों में कहीं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। प्रवेश भी अगर मंदिर दर्शन करने जाता है तो उसी लाइन में लगकर जाता है जिस लाइन में सारे लोग लगकर जाते हैं। तो मुझे कोई विशेष प्रिविलेजेस नहीं मिलती है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूं, उसका केंद्रीय प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कोई नहीं मिलता। यानी कि हमारा कोई उसके अंदर दखल हो ही नहीं सकता और हम कर ही नहीं सकते। कारण क्या है? संघ इस देश और समाज के लिए काम करता और निस्वार्थ भाव से करता है। जब आज से 34 वर्ष पहले हमने संघ की प्रार्थना गाई ना, तो हमने कहा त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। तो इस देश और समाज के कल्याण के लिए हमने अपनी कमर कसी है, कोई निजी हित के लिए नहीं करी है। श्वेता जी, इस बात को समझ लेना चाहिए, सभी को समझ लेना चाहिए और आशुतोष जी को तो विशेषकर समझ लेना चाहिए कि ना प्रार्थना करते हैं हम सुबह सुबह, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। मैं तो बालकाल स्वयंसेवक हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं होता हमारा। इसलिए न्यास में कौन है, कौन न्यास में नहीं है, कौन बाहर है, कौन अंदर है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई अव्यवस्था होगी, जैसे ही हिंदू समाज के मन में कोई प्रश्न आएगा, विश्व हिंदू परिषद खड़ा होगा, डंके की चोट पर बात कहेगा। ये हमारी प्रामाणिकता है, ये हमारी सत्यता है और हम उसको पूर्ण करते हैं, हमेशा करते हैं। आप बता दिए
1: आशुतोष
0: कहा नहीं किया।
1: जी आशुतोष जी, जिस तरीके से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कहा जाता है कि एक खिलाड़ी मैनेज करेगा या फिर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो समझ सकता है, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहती हूं कि केवल बात ईमानदारी की नहीं है। ईमानदारी पर संशय तब भी हो जाता है जब आपकी देखरेख और आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे एक तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। तो मैनेज किसे करना चाहिए ट्रस्ट को?
2: देखिए, मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं। आईएम क्यों बना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि प्रबंधन अपने आप में एक विधा है, एक कला है, एक प्रतिभा है। हर आदमी नहीं मैनेज कर सकता। कोई आदमी बहुत शानदार क्रिकेटर भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर बहुत शानदार क्रिकेटर थे लेकिन अच्छे कप्तान नहीं साबित हुए वो। तो मैं ये मेरा मेरा विश्व हिंदू परिषद से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि ऐसा कैसे संभव है कि चंपत राज विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे और जनरल सेक्रेटरी पद से हटते हैं तो महामंत्री विश्व हिंदू परिषद का ही वहां पर जाकर जनरल सेक्रेटरी राम ट्रस्ट का बनेगा? ये कौन सी मजबूरी है? मैं तो ये कहना चाहता हूं, बल्कि मैं ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के हित की बात कर रहा हूं। चोरी कहीं भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज आपने नया ट्रस्ट बना दिया और 10 साल बाद 15 साल बाद वहां चोरी ना हो। फिर चोरी होगी, फिर विश्व हिंदू परिषद का नाम लगेगा, फिर आरएसएस का नाम आएगा और फिर उनका दाग कलंकित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर के पूरे निर्माण का आपने किया, बहुत अच्छा किया, हिंदू समाज आपके प्रति अनुग्रहित है, लेकिन क्या है कि आप क्यों नहीं इसको राष्ट्र हिंदू समाज को समर्पित करते और पूरी तरीके से उसके प्रबंधन से अपने आप को अलग कर लेते? ये कौन सी बात है? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष थे, अब उनकी जगह बागड़ा जी बनेंगे जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं? ये तो बात मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सारी दिक्कत, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा ट्रस्ट ने काम किया। जिस दिन 4 जून को चंपत राय जी को यह पता चला कि यहां चोरी हो रही, क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? नहीं कराई। वो एक एक एक, एक, एक प्राइवेट सिटीजन होने के नाते पुलिस को लेके जा रही है, उनका जलवा देखिए, पुलिस को लेके जा रहे हैं, बरामदगी हुई अविनाश शुक्ला के यहां से 20 लाख रुपए, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं दर्ज हुई? जबकि कानून यह कहता है कि जिस दिन चोरी की जानकारी मिले, चोरी हो, उसी दिन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस ऐसे लोगों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछ। 20 दिन का वक्त, यानी 4 जून से लेकर 25 जून का वक्त बर्बाद हो गया। इस दौरान सारे सबूतों साक्ष्यों को मिटा दिया गया होगा, इसमें कोई नहीं पकड़ा जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि साक्ष्यों को मिटाने का पूरा इंतजाम किया गया। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वाकई में जागृत होती, कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर चील चल रही होती तो 4 तारीख नहीं, 5 तारीख नहीं, कम से कम 6-7 तारीख तक एफआईआर दर्ज हो जाती, पुलिस सारी चीजों की रिकवरी करती, पूछताछ करती। लेकिन आपने 20 दिन का वक्त दे दिया, क्यों, किस लिए? कोई कारण नहीं। और अभी तक ट्रस्ट जो है वो उसको डिसमेंटल नहीं किया गया है।
1: ठीक है, इसका जवाब आपसे लेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। सर एक ब्रेक का वक्त तो चला है,
2: 5 सेकंड और महत्वपूर्ण बात, जो कोषाध्यक्ष हैं वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी थी पैसे का मैनेजमेंट वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है।
1: ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
11: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
12: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
13: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
14: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
15: वाह वाह वाह वाह।
14: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
16: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
17: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
20: सोच बदलो और बैंक भी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
21: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
22: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
23: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
24: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
24: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
23: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
24: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: What's the baat hai is dil mein?
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
25: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
26: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
27: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
28: परमिशन लेनी चाहिए ना,
27: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
29: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
27: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

चढ़ावा मामले के बाद पहली बैठक के लिए पहुंचे श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा स्वीकार, आजीवन हो सकते हैं ट्रस्ट से आउट। महासचिव की रेस में बजरंग लाल और कृष्ण मोहन। ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का बयान, कहा दान चोरी से आहत हूं, दोषियों को मिले कड़ी सजा, पीएम मोदी और योगी पर है भरोसा। बारिश के बाद घंटों बंद रहा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, रेलवे रूट पर भी लैंडस्लाइड, स्कूल कॉलेज बंद, जम्मू के किश्तवाड़ में भारी तबाही, पहाड़ों में मलबे में समाई बड़ी बड़ी गाड़ियां। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा एक्शन, लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, साइंटिफिक सबूत के आधार पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपराध। छह दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडो पैसिफिक रिश्तों की मजबूती पर जोर, 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम।

0: चढ़ावा चोरी कांड के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक, चंपत राय अनिल मिश्रा पर बड़ा फैसला, चढ़ावा चोरी पर चंपत राय क्या सफाई देंगे, चंपत राय की जगह बजरंग बागड़ा या कृष्ण मोहन। चढ़ावा चोरी रोकने पर ट्रस्ट क्या फैसला लेगा, क्या सीईओ की नियुक्ति पर लगेगी मोहर, चढ़ावे की चोरी में नपेंगे बड़े नाम। क्या छोटे मोहरों पर ही खत्म हो जाएगी जांच?
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अब से कुछ ही देर में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू होने वाली है। अयोध्या में चढ़ावे मामले के बाद ये ट्रस्ट की पहली बैठक है। सबसे बड़ा मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का है। विवाद के बाद 26 जून को चंपत राय ने महासचिव पद से और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव पद के लिए बजरंग बांगड़ का नाम बैठक में प्रस्तावित किया जा सकता है। महासचिव पद पर अंतिम निर्णय के लिए अगले महीने अलग से ट्रस्ट की बैठक बुलाए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में था, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार आज की ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर किए जा सकते हैं। बैठक में संगठनात्मक बदलाव और नए पदाधिकारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बैठक क्या सारे ट्रस्टी जो हैं, सारे सदस्य जो हैं, वो पहुंच चुके हैं, क्या शुरू हो रही है अब?
2: श्वेता, देखिए थोड़ी देर में ट्रस्ट की बैठक शुरू हो जाएगी। 3 बज गए हैं। मेरे पीछे आप अगर देखें तो वो 11 नंबर गेट है। सारे सदस्य जिन्हें आना है वो सब के सब पहुंच चुके हैं, लेकिन एक नृत्य गोपाल दास अभी अभी छोटी छावनी से निकले हैं और कुछ ही मिनटों में नृत्य गोपाल दास पहुंचेंगे, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होगी। जानकारी जो है उसके मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दोनों इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही ये मीटिंग शुरू होगी श्वेता, सिर्फ जो इस्तीफा है वो महज औपचारिकता रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर बदलने क्या वाला है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कहा यह जा रहा है कि टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकते हैं, जिसमें कुछ नाम सामने आएंगे, लेकिन कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होगी। अभी भी मैं आपको एक दिखा दूं किस तरीके का माहौल इस वक्त ट्रस्ट के इस मीटिंग के पहले का है, और कहा यह जा रहा है कि एक एक करके तमाम लोग आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए ये श्वेता, इस वक्त एक एक करके अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। 3 बजे का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन शुरू होगा जब खुद पहुंच जाएंगे महंत नृत्य गोपाल दास, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होते ही पहला एजेंडा इस्तीफा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों नहीं पहुंच रहे हैं, जो अभी तक जानकारी है, यानी कि वो मीटिंग में नहीं होंगे, तो उनके अपना पक्ष रखने का कोई सवाल नहीं है। और ये भी बात है कि चंपत राय न सिर्फ उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो आजीवन सदस्यता है अब वो भी नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा फैसला यही होने वाला है, और ये सिर्फ औपचारिकता है श्वेता।
1: प्रोफेसर विशाल, आपकी तरफ से जो आशुतोष जी भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसा हो ट्रस्ट और क्या वीएचपी आरएसएस ये सब उससे दूर हो सकते हैं?
3: नहीं, देखिए अभी आशुतोष जी जो कह रहे थे, श्वेता जी मैं उसी पे आ रहा हूं। आशुतोष जी कह रहे थे कि ये ट्रस्ट, पहले तो आशुतोष जी को यह समझना होगा कि यह ट्रस्ट का प्रकार क्या है। शायद आशुतोष जी इस बात से परिचित होंगे कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र और निजी जो है ट्रस्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पे उसके बाद जो है सरकार ने गठित किया था। तो सरकार की जो भूमिका है वो एडवाइजरी है। फिर उसके बाद में ये कह रहे थे, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले श्वेता जी 2 महीने या 2.5 महीने हुए होंगे, जब सरकार ने जो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के जो अपनी संस्थाएं थी, ट्रस्ट थी, जो धर्मांतरण में इन्वॉल्व थे, तो उस पर FCRA को लेकर जब सवाल किया गया, तब यही लोग सवाल उठा रहे थे कि हम तो ट्रस्ट हैं, हम तो NGO हैं, हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है। तो लीगैलिटी देखिए आप ट्रस्ट की, तो लेकिन यहां तो कम से कम सरकार ने SIT गठित कर दिया कि ताकि सच का सच झूठ का झूठ सामने आ जाए। तो या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जितने भी ट्रस्ट हैं
4: वो तुरंत बिना इन्वेस्टिगेशन के सरकार तुरंत उनको गिरफ्तार कर ले। यहां तो कम से कम सरकार ने एसआईटी अपॉइंट की, एसआईटी की प्राइमा फेसी के आधार पर लोग गिरफ्तार हुए, अब उसकी जांच भी आप नहीं होने देंगे, उसकी जांच से पहले ही आप निर्णय सुना देंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप आय की बात कर रहे थे, आप शायद इसकी भी बात कर रहे थे, तो आपको तो अच्छे से मालूम है कि ये तो एक धर्मार्थ संस्था है, तो जब धर्मार्थ संस्था है तो जो भी धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। हाँ, उसमें ये वाली क्लास है कि उसका 85% जो कुछ भी है वो कम से कम धर्मार्थ कार्यों पर खर्च हो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर धर्मार्थ कार्यों के लिए नहीं खर्च हो रहा था? तो हर चीज को कहने के पीछे, देखिए आक्षेप लगाना एक अलग बात है, लेकिन उन आक्षेपों के लीगलिटी पहलू में जाना, यहां पर तीन पहलू इन्वॉल्व है श्वेता जी, नंबर एक तो लीगलिटी, नंबर दो मॉरल इश्यूज, और नंबर तीन पॉलिटिकल इश्यूज। तो आप टेक्निकल इश्यूज पर बात करें, आप लीगल इश्यूज पर बात करें, लेकिन यहां पे मॉरलिटी और पब्लिक इशू, वो पॉलिटिकल इशू क्यों लेके आ रहे हैं, इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? जितनी भी बातें चल रही, जितने आक्षेप लग रहे हैं, ये पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ताकि आप इन प्रकार जो हिंदुओं की आस्था है आप उसके ऊपर एक सवाल खड़ा कर सको कि नहीं भाई ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ी। जो भी चीजें हैं, हूसोएवर इज द कल्प्रिट, हर आदमी यही कह रहा है, माननीय सर कारवाजी से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि जो भी गुनहगार है, जो भी कल्प्रिट है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो।
1: एक चीज में एक हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, नहीं एक चीज बोलते हुए मैं वो उस रिपोर्ट को दिखाती हूँ कि जो पहले विसिल ब्लोअर जिन्हें मैं कहूंगी जो इस पूरे मामले के थे ना, जिन्होंने कहा कुछ गड़बड़ चल रहा है, उन्होंने भी ये कहा कि आपको एंटी हिंदू दिखा दिया जाता है अगर आप आवाज उठाते हैं। तो मैं इस चीज को लेकर आपसे मैं जानना चाहती हूं, लेकिन पहले हम समर्थ की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अब जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं उस बैठक में, जिस समय निकले वो उस समय की ये रिपोर्ट देखिए।

0: नृत्य गोपाल दास को तस्वीरों में देखें आपकी किस तरीके से नृत्य गोपाल दास सबसे बड़े चेहरे जो हैं टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष वो यहां से जा रहे हैं और उनकी गाड़ी यहां से सीधे निकल गई है बैठक के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, नृत्य गोपाल दास यानी कि टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष, पहले उत्तराधिकारी कमल नयन दास और उसके बाद नृत्य गोपाल दास अब बैठक के लिए निकल चुके हैं अपनी छोटी छावनी से। बड़ी अपडेट ये है, एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया और उसके बाद अब नृत्य गोपाल दास यहां से निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो बैठक का नेतृत्व क्षमता होती है वो अध्यक्ष की होती है और उस लिहाज से अभी बैठक और अहम है। अब देखना ये है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, लेकिन नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी टेंपल ट्रस्ट के बड़ी बैठक में वो भी उनके पत्र के बाद कई संदेश देती है। अब इन संदेशों के मायने क्या हैं कुछ क्षणों में साफ होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव अयोध्या आज तक।
1: आशुतोष जी, निर्णय से पहले फैसला क्यों?
2: देखिए, पहली बात तो अभी प्रोफेसर साहब ने लीगलिटी की बात की, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि कहीं भी चोरी हो, जैसे ही उसकी जानकारी मिलेगी उस पर FIR दर्ज होगी, ये कानून कहता है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि SIT गठित होगी, पहले SIT प्रावीण्य FSI तय करेगी कि इसमें चोरी हुई या चोरी नहीं, उसके बाद FIR दर्ज होगी। ये तो कानून की पूरी प्रक्रिया को सिर के बल खड़ा कर देना है। उसके बाद ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना ओब्लाइज कर दिया लोगों को, हम लोग वी शुड फील ओब्लाइज्ड यूपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने SIT गठित कर दी। अरे कानून का पालन आप नहीं कर रहे हो,

0: नृपेंद्र मिश्रा हिंदू विरोधी है, क्या संतोष दुबे हिंदू विरोधी है, क्या महिपाल सिंह हिंदू विरोधी है, लेकिन दत्तात्रेय हाउसबोले साहब ने बोल दिया कि भाई ये सब लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और सबको बदनाम करने की साजिश रच। मुझे लगता है कि जो नैतिकता का जो लबादा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पहनने की कोशिश कर रहा है, उसको कृपया करके नीचे रख दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर की चोरी के मसले पे कानून को किनारे रखा गया है, 20 दिन तक सारे सबूतों, सारे साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया। मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं, अन्यथा जिस दिन चोरी की बात हुई उस दिन एफआईआर अगर हो जाती और सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को फौरन कर लिया गया होता, रिकवरी दिखा गई होती लोगों को, इंट्रोगेशन अभी भी क्या हो रहा है आप देखिए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पुलिस ने कोई पुलिस कस्टडी नहीं ली, जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, क्यों भाई? बाकी लोगों की आप पुलिस कस्टडी लेते हो, उनको आप थाने बुला के उनसे पूछताछ करते हो, उनको आप इंट्रोगेट करते हो, यहां नहीं कर रहे हो। तो इसलिए नैतिकता की बात ना की जाए, क्योंकि यहां कानून चूंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर का प्रश्न, मानता हूं राम मंदिर का प्रश्न है, गंभीर सवाल है, लेकिन चोरी चोरी है, चाहे मेरे घर में हो चाहे किसी मंदिर में हो, कानून की नजर ये, कानून ये नहीं कहता कि मंदिर में चोरी हुई तो अलग तरीके से
1: कहना चाह रहे हैं आप, रख लीजिए अपनी बात।
2: देखिए अभी आशुतोष जी ने क्या आपसे कहा, श्वेता जी देखिए लाइव टीवी पर कैसे इन्होंने साफ गोई से बातों को उलझाया। आशुतोष जी, कोई भी ट्रस्ट होता है तो उसके अंदर कोई भी बात होती है तो ट्रस्ट पहले अपनी जांच करता है, उसके बाद में सरकार की भूमिका होती है। यहां पर सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, आप कैसे पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए, अभी मैंने कहा ना, अभी 2 महीने पहले जब एफसीआरए को लेकर रूल्स बने थे तब आप ही का जो गैंग था वो चिल्ला रहा था कि हमारे ट्रस्ट में, हमारे एनजीओ में आप रूल बनाने वाले कौन होते हैं और आपका ट्रस्ट रहेगा और जांच हो जाएगी, यहां तो एसआईटी बैठ गई और आप कह रहे हैं कि नहीं, जबकि नियमता यह होता है कि ट्रस्ट के लोग वो अपने न्यासी अपनी इंक्वायरी पहले स्वयं कर जो है उसके अंदर करवाते हैं, उसके बाद में चीजें आगे जाती हैं, लेकिन नहीं, यहां तो उनके रिकमेंडेशन पर सरकार ने एसआईटी गठित कर दी और प्राइमा फेसी रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन आप साफगोई से बोलकर ये निकल गए कि नहीं नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं किया है, कोई ओबलाइज नहीं किया है। अरे कोई एहसान और कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं है, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था की बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जी इसी मंतव्य में आप लोग अपना कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं पब्लिक के सामने, आप बताइए इज इट राइट और रॉन्ग? If you have any trust, first of all, if there is any allegations, you people, the trustee will investigate it or you will go to the government. बताइए ना पब्लिक को, नहीं बताइए।
0: मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, अगर मैं किसी ट्रस्ट का मेंबर हूं, मैं किसी संगठन का सदस्य हूं, अगर मेरी नॉलेज में आता है कि चोरी हुई है, पहला कर्तव्य यह, अगर हम भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और एफआईआर गठित होगी। पुलिस अपना काम करेगी, एक मिनट मैंने आपके बीच में, पुलिस अपना काम करेगी क्योंकि भारत का कानून यह कहता है, हिंदुस्तान का संविधान। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते तो बात अलग है। क्या चोरी हुई चंपत राय जी को पता चला? क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज की 4 जून को? नहीं। जब रिकवरी हुई क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? नहीं। 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप एसआईटी गठन करते, कल मेरे घर में चोरी होगी तो क्या एसआईटी पहले एसआईटी बनेगी या एफआईआर दर्ज होगी?
2: आप बोलिए फिर मैं बोलूं।
0: एसआईटी बनेगी, एफआईआर दर्ज होगी? मैं एक सवाल पूछता हूं, कहीं भी चोरी होती है पहला कानून यह कहता है कि आप एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव होती है और वो रिकवरी की कोशिश करती है, चोरों को अपने आरोपियों को अपने गिरफ्त में लेती है, उनसे पूछताछ करती है। एसआईटी का गठन बहुत रेयर होता। पिछली बार भी जब जमीन का निर्माण, जब जमीन के घोटाले की बात हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित की, कहां है रिपोर्ट आज तक? 5 साल हो गए, किसी को नहीं मालूम रिपोर्ट कहां गई। और वो क्या था मामला? 1.28 हेक्टेयर की जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को ही चूना लगा दिया गया, ट्रस्ट को बेच दिया गया 18.5 करोड़ की। कहां गई एसआईटी की रिपोर्ट? ये उत्तर प्रदेश की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। मैं पूछता हूं कहां है रिपोर्ट, क्या एक्शन लिया गया उसके ऊपर?
2: मैं बोलूं
1: चढ़ावा मामले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक अब बस शुरू हो रही है, सब सदस्य जो हैं वो एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं ट्रस्ट की बैठक के लिए। उसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज वहां पर पहुंच गए हैं, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी भी बैठक में पहुंच गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, सभी सदस्य पहुंच गए हैं जिनको आज हिस्सा होना है?
3: बिल्कुल श्वेता, लगभग सारे सदस्य जिन्हें आना है वो पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है संजय प्रसाद शायद वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है।

0: कि देखिए अभी मैं आपको खाली दिखा दूं कि ये महंत नित वासुदेवानंद जी सरस्वती महाराज हैं। अभी भी आना लगातार जारी है श्वेता, क्योंकि मीडिया को दूर रखा गया है। जो लोग जा रहे हैं अभी देखिए एक एक करके अभी भी जा रहे हैं। 3 बजे इस मीटिंग का टाइम था, 3:15 हो चुका है और जब एक बार सारे सदस्य पहुंच जाएंगे, सारे ऑफिस बियरर, उसके बाद ही ये मीटिंग शुरू होगी। लेकिन बीच में अचानक ये चर्चा उड़ी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा भी पहुंच रहे हैं, लेकिन न तो चंपत राय आए हैं और ना ही अभी तक अनिल मिश्रा पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों शायद इस मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। शुरुआती जो पहला एजेंडा है वो वही इस्तीफे पर विचार है और जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका इस्तीफा हो जाना है। कब और कितनी देर में ये ऐलान होगा ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन एक एक करके सभी ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं। नृपेंद्र मिश्र नहीं आए हैं, इसके अलावा परासन नहीं है, ये सब लोग हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। और कहा जा रहा है संजय प्रसाद जो कि पदेन सदस्य हैं वो भी अभी तक नहीं आए हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा है कि वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीजें बहुत अहम है, इस्तीफे में जो महासचिव का पद है वो, और साथ साथ जो आजीवन सदस्य है उससे भी आज उनको छुटकारा, या यूं कह लें उससे भी आज वो पदमुक्त हो जाएंगे। तो चंपत राय के लिए आज बिल्कुल ट्रस्ट का ये आखिरी दिन माना जा सकता है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा, तो इसमें कृष्ण मोहन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है जो कि दलित बिरादरी से भी हैं और साथ साथ पूर्व IFS रह चुके हैं फॉरेस्ट सर्विस से, और उन्होंने ही FIR कराई थी। तो हो सकता है कि जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है उसका भी एक खाका सामने आए। श्वेता,
1: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो था वो सरकार की तरफ से गठित किया गया था राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए। 15 इसके सदस्य, जिनमें से 12 सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे। और आज जब ये चर्चा पूरी हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, महंत नवल किशोर दास जी महाराज जो कि प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के और VHP केंद्रीय समिति सदस्य भी हैं, और साथ में हमारे जुड़ रहे हैं आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, धर्मगुरु और कथावाचक हैं, अयोध्या नगरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महन जी, पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत चर्चा चल रही है कि क्या संतों की नुमाइंदगी इसमें बढ़नी चाहिए। संत हैं अभी ट्रस्टीज में संत मौजूद हैं, लेकिन संतों की का प्रतिनिधित्व उसके भीतर रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा इस तरह की चोरी पर अंकुश हो सकता है? क्योंकि भक्त तो अब तक जो दिल खोल कर दान कर रहे थे, जो अपने प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ावा दे रहे थे, उनकी आस्था को इतना ठेस पहुंचा है कि उसको दोबारा बहाल करना है।
2: हाँ, निसंदेह श्वेता बहन जी, हिंदू बड़ा श्रद्धालु है और बहुत समर्पित भाव से कार्य करता है। हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक निरंतर संघर्ष किया, उसके बाद दिव्य और भव्य भगवान श्री राम राघवेंद्र का भव्य मंदिर बना। निसंदेह विश्वहिंदु परिषद की उसमें बड़ी भूमिका है। विश्वहिंदु परिषद ने पूरे संत समाज को, पूरे हिंदू समाज को उस आंदोलन से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय अशोक जी, आचार्य गिजाय किशोर जी, प्रवीण भाई तोगड़िया और उसमें चंपत जी की भी भूमिका है, इसमें दोराय नहीं है। परंतु ये जो महापाप हुआ है, ये जो श्रद्धा का दोहन हुआ है, इसमें प्रत्येक हिंदू मानसिक रूप से बहुत दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। कभी कल्पना नहीं की थी किसी ने कि जो हमारी आस्था का प्रतीक है और जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का भव्य और दिव्य मंदिर है, वहां चोरी जैसा पाप हो जाएगा। जिन लोगों ने की उनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आई, थोड़ा भी उनको भगवान से डर नहीं हुआ, तो एक ये जो महापाप हुआ है, मैं चाहता हूं उनको कठोर से कठोर दंड मिले, और हो सके तो संविधान के दायरे में जो भी कहता हूं सर्वजनक रूप से उनको दंडित किया जाए। इसलिए आने वाले लोगों को लगे कि ये महापाप किसी को नहीं करना चाहिए। एक तीसरा, वर्तमान में जो सामूहिक रूप से ट्रस्ट में ट्रस्टीगण हैं, बाकी सब देखो पदेन हैं, चाहे पूज्य महाराज जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, महाराज जी का भी स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं रहता, योग पुरुष जी हैं, हमारे जगत गुरु हैं और भी सभी पूज्य संत हैं, वो सदस्य जरूर हैं, परंतु कर्ता धर्ता नहीं है वहां की व्यवस्था में, उनकी सीधी कोई भूमिका बहुत
1: नहीं, यही बड़ी बात आपने की, सापेक्ष ऐसा लगता नहीं है। और अभिषेक यही चीज सवाल होता है, जो कर्ता धर्ता है उनकी देखरेख में, उनकी नाक के नीचे ये जो हुआ है जिस पर आज निर्णय अब होना है। अभिषेक
3: नीरज नहीं, बिल्कुल जो कर्ता धर्ता रहे हैं श्वेता, जो आपने बात कही, एक्चुअल में अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मजबूत या जिसे आप कर्ता धर्ता शब्द से नवाज सकती हैं, वो चंपत राय ही थे। खड़े होकर के चाहे पूरा मंदिर बनवाना हो या फिर पूरा इसका स्ट्रक्चर देखना हो, सब कुछ चंपत राय के देखरेख में था। ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा ये चढ़ावा चोरी का कांड हो गया है तो नेचुरल है सवाल उन पर उठेंगे। आप चाहे जितने भी ईमानदार क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर इतना बड़ा कांड आपके नाक के नीचे हुआ है तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। देखिए, ये कहा जाता है कि चंपत राय एक धोती कुर्ता में रहे, हमेशा से समर्पित रहे, 40 सालों का उनकी तपस्या है, ये सारी बातें सच हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह है कि उनकी इंटेग्रिटी पर भी अभी तक सवाल नहीं खड़े होते थे, लेकिन जब उनके रहते उनके नाक के नीचे श्वेता जब इतना बड़ा चढ़ावा कांड हो गया तो अब तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है जितने भी संगठन है संघ के या फिर सरकार लेके ऊपर तक, सभी इस बात पर तो एक मत है कि बेशक उनका अब तक का जीवन बेदाग रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई जिसने बहुत बड़ा डेंट दिया है। और आज अगर उनके ऊपर या फिर अनिल मिश्रा पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं है तो उसके पीछे की वजह यही है कि इनकी इनकी इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी काफी ज्यादा थी। अलग बात है कि अब जबकि करोड़ों के चढ़ावे की बात सामने आ चुकी है, एफआईआर हो चुका है, 8-8 लोग गिरफ्तार हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ ये कह देने से कि मैं नहीं जानता, मेरे भी नीचे के लोगों ने किया होगा, इससे निश्चित तौर पर काम नहीं चलने वाला। और आज चंपत राय की मैं कह सकता हूं कि यह विदाई का दिन है ट्रस्ट से, ट्रस्ट के महासचिव पद से थोड़ी देर बाद इस्तीफा हो जाएगा, ये लगभग तय है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि चूंकि वो आजीवन सदस्य थे तो जब इससे इस्तीफा है उसके अलावा आजीवन सदस्य से भी वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि ट्रस्ट से उनका रिश्ता नाता खत्म होगा। लेकिन वही बात है, तमाम लोग अंदर पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, 2-3 लोग हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ देर में इसका औपचारिक फैसला आएगा कि हाँ इन दोनों का इस्तीफा हुआ। लेकिन चंपत राय से भी बड़े निशाने पर अनिल मिश्रा हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी चीजों की जानकारी उनको थी, तो हो सकता है कि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएं कि आगे की कार्रवाई अब कैसे बढ़ेगी, क्या कोई कानूनी कार्रवाई अब इन लोगों के खिलाफ भी होगी। लेकिन सबको इंतजार SIT की फाइनल रिपोर्ट का करना होगा, उसके बाद ही इसमें अगर कानूनी कार्रवाई या दूसरी कार्रवाई की बात होगी वो सामने आएगी। श्वेता
1: चंद्रांशु महाराज जी, जिस तरह से ये सारी कार्रवाई चल रही है उसमें आदर्श क्या होगा, क्या सही होगा? राम कथा आप सुनाते हैं और राम कथा कितनी बार भी सुनी जाए कहते हैं कभी पुरानी होती नहीं, आप उसमें हमेशा आप कितनी बार भी सुने उसको आनंद आता है, लेकिन एक ऐसा अध्याय इस कलयुग में आकर जुड़ गया है जो कोई कभी नहीं सुनना चाहेगा।
4: राम जी ने ही अपने जीवन में श्वेता जी एक बड़ा संदेश दिया हुआ है। भगवान राम ने कहा, छिंदाम स्वभाव यदि मैं प्रतिकूल वृत्ति धर्म विरुद्ध काम करने वाली मेरी भुजा भी होगी तो उसको भी काट देंगे। इस राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी जैसा जो गंभीर मामला आया है, एक बार नहीं कई बार हम अयोध्या वासी पहले जितने आंदोलन होते रहे उन सब में हम त्रासदी झेलते रहे, जब राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनी फिर भी उसमें अयोध्या वासियों की भूमिका कहां पर तय हो पाई, कहां पर रहे उसकी कोई बात नहीं रही, न सामने कोई आ पाई। अब जब इतना गंभीर मुद्दा इतना उठ रहा है, आरोप लग रहा है, तब भी हम अयोध्या वासी जहां जाते हैं तो हम सबको भी कहीं ना कहीं चोर की दृष्टि से देखा जाता है, हम लोग भी सर उठा करके नहीं चल पाते। तो इसमें कोई भी व्यक्ति हो चाहे
1: एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, एक मिनट के लिए, क्योंकि अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है, क्या कारण है समर्थ, अभी लगभग 3:30 होने जा रहे हैं, 3:23, क्या क्या कारण है देरी का
5: जी? श्वेता देखिए, नृत्य गोपाल दास को निकले लगभग अभी 7 से 8 मिनट हो चुका है, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं ट्रस्ट के उनको निकले और उनके बताया ही गया है कि उनके पहुंचते ही बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि उनको अब तक पहुंच जाना चाहिए क्योंकि सात अब जितना वहां से रास्ता है महज 5 से 6 मिनट का है। बताया जा रहा है कुछ ट्रस्टी जो है अभी पहुंचने बाकी हैं, उनके पहुंचते ही जब वो नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे बैठक में, उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और बड़ी अपडेट जो सुनने में आ रही है वो ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस बैठक में फिलहाल नहीं बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है, नृपेंद्र मिश्रा नहीं अयोध्या नहीं आए हैं, ये भी हमें अपने पुलिस सूत्रों ने बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नृपेंद्र मिश्रा हैं और कमल नयन दास जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो बैठक के लिए निकल चुके हैं और किसी भी क्षण इस समय से बैठक की शुरुआत हो सकती है, या और आसान भाषा में कहें तो किसी भी क्षण इस समय से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकारा जा सकता है और किसी भी समय नए जो नाम चर्चा में हैं उन्हें जिम्मेदारी भी श्वेता दी जा सकती है। तो नजरें इस वक्त गड़ी हुई हैं राम मंदिर परिसर में, जहां एक बैठक चल रही है, बैठक शुरू होने वाली है और कुछ ही क्षणों में बड़े निर्णय आने की संभावना है। जी
1: नृत्य गोपाल दास पहुंच गए हैं वहां पर, ये हम वहीं के अंदर की दृश्य दिखा रहे हैं। हालांकि व्हीलचेयर पर हैं, मास्क लगा हुआ है उनको, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर आज इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यह बैठक कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। और एक अध्यक्ष होने के नाते, प्रमुख होने के नाते ट्रस्ट का उनका वहां पर रहना, हालांकि एक चिट्ठी भी उन्होंने लिखी, उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपनी वेदना को व्यक्त किया, लेकिन एक संशय रहा कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बैठक का हिस्सा होने, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बावजूद वो गए, इस बैठक का हिस्सा वो बन रहे हैं, वो पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। चंद्रांशु जी महाराज अपनी अपनी बात पूरी करें।
4: बिल्कुल सीता जी, मैं इसी स्थिति को कह रहा था कि अभी चाहे कोई अपना है या पराया है, जिन पर भी जघन्य अपराध, भगवान राम के सन्निकट रह करके चंदा चोरी जैसे, चढ़ावा चोरी जैसे महापाप को किया है, जो भी दोषी है उसमें कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि इससे हम सब अयोध्या वासियों का सर सर में से झुक रहा। जहां तक अभिषेक जी ने जो बात कही वह भी बात बड़ी अत्यधिक बात है। लगभग 5 दशकों से श्री चंपत राय जी का अयोध्या से नाता रहा है, राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है, उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अभी तक अयोध्या के साधु संतों ने किसी राजनीतिक पार्टी से या विशेष किसी तरह से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है, तो उन पर व्यक्तिगत कोई चोरी का आरोप या यहाँ पर कुछ भी जगह जमीन स्थानीय लोग होने के नाते यह कह सकते हैं कि कोई भी उस तरह उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है और ऐसी किसी की जानकारी उनके अंदर नहीं आई है। मुखिया होने के नाते, महासचिव होने के नाते यह जिम्मेदारी उन पर बनती है, पर अन्य लोगों का नाम जो आया है उनका विरोध अयोध्या के जमीनी स्तर पर ज्यादा है और वो किनके माध्यम से ट्रस्टी बने, किसके माध्यम से आए, अभी भी एक निवेदन हम अयोध्यावासी होने के नाते, आप जानती हैं हमारा हम सब का राम जन्मभूमि से आंदोलन से गहरा संबंध होने के नाते हम सब लोग भी जेल गए हैं और हम सब की आस्था बनी हुई है। हम सब चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हों, जो भी ट्रस्टी हों, वह अयोध्यानाथ भगवान की गरिमा महिमा को समझने वाले हों, पूजा पद्धति को समझने वाले हों, उनके बाद निष्ठा और आस्थावान व्यक्ति हो, भौतिकवाद से जुड़ा व्यक्ति न हो, क्योंकि ऐसे लोग जब भी इन व्यवस्थाओं में आएंगे तब कहीं ना कहीं ऐसी अनियमितता आती रहेगी। जो लोग निजी महत्वाकांक्षा में चलेंगे, और उसका एक परिणाम रहा कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने देखा कि बालाजी में, तिरुपति बालाजी में भी लड्डू में, मतलब जो करोड़ों करोड़ों आस्था का प्रतीक था वहां पर, उसमें चर्बी जैसे चीजों का आना कितना शर्मसार करता है।
1: तो धार्मिक स्थानों पर जी एक तरफ वो आंदोलन जो इतना लंबा चला, आपने कहा कि अब पूर्ण हुआ और देखिए कि अब राम मंदिर पूरे राष्ट्र को समर्पित है, लेकिन उसके बाद आज ये विवाद जो है वो हर व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या क्या होगा आगे। अब अभिषेक भी हमारे साथ हैं और संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इसमें अगर हम जांच के हिसाब से आपसे जानना चाहें, एक तरफ ट्रस्ट की बैठक आज चल रही है लेकिन दूसरी तरफ जांच का काम भी चल रहा है, क्या डेवलपमेंट उसके हिसाब से क्या क्या हुआ है?
6: देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था, जिसके पास से सबसे बड़ी रिकवरी हुई थी, 20 लाख रुपए बरामद हुए थे, अविनाश शुक्ला, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया, पूछताछ की। कल पुलिस ने 5 अन्य आरोपी, जिसमें एक सबसे बड़ा कैरेक्टर जो निकल के आया वो था रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे, ये 5 लोगों से अलग पूछताछ की। आज इसके डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं जो इनसे पूछताछ की गई, और पुलिस अब पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है, यानी कि सभी आरोपियों से पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है ताकि इनके द्वारा जो चोरी की गई रकम को बरामद कर लिया जाए, या कोई सामान भी अगर खरीदा गया, चाहे कार हो, ज्वेलरी हो, मकान हो, कोई भी संपत्ति हो, तो उसको भी बरामद कर लिया जाए क्योंकि वो चोरी की रकम से खरीदी गई है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल इन्हीं 8 लोगों पर फोकस्ड है। रामशंकर यादव, टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर था, जो सबसे एक कहा जाए कि प्रमुख नाम था, एक कहा जाए कि पूरे 8 लोगों में, तो चंपत राय के इस ड्राइवर रामशंकर यादव और टिन्नू यादव को भी रिमांड पर लेने की तैयारी है। कल इससे भी जेल में
1: आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है अभिषेक। अस्वस्थ होने के बावजूद महंत नृत्य गोपाल दास आज पहुंचे हैं इस बैठक के लिए।
0: एक दिन पहले ही वो लखनऊ मेदांता से वापस आए हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब रही है। लेकिन एक और बात बताऊं कि संजय प्रसाद जो
1: ये भी हम अभिषेक हम आपके पास आए उससे पहले हम साथ में बता दें कि अयोध्या के जो डीएम है उनके अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं। तो जो भी अयोध्या का डीएम होता है वो इस ट्रस्ट का हिस्सा रहता है। फिलहाल शशांक त्रिपाठी इसका हिस्सा है, इस ट्रस्ट का हिस्सा है, लेकिन उनके अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नुमाइंदे जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसके, वो संजय प्रसाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन कमिटी को हेड करते रहे वो इसका हिस्सा एक एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा रहते हैं, और साथ में अयोध्या के जो डीएम है वो भी इसका हिस्सा रहते हैं। तो उनका उनका उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका जो अधिकार है, उनका जो पावर है इसमें, वो बढ़ सकता है। अभिषेक
0: बिल्कुल श्वेता, यही मैं बात में कह रहा था कि डीएम के अधिकार अब बढ़ाए जाएंगे। देखिए अभी तक जो तमाम अधिकार थे वो चंपत राय में निहित थे, और अगर डीएम अयोध्या की बात की जाए तो डीएम अयोध्या भी एक तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर जैसे थे। उनका कोई रोल इस पूरे मंदिर ट्रस्ट में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक अयोध्या के डीएम इस मीटिंग में हुआ करते थे या फिर इस ट्रस्ट में थे। लेकिन ऐसी पुख्ता जानकारी है कि अब डीएम के अधिकार बढ़ाए जाएंगे, यानी कि आज जिस टेम्पररी अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ फाइनल रिस्ट्रक्चरिंग होनी है ये जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये उसको नए तरीके से पूरा आमूलचूल परिवर्तन होगा। सीईओ बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, तमाम चीजें उस रिपोर्ट के बाद होंगी। लेकिन कृष्णमोहन और खासकर डीएम अयोध्या, इनके इनको नई जिम्मेदारी या फिर इनके अधिकार और बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि एक टेम्पररी अरेंजमेंट होगा। संजय प्रसाद जो कि प्रमुख सचिव गृह हैं, वो इस मीटिंग में वीसी के जरिए जुड़ चुके हैं, यानी कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ देर में इसका ऐलान हो जाएगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या है। वैसे तो औपचारिकताएं हैं, जैसे हम लोग लगातार कह रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता है, उनका इस्तीफा स्वीकार होना है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों इस मीटिंग से दोनों ने अपनी दूरी भी बना रखी है, यानी कि जो ये बातें कही जा रही थी कि वो अपना पक्ष रखेंगे तो ऐसी कोई बात अब नहीं होने वाली। अब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा उनके इस्तीफे का है, और दूसरा एजेंडा जो एक अंतरिम व्यवस्था है उसको इस मंदिर में लागू करने का है। सरकार को और जो जो केंद्र सरकार है, मुझे लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों इस्तीफे हो गए, उनको ट्रस्ट से अलग कर दिया जाए तो शायद जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन बहुत अहम है श्वेता अभी की मीटिंग, क्योंकि तमाम लोग पहुंचे हैं, और ये समझिए कि जो ये मीटिंग रखी गई थी वो छोटी छावनी में रखी गई थी जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास को होना था, लेकिन वहां पर ये मीटिंग नहीं हुई और महंत नृत्य गोपाल दास अस्वस्थ रहने के बावजूद मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज की मीटिंग बेहद अहम है, और निश्चित तौर पर जो जो जो जो, जो बातें हैं वो कुछ देर में सामने आ जाएंगी। श्वेता
1: अब संतोष, एक और चीज उठती है कि जितनी रिकवरी हुई है अब तक, जिन जिन के घर पर छापा पड़ा है, और जितनी चोरी की बात हो रही है कि पर डे कितना चढ़ावे में से गायब किया जा रहा था, उनमें भी अभी तालमेल दिख नहीं रहा है।
6: बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है कि आप एक आदमी से अविनाश शुक्ला जिसने ब्रेजा कार सेकंड हैंड खरीदी उसके पास से 20 लाख रुपए मिला, टोटल 80 लाख रुपए मिला। और ये 80 लाख रुपए किन लोगों के पास मिला? अरेस्टिंग में से अगर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को अलग करते हैं, उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है, बाकी 7 लोगों के पास से मिला। और सबसे ज्यादा रिकवरी इसी अविनाश शुक्ला के पास से, 3 लाख रुपए टिन्नू यादव के भाई के पास, भतीजे के पास से 1 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से, तो कर्णेश पांडे के पास से 18 लाख। तो आप सोचिए कि 20 लाख 18 लाख रुपए तो ये वो पकड़े गए जो ये खपा नहीं पाए। और कितनी चोरी कर रहे होंगे कि इनके पास इतना 12 से 15 हजार रुपए कमाने वाले लड़के और 18 लाख रुपए उनके पास से कैश रिकवर हो रहा है, और ये कब से चोरी कर रहे होंगे और किस लिमिट से किस स्पीड से कर रहे होंगे? क्या एक दिन में 2.5 लाख रुपए चोरी कर रहे थे? जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, हमने दर्शकों को एक सीसीटीवी भी दिखाया अविनाश शुक्ला का, उससे पहले जो फर्स्ट अरेस्ट जो पहला आदमी जो ग्रैब किया गया इसमें वो था लवकुश मिश्रा का साला, जिसने इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले जिससे पूछताछ हुई उसके पास से 2.5 लाख रुपए मिला। पहली जो तलाशी ली गई उसमें 2.5 लाख रुपए उसके पास से मिला। तो आप सोचिए कि एक आदमी से 2.5 लाख रुपए कैश वो मंदिर परिसर के अंदर से वो छिपा करके रख रहा था, तो लिमिट थी इसके, कोई बेधड़क होकर के चोरी कर रहे थे। अब कब से चोरी कर रहे थे तभी ये रकम एक साथ, जब चोरी की गई चोरी की रकम को जब 18 लाख 20 लाख रुपए मिल रहा है तो कितनी खपा चुके होंगे। अब ये खपाई हुई रकम ये पूरा ऑडिट करने की जरूरत है पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में सामने।
1: तो ये बैठक ये शुरू हो गई है, गोविंद देवगिरी जी ने बैठक का जो एजेंडा है वो रखा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बैठक से जुड़ी हुई। संगीत रागी जी, ये अब इस बात पर चर्चा ही नहीं है कि लोग आहत हुए या नहीं उस समय से लेकर अब तक, अब लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी या नहीं जो कि होनी चाहिए।
7: मुझे लगता है कार्रवाई होगी, और मुझे लगता है कि चंपत राय जी, देखिए बार बार ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि भाई ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, सरकार अभी तक क्यों नहीं ट्रस्ट भंग कर रही है? तो जहां तक मुझे जानकारी ट्रस्ट डीड के बारे में जानकारी मिली है कि भारत की सरकार, ना तो भारत की सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी और न ही जो है वो राज्य सरकार के दायरे में आता था। यह एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट था और ट्रस्ट डीड के रूल्स के अनुसार ही उनको जो ट्रस्टी है वो चाहे तो उनको हटा सकते थे। अब ऐसी स्थिति में आज जो बैठक हुई है उस बैठक में मुझे ऐसा लगता है कि चंपत राय जी हटाए जाएंगे। वो एक मुद्दा निकल करके आ जा रहा है कि वो महासचिव पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया है या ट्रस्ट से ही त्यागपत्र दिया है, ये चूंकि पत्र अभी तक जानकारी में नहीं आई है इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो महासचिव के पद से ही सिर्फ हटाए जाएंगे या ट्रस्ट के मेंबर के तौर पर भी वो हटाए जाएंगे। ये जानकारी निकल करके आएगी जब ट्रस्ट के बोर्ड में क्या निर्णय लेते हैं, ट्रस्टी क्या निर्णय लेते हैं, ये जानकारी।
1: अभिषेक, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि चंपत राय क्या वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं इसमें, क्या इसको लेकर कुछ है स्पष्टीकरण अभी?
3: देखिए अगर चंपत राय को जुड़ना होता तो महज कुछ 100 मीटर की दूरी या 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो आ सकते थे। न चंपत राय पहुंचे हैं ना ही अनिल मिश्रा पहुंचे हैं, तो जो जानकारी है उसके मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों नहीं आएंगे। हालांकि मीटिंग अभी जस्ट शुरू हुई है, अभी भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं, और सबसे आखिर में जो हमारी जानकारी है संजय प्रसाद जी जुड़े हैं जो कि प्रमुख सचिव गृह हैं। तो मीटिंग कुछ देर के बाद इस मीटिंग का आउटकम सामने आएगा। लेकिन एक बात जो अभी चर्चा भी चल रही थी कि क्या चंपत राय सिर्फ महासचिव पद से उनका इस्तीफा होगा या फिर वो आजीवन सदस्य भी हैं उससे भी उनका इस्तीफा हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पूरी तरीके से उनका इस्तीफा होगा और वो शायद ट्रस्ट में किसी पद पर नहीं रहेंगे।
1: कम से कम यहाँ से शुरुआत तो होनी चाहिए ट्रस्ट कि एक तो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया है, न केवल उस इस्तीफे को स्वीकार करना बल्कि ट्रस्ट से कोई लेना देना आगे भी ना हो। अनिल मिश्रा भी आज की बैठक में नहीं रहेंगे और साथ में चंपत राय की भी मौजूदगी वहां पर नहीं रहने वाली है। ये बात हम आपको आज तक पर बता रहे हैं कि ट्रस्ट के बाकी जो सदस्य हैं वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर बैठक शुरू हो रही है और दोनों जिनके नाम अलग अलग तरीके से इस पूरे गबन से शुरुआत से जुड़ते आ रहे हैं, जांच चल रही है अभी, लेकिन न तो चंपत राय आज की बैठक में मौजूद और न ही अनिल मिश्रा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महंत नवल किशोर दास जी, प्रमुख जजमान होना राम जी की पूजा में प्रमुख जजमान होना, मतलब किसी पद से भी बड़ी चीज जिन व्यक्तियों को मिल गई हो उनके दायित्व थोड़ा सा उनको सोचकर निर्वहन तो करना था। आगे जांच होगी, अभी स्पष्ट होगा कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार था या नहीं, लेकिन आंखें मूंद लेना भी तो कम नहीं होता है मान जी।
2: नहीं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि चंपत जी संघ के प्रचारक हैं, पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। वो चोरी जैसा जघन्य अपराध करेंगे ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा हुआ भी नहीं होगा। अब चूंकि कितने नीचे उनके कार्यकर्ता लगे थे, अब किसके मन में क्या पाप आ गया मुझे नहीं पता, उनको इस बात की जानकारी थी नहीं थी, और थी तो जरूर वो एक्शन लेते। अब वो सब जांच का विषय चल रहा है, पर मैं फिर कह रहा हूं उनके परिश्रम को उनके समर्पण को ऐसे ही बिल्कुल नजरदान नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने परिश्रम किया इसमें दोहराया नहीं है, परंतु ये जो परिस्थिति बनी है वो परिश्रम को कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया इस परिस्थिति ने, उनके इतने बड़े परिश्रम को इस परिस्थिति ने विलुप्त जैसा कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय उनको तुरंत स्वयं ट्रस्ट आग्रह भी करे आप बने रहें तब भी उनको नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र समाज के लिए काम किया है और वो निष्पाप हैं। तो मुझे लगता है संगठन ट्रस्ट कहे तब भी उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए और अपने को अलग कर लेना चाहिए, और ट्रस्ट को भी चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उनके जगह नियुक्त किया जाए, उनको दायित्व दिया जाए। संपत जी बाकी समाज का संगठन का काम करेंगे ही, करते रहे बात अलग है, पर राम जन्मभूमि में वर्तमान जो परिस्थिति बनी है मुझे नहीं लगता है कि उनका किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से वहां रहना अनुकूल न उनके लिए हित कर रहेगा न उस संस्था के लिए हित कर रहेगा। इसलिए वहां से मुझे लगता है हटना ही ठीक रहेगा, परंतु साथ साथ में वहां की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसी व्यवस्था में कहीं कोई कमी दोबारा ना आए उसकी गारंटी क्या है, क्योंकि कोई दो चार लोग नहीं चला सकते, बड़ी व्यवस्था है। और लोग ये जो महापाप हुआ है इसको लगे कि नहीं ये कहीं ना कहीं अक्षम्य था, पर क्षम्य करके दोबारा लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहे, लोग दर्शन के लिए जाते रहे, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, वो सबके प्रेरणा स्रोत बने रहे, इसको बरकरार रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए समग्र हिंदू समाज को धैर्य रखना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के कारण अपने इष्ट के तरफ से अपने आराध्य के तरफ से अपने धार्मिक स्थान से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत समग्र हिंदू समाज से विनम्र प्रार्थना भी है।
7: चंदा चोरों से
1: चंद्रांशु जी महाराज, आपको भी ये बहुत बड़ी चुनौती लग रही है कि लोगों का भरोसा कैसे बनाए रखें, लोगों को कैसे ये कहें कि किसी भी तरीके से अभी भले ही आस्था पर आघात हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि यहां पर लोगों का आना कम नहीं हुआ लेकिन लोगों का वहां पर जो चढ़ावा है उसमें कमी आई है, ये तो आंकड़े सामने आ गए थे।
4: निश्चित तौर पर नजरिया तो बदलती है, राम भक्त होने के नाते अपने खून पसीने की कमाई उन्होंने भगवान राम जी के प्रति समर्पित दिया है, और उनके दिए हुए वस्तु में अगर कोई फेंद डालेगा डाका पड़ेगा तो आहत होना स्वाभाविक है। राम भक्त होने के नाते हमारे मन में भी उतना ही ठेस पहुंचा है, कोई काम कहीं पर भी करे तो इस बात के होना भी चाहिए। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, कोषाध्यक्ष जी पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज का पत्र सार्वजनिक रूप से आया, उसको भी पढ़ा है। अन्य लोगों से भी एक मेरा निवेदन है साथ में, ये जब फैसला हो ही रहा है तो एक चीज और भी निवेदन स्वीकार कर लें कि जो भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं यदि उनके पास टाइम है तो फिर लाखों लाख करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है, या तो सम्यक रूप से जिस पद पर बैठे हैं उसको जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निर्वहन करें, उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व तो समझें। अगर टाइम जिनके पास नहीं है उससे वो प्रेम पूर्वक इस्तीफा दें, जो व्यक्ति उस काम को कर सकता है उसको सौंपे। कम से कम इस तरह से जब कोई मुसीबत आई, हम जहां तक देखे हैं प्राण प्रतिष्ठा का समय हो, भूमि पूजन के समय हो, अन्य समयों में सभी माननीय थे महनीय थे, सब लोग एक साथ में बने रहे, पर जैसे थोड़ी सितारे गर्दिश में गए सब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे, ये बिल्कुल उचित नहीं। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, आप भी राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए दर्शक भी गए होंगे, हम सब भी जब जाते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी सुरक्षा है, व्यवस्था है, यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी एसपी सुरक्षा बैठते हैं, तीन तीन सीओ बैठते हैं, अन्य एजेंसियां काम करती हैं, और इतनी बड़ी भूल इतने दिनों से हो रही थी, पर एक किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं आया, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं फिर इस बात को दर्शाता है कि इस तरह से तो भूल होती रहेंगी, ऐसी गलती लोग करते रहेंगे। तो जिनके पास समय नहीं है वो भी इस मीटिंग में, ट्रस्ट के समय समिति में यह निश्चित कर लें कि हमारे पास समय का अभाव है या नहीं कर पाएंगे। बहुत से राम भक्त हैं, हम जानते हैं कि जिस समय ट्रस्ट का गठन हुआ था बहुत से लोग जो लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, बड़ा परिश्रम था, वह कितने आहत हुए थे कुछ लोगों का नाम देख करके, पर राम भगवान का मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा इसलिए चुप रहे, और वास्तव में वह लोग अधिकारी थे, उनका परिश्रम था इसमें, उनका श्रम था यहाँ पर उनको जगह न मिल करके ऐसे लोगों को जगह मिला, किस तरह से मिला, कैसे मिला, किसके माध्यम से आया, यह किसी को पता नहीं चला। उस समय भी संगठन के भी बहुत से लोग नाराज हुए थे, बाकी लोग भी नाराज हुए थे। तो बस इतना ही निवेदन था कि जो लोग वास्तव में जिनका संघर्ष रहा, जिनकी निष्ठा आस्था भगवान राम के प्रति है, जो राम जी के व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को जगह मिले, ऐसे लोग ही व्यवस्था में बैठे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं फिर किसी को उठा करके लेके आएंगे, फिर किसी को दे देंगे, फिर किसी कोई आकर के ऐसा पाप कर्म करेगा और फिर हम सबको संसार के सामने अयोध्या वासियों को मुंह छुपाना पड़ेगा। तो हम लोग इस पाप को नहीं चाहते, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतना निवेदन कर रहे हैं, ट्रस्टी के जितने लोग हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि यह राम जन्मभूमि किसी ट्रस्ट मात्र का नहीं है, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का, उन कार्य सेवकों ने जो अपने प्राणों की आहुति दिया उनका, इन सब के संघर्षों के द्वारा, कार्य सेवकों के द्वारा, आस्था के द्वारा, और जो लगातार समर्पण निधि दे रहे थे उनके द्वारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसलिए उनके भावना को समझें, उनके भावना को आहत न करें। और यहाँ पर बैठे प्रशासन के भी जो लोग हैं, वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां कोई इस तरह की घटना होती है उस पर लगाम लगाने का काम करें। जिनकी भी छोटे से लेकर के बड़े तक कर्मचारी हैं उनकी भी वहां पर जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, उनको भी इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। श्वेता जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेदना भी है।
1: आस्था का प्रश्न तो सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, जो सुरक्षा का प्रश्न है, वो भी बड़ी चीज है कि जहां पर इतने सारे खतरे, इतनी सारी थ्रेट रहते हैं हमेशा, वहां पर कोई भीतर क्या लेकर चला जाता है या भीतर से क्या लेकर बाहर आ जाता है, ये भी उसकी संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। आशुतोष जी,
8: नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ, लेकिन अभी मैं गोविंद देव गिरी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं, वो कोषाध्यक्ष और उनको पता ही नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो रहा कि उनका सिग्नेचर ही काम नहीं कर रहा, वहां पर किसी और का सिग्नेचर काम कर रहा है। तो क्या ये सारी परिस्थितियां संदेह पैदा करने के लिए उपयुक्त नहीं? मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं मानता हूं ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार नहीं भंग कर सकती, ट्रस्टी तो भंग कर सकते हैं उसको। ये जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ट्रस्ट के तरफ से उसको एक तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की गई, मुझे तो यही लगता है, जबकि नितिन मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें खुली डकैती हो रही थी,
1: जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की ही होनी चाहिए थी,
8: और इस्तीफा कोषाध्यक्ष को दिया जा रहा, कोषाध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारे पैसे से अकाउंटेंट जाता था, वो चेक करता था, अगर आप चेक कर रहे थे तो आपको पता क्यों नहीं चला? और अगर मैं गोविंद देव गिरी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर इस तरीके से ट्रस्ट चल रहा था, वो भी राम मंदिर का ट्रस्ट चल रहा था,
1: प्रोसेस तो हाईजैक कर लिया कुछ लोगों ने,
8: इसको भंग किए जाने की जरूरत है,
1: जिसकी जिम्मेदारी थी,
8: तरीके से प्रोफेशनल लोगों को लाने की जरूरत,
1: जिसकी जिम्मेदारी थी उनको साइडलाइन किया गया, बाकी लोग उसको पूरी तरीके से अपने पास रख लिया। और देखिए कुछ अभी ये डेवलपमेंट ये है कि कोषाध्यक्ष ने ये प्रस्ताव रखा है कि विचार किया जाए, ये इस्तीफे जो है, जो प्रोसेस होता है उसकी बात हो रही है, लेकिन ये तो सबको विचार करना पड़ेगा ना। संगीत रागी जी,
7: देखिए होता क्या है कि जब ट्रस्ट बनता है ना, तो आपने बड़े बड़े लोगों का उसमें नाम रख दिया, अब उसमें कई ऐसे साधु महात्मा जी थे जिनका वो फंड उंड से क्या लेना देना, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका एक बहुत सीधा सा एक उत्तर दिया जा सकता है कि आप एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग से बना दीजिए जो ट्रस्टी मिलकर के बना सकते हैं, और जिसमें कहा जा रहा है ना कि आशुतोष ने जो जिसका जिक्र किया, मैं उस बात से सहमत हूँ, उसमें प्रोफेशनल लोग हों और कायदे से वहाँ के डीएम को उसका सचिव पदेन सचिव बना दें ताकि उसकी भी जिम्मेदारी हो। देखिए जब कोई व्यक्ति
8: डीएम होता है,
7: जब तक डीएम है, मेरा कहना है कि यदि एक सरकारी नौकर रहा है तो वो कम से कम अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा, और बाहर का आदमी जिस संघ से छोटे छोटे स्तरों पर किया, मैं आज भी मानता हूँ, मैं भी मान जी से सहमत हूँ कि चंपत राय जी का निजी चीज कोई उन्होंने बेनिफिट किया होगा या गोविंद गिरी जी ने लिया होगा, मुझे भी ऐसा मेरी ये कल्पना के परे है, लेकिन जो प्रक्रिया में जिस प्रकार का गलती हुई है हम उसे गलती मानेंगे, या आप हमने उसको इग्नोर किया, हमने भरोसा किया, लेकिन ये इतने दिनों तक होते रहा और इतने लोग लूट करते रहे, ये थोड़ा सा ये मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा सवाल उठता है और ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। रोज 2.5 लाख रुपए यदि गबन हो जाए तो बात मैंने ये थोड़ा सा लगता है कि भाई जिन लोगों को आपने अपॉइंट किया था उनका हम कहते हैं, कुछ किसी को भी हम अपॉइंट करते हैं तो थोड़ा सा उसका सोशल प्रोफाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा एकेडमिक प्रोफाइल देख लेते हैं, थोड़ा उसकी इंटीग्रिटी के बारे में जान लेते हैं। हमने ऐसे लोगों को वहां पर रख दिया सिर्फ जान पहचान के आधार पर, जो सामान्यता होता है जो कर लेते हैं। यहाँ पर राम मंदिर के अंदर बहुत रोज चढ़ावा आ रहे थे, बहुत भारी संख्या में चढ़ावा आ रहा था। प्रोफेशनल तरीके से इसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। उनको उनको जब एम्प्लॉय कर रहे थे तो किसी की सिफारिश पर ठीक है, आप एक दो की सिफारिश पर कर देंगे, लेकिन आप सारे लोगों को सिफारिश के आधार पर ही आपने कर दिया, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी। आपने क्यों कहने पर उनको उस काम में लगाया, ये आपकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बनती थी। मैं इससे फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चंपत राय जी और बाकी ट्रस्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत इग्नोर किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जिसका नतीजा ये है कि आज चंपत राय जी के बहाने या जो ये बंगली हुई है उसके कारण पूरे जिसे हम कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी को जिसका कोई लेना देना नहीं हो, फिर भी बीजेपी को देखिए प्रहार करने का मौका
8: दिया। आपने कहा कि मैं किसी भी तरीके के सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ हूं, इस तरीके के किसी भी ट्रस्ट में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उनसे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंपत राय को क्लीन चिट देने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों? जो 2020-21 में अगर आप देखिए, महिपाल सिंह जो अकाउंटेंट थे, आरएसएस के आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हो रही है। चंपत राय को जानकारी दी, क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की, क्यों नहीं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? उसके बाद वहां पे एक ऑडिट एजेंसी बनती है, वो ऑडिट एजेंसी बाकायदा ऑडिट करके कहती है कि सेकेंड और थर्ड लेवल की जो चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसके लिए बाकायदा एसओपी बनाना चाहिए। 6 साल हो गए, कहीं कोई एसओपी नहीं बनी, क्यों भाई? तीसरी बात, 2021-22 के आसपास की बात है, जमीन के घोटाले के नाम है, उसमें अनिल मिश्रा का नाम आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसआईटी बनी, एसआईटी ने वो रिपोर्ट दी, नहीं दी, कहां गई किसी को मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश में तब योगी आदित्यनाथ सरकार थी। ये 4 घटनाक्रम है बैक टू बैक, और इन 4 घटनाक्रम के आधार पर हम चंपत राय को क्लीन चीट दे रहे हैं तो इसका मतलब गलत संदेश जा रहा। इसका अर्थ यह है कि गलत संदेश जा रहा। और जो एसआईटी की रिपोर्ट अभी आई है वो ये कह रही है कि चोरी के पहले 16-18 लाख रुपए का लगभग चढ़ावा आता था, और जब से चोरी की बात सामने आई तब से 24-26 लाख यानी 6-8 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावे से चोरी हो रही, 1/3। एसआईटी की रिपोर्ट जो सोर्सेस के हवाले से अखबारों में खबर आई है, अगर 6 लाख भी मान लीजिए या 5 लाख भी मान लीजिए पर डे अगर चोरी हो रही थी तो 10 दिनों के अंदर 50 लाख और 1 महीने में 1.5 करोड़ की चोरी हो रही थी। ये तो एसआईटी की रिपोर्ट जो अखबारों में उसके माध्यम से आ रही, और आप ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी को पता नहीं, कोषाध्यक्ष साहब कह रहे मुझे जानकारी नहीं, मतलब मजाक हो रहा था उस ट्रस्ट के अंदर या क्या हो रहा था? और हम चूंकि चंपत राय जी का 40 साल का जीवन रहा, 50 अरे बहुत सारे लोगों का 40 साल का जीवन रहा है, हम उनके ऊपर आरोप लगाते समय तो नहीं चूकते। हमने 2G के मामले में तो सीधे जेल गए वो लोग, बाद में पता चला उसमें कोई सबूत नहीं था। कॉमनवेल्थ घोटाले में आज तक किसी का नाम सामने नहीं आ पाया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं पे, तो इसका क्या मतलब? सीधी सी बात है, चंपत राय की भूमिका को बहुत करीने से उसकी जांच होनी चाहिए, अनिल मिश्रा की भूमिका करीने से जांच होनी चाहिए, और प्लीज बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख मुझे लगता है कि हम, मैं चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों चाहे संघ के लोग हों, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि चंपत राय जी कोई देवता थे। अरे भाई संदेह के घेरे में हैं आप।
7: एक लाइन सिर्फ जोड़ रहे हैं, देखिए शायद आशुतोष को पता नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था, उसका पालन नहीं किया गया। ये आपने नृपिन मिश्रा जी के, आप यदि आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है अपने इंटरव्यू में कि विधिवत था कि आपको बिना जेब का ये सब कपड़े पहन करके जाना है, आपकी जाने के वक्त आने के
1: वही तो मैं कह रहा हूं। आपका ध्यान खींचने के बावजूद आपने कार्रवाई नहीं की ना उस पर
8: भाई, सेकंड एंड थर्ड लेवल की चेकिंग
1: होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे होगी इस बैठक के बाद।
3: श्वेता देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक आज रात
0: तक बात करने की बात कही थी गोविंददेव गिरी ने, लेकिन अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई औपचारिक सूचना अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद गोविंद देवगिरी जरूर पत्रकारों से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जो अभी तक की जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है कि जो जितने साधु संत इसके भीतर, जो ट्रस्ट के भीतर मौजूद थे, उन्होंने इस्तीफे से पहले जो अयोध्या के ट्रस्ट का नुकसान हो रहा है, अयोध्या में जो लोगों की भावनाओं का नुकसान पर जो कुठाराघात है, या फिर जो गलत संदेश गया है, इस पर एक सुर से ये सभी लोग उस मीटिंग में उन्होंने कहा है। इस्तीफे पर इस वक्त चर्चा चल रही है, कुछ देर में इसका भी औपचारिक फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी औपचारिक फैसला आना बाकी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जा रही है कि एक प्रेस नोट आएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी एक वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें इस मीटिंग में क्या हुआ इसे बताया जाएगा, लेकिन जिसे कहते हैं फुल हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। रात को गोविंद देवगिरी या कल गोविंद देवगिरी पत्रकारों से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। श्वेता,
1: तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, अभी ऐसा लग रहा है कि 5 बजे तक संभव हो, लेकिन अभी बैठक शुरू हुई है जिसमें जो इस्तीफा है उसके प्रस्ताव को सामने रखा गया है कि उसको स्वीकार किया जाए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो कि ये दोबारा ना हो। वहां पर जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर उसको आड़ दी जाती थी जो व्यक्ति चोरी कर रहा था, लगातार कितने महीनों तक जेब के साथ लोग जा रहे होंगे वहां पर महंत नवल किशोर दास जी। और भले हम ये मान लें, भले उसमें हम कहें कि चलिए चंपत राय अपने घर नहीं लेकर गए वो पैसा, क्योंकि उसको सब कोई कह रहे हैं कि नहीं भाई उनका आचरण तो संदेह से परे है, पर ये समझाइए कि अगर इस तरह की चीजों से भी तो आंख मूंदा गया, और इस वजह से अगर आज ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को चलाने का तरीका अलग होना चाहिए, ट्रस्ट को चलाने वाले लोग अलग होने चाहिए, तो क्या ये आपको गलत लग रहा है?
0: जी मालिक,
2: नहीं नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ठीक है, उन्होंने संगठन में काम किया है, समाज में काम किया है, पर संस्थाएं चलाना और प्रशासन के साथ समन्वय बनाना एक अलग इसकी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है जो लोग उस व्यवस्था में मर्मज्ञ लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, उनको वहां पर स्थापित किया जाए और आज ट्रस्ट कुछ कठोर निर्णय ले। ये ट्रस्ट कोई दो चार लोगों का नहीं है, ये ट्रस्ट किसी एक समाज का नहीं है, ये ट्रस्ट समग्र हिंदू समाज के आस्था का केंद्र बिंदु है। इस घटना से लाखों लोगों की श्रद्धा को आघात पहुंचा है, और वर्तमान में जो ट्रस्टीगण हैं उनका मुझे लगता है, क्षमा कीजिए, कर्तव्य है कि सबकी श्रद्धा को व्यवस्थित बनाए रखना, ये उनका कर्तव्य है। इसके लिए कितना भी ट्रस्ट में फेर बदल करने पड़े तो करना चाहिए, दायित्व मुक्त करना चाहिए कुछ लोगों को जिन पर कई संदेह हो रहा है, क्योंकि संदेह जब होता है तो फिर समाज विश्वास नहीं कर पाता। आप कितने अच्छे हैं वो आपका समाज संगठन जानता है, आप जानते हैं, पर जनता तो नहीं जानती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है कि संगठन में बहुत कुछ परिवर्तन होना चाहिए, दायित्व पर परिवर्तन होना चाहिए, और जो कुशल लोग हैं, और मैं एक निवेदन और कर रहा हूं कि जो संत यहां पर इसमें विराजमान हैं, उनकी बहुत बड़ी राम जन्मभूमि में निर्माण में आंदोलन में भूमिका रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आज शारीरिक दृष्टि से वो क्षमता नहीं है उनके पास, क्योंकि शरीर तो सबका स्वस्थ हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से उसमें सहभागिता कर पाए। तो मैं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, कि कम से कम जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, अपनी संस्थाओं को कम समय दे करके इस बड़ी संस्था को ज्यादा समय दे करके काम व्यवस्थित करें और करवाएं। सब कुछ करेंगे नहीं, करवाएं, जो कुशल लोग हैं उनको उसमें प्रवेश दिलाएं, और इसमें रिश्तेदारी और जान परिचय से परे रहें। जो पारदर्शिता का किसी प्रकार से कलंकित करने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को दूर करें, ये आस्था का विषय है। आस्था में दूसरा रास्ता नहीं होता, राम मंदिर में लोगों की आस्था बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना चाहिए। और फिर प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों पर उंगली उठी है उनको ट्रस्ट से बाहर होना आवश्यक है, हो जाना चाहिए कुशलता से, ये मेरा विनम्र निवेदन है।
1: संतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को भी फॉलो कर रहे हैं जो इस पूरे मामले में चल रहा है। संतोष, अभी ये बैठक जो कि उस जांच से बिल्कुल अलग है, मतलब वो जांच में जो चीजें हैं उसको लेकर भरोसा भी यहां पर अभी जो जानकारी आ रही है उसमें जताया गया है, और उसको देखते हुए ही यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। संतोष,
6: देखिए बिल्कुल, जांच एक अलग चीज है। जांच दो तरीके से हो रही है। एक एसआईटी जांच कर रही है जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट दी और उस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर हुई, और अभी जो डिटेल रिपोर्ट है वो सबमिट होना बाकी है। इस डिटेल रिपोर्ट में जो एसओपी है कि कहां कहां ट्रस्ट में चूक हो रही थी, कहां कहां लापरवाही बरती जा रही थी, कैसे ये चोरी हो रही थी, और संभावना इस बात की भी है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएगा कि चोरी कब से होने की आशंका है, तो ये डिटेल रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अपना काम कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चंपतराय का ड्राइवर रमाशंकर यादव टिन्नू यादव गिरफ्त में है। रमाशंकर यादव टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव 3 लाख के साथ 3 लाख बरामद हुए, गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे जो गणना करने वाले, जो काउंटिंग करने वाले लड़के थे, जो 8 लोग गिरफ्तार है, उसमें सबसे बड़ा जो सबसे अहम किरदार है वो अनुकल्प मिश्रा का है। अनुकल्प मिश्रा की हैसियत ये थी कि अभी कुछ महीने पहले उसने रामकथा कराई, रामकथा गांव में कराने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, और उसमें चंपत राय से लेकर के इस अयोध्या के जो मेयर हैं तमाम लोग पहुंचे, और जब हम उस गाँव में रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो वहां के लोगों का कहना था कि हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर इस नए लड़के ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि इतनी दिव्य भव्य राम का भागवत कथा हुई। भागवत कथा से किसी को गुरेज नहीं था, लेकिन जिस दिव्यता से हुई उस पर सभी का शक हो गया था। तो आप सोचिए कि लगातार चोरी हो रही थी, चोरी होने के बाद निगरानी नहीं रखी जा रही थी, 17 साल से एक रेडियो मेंटेनेंस ऑपरेटर था, उसके पास जिम्मेदारी थी उस कंट्रोल रूम की, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की, तो वो अपना काम मॉनिटरिंग का छोड़ करके बाकी सब काम कर रहा था। चंपत राय का प्रोटोकॉल देखता था, वीवीआईपी का प्रोटोकॉल देखता था, क्राउड मैनेजमेंट करता था, लेकिन सीसीटीवी की जो निगरानी थी, सीसीटीवी का मेंटेनेंस था, वो नहीं देख पा रहा था। 17 साल से वो यहीं पर जमा था। भारी मुश्किल के बाद जब ये खबर हम लोगों ने दिखाई कि 17 साल, तो एसआईटी ने बाकायदा उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए, तब जाकर के उसको रिलीव किया गया। तो एक तरीके से एक प्राइवेट फर्म की तरह चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट में तमाम लोग थे, लेकिन सारी शक्तियां इन्हीं दो के पास निहित थी। आपको श्वेता जी याद होगा जो जमीन का घोटाला हुआ उसमें भी 3 ही लोग आए, ट्रस्ट में और किसी का नाम नहीं आया। सवालों के घेरे में जिन रजिस्ट्रियों को लेकर के, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमला कर रहे हो, समाजवादी पार्टी से पवन पांडे कह रहे हो, या तमाम अन्य लोग कह रहे हो, उनके सब में सारे लैंड डिस्प्यूट में कैरेक्टर दो बड़े कॉमन है, एक चंपत राय होंगे या फिर उनके करीबी अनिल मिश्रा होंगे। ये एक चीज है। बाकी ट्रस्ट के और भी मेंबर्स, उनके ऊपर सवाल खड़े नहीं हुए। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास को लेकर के सब में बहुत आस्था है, सबको बहुत पूजनीय है, पूरे देश के लिए पूजनीय है, लेकिन जब ये ट्रस्टी महासचिव जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, चंपत राय के ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे ट्रस्ट की निगरानी की, पाई पाई जोड़ करके रखने की, जिन लोगों ने एक तरीके से शबरी के बेर की तरह एक गाँव की महिला ने 5 रुपये चढ़ाए, उस 5 रुपये को संरक्षित करने की जिम्मेदारी थी, और लूट हो गई एक तरीके से राम मंदिर में, तो ये आस्था पर कुठाराघात। तो यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की। जांच दो चल रही है, एक एसआईटी की जांच चल रही है और एक अयोध्या पुलिस जांच कर रही है, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ग्रिल किया जा रहा है, अयोध्या जेल में जाकर के पूछताछ की जा रही है। तो ये जांच का सिलसिला जारी है, लेकिन एक तरफ ये ट्रस्ट की बैठक से चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो भविष्य का जो फैसला होना, औपचारिक ऐलान होना है, वो जरूर हो जाएगा, लेकिन इस ट्रस्ट की बैठक से लोगों में ट्रस्ट जरूर पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए, और ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है जिन लोगों का भरोसा टूटा। राम मंदिर सदियों के इंतजार, दशकों के संघर्ष के बाद राम मंदिर तैयार हुआ है, तमाम लोगों ने जाने दे दी। मैंने कई लोगों से बात की, कार सेवक हैं जो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गए, कोई देख नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा है, और आज जब उनसे बात करिए तो वो बहुत आहत नजर आते हैं। जी
1: संतोष, जो बात कर रहे हैं संगीत रागी जी, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, घूम फिर कर जो आरोप लग रहे हैं उसमें उसके केंद्र में आ जा रहे हैं ना चंपत राय। आप भले उनकी ईमानदारी की दुहाई दें, और मैं एक बार फिर कहती हूं कि अभी जांच चल रही है, लेकिन हर एक, चाहे जमीन की डील हो या फिर चढ़ावे के मामले में जो लोग पाए गए हैं वो सब इनके करीबी हों, वो सारी चीजें तो एक ही जगह जाती हैं।
7: अब ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे तो फिर आपका बवाल हो जाएगा। गांधी जी की निष्ठा पर तो सवाल नहीं हम करते हैं ना, लेकिन भारत विभाजन हुआ ना, मैं चंपत राय जी की फिर निष्ठा पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं उनकी निष्ठा पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, हस्सिप मत कीजिएगा, मैं दो चीजें बोल रहा हूं। अभी भी जो आपके
8: गांधी तुलना कर रहे हैं, मतलब ये तो हत्या कर दिया
7: आपने। नहीं नहीं, देखिए इसको एनेक्डोट के तौर पर आप लीजिए,
8: अरे आप किसी और से तुलना कर दीजिए
7: प्लीज, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए, बीच में मस्त हस्ते।
8: कल आपके एक संघ के साथी थे, उन्होंने कहा कि जैसे लोकमान्य तिलक
7: मेरी रक्षा करेंगे, लोकमान्य तिलक जी मेरी रक्षा करेंगे, श्वेता जी मेरी रक्षा कीजिए, थोड़ा सा ये बहुत आक्रामक हो रहे हैं, थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिए। मेरा कहना है कि हम कल जाकर के चंपत राय जी यदि मान लेते हैं कि SIT की रिपोर्ट में या इन्वेस्टिगेशन में पाए जाते हैं, तो किसी को ऐसा नहीं है कि कोई, हम कह रहे हैं कि वो एकदम दूध के धुले हैं, हमारी कल्पना के परे है ये, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। हमें संतों के बारे में भी मुझे उसी प्रकार की आस्था है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो हमारा राम मंदिर के प्रति आस्था जो है लोगों का, उसमें कमी नहीं आई है। कमी कहाँ आई है, ट्रस्ट डेफिसिट किनके पास हुए, जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनके बारे में ट्रस्ट डेफिसिट आया है कि भाई जिन पर पूरे लोगों को ये सारे राम मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, उनको कम से कम सबसे ज्यादा इसके बारे में सचेत रहना चाहिए था। और ये जो दाग लगा है, मैं तो बार बार करता हूं, सामान्य आदमी ये निर्णय थोड़े अंतर करेगा कि ट्रस्ट ये है, विश्व हिंदू परिषद ये है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये है, वो इतना अंतर नहीं करने जा रहा है। इसलिए ये जो
8: संगीत जी एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या ये राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज के लिए हुआ था, राष्ट्र को समर्पण के लिए हुआ था, या विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए हुआ था? भाई क्यों नहीं, क्यों उसका RSS अपना कंट्रोल चाहता है, क्यों इसमें RSS का नाम आ रहा है? चंपत राय की जगह जाएंगे तो भागड़ा साहब आएंगे, क्यों आएंगे भाई, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री है?
7: नहीं नहीं,
8: क्यों नहीं एक एक एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट की तरीके से जो कोई कॉम्पिटेंट आदमी हो, जिसका ना विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना हो, ना कांग्रेस पार्टी से हो, ना समाजवादी से हो, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी,
7: नहीं
8: क्यों नहीं कोई रिटायर्ड,
7: बड़े बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान,
8: मैं पूछ रहा हूँ।
7: नहीं नहीं नहीं, आपने आपने उत्तर, मैं जो इसका उत्तर दे लेने दीजिए, नहीं नहीं आपने प्रश्न किया,
1: ये चर्चा हमारी चलती रही, एक एक उत्तर खबर दे देते हैं जो बैठक के अंदर से आ रही है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो की ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि व्यवस्था में कुछ खामियां थी, इस बात को स्वीकार करते हुए उनकी तरफ से एक तरीके से ट्रस्ट की ओर से ही ये गलती को माना जा रहा है। ट्रस्ट की जो बैठक चल रही है चढ़ावा चोरी के बाद, उसमें यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें कोषाध्यक्ष की तरफ से गलती मानते हुए कहा गया है कि लोगों के भरोसे को ठेस पहुंची है।
7: देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा था, मैं तो एक एनेक्डोट के तौर पर उस चीज को ले रहा था, आप उसको बहुत आगे खींच करके ले गए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि कल जाकर के चंपत जी पर यदि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल करके आएंगी तो वो दंड, ये तो विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने भी कहा कि भाई कल जाकर के यदि कानून के अनुसार होना तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात, माखन लाल फोतेदार क्या थे भाई, कांग्रेस पार्टी के तो बड़े करीबी थे प्रधानमंत्री के गांधी, लेकिन वैष्णो देवी ट्रस्ट में उनका क्यों हिस्सेदारी था, वहां पर जाकर के वो उस ट्रस्ट के क्यों होंगे? दूसरी बात, जो जो दक्षिण के अंदर जो मंदिर थे वहां पर ट्रस्टियों को किन के लोग हैं, अपने लोग, तमिलनाडु के 20,000 मंदिरों के ट्रस्टियों का आप जानेंगे कि कौन कौन लोग उसके ट्रस्ट के हिस्से होते थे? ये अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं, जब हिंदू मंदिरों की बात आती है उनके उनके किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो RSS का है, किसी ने नहीं कहा कि वो ट्रस्ट क्या है, वो RSS का है क्या, RSS उससे पैसे लेती है क्या, ट्रस्ट के वो पैसे का जो आता है पैसा वो RSS के फंड में जाता है क्या, ऐसे सवाल आप क्यों उठा रहे हैं? चूंकि
8: तो ये सवाल ही नहीं, पैसा RSS के
7: नहीं जाता। आपने ये बात जिक्र किया, ये मंदिर किसका है, मंदिर हिंदू समाज का है, मंदिर हिंदू समाज का है, नहीं नहीं
8: डिफेंड करिए,
7: मंदिर हिंदू समाज का है, ये एलिगेशन आप बेकार में आप करना शुरू कर देते हैं। आपने क्यों ये बात जिक्र किया भाई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, विश्व हिंदू परिषद वहां मैनेज कर रही है क्या, विश्व हिंदू परिषद मैनेज कर रही है क्या, ट्रस्ट मैनेज कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद में अंदर उन्होंने काम किया था,
8: मुझे नहीं मालूम कि आप में कोई आप अपराध बोध है।
7: नहीं नहीं, मेरा कोई अपराध बोध नहीं
8: मालूम,
7: चूंकि आप लांछन लगा रहे हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं।
8: मैंने एक बार भी कहा कि ये पैसा RSS के पास जा रहा है, एक बार भी मैंने कहा मैंने ये कहा कि भाई आपने मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा काम किया, मंदिर निर्माण किया, बहुत अच्छा काम किया, अब इस मंदिर को जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसको हिंदू समाज को क्यों नहीं समर्पित किया जाता, क्यों इसमें चंपत राय जी
9: और किसको ये समर्पित है?
8: आपने बोला
9: नहीं तो ये किसको समर्पित है? नहीं आप मुझे बता दीजिए किसको समर्पित है?
8: एक मिनट
9: ये क्या?
8: एक मिनट,
9: ये भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित है, विश्व हिंदू परिषद को समर्पित है, अरे भाई हिंदुओं की आस्था को ही समर्पित है।
8: हो रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने कहा कि चंपत राय जी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अब उनकी जगह कौन आएगी? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्या हिंदुस्तान का कोई मुख्य चुनाव मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज जिनकी क्रेडिबिलिटी में कोई संदेह नहीं है, क्या उनको नहीं जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता? क्या कोई आईएम के प्रोफेसर
9: बांगड़ा जी की क्रेडिबिलिटी पर आपको शक है?
8: उसको मैनेज करेंगे?
9: नहीं, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? वो क्यों नहीं हो सकते हैं?
1: आशुतोष जी, अगर कोई अकाउंटेंट है किसी का, वो
9: चेयरमैन रह चुके हैं
8: उससे भाई, मैं
9: वो एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का वो चेयरमैन रह चुके हैं।
8: परिषद और आरएसएस ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ले, ये प्रॉब्लम
9: है।
8: हमारे साथ राय ने उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया।
1: हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज
9: प्रॉपर्टी का मतलब
1: जो
9: होता है।

0: स्वागत है आप दोनों का भी। स्वामी चक्रपाणि महाराज, आप पहले बताइए, कहते हैं कि कठिन समय में कठोर कदम आवश्यक हैं, अब वो कठोर कदम कितने कठोर हो कि ऐसा कभी कोई, क्या मतलब सिर्फ राम मंदिर चढ़ावे एक मामले में, क्या कहीं और करने की कोई हिम्मत न कर पाए?
1: नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और यह तो जो कलंक लगा है अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस राम राज्य में यह परिकल्पना बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोई चोरी कर सकता है, वहां पे स्वयं अयोध्या जी के भव्य श्री राम मंदिर में इस प्रकार की घटना हुई, यह समस्त राम भक्तों के लिए बहुत पीड़ादायक है। यह एक मौका मिल गया जो हिंदू विरोधी थे उनको उपहास उड़ाने का, हंसने का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देखो किस प्रकार से मीम बन रहे हैं, तमाम प्रकार की आलोचनाएं हो रही हैं, तो इन्होंने मौका दिया। लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं भी, आशुतोष जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और काफी ये सूझबूझ रखते हैं, लेकिन बात न्याय सम्मत होनी चाहिए। ये तय करना है, ये पूरा देश दुनिया जानता है, राम मंदिर कैसे बना, राम मंदिर क्या सिर्फ आंदोलन से बना, क्या राम मंदिर को संसद ने बनाया? राम मंदिर बना तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कैसे आया? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इसलिए आया कि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसमें अनेक पक्षकारों ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के तौर पे मैं खुद पक्षकार था, अपील नंबर 2636 था, एक लंबी लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था, सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन सरकार ने पूरे पक्षकारों को ट्रस्ट में रखना तो दूर, निमंत्रण तक नहीं दिया, और बॉलीवुड के बीफ खाने वालों को बुला करके वहां पे रील बनवाने के लिए उसको परोस दिया। अब वर्तमान में अभी आशुतोष जी जो कह रहे थे कि जज क्यों नहीं बन सकता, अरे भाई जज क्यों बने, रिटायर जज बने? जज का काम जो जज करे ना, मंदिर का काम तो धर्मगुरु करेंगे ना। मंदिर में ट्रस्ट में धर्मगुरुओं को होना चाहिए, 13 अखाड़े के प्रतिनिधि होना चाहिए, जो पक्षकार है जिन्होंने मुकदमा लड़ा जमीन बेच के उनको लड़ना चाहिए। अगर जो धार्मिक लोग रहते तो आज ये चोरी नहीं होता, क्योंकि सब जानता है कि देव द्रव्य चोरी करने का परिणाम ये होता है कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़ा बनके उसको भोगना पड़ता है। लेकिन उसको धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस प्रकार की हरकत चोरी किया। तो ये मेरा मानना है कि देखो निश्चित रूप से जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्रा जी ने साफ कहा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी आ रहा था जा रहा था, जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी जाता है, बड़े से बड़े लोग जाते हैं, खूब चीजें चेक इन होता है, लेकिन उनके लिए खुली छूट हो गई थी, तो यह बड़ा दुर्भाग्य था। यह पूरे ट्रस्ट जिम्मेदार है, जिम्मेदारी नैतिक रूप से लेना भी चाहिए, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष जी ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। अरे भाई कैसे पता नहीं है, तो कोषाध्यक्ष बने क्यों? आप बोल देते कि जी हमारा, हम इसको संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी कांड होता गया और मात्र 45 दिन के सीसी कैमरे में 90 वीडियो मिले हैं चोरी के, अभी और कितना पता नहीं कितने गायब हो गए। आप बताइए, वो सोच रहे कि सीसी कैमरा गायब कर दिए तो हमारी सबूत मिट गया? ये नहीं जानते कि अगर भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के पास सबके सीसी कैमरे जो मन में सोचते हैं उसके भी होते हैं, मनसा वाचा जो भी कर्म करते हैं के भी होते हैं, और यहां बच जाओगे भले सोर्स पे, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी कढ़ाई में तलवाएंगे, वहां पे नरक ही भोगने पड़ेंगे, रौरव नरक मिलेगा ऐसे जिन लोगों ने कृत किया। तो मेन बात है कि सत्य बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचारी जो भी है, चोरी जिसने भी किया है, ऐसे कड़े से कड़े सजा मिलना, ये छोटी मछली बड़ी मछली में ना जाकर के जो चोर है उसे पकड़ना चाहिए, जो जिन्होंने उसको साथ दिया सहयोग दिया उसको पकड़ना चाहिए। और ट्रस्ट के बारे में मेरा सीधी सी मानना है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता, मेरा दावा है कि गवाहों में भी होते हैं। सवाल इस बात का, इतने महीनों से सालों से चोरी होती गई और आप बैठे रहे, आप वो करते रहे हो। और पहला चंपत राय जी का वीडियो देखा जब चोरी का आरोप, ये देखिए विपक्ष का नेता लगा रहे अखिलेश यादव जी जो अभी तक गए नहीं, वो लगाया और सही भी साबित हो गया कि चोरी हुआ है, और चंपत राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि नहीं यहां पर कोई नहीं पाई गई तो 8 लोग कैसे गिरफ्तार हो गए भाई। तो ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं चोरों को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, जिन्होंने बचाने का प्रयास किया वो भी दोषी है। तो इसलिए नैतिक आधार पे पूरे ट्रस्ट दोषी है, उनको नैतिकता के रूप में अगर नहीं भी इन्वॉल्व है तो भी उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए, और नए ट्रस्ट जो बने उसमें आंदोलनकारी से भी लेना चाहिए निश्चित रूप से, जिन्होंने आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जो पक्षकार है उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जो लोग अधिवक्ताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको श्वेता जी दिखाऊंगा अपने पास,
0: ये जब राम मंदिर
1: सर्वोच्च न्यायालय के
0: लोगों के लिए खोला जा रहा था, जब लोग आ सकते थे उसके बाद से पूजा पाठ शुरू होती, जब वो पूरा जो समारोह हुआ था उस समय भी ये सवाल उठे थे कि वहां के आसपास के गांव वाले, वहां पर जो संत समाज से क्या सबका प्रतिनिधित्व, ये उस समय सवाल उठा था। आशुतोष आपको जोड़ रहे थे,
2: स्वामी जी ने जो बात की उन्होंने शायद मेरी बात को गलत समझा, मैंने बिल्कुल मेरा इशारा यह नहीं था कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का, मेरा कहने

0: मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हों, जो किसी भी संगठन से ना जुड़े हुए हो, जिनकी ईमानदारी पर किसी तरीके का शक ना हो। अब ये कहना कि चंपत राय जी का 40 साल, भाई मैं इस तर्क को नहीं मानता कि 40 उनके जीवन निष्ठा, अरे जब तक आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक सबकी निष्ठा पे सवाल नहीं खड़े होते, जब पकड़े जाते तभी निष्ठा पे सवाल खड़े होते ना, तो ये कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग जिनकी ईमानदारी पर किसी तरीके का कोई शक ना हो,
1: पर ऐसे के अंदर 10 लोगों का चयन होना, जैसे वो कह रहे हैं अखाड़ों से, उसके अंदर से भी तो कॉम्पिटेंट लोग आ सकते हैं।
0: मैंने ये नहीं कहा अखाड़ों से नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि जिनकी निष्ठा पर, जिनकी ईमानदारी पर कहीं कोई शक ना हो, ऐसे लोगों को रखना चाहिए, ना कि किसी संगठन विशेष का रखना चाहिए। भाई मैं तो बार बार सवाल ही कह रहा हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को हटा के आप विश्व हिंदू परिषद के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को रखना चाहते, महामंत्री क्यों रखना चाहते भाई? क्या मतलब ये मानता है कि विश्व हिंदू परिषद जो है राम जन्मभूमि पर अपना एक कॉपीराइट समझता है? भाई आपने लड़ाई नहीं बहुत अच्छा किया, उदारता दिखाइए, हृदय की विशालता दिखाइए।
1: ट्रस्ट का गठन कैसा हो, आज देखिए इस बात पर चर्चा भीतर चल रही है, 2 लोगों का इस्तीफा है, लेकिन क्या पूरा का पूरा ट्रस्ट ही पुनर्गठित हो, क्या उसमें जो प्रतिनिधित्व है लोगों का वो अलग किस्म का हो, या फिर आप ये मानेंगे कि नहीं जांच तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं और तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट चलेगा सबको?
2: श्रीराम, श्वेता जी, मैं एक आशुतोष जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो है वह विचारधारा पर आधारित है, और विचारधारा की बात है तो कुछ लोग राम को मानने वाले हैं, कुछ लोग राम को नहीं मानने वाले हैं। जो राम को मानने वाले हैं उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में रखा गया है, राम को नहीं मानने वाले जिन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हमने गोली चलवाई राम भक्तों पर, क्या आप उनको रखवाना चाहते हैं, या क्या आप उनको रखवाना चाहते हैं जिनकी नानी ने कहा कि नहीं जहां जिस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनने वाला है उस पर हम पूजा नहीं करेंगे, वहां प्रभु श्री राम को नहीं देखना चाहते। दूसरी बात, क्या आप उनको रखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को रखना चाहते हैं जिन्होंने कहा, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव ने कहा कि जो राम मंदिर है उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो सारा कुछ विचारधारा का खेल है। जो राम को मानने वाले हैं, जो राम जी की विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं, उन लोगों को इस ट्रस्ट में रखने की आवश्यकता है, और ट्रस्ट में वही लोग हैं। हाँ, अभी जिस तरह की चोरी हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: आचार्य जी, बस एक चीज मैं जोड़ देती हूँ, क्योंकि जो बैठक से खबरें आ रही है ना एक एक करके, उसमें बड़ी खबर इस समय आ रही है कि जो ट्रस्ट है उसमें बदलाव को लेकर चर्चा हुई है, और ये कहा गया है कि बदलाव के बाद लोगों का भरोसा वापस बहाल होगा। चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट के सदस्य भी आहत हैं, ये बात कही गई है, और ट्रस्ट में बदलाव की बात कही गई है, यानी कि इस चीज को स्वीकार रहे हैं। अभी तक देखिए जो ट्रस्ट का गठन हुआ उस ट्रस्ट में लीगल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब रहे, लेकिन सक्रियता नहीं रही, सक्रियता केवल 1-2 लोगों की रही, और इस कारण आज हम देख रहे हैं कि कोषाध्यक्ष, जिनकी एक्चुअली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनके तो शायद हस्ताक्षर भी उन चीजों पर नहीं रहे।
2: देखिए
1: आचार्य शैली जी,
2: इस ट्रस्ट में अखाड़ा से जो संत महात्मा है वह शून्य की स्थिति में है, तो इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद से जो माननीय संत है उस संतों की एक भागीदारी जरूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि सारा कुछ विचारधारा का खेल है। जो प्रभु श्री राम को मानते हैं उनको रहना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद को इसलिए रखा गया था क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 40 वर्ष से ज्यादा लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त किया, और मैं चक्रपाणी जी से भी सहमत हूँ कि चक्रपाणी जी की संस्था, जिस संस्था को चलाते हैं, वह संस्था के लोगों को भी वहां रहना चाहिए था, क्योंकि वह संस्था भी एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इस ट्रस्ट में तिरुपति श्राइन बोर्ड की तरह एक श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, जिस तरह से तिरुपति श्राइन बोर्ड है, और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारा वैष्णो देवी में ट्रस्ट है उस तरह का ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट में साधु संत को होना बहुत अति आवश्यक है। साधु संत हो, ट्रस्ट जो है वह श्राइन बोर्ड की तरह हो, और जज की कोई जरूरत नहीं है, जज तो अपना न्यायाधीश न्याय का काम करते ही, उसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिर्फ विचारधारा की बात है तो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस, यह एक विचारधारा है जो प्रभु श्रीराम को, कृष्ण को मानने वाले हैं। प्रभु श्रीराम के लिए लोगों ने गोलियां खाई है, इसलिए उन लोगों ने रखे गए हैं और उन लोगों को भी रहने की जरूरत है। उन लोगों को रहने की जरूरत नहीं है जो श्री राम जी को नकारते रहे, जो श्री राम जी के खिलाफ बार बार केस लड़ते रहे। कपिल सिब्बल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2 साल और आगे बढ़ा देती उस मुद्दे को, इसलिए विपक्षी पार्टियां नहीं होनी चाहिए।
1: जो भारत के परासरण जी इसका, इसके फाउंडर मेंबर हैं, उसके फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं, इसके
2: परासरण जी के इस केस को लड़े हैं
1: जी,
2: जी परासरण जी सीनियर मोस्ट लड़े हैं और सबसे वरिष्ठ 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र के एक वरिष्ठ और एक ईमानदार एडवोकेट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति
1: और ट्रस्ट के गठन को के समय ही कहा गया था कि हिंदू धर्म में आस्था आवश्यक है, बाकी सारी चीजें अलग, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ जो बैठक में अभी तक सामने आ रहा है, कुमार अभिषेक से हम जान लेते हैं कि क्या क्या अब तक हुआ है। अभिषेक, क्या क्या चीजें, क्या क्या जानकारियां निकल कर आई हैं? अभिषेक, आवाज आ रही है? आज गर्मी भी बहुत है, गर्मी और उमस के बीच ये बैठक जो चल रही है इस समय, उसमें जो चढ़ावा मामले की जो आंच है वो सब महसूस कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट की बैठक में इस बात को स्वीकारा गया है कि बहुत बड़ी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि लोगों का भरोसा डिगने का खतरा है। बदलाव ट्रस्ट में क्या होना चाहिए इसको लेकर भी चर्चा हुई है और बदलाव के बाद भरोसा वापस बहाल।
0: भगवान राम में किसी की आस्था डिगने वाली नहीं है,
1: न भगवान राम में न मंदिर में।
0: सब जानते हैं कि चोरी हुई है, जिन्होंने चोरी की है, जो उस चोरी को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, जिनकी उस चोरी में भूमिका है, सवाल उस पे है। ये कहना कि राम मंदिर में लोगों की आस्था कम हुई, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये एक तरीके का दुष्प्रचार है, ये प्रचार नहीं होना चाहिए। ये राम की आस्था का प्रश्न, उसमें नहीं सवाल खड़े होने चाहिए। लेकिन जो चोरी हुई है उसकी तो जांच होनी चाहिए भाई। जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी हम भगवान राम की रक्षा करेंगे, वो क्यों नहीं रक्षा कर पाए? दानपात की रक्षा क्यों नहीं कर पाए?
3: हो गई बात
0: भाई, क्यों क्या, जो दानपात की रक्षा नहीं कर पा रहे थे तो बाकी क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि पूरे बोर्ड के पुनर्गठन का सवाल होना चाहिए। बोर्ड का हर मेंबर उसके लिए जिम्मेदार है, कुछ कम कुछ ज्यादा। आपकी जिम्मेदारी थी कि वहां चोरी ना होता, आप ऐसी व्यवस्था बनाते कि वहां चोरी नहीं होती। वो व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? वो व्यवस्था सिर्फ एक आदमी में क्यों पूरी तरीके से आपने केंद्रित कर दिया? वो आदमी जो उनके ड्राइवर को इतनी आजादी थी कि वो जहां काउंटिंग पैसा रखा जाता था वहां निर्द्वंद से आते जाते थे, ये कैसे होने दिया गया?
3: सामान्यता देखिए, सामान्यता यही होता है ट्रस्ट की फंक्शनिंग में। आप देखेंगे कि एक ही दो लोग मूलतः काम करते हैं, बाकी सदस्य के नाते तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। सामान्यतः यही ट्रस्ट में काम होता है। ये बात बिल्कुल एक वाजिब सवाल उठता है कि भाई एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता जिसमें एक्सपर्ट्स लोग होते या जिनकी जानकारी है, निगरानी करने में ज़्यादा, बहुत सारे तो ऐसे उसमें संत हैं जिन जो एक्टिव ही नहीं है। आज के दिन में वो एक्टिव हो भी नहीं सकते हैं, वो बामुश्किल आज के बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस पर गौर से विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आई कि भाई विश्व हिंदू परिषद क्यों, आखिर ये लड़ाई लड़ा कौन? जिस शिद्दत से विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी, गोलियां खाई, बदनामी किया, उसके कार सेवक मारे गए अयोध्या में, सिर्फ उसी दिन कार सेवक नहीं मारे जाए थे, कोठारी बंधुओं को हम कैसे भूल जाएंगे आज के दिन में, उनकी हत्या कर दी गई, सीधे उनके मस्तक पर गोली चलाई गई थी। तो वो विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकर्ता थे, कहीं और के कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का होने के कारण वो जनरल वहां पर, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो नालको के चेयरमैन रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का हो जाने के कारण वो अयोग्यता हो जाए और क्यों इस पर सवाल उठे, तो क्या किसको, मैंने तो ये सवाल उठाया था। और नहीं देखिए, चूंकि एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे मूवमेंट को, आज राम मंदिर जहां पर खड़ा है वो खड़ा होता ही नहीं। यदि विश्व हिंदू परिषद नहीं होता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता, तो आज राम मंदिर वहां नहीं खड़ा होता। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार है क्या? सारे लोग तो कह रहे हैं कि नहीं है, पूजा उपासना पद्य जो स्थल कानून है उसी को मान लेना चाहिए। आज कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कौन लड़ने के लिए तैयार है? आप जरा मुझे बताएं तो, काशी विश्वनाथ की लड़ाई कौन लड़े? क्या कांग्रेसी लड़ने के लिए आ रहे हैं, समाजवादी लड़ने के लिए आ रहे हैं, या कोई अन्य पार्टियां लड़ने के लिए आए? तब तो ये कभी सवाल नहीं उठता है। आज जाकर के विश्व हिंदू परिषद पर मैं फिर भी ये जोर देकर के कह रहा हूं, और ये पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, कोई भी जिम्मेदार यदि कोई भी उसमें पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आस्था का सवाल है, और वाकई जिसे हम कह सकते हैं कि वाकई हिंदुओं की आस्था जो है वो फिर से वहां पर आए, ट्रस्ट में आए।
0: आप उसको ट्रस्ट के, आप गलत लाइन पे लेके जा रहे हैं। किसी भी हिंदू की आस्था भगवान राम मंदिर के मंदिर में नहीं दिखी है।
3: तो मैंने ट्रस्ट के मेंबर पे मैंने बोला,
0: आप
3: ट्रस्ट के मैनेजमेंट की मैं बात की।
0: मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक हिंदू की आस्था इतनी कमजोर है कि एक चोरी हो गई तो भगवान राम पे आस्था कब?
3: ये तो ये लाइन मत दीजिए। इस चीज को
0: मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस चोरी का जो जड़ है, जो मूल है, उस पर देखने की जरूरत है। मूल
3: जड़ क्या है भाई? मैनेजमेंट जड़ है।
0: अगर एक
3: मैनेजमेंट जड़ है,
0: अगर वो संगठन किसी की को अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लेगा तो यही होगा उसमें।
1: स्वामी चक्रपाणी
0: जी, बिल्कुल यही होगा।
1: ये जो
0: उसको निजी प्रॉपर्टी बना के चलाया जा
1: रहा है, यहाँ पर आ खड़ी हुई है। आप भी कह रहे हैं कि संतों के साथ साथ, मतलब अगर हिंदू महासभा की भी उसमें नुमाइंदगी, ये सारी चीजें अपनी जगह है, पर क्या VHP, क्या RSS पूरी तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ना होने चाहिए? दूसरी चीज, क्या अब जो सनातन बोर्ड का की मांग जो लंबे समय से होती आ रही है, क्या वो इसका विकल्प हो सकता है?
4: नहीं, देखिए श्वेता जी, बड़ी स्पष्ट है, मैं संघ या विश्व हिंदू परिषद को अनदेखा नहीं, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल उनको हटाई दो, कैसे कोई कह सकता है, लेकिन मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि जब आंदोलन करना होता है तो सभी हिंदुओं ने किया ना, समस्त हिंदू ने किया, अनेक हिंदू संगठनों ने किया, जिसकी भावना थी उन सब की रहा। लेकिन जब बात ट्रस्ट की आती है तो आप अपने अपने उसकी सिर्फ क्राइटेरिया ये रख देते हो कि वो BHP का होना चाहिए, चाहे RSS का होना चाहिए, ये गलत है। क्या दूसरे हिंदुत्व पे काम करने वाला हिंदू नहीं है? क्या उनको आप छाट दोगे? तो ये मैं कह रहा हूं कि आप इतने बड़े, आप तो सरकार है इतने प्रचंड में, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब जो लोग हिंदू संगठन के थे, जो कट्टरपंथी थे, जिन्होंने खूब लड़ाई लड़ी स्वयं सिर्फ राम के लिए, उनको आपने संघ के मोहन भागवत जी थे, उसको अनदेखा कर दिया गया, निमंत्रण तक नहीं दिया गया, इसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मूल विषय यह है कि आप सबके साथ न्याय करो ना, न्याय सम्मत, जो उससे जुड़े हैं, भले हमारी विचार न मानता उसे क्या हो गया वो, लेकिन क्या वो हमारा हिस्सा नहीं हो सकता? उसके लिए कार्य तो किया है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात कही है कि कृष्ण जन्म भूमि के लिए कौन कर रहा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी केस चल रहा है भाई, और इसमें RSS, राम मंदिर में RSS पार्टी नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद पार्टी नहीं थी, फिर भी राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आया। और दूसरी उदाहरण, भोजशाला में आप देखिए ना, भोजशाला में वहां पे मध्य प्रदेश में कितने सालों से BJP सरकार है, लठ करवाती थी, जो भी लोग भी जाते डंडे मरते थे, हम खुद ही डंडे वहां पे जाके हमारी कई बार गिरफ्तारी हुई है, आंदोलन हुआ, उसमें RSS पार्टी नहीं थी, वहां विश्व हिंदू परिषद पार्टी नहीं थी, अन्य हिंदू संगठन थे, हिंदू महासभा थी। अब देखिए भोजशाला हिंदुओं के पक्ष में आया निर्णय, और जितने मंदिर है जिन मुगलों ने तोड़ा है, मुगलों ने जिन पे कब्जा किया है, एक एक मंदिर, हजारों मंदिर हिंदू समाज लेगा, चाहे RSS चाहे कोई समर्थन दे ना दे, लेकिन हिंदुओं की तो अब अंदर एक जो वेदना है कि जो मुगलों ने तोड़ा उसको तो लेकर रहेगा। ये आप नहीं गारंटी कर सकते RSS समर्थन नहीं, मोहन भागवत जी तो पिछली बार बोल दिए कि हम राम मंदिर के अलावा दूसरे में साथ नहीं देंगे। अरे भाई, उस समय भी नहीं मांगा था, राजनीतिक मजबूरी थी, आपने आया साथ में आया। अब बनारस का लीजिए, बनारस का कौन उसमें संघ और केस में पैरविकार है? मूल विषय इस बात को समझना होगा कि यह एक वेदना है, हमारे जितने मुगल कालीन मंदिर तोड़ेंगे उसके लिए कोई एक हिंदू भी जब तक जिंदा है हिंदुत्ववादी, वो अपने अधिकार लेकर रहेगा, अपनी धार्मिक स्वाभिमान को बचाता रहेगा, उसमें एक संगठन बड़ा नहीं होता। आशुतोष जी की बात एक बार ठीक है, एक आप एक ही संगठन के लोगों को न रखिए, मेरा मानना है आप सत्ता में है तो इसका मतलब दूसरे को आप अनदेखा मत करिए भाई, वो अगर गरीब है, असहाय है, चाहे छोटा संगठन है, इसलिए आप उसको आप दबा देते हैं, ये गलत बात है। हमें लगता है आपको सहृदयता, बड़ा हृदय दिखाते हुए सबको हिस्सेदारी उसमें देनी चाहिए सबको, ताकि वो अपनी दायित्व का निर्वहन करे। आज ऐसा होता तो आरोप विश्व हिंदू परिषद सिर्फ नहीं लगता, आज जब विश्व हिंदू परिषद के लोग पकड़े जाते तो पूरे हिंदुत्व के लिए चिल्लाते हैं, सब हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है, ये बात अच्छी नहीं है। आप चोरी कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, जो चोरी करेगा वही पकड़े जाएगा, या तो सबको जोड़ो, पूरे हिंदू समाज एक है, लेकिन जब आप जोड़ते नहीं हो तब हिंदू करने का अधिकार क्या है भाई आपको? आप जिन लोगों के साथ जो हिंदू लड़ता है उसके साथ ही अन्याय कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। अब जब फंसते हो तो बोलते नहीं है हिंदुओं पे प्रहार है। अरे भाई, जो चोर है चोरी कर रहा है वो तो चोरी है, उसका कोई वो धर्म नहीं है, उसका कोई संगठन से मतलब नहीं।
1: संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं?
3: ये शायद स्वामी चक्रपाणी जी को जानकारी है या नहीं जानकारी है कि परासरन जी कोई विश्व हिंदू परिषद के एक्टिव सदस्य नहीं थे। बाकी जो उसमें संत थे वे संत समाज के हिस्से हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के एक्टिव सदस्य हो ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी को भी आप उसमें ले रहे हैं, चाहे गोविंद गिरी जी हो या बाकी संत महात्मा हो, धर्म संसद से वो सब जुड़े रहे हैं, धर्म संसद को के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा रही है। तो पूरा जो निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, उसका आंदोलन जो है, मैं फिर कहता हूँ, उसका नेतृत्व साधु संतों ने किया, हिंदू धर्म के संतों ने किया, विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने ये कभी नहीं कहा था कि से आप अयोध्या के बाद बाकी जगहों पर आप आंदोलन नहीं, उन्होंने कहा कि संघ इसमें आंदोलन नहीं करेगा। कानूनी तरीके से स्वयंसेवक बिल्कुल जा सकते हैं, और कानूनी तरीके से आज भी स्वयंसेवक ही उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भोजशाला में भी स्वयंसेवक ही हैं सर, ये आपको गलतफहमी आप निकाल दीजिए।
0: वैसे भी संघ
3: भोजशाला भी स्वयंसेवक ही लड़ रहे हैं। आप ये जान लीजिए, संघ संस्था के नाते कभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता है, उसके स्वयंसेवक लोग हिस्सा लेते हैं।
1: शाला का जिक्र तो उन्होंने बीजेपी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि
0: लोगों को देखिए भाई, संघ कोई संस्था ही नहीं है, ये तो संघ कहता है, वो तो कहता है लोगों का समूह है, मतलब कहीं तो कोई सच्चाई रखनी चाहिए।
1: आपको अगर आवाज आ रही है तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब से ये बैठक शुरू हुई है लगभग 3:30 बजे से, एक घंटे का समय अब बीत चुका है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रूप से वहां से निकल कर आ रही हैं?
5: श्वेता देखिए, इस्तीफे की जो बात है वो सबसे आखिरी में आएगी जैसा बताया जा रहा है, यानी कि उस पर फैसला होने के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले चूंकि तमाम साधु संत हैं इस पूरे ट्रस्ट में, महंत नृत्य गोपाल दास से लेकर वासुदेवाचार्य, गोविंदेव गिरी, ऐसे तमाम संत हैं जो कि इस में मौजूद हैं, और सबने एक सुर से ये माना है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सभी लोगों को कहने का मौका दिया गया, शुरू में एक एक करके सभी लोगों ने वहां पर अपनी बातें रखी हैं, और जो बात निकल करके आगे आ रही है वो ये कि इस घटना ने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, छवि के तौर पर भी नुकसान है। अयोध्या जो कि इतना दुनिया भर में जिसने 2-2.5 साल में जिस मंदिर ने इतना बड़ा नाम कमाया, इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अभी इस बात की चर्चा चल रही है, अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। यह जरूर है कि अब यह मात्र औपचारिकता ही रह गई है कि जब भी इस पर थोड़ी देर में फैसला होगा तो यह फैसला माना जा रहा है कि इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार होगा। दोनों लोग, चाहे चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, दोनों नहीं पहुंचे हैं। एक बात, चूंकि इस ट्रस्ट में जितने लोग आए हैं अभी तक आमने सामने कोई नहीं था, जब से ये घटना घटी है, जब से ये मामला सामने आया है, तब से ट्रस्ट के सभी लोग अलग अलग जगह पर बयान दे रहे थे। कुछ लोग थे जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में थे, लेकिन एक साथ सभी लोग बैठे हैं। जो SIT की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है कहा जा रहा है उसे भी रखा गया है, लेकिन चर्चा फिलहाल तमाम जो साधु संत हैं वो अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बातें इस पर रख रहे हैं। थोड़ी देर में श्वेता हमें इस बात का पता चलेगा कि इस्तीफे का क्या हुआ। श्वेता,
1: जो ट्रस्टी हैं, जो सदस्य हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, उनकी तरफ से भी बैठक के बीच में कहा गया है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। सभी जो ट्रस्टी हैं, जो सब बैठक में इस समय शामिल हैं, सबकी तरफ से अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार भी रखे जा रहे हैं, और जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि आखिर में जाकर जो इस्तीफा है उस पर चर्चा, उसको स्वीकार करते हुए खत्म हो जाएगी।
3: एक बात हमको लेकिन जिक्र करनी है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज से मैं बता दूं, ये आपके दर्शकों के लिए है कि भोजशाला में स्वामी चक्रपाणी जी कहीं पर नहीं है, काशी विश्वनाथ के लिए भी कहीं पर नहीं है, और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी चक्रपाणी जी कहीं नहीं है। सब जगह लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं, वही लिटिगेंट के तौर पे हैं। विष्णु जैन किसके तरफ से लड़ रहे हैं, कौन है विष्णु जैन, जरा विष्णु जैन जी से ये बात कर लेते हैं। अरे भाई, कम से कम नेशनल टेलीविजन पर ये मत बोलिए। और आपने क्या बोला चक्रपाणी जी, सबकी हिस्सेदारी, ये क्या मतलब होता है? कोई वहां पर प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी बंटवानी है क्या? राम मंदिर में कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा बंटवाना है क्या? तो कम से कम साधु समाज के तरफ से आप जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कम से कम इस प्रकार की भाषा का तो प्रयोग मत कीजिए स्वामी जी। वो राम मंदिर में कोई प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी नहीं है कि ये ग्रुप आ गया, ये मठ आ गया, वो मठ आ गया, ये मठ आ गया, ऐसा नहीं है। जो भी साधु और संत हैं वो बहुत प्रतिष्ठित हैं। क्या आप साउथ से प्रतिष्ठित संत हैं, नॉर्थ से प्रतिष्ठित संत हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल वहां पर परासरन जी हैं, तो वो सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग थे क्या? ऐसा नहीं है। आप गलत लोगों में संदेश मत दीजिए। और ये क्या मतलब हुआ विश्व हिंदू परिषद चोरी करते हुए? विश्व हिंदू परिषद चोरी कर रही थी वहां पर क्या? वो जो लोग थे सारे वो विश्व हिंदू परिषद के चोर बैठे हुए थे क्या?
1: कृपाणी जी आप जवाब दें, उसके बाद में आचार्य शैलेश तिवारी जी से सवाल करूं।
4: नहीं देखिए ऐसा है, प्रोफेसर साहब व्यक्तिगत जा रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कृष्ण जन्मभूमि में केस कौन लड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का अभी आंदोलन अभी ताल को
1: एक खबर बस देते, एक खबर बस हम जोड़ दें इसमें, अनिल मिश्रा को पद से हटाने पर सहमति हो गई है। अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का इस्तीफा है और अनिल मिश्रा को पद से हटाने को लेकर सहमति हो गई है। क्या आगे ये विचार होगा कि ट्रस्ट से हमेशा के लिए दूर रखा जाएगा, ये अभी देखना होगा, लेकिन फिलहाल अनिल मिश्रा को पद से हटाने पर सहमति बन गई है। जी स्वामी चक्रपाणी जी आप अपनी बात पूरी करें।
4: नहीं देखिए ऐसा है, अभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल तालकटोरा स्टेडियम में हमारी हिंदू महासभा के अध्यक्षता में होगा। अभी हमारे शिष्य द्वारा जो है हमारे लोगों के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि के केस लड़े जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, किससे बातें करा रहे हैं? आप तो किसी को जो जीते जो मीठा हो गपगप, जो कड़वा हो तीखा तीखा करोगे आप तीखा तीखा बात। राम मंदिर के चोरी की हुई संगठन नहीं करता, चोरी व्यक्ति करता है ये तो सब जानता है, लेकिन जब चोरी करता है तो कहता है, कहते है कि ये मेरे संगठन का नहीं है। आज जब जो ईमानदारी हो जाता तो आप कहते हो जी ये तो अपना है जी। तो आप सबको जोड़ लो ना, विश्व हिंदू परिषद संघ पे पूरे देशी है, तो कम से कम निष्पक्षता से तो करिए ना। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप किसी हिंदू संगठन को क्यों अलग छाट देते हैं भाई, आप सबको जोड़िए ना। और जो आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म संसद होती थी जो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक आज वही धर्म संसद के लोग जो है सबसे ज्यादा रुष्ट है कि आप संतों का कोई अधिकार नहीं सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तो ये बात को सोचना होगा ना आपको, जब सही से आईना दिखाया जाएगा तो आप व्यक्तिगत आरोप पे आ जाएंगे, इनके नहीं है इनके नहीं है, ये क्या बात हुई भाई। हर हिंदू को जब कार्य करेगा तो बोल देगा नहीं ये तो अपना है, और जब नहीं है नहीं नहीं तो अपने सत्ता का है नहीं है जी। ये बातें ठीक नहीं है। आप अगर सत्ता में है तो कम से कम बड़ा दिल दिखाइए और सबको जोड़िए जो कार्य कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना कि आप मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दीजिए, तो ये बातें ठीक नहीं है। आपस में हिंदू संगठनों में और संतों में राजनीति हमें लगता है नहीं करना चाहिए आपको, और आपको जो है आपको बड़ा हृदय दिखाना चाहिए।
3: चूंकि स्वामी जी ने जिक्र किया था, भोजशाला का जिक्र किया था और कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया था, तो मैंने उसका जिक्र विष्णुशंकर जैन लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू महासभा की तरफ से भी विष्णु जैन लड़ रहे थे, हिंदू महासभा इनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर विष्णु जैन लड़ रहे थे क्या? नहीं, मैं यही जिक्र करना चाहता था।
1: आचार्य शैलेश तिवारी जी असल में इस पूरे पूरे मामले में जो जो कई लोग हैं उनको यही एक बात का डर लग रहा था और अभी होता हुआ दिख रहा है वो चीज। आप बटे हुए अगर अलग अलग विचार अलग अलग बातें सुनाई देती हैं तो आस्था पर और ज्यादा आघात हो जाता है। लोग इस समय विचार में पड़ जाएंगे कि कौन किसके साथ है।
2: नहीं श्वेता जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत के साधु संत सब एक साथ हैं, जो राम भक्त हैं और जो राम भगवान के खिलाफ बोलने वाले हैं वह एक साथ हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सब एक तरफ हैं, क्योंकि वो लोग राम को नहीं मानने वाले हैं, राम के मानने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरह विरोध किए थे अयोध्या राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने स्वप्न में देखा था और बोला था कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर बनेगा, तो हम उससे नहीं मानेंगे, हम दर्शन नहीं करेंगे। और बाद में वही अरविंद केजरीवाल दर्शन करने गए वहां पर, और हमेशा से शुरू से रहा है आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा रहा है कि जो कुछ नहीं कहेंगे वही फिर करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, भारत के साधु संत हो, सब एकजुट हैं, सब संत महात्माओं के साथ है और सब संत महात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में है। चोर चोरी किया है उसको दंड मिलेगा और मुझे योगी आदित्यनाथ जी के SIT पर विश्वास है, उनके प्रशासन पर विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी जो चोर होता है अपराधी होता है उसको दंड जो है फैसला उन स्पॉट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबको दंड मिलेगा, उचित दंड मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा और उचित दंड मिलने के बाद देश को पूरा विश्वास होगा। आज भी प्रभु श्री राम पर लोक विश्वास है, पहले भी था और आगे भी रहेगा और यह विश्वास है कि विश्व हिंदू परिषद RSS BJP बजरंग दल और साधु संत ही प्रभु श्री राम को मानते हैं। बाकी वामपंथी जो हैं, लेफ्ट पार्टी के लोग हैं या विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, DMK हो, ये सभी प्रभु श्री राम के खिलाफ हैं। राम जी के मंदिर बनने में सबने अड़चने लगाई और कुछ ऐसे साधु संत जो रुष्ट हैं उनको संतुष्ट किया जाएगा, जो संतुष्ट नहीं हो सकते वह हमेशा से विपक्षी बन करके लड़ते आए हैं और आगे भविष्य में लड़ते रहेंगे।
1: चूंकि राजनीतिक पार्टियों का भी जिक्र आपने कर दिया, इस मामले से राजनीति दूर रह नहीं सकती है और वो बयान रोज आते ही रहते हैं। हालांकि हम देखें तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को इतना प्रमुखता से उठाया जिसके बाद अचानक इस पर कार्रवाई एक सिरे से शुरू हुई। अब सबसे बड़ा उस समय लोग यही पूछते रह गए कि अगर इस तरह, पहले तो आप डिनाई किया चंपत राय ने, बाद में कहा जब ये योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे थे, SIT का ऐलान हो चुका था, उनको दूर रखा गया चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से, और उसके बाद जाकर धीरे धीरे धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी ना, जब आप आंख मूंद लेते हैं संगीत जी।
3: नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वहीं चंपत जी ने बहुत बड़ी गलती की थी। जिस समय पैसे पकड़े गए थे और जब उनके जानकारी में आई तो उनको लगा जैसे संघ में होता है, और मैं इससे सहमत हूं कि वो तरीका ठीक नहीं था।
0: निजी प्रॉपर्टी के तरीके चला रहे थे।
3: नहीं, देखिए
0: संघ में होता है, इसका कहने का मतलब ये संघ के हिसाब से चला रहे थे।
3: फिर आप वही कर रहे, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। सामान्यतः लोग कार्यकर्ताओं के बल पर संघ आज यहाँ पर 100 साल तक खड़ा है सर, और उनको लगा कि शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं है, इतनी बड़ी चोरी नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि जिन लोगों के बारे में जानकारी मुझे है
0: उनसे एक मिनट। आप डाउट दे रहे हैं, कैसे जांच होगी ईमानदारी से?
3: प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उनको उसी समय, जिस समय पकड़ा गया था पैसा, कायदे से वो उसी के साथ FIR कर देनी चाहिए थी और उसी समय नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई हम ट्रस्ट रहे, हम नाकाम रहे, हम निगरानी करने में नाकाम रहे, हम इसको जो हमें जिस प्रकार से हमको इसको मैनेज करना चाहिए था हम मैनेज करने में अक्षम रहे। मुझे लगता है तब चंपत राय जी पर कोई इस प्रकार का सवाल नहीं उठा पाता जो हमने मौका दिया है। मैं इससे कतई इनकार नहीं करता कि ये मौका हमने गंवाया है, मौका नहीं देना चाहिए था और इसके बाद जो है हम सबके सामने है। यदि उस समय ही यदि ये हो गया होता, यदि उसी समय कह दिया जाता कि SIT गठित कर दिया जाना चाहिए, FIR कर दी जाती, बनिस्पत की चोरी पकड़े जाने के बाद जो सोया है उस पैसे को ट्रस्ट के साथ रख देना, तो मुझे लगता है कि स्थितियां अलग होती। ये उस समय गलती हुई है।
1: लेकिन ये हो चुका और अब कैसे ये दोबारा न हो, अभिषेक इस चीज को ट्रस्ट को तय करना है, इस चीज को ट्रस्ट को निर्धारित करना है। ये बैठक जो चल रही है उसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर सहमति है, चंपत राय का इस्तीफे पर अब चर्चा होनी है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो कहा जा रहा था कि दोनों को आगे कभी ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्ट से वो दूर रहेंगे, उस चीज पर चर्चा होनी थी, क्या हम ये समझें कि ये संभव होगा आगे?
5: देखिए श्वेता, अभी इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन दोनों को लेकर के फैसला क्या हुआ है। देखिए ये खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को पद से हटाया गया, लेकिन अभी ये खबर पूरी तरीके से आधिकारिक नहीं आई है। मुझे लगता है कि जब फैसला होगा तो दोनों के ऊपर एक साथ होगा और ये आज की मीटिंग में ये फैसला होना है, क्योंकि दोनों ने ही अपने पद से इस्तीफा दे रखा है, तो ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता कि किसी एक का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा और दूसरे का इस्तीफा नहीं होगा या उन्हें मोहलत दी जाएगी, ऐसा नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि आखिर में जब ये मीटिंग में ये एजेंडा आने वाला है जिस पर कि अभी डिस्कशन होगा, थोड़ी देर में कह रहे हैं 5:30 बजे तक ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, उस वक्त ही ये पता चलेगा कि क्या इस्तीफा जो हुआ ये दोनों पदों से हो गया या फिर वो आजीवन सदस्य रहेंगे। जो हमारी जानकारी है, जो सूत्रों से जो मुझे बताया गया है वो ये कि जी
0: कुमार, मेरा एक सवाल आपसे, मैं आशुतोष बोल रहा हूं।
5: हेलो,
0: क्या अनिल मिश्रा वहां पे ट्रस्ट में किसी पद पर थे
5: सर, बताएं,
0: या ट्रस्टी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को छोड़ना पड़ेगा उनको?
5: नहीं, वो ट्रस्ट के पद पर थे और ट्रस्टी भी थे, उन्हें जिस ट्रस्ट के पद से थे या फिर ट्रस्टी थे, दोनों पद से इन्हें हटना ही होगा। जो जानकारी है वो तो चंपत राय को भी आजीवन जो सदस्यता है उससे हटना होगा, क्योंकि जो मेरी एक बड़े बड़े अधिकारी से जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये सही है कि जो जो आजीवन सदस्य है अगर वो महासचिव भी है तो सिर्फ जो जो इस्तीफा है वो सिर्फ महासचिव के पद से होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो ट्रस्ट से उनका इस्तीफा हो रहा है तो पूरी तरीके से इस्तीफा होगा, यानी कि वो ट्रस्ट में नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि औपचारिकता मात्र है, क्योंकि इस पर फैसला होना है और दोनों ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जो उच्च सोर्स हैं वो कहते हैं कि यहां पर अब इन दोनों का इस्तीफा मंजूर होना है। देखिए, फाइनल फैसला ट्रस्ट के भीतर क्या होता है ये तो 5:30 बजे के आसपास पता चलेगा, लेकिन दोनों ट्रस्ट में नहीं रहेंगे ये लगभग एक फाइनल फैसला है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो फिर अलग बात है।
1: तो ये जो कुल
0: दिलचस्प बात क्या है, अभी तक किसी ने वो इस्तीफा नहीं देखा है जो चंपत राय ने दिया या अनिल मिश्रा ने दिया। सिर्फ गोविंद देव गिरी जी की एक प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या वाकई में इस्तीफा दिया है, मुझे इस पे भी शक है।
1: खैर, अभी तो
0: क्योंकि अगर इस्तीफा दिया तो पारदर्शिता ये कहती है कुछ वो इस्तीफा
1: अभी कुछ देर में स्पष्ट रहेगा। इस अगर हम जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसकी ही वेबसाइट को देख लें तो फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हमने आपको बताया कि पराशरण जी हैं, इसके अलावा चंपत राय जो कि इसके महासचिव और साथ में जो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इसके इसके जो अध्यक्ष हैं वो महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि इस बैठक का हिस्सा हैं, साथ ही जो केवल सदस्य के केवल ट्रस्टी के तौर पर हैं इसमें स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज जिनका अभी अभी वक्तव्य हमारे सामने आया है, कोषाध्यक्ष के तौर पर स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, डॉक्टर अनिल मिश्र जिन्हें हमने एक प्रमुख यजमान के रूप में भी पूजा के समय अनुष्ठान के समय देखा था, वो केवल एक ट्रस्टी है, श्री कृष्ण मोहन जो ट्रस्टी है, साथ में महंत दिनेंद्र दास जी महाराज जो कि ट्रस्टी हैं, श्री प्रशांत लोखंडे जो कि एक आईएएस के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर संजय प्रसाद जी वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर, इसी तरीके से डीएम अयोध्या जो कि इसका सदस्य रहते हैं और जिस पर चर्चा ये चल रही है कि डीएम को ज्यादा जिम्मेदारियां अधिकार उसमें दिए जाएं, साथ में श्री नृपेंद्र मिश्र जो कि चेयरमैन रहे हैं कंस्ट्रक्शन कमिटी के और एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर इस ट्रस्ट में शामिल हैं। अब अगर ट्रस्ट को नए तरीके से गठित करने की बात होती है, उसके संचालन में मुख्य रूप से अलग अलग बदलाव की जरूरत महसूस की जाती है, तो क्या आज की ही बैठक में हम उम्मीद करें कि ये सारी चीजें होंगी अभिषेक, या फिर उसके लिए आने वाले बैठकों का इंतजार करना पड़ेगा? क्या आज की जो बैठक है वो केवल इन इस्तीफों के लिहाज से महत्वपूर्ण है?
5: नहीं श्वेता, देखिए कुछ कुछ चेंजेस तो आज होंगे, जैसी कि खबर आई कि जो अयोध्या के डीएम है अभी तक उनका कोई काम नहीं होता था, किसी मीटिंग में नहीं होते थे, सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह होते थे, बहुत लेना देना भी अयोध्या की डीएम का नहीं होता था, जबकि अयोध्या में ये मंदिर है और अयोध्या में मंदिर रहते हुए ट्रस्टी के पदेन सदस्य होते हुए उनका कोई काम नहीं था। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि डीएम को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, यानी कि आज की मीटिंग के बाद कुछ फैसले जरूर होंगे निश्चित तौर पर। जब ये लगभग माना जा रहा है कि ये दोनों ट्रस्टी और महासचिव दोनों का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। अब जब दोनों का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि अंतरिम व्यवस्था बनाई जानी है, जिसमें कृष्णमोहन का नाम चल रहा है आगे कि शायद उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, गोविंद देव गिरी है वो ज्यादा इसमें जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो अभी जितने लोग इस ट्रस्ट में हैं उनके बीच में ही कामों का बंटवारा होगा, ऐसा फॉर द टाइम बीइंग जिसे कहा जा रहा है कि वो किया जाएगा। लेकिन जो बड़े चेंजेस हैं, क्या इसमें सीईओ लाए जाएंगे, क्या ये किसी श्राइन बोर्ड के तर्ज पर बनेगा, इसमें मेजर जो चेंजेस होंगे, श्वेता मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों के बाद जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसका पुनर्गठन होगा। आज एक जिसे कह सकते हैं ना कि टेम्पररी व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि ये लगभग मान के चला जा रहा है कि ये दोनों इस्तीफे हो जाएंगे। और चूंकि चंपत राय महासचिव रहते हुए उन्होंने पूरे ट्रस्ट को चलाया है और अचानक से जब वो बाहर होंगे तो फिर आखिर कोई ना कोई तो होगा जो उनका काम देखेगा। बजरंग दल के बजरंग लाल का नाम आ रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से कि वो लाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसमें बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कोई भी नया मेंबर तब आएगा जब नए सिरे से इस ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। अभी जो हमारी जानकारी है, जो जो जो जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी टाइम फॉर द टाइम बीइंग जब तक पुनर्गठन नहीं होता है तब तक ट्रस्ट के ही मेंबरों को अलग अलग अधिकार देकर उनसे काम चलाया जा सकता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होंगे। श्वेता,
1: हालांकि अगर एक मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड की बात आ रही है, अगर चोरी की बात आ रही है और ट्रस्ट के भीतर ही ऐसे व्यक्ति की तलाश हो जिसके पास इस तरह का अनुभव हो, तो शायद जो विकल्प है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड इस समय है। क्योंकि कृष्ण मोहन जी की भी बात हो रही है और ऐसी जानकारी है कि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े रहे हैं, उससे रिटायर किए हैं।
0: तो इसमें सिर्फ चढ़ावा की चोरी नहीं है, रिक्रूटमेंट में चोरी की बात आ रही है, जमीन के घोटाले की बात आ रही है, साथ ही साथ जिन लोगों को जो स्पेशल जिनको दर्शन देने थे उनमें उनसे 20-25 हजार रुपए लेने की बात आ रही है। तो ये अपने आप में एक पूरा सिंडिकेट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सिर्फ चढ़ावे में चोरी की बात कर रहे हैं वो दरअसल अधूरी बात कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट में कौन पैसे ले रहा था? कोई ये ड्राइवर तो ले नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो आदमी जिसके पास रिक्रूटमेंट की पावर थी वो कौन था, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। क्या वो ट्रस्ट के लोग थे या ट्रस्ट के बाहर के लोग थे? जो सिक्योरिटी बनी वो भाई उन्होंने क्या कहा कि हमने सिक्योरिटी वाले ने कहा कि हमने ये आदमी
3: तो दो ही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ना। इसका तो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है और अयोध्या पुलिस दोनों कर रही है,
1: उसमें एक-एक करके चीजें सामने आ रही है, लेकिन निकल जरूरी है कि पारदर्शी तरीके से रहे और इस पर अमल किया जाए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ब्रेक के बाद देखिए दंगल साहिल जोशी के साथ।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
11: Akoji.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: पापा
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
9: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल अयोध्या को लेकर होने वाले बड़े फैसले पर है। अब से थोड़ी देर में अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक बड़े फैसले का ऐलान होने वाला है। ट्रस्ट ने शाम 5 बजे मीडिया से बातचीत की घोषणा कर रखी है, और इससे पहले ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा छोड़कर बाकी सभी ट्रस्टी पहुंचे थे, और जो नहीं जा सके थे वो वर्चुअली मौजूद थे। खबर यह है कि बैठक में चढ़ावा चोरी और चंपत राय का इस्तीफा ही टॉप एजेंडे पर था। इस बैठक के बाद ट्रस्ट जो कुछ बताएगा वहां हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि वो ट्रस्ट की बैठक के बाद पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का भंडाफोड़ हुआ है, जांच में जो खुलासे हुए हैं और फिर जो सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, उसमें अब चोरी के सबूत भी मांगे जा रहे हैं। एक दिन पहले ही वीएचपी ने कहा है कि अगर कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के पास चंदा चढ़ावा चोरी घोटाले के सबूत हो तो पेश करें, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। बीजेपी कह रही है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच दर्जन बार जो फोन कॉल हुए हैं उसकी भी परतें खुलने वाली है। तो राम के नाम पर सियासत की जो दुकान फिलहाल सजाई जा रही है, उसमें बड़े सवाल यह है कि क्या चंपत राय के इस्तीफे से घोटाले की सारी कहानी अब खत्म हो जाएगी, सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? इस नाकाम ट्रस्ट पर राम भक्तों का भरोसा इसी तरीके से लौट आएगा क्या? बिना तय नियम कानून, रूल्स बाय लॉज के ट्रस्ट यूं ही एक निजी ट्रस्ट के बिना चलता रहेगा, एक कोई पर्सनल कंपनी की तरह चलता रहेगा? आखिरकार जवाबदेही कुछ तय होगी या नहीं होगी? असंख्य आस्था वालों के दान से चलने वाला यह ट्रस्ट आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: पूरे दिन पूरे हिंदुस्तान की नजर अयोध्या की उस बैठक पर लगी रही, जहां रामदान की चोरी के महापाप वाले दांत को धोने की कोशिश में ट्रस्ट के लोग जमा हुए। सूत्रों की खबर रही कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अब नया महासचिव बनेगा, फिर नियम कानून बनेंगे और चोरी रुक जाएगी। दरअसल रामदान की चोरी का कुल अयोध्या कांड यही है कि ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने मनमानी की, व्यवस्था में नाकामी रही और अब इस्तीफे के बाद बदनामी का दाग है। फिर भी पूरा प्रकरण चोरी, जांच और इस्तीफे तक सिमटता जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या इस्तीफे से ये सारे पाप धुल जाएंगे? ट्रस्ट के अध्यक्ष कहते हैं पीएम और सीएम में भरोसा है कि दोषियों को सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन दोषी तो कानून तय करेगा, और कानून की नजर में चोरी उतना बड़ा जुर्म नहीं जितना बड़ा जुर्म राम मंदिर में दान की चोरी है, और फिर भी पाप धुल जाएंगे तो क्या राम भक्तों की टूटी आस्था को ये ट्रस्ट दोबारा हासिल कर पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि चोरों ने तो चोरी कर ली, लेकिन जिम्मेदारी चोरों के सिर नहीं, ट्रस्ट के सिर है। उस ट्रस्ट के सिर जिसे सरकार ने बनाया, वो सरकार जिसे ऐसा करने को सर्वोच्च अदालत ने कहा। पर इस चोरी प्रकरण में चूक का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि अदालत ने कहा ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट कैसा होगा नहीं बताया, सरकार को फ्री हैंड दे दिया। सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट कैसे चलेगा नहीं बताया, ट्रस्ट को फ्री हैंड दे दिया। ट्रस्ट ने गोपाल राव को बुला लिया, ये नहीं बताया कि गोपाल राव कैसे आए, गोपाल राव को फ्री हैंड मिल गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष चुन लिए गए, कौन कैसे क्या करेगा तय नहीं किया, महासचिव को फ्री हैंड दे दिया। महासचिव ने टिन्नू यादव को चुन लिया, ये नहीं बताया भर्ती कैसे हुई, टिन्नू को फ्री हैंड दे दिया। टिन्नू की सिफारिश पर चोर चुन लिए गए, पुलिस सत्यापन तक नहीं किया गया, चोरों को फ्री हैंड दे दिया गया। और जब चोर अपना काम कर गए तो जिम्मेदारी का डिब्बा घुमाया जा रहा है, गलती किसकी? चढ़ावा चोरी कांड के बाद अब चाहे जितनी कार्रवाई हो जाए, जितनी सजा हो जाए, लेकिन जिम्मेदारी की बात हो तो ट्रस्ट के जरा नियम कानून संविधान देख लीजिए। सूत्र के मुताबिक ट्रस्ट के संविधान में लिखा है कि ट्रस्ट की संपत्ति के रखरखाव में नाकामी, कमी, घटी बढ़ी के जिम्मेदार ट्रस्टी नहीं होंगे, ट्रस्ट के कामकाज में नुकसान के जिम्मेदार ट्रस्टी नहीं होंगे, ट्रस्ट के नियम कानून सिर्फ तय किए 11 लोग बनाएंगे, ट्रस्ट के सभी सदस्य हिंदू होंगे, ट्रस्ट में एक दलित सदस्य होगा, ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व में बदलाव नहीं होगा, और ये ट्रस्ट कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से चंपत राय, अनिल मिश्रा भले इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस पूरे चोरी कांड को लेकर उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही कुछ नहीं। अब जरा सोचिए, इतनी अगाध आस्था, इतना बड़ा मंदिर, इतनी अपार संपत्ति, इतना अपार चढ़ावा, और जिम्मेदारी किसी की कुछ नहीं। वरना 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रस्ट की कुल जमा चार बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक मार्च 2024 में 15 में 12 लोग थे, अध्यक्ष नहीं थे। दूसरी बैठक नवंबर 2024 में जब 13 लोग थे, इसमें पुजारियों के लिए सर्विस मैनुअल मंजूर हुआ। तीसरी बैठक मार्च 2025 में हुई, जिसमें 11 ट्रस्टी मौजूद थे। तब 9 क्विंटल चांदी की ईंटें बनाने स्टेट बैंक से करार का फैसला हुआ, लेकिन अब तक ये सर्विस रूल और बायलॉज नहीं बन पाए कि ट्रस्ट के अंदर कर्मचारियों की भर्ती किस प्रक्रिया से होगी, कौन करेगा, उन कर्मचारियों पर क्या नियम कानून आयात होंगे और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये मनमाने सलूक से वो ट्रस्ट एक वन पर्सन कंपनी की तरह चल रहा था। और दिलचस्प बात ये कि करोड़ों अरबों की आस्था को डील करने वाला ट्रस्ट पब्लिक नहीं प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: जिस दिन यह बैठक होने वाली थी उससे कुछ ही घंटे पहले इस ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास, महंत नित्य गोपाल दास का एक चिट्ठी उन्होंने जारी की और खुद के हस्ताक्षर से हस्तलिखित में यह चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा कि राजनीतिकरण इस ट्रस्ट का नहीं होना चाहिए और इस मामले का भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट की बैठक से क्या निकलता है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्या किसी को बताया जाएगा कि आपकी गलती हुई है या सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा। चर्चा करेंगे, हमारे साथ अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, विजय राठी समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में आएंगे, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी चर्चा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ देवकी नंदन ठाकुर ये कथावाचक है, उनसे भी कुछ सवाल इस पूरे चर्चा के दौरान हम करने की कोशिश करेंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से चढ़ावा चोरी का महापाप धुल जाएगा, क्योंकि बात तो यही हो रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना इस्तीफा रखेंगे, यहां तक कि खबर भी आ रही थी कि सहमति बन रही है कि अनिल मिश्रा का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लेना चाहिए, क्या लेकिन इससे महापाप धुल जाएगा। दूसरा सवाल, क्या मौजूदा ट्रस्ट का लचर मैनेजमेंट मंदिर की संपत्तियों दान चढ़ावे को महफूज रख पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक यह ट्रस्ट चलाया गया वो ठीक से नहीं चलाया गया, इसीलिए ये कांड हुआ है, इसीलिए मामला सामने आया है। तो क्या अब तक जिस तरीके से इसका मैनेजमेंट चल रहा था क्या उसी तरीके से चलना ठीक है, यह भी एक सवाल है। और तीसरा अहम सवाल, क्या राम मंदिर की व्यवस्था देश के दूसरे बड़े मंदिरों के तर्ज पर की जानी चाहिए। बड़े बड़े मंदिर इस देश में है, तिरुमला तिरुपति का मंदिर है जहां पर भी करोड़ों रुपए दान में दिए जाते हैं, मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है, शिरडी में साई बाबा का मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद कभी इस तरीके की खबरें सामने नहीं आई। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है बैठक के भीतर, हमारे पास हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, संतोष शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मीटिंग से पहले गोविंद देव गिरी ने कहा था कि जो भी इस बैठक में तय होगा उसकी पूरी चर्चा की जाएगी और मीडिया के सामने वो पूरी जानकारी रखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक ही दिन पहले गोविंद देव गिरी ने यह भी कहा था कि उन्हें किस तरीके से जो दान दिया जाता है उसको कैसे नापा जाता है, किस तरीके से उसको गिनती की जाती है, उसकी कोई जानकारी उन्हें अब तक नहीं थी, जबकि वो कोषाध्यक्ष है। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक घंटे से ज्यादा हो गया यह मीटिंग चल रही है। दो खबरें अहम, एक तो अनिल मिश्रा का इस्तीफा और चंपत राय का इस्तीफा, क्या कोई इसके बारे में जानकारी आई है?
2: देखिए, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर बैठक चल रही है, अभी औपचारिक इसका ऐलान फैसले का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं, जो ट्रस्ट के जो तमाम सदस्य हैं, जो रुख है, जो माहौल है ट्रस्ट के अंदर का, वो इस बात की ओर इशारा ज़रूर कर रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के द्वारा दिए गए इस्तीफे को मंजूर किया जाएगा, लेकिन अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है और अंतिम निर्णय ट्रस्ट को लेना है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि आखिर उस भरोसे का क्या जो करोड़ों हिंदुओं ने यहाँ पर राम मंदिर में किया, राम मंदिर में श्रद्धालुओं ने दान दिया और उसकी रक्षा नहीं हो पाई, तो आखिर ये ट्रस्ट कर क्या रहा था? ट्रस्ट की कमोबेश इसी कार्यप्रणाली पर SIT ने भी सही जांच सवाल खड़े किए। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसने साफ तौर पर कहा कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे,
0: लेकिन क्या सिर्फ जो पद है उनके पास, महासचिव का पद चंपत राय के पास है, अनिल मिश्रा के पास जो पद है, सिर्फ पद से उन्हें हटा दिया जाएगा या ट्रस्ट के बोर्ड से भी उन्हें हटा दिया जाएगा? क्योंकि अगर ट्रस्ट के बोर्ड से हटाना है तो 2/3 ट्रस्ट के मेंबर्स ही उनको हटा सकते हैं, तो क्या उन्हें ट्रस्ट से भी हटा दिया जाएगा?
2: देखिए महासचिव के पद पर हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा सिर्फ ट्रस्टी हैं, तो अनिल मिश्रा को लेकर के अगर वो इस्तीफा दे देते हैं यानी कि वो ट्रस्टी भी नहीं रहेंगे। चंपत राय महासचिव हैं लेकिन महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो ट्रस्ट में के एज ए मेंबर जो बाईलॉज हैं अभी तो इस जो फैसला होना है कि वो महासचिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। महासचिव रहने पर फैसला होना, उसके बाद जो SIT की डिटेल रिपोर्ट आएगी, क्योंकि SIT जो जांच कर रही है वो इस पूरे ट्रस्ट की जो भूमिका पर भी जांच कर रही है कि कितना ताकतवर है, कितनी इसकी फंक्शनिंग है। तो रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात आ रही है वो SIT की डिटेल रिपोर्ट के बाद, क्योंकि SIT की रिपोर्ट में डूज एंड डोंट्स और जो पूरी SOP होगी वो क्लियर होगी।
3: जो SIT की रिपोर्ट के बाद संतोष मिश्रा में जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त फैसला सिर्फ इसी बात पर होगा कि चंपत राय महासचिव बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। अदरवाइज चंपत राय इस पूरे ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और जो SIT की रिपोर्ट है उन्हें 15 जुलाई तक उनकी मियाद बढ़ा दी गई है, यानी फाइनल रिपोर्ट SIT की 15 जुलाई तक आएगी। उसके बाद हो सकता है कि ट्रस्ट एक बार फिर मिले और उसके बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाए कि चंपत राय को ट्रस्टीशिप पर रखना है या नहीं रखना है, जबकि अनिल मिश्रा को शायद ट्रस्ट से हटा दिया जा सकता है। संतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जानकारी दे रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि जैसे ही गोविंद गिरी इस पर अपनी भूमिका रखने आएंगे ट्रस्ट की मीटिंग के बाद हम तुरंत आपके पास दोबारा लाइव आएंगे। लेकिन अमितोष पारिक, क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चंपत राय को सिर्फ महासचिव पद से हटा दिया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो बायलॉज इस ट्रस्ट के मैं पढ़ रहा था उसमें यह बात रखी गई है कि ट्रस्ट के संविधान में जो लिखा गया है कि ट्रस्ट की संपत्ति के रखरखाव में नाकामी, कमी, घटी बढ़ी के ट्रस्टी जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी ट्रस्टियों पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है इसमें। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ चंपत राय को महासचिव पद से हटा देने से काम चलेगा या सचमुच में कुछ ओवरऑल करने की जरूरत है, क्योंकि यह ट्रस्ट हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, आजीवन इसके ट्रस्टी रह सकते हैं, तो किस ओवरऑल की बात कर रहे हैं?
4: साहिल भाई देखिए, दो बहुत ही स्पष्ट मेरा जवाब आपके प्रश्नों के हैं। एक तो यह है कि आज जो बैठक हो रही है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग होगी, जो केंद्र सरकार और ट्रस्ट के बीच में है, उनके अपने एक बायलॉस है साहिल जी, और उन बायलॉस के अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। चंपत राय जी ने और जो इस्तीफा दिया है उस पर आज निर्णय होना है, और वो सेक्शन 46 ऑफ ट्रस्ट एक्ट 1872 और सेक्शन 77-78 में डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रस्ट, इन दो के तहत होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो बायलॉज है, अगर आज ट्रस्ट की बैठक में लगता है कि भाई उन पर चेंजेस करने चाहिए, अमेंडमेंट करने चाहिए, रिजोल्यूशन लाना चाहिए, बेनिफिशरीज को देखना चाहिए, कंसेंट्स होनी चाहिए, वो एक पूरा प्रोसीजर है जो ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मुझे लगता है कि जो भी होगा वो वही होगा जो फेथ रिस्टोर करा जाएगा और सारे ट्रस्ट को सुदृढ़ करा जाएगा SIT रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। जी
3: लेकिन अमितोष, कैसे फेथ जो है वो रिस्टोर किस तरीके से होगा, क्योंकि जो बायलॉज यहां पर आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो लगता है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जो भी हो जाए उस पर ट्रस्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक तो बायलॉ मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ट्रस्ट की संपत्ति के रखरखाव में नाकामी, कभी घटी के जिम्मेदार ट्रस्टी नहीं होंगे, नंबर एक। नंबर दो, कामकाज के नुकसान के जिम्मेदार ट्रस्टी नहीं होंगे, यह भी बायलॉज में लिखा गया है। नियम कानून जो तय होंगे वो सिर्फ ये 11 सदस्य बनाएंगे जो आजीवन ट्रस्टी रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और यह ट्रस्ट कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो जो भी होगा सिर्फ चंपत राय महासचिव पद से हट जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है?
4: नहीं, मुझे ऐसा लगता है साहिल, विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, इस पे राजनीति नहीं करी है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के बीच में एक डिफरेंस है, और जो भी जितनी भी नैतिकता का आधार और जितनी भी चीजें हो रही है सब ट्रस्ट के मैनेजमेंट और ट्रस्ट के बायलॉज और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो रही है। पहले दिन से VHP के स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो भी इसके अंदर में SIT की जांच में, FIR के अंदर में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई करे। तो एक सवाल उठा साहिल, सवाल ये उठा कि SIT पर हमें भरोसा नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई हम तो चेक को जब छुपाने को ही नहीं है तो क्या छुपाया जाए, किसी से भी जांच कराए जाए। और आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट

0: उचित लगता है वो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं है कि ट्रस्ट के बायलॉज कभी चेंज नहीं हो सकते, मुझे लगता है ट्रस्ट उस पर भी निर्णय लेगा, बायलॉज चेंज होने होंगे, सुदृढ़ जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट रिस्टोर होगा, फेथ रिस्टोर होगा।
1: जिस तरीके से ट्रस्ट चल रहा है मुझे तो लगता है कि ये बायलॉज चेंज करने पड़ेंगे, उसको आरटीआई के दायरे में भी लाना पड़ेगा। सरकार के मनोनीत सारे तो वहां पर ट्रस्टी है, लेकिन उसके बावजूद आरटीआई से कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर सभी जो लोग दान वहां पर कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जमीन दी गई है, सरकार के लोग वहां पर ट्रस्टी है, सरकार वहां पर ट्रस्टियों की नियुक्ति कर रहा है, आजीवन वहां पर ट्रस्टी रह रहे हैं, करोड़ों रुपए के लोग वहां पर आके दान दे रहे हैं और ये सारी चीजें वहां पर है। लेकिन इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। विजय राठी जी, आपको भी इसका जवाब देना है, क्योंकि नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कुछ आरोप भी उन्होंने लगाए, कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में देवकी नंदन ठाकुर, ये कथावाच ये हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ सवाल मुझे पूछने और उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है, क्या इसमें सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद चोरी का महापाप ये धुल जाएगा, ऐसा आपको लगता है, या और भी कुछ आपको उम्मीद है इस ट्रस्ट की मीटिंग से?
2: जोशी जी, ये मीटिंग नहीं हो रही है जी। एक राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, ये दूसरे राम मंदिर की आस्था का निर्माण होना इस मीटिंग में, और ये इतनी बड़ी मीटिंग का है और इतना बड़ा निर्णय होगा कि अगर यहाँ थोड़ा भी झोल दिखा तो सनातनियों की आस्था पे बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो मुझे ये आशा है कि इस मीटिंग से, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, वैसे इस मीटिंग के बाद में जो भी हमारे ज्ञानी जन करेंगे वो इतना अच्छा करेंगे जिससे सनातनियों का विश्वास, आस्था, निष्ठा सब वापस लौटेगी।
1: नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि समुद्र मंथन के बाद तो अमृत निकलता है, आज की स्थिति में जो हो रहा है राम मंदिर में उससे तो विष निकल कर आ रहा है, और उसको प्राशन कौन करे उसको लेकर वहां पर जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोषाध्यक्ष आकर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि गिनती कैसे होती है यहां पर, वो तो मुझे बाद में पता चला। नृत्य गोपाल दास आखिर में आज एक महीने के बाद जो अध्यक्ष है ट्रस्ट के, वो चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देवकी नंदन जी, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, कौन जिम्मेदार है आखिरकार? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया उनसे। देवकी नंदन जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गया है। देवकी नंदन जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा तो मैं ये कह रहा था, नहीं मैं दोबारा आपको सवाल कहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि अमृत निकल कर आएगा, आपको उम्मीद है कि इससे अमृत निकल कर आएगा, लेकिन फिलहाल तो विष निकल कर आ रहा है, और ये विष कौन प्राशन करेगा ये नहीं कह रहा है कोई भी, क्योंकि हर कोई हाथ झटक रहे हैं। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के आज एक महीने के बाद अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है वो आगे आकर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि नोटों की गिनती किस तरीके से की जा रही है, और जो दूसरे गोपाल राव करके मैनेजर है जो मीटिंग हो रही है उसके बगल वाले कमरे में बैठे हैं, वो अपने मनमानी तरीके से वहां पर लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है इस पूरे चोरी कांड के?
2: आवाज नहीं आ रही वहां से।
1: देवकी नंदन जी, मेरी आवाज आपको आ रही है?
2: अब आ रही है, पूछिए।
1: अब आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिम्मेदार किसको मानते हैं आप?
2: देखिए, जिम्मेदार तो जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है वही है, जो वहां जिम्मेदार बने बैठे हैं वही है, ये मैं और आप तो नहीं हो सकते ना। आप तो अपना चैनल पे पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं अपने कथा पंडाल में कथा कर रहा हूं, तो मैं और आप तो जिम्मेदार होंगे नहीं। जो वहां जिम्मेदार बने बैठे वही जिम्मेदार हैं, और उनको उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसको मानेंगे जिम्मेदार को? जिम्मेदारी उठाने के लिए
1: यानी पूरा ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो बायलॉज ट्रस्ट के बने हुए हैं उसमें तो कहा गया है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी होता है उसमें ट्रस्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
2: मुझे नहीं पता कि किसने बनाए हैं, जो ट्रस्टी हैं वही जिम्मेदार होंगे भी, क्योंकि जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं, वहां संभाल भी वही रहे। और एक ये मेरे और आपके घर का मंदिर तो नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के सनातनियों का मंदिर है, और वहां भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, और भगवान श्री राम के प्रति हम लोगों की निष्ठा है, तो वो जो वहां बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, सबका दायित्व है। मैं एक बात जानना, मैं आपसे जोशी जी बार बार जो एक चीज कह रहा हूं कि इन सब विषयों को, एक मंदिर का विषय ही नहीं है ये, राम मंदिर का विषय नहीं है ये, तमाम ऐसे सनातनियों के मंदिर है जिनके साथ में अन्याय हो रहा है। आजादी के बाद से हो रहा है। सरकारों ने वो मंदिर अपने कब्जे में सिर्फ पैसे के लिए ले रखे हैं, और जितने पैसे जो और मंदिर हैं जिनमें कुछ नहीं आ रहा है उन मंदिरों की कोई

0: कपाल नहीं है, देवी देवताओं को कोई भी गाली इंटरनेट पे दे दो, साधु संतों को कुछ भी बोल दो, तो इन सब चीज का एक जो
1: देवकीनंदन जी,
0: मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सनातन बोर्ड, चारों शंकराचार्य पांचों वैष्णवाचार्यों
1: ये
0: को
1: जो ट्रस्ट
0: लेके।
1: जिसकी आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट, इसमें सरकार के सिर्फ 3 लोग थे, बाकी तो सरकार ने अपॉइंट किए हुए लोग थे, लेकिन सभी तो साधु संत थे, राम मंदिर के मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, नृत्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके
0: जोशी
1: बावजूद
0: जी,
1: यहां पर
0: जोशी
1: चोरी हुई
0: जी,
1: है। क्या आपको
0: जोशी
1: लगता है
0: जी,
1: कि फिलहाल क्या आपको लगता है कि फिलहाल इस ट्रस्ट के तौर तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है क्या? जिस
0: जोशी
1: तरीके
0: जी
1: से
0: मुझे बात
1: तिरुपति का ट्रस्ट
0: बताइए
1: चलता है,
0: कि
1: जिस तरीके से सिद्धि विनायक का ट्रस्ट चलता है, वहां पर तो चोरी चकारी की किस तरीके से शिकायतें इतने सालों में तो नहीं आई हैं।
0: जोशी जी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि नृत्य गोपाल दास जी महाराज
1: जी
0: कितने एक्टिव रहते होंगे, और गोविंद गिरी जी महाराज ने अपने पत्र में क्या लिखा है अभी, तो एक्टिव कौन थे उस ट्रस्ट में, साधु संत तो एक्टिव ही नहीं है। मेरा आग्रह आपसे यही है कि क्या राम मंदिर की बात मत करिए, सारे मंदिरों की बात करिए, सारे मंदिरों में आए हुए धन की बात करिए, उसे समाज के हित की बात करिए, सनातन बोर्ड की बात करिए,
1: तो ट्रस्ट बदलना
0: शंकराचार्यों की
1: चाहिए,
0: बात करिए।
1: तो ट्रस्ट बदलना चाहिए आपको लगता है, ट्रस्ट
0: मुझे
1: बदलना चाहिए
0: लगता है
1: आपको
0: सर,
1: लगता है।
0: मुझे ऐसा लगता है और काफी संत समाज शंकराचार्यों को भी लगता है, सनातन बोर्ड बनाकर उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, चारों शंकराचार्य पांचों वैष्णवाचार्य और भी जितने संत महात्मा उसमें लिए जाए, लेके उस धन का सदुपयोग किया जाए। अगर उस धन का सदुपयोग नहीं होगा तो ऐसी चोरी होती रहेगी। उस धन का सदुपयोग हो गौशाला के लिए, उस धन का सदुपयोग गरीब बच्चों की शादी विवाह के लिए, उसका प्रयोग होना चाहिए मॉडर्न गुरुकुलम्स बनाने के लिए, सिर्फ ट्रस्ट में जमा करने के लिए वहां धन का संग्रह नहीं होना चाहिए। मंदिर धन संग्रह का संचालन, धन लेने का एक केंद्र न बन जाए,
1: इस
0: उससे
1: देश
0: सेवा के
1: में
0: कार्य शुरू हो।
1: राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी के अधिकार का कानून है, और राम मंदिर का ट्रस्ट उस कानून के दायरे से बाहर है। क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता को ट्रस्ट के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसी के वजह से ये ट्रस्ट भी जानकारी के अधिकार के कानून के दायरे के भीतर आना चाहिए? यानी अगर आप या मैं अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो इस ट्रस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव की जरूरत है?
0: जोशी जी मैं कानून के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं, जिन लोगों ने कानून बनाए हैं वो लोग इस विषय को जानते हैं, पर हाँ अगर मेरे राम मंदिर की बात है, क्योंकि तीन चार मंदिर तो ऐसे बनेंगे, चाहे राम मंदिर हो, कृष्ण भूमि मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, वहां हर सनातनी को सब कुछ जानने का अधिकार होना चाहिए और वो अधिकार के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बार बार चीजें क्यों सनातनियों को, आज की स्थिति में तो अगर हम कृष्ण भूमि की बात करेंगे तो कोई सुनेगा, सनातनी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे आप बताइए। अगर हम कृष्ण भूमि की बात आज करें तो इस रामचर्य मंदिर की घटना के बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कौन चर्चा करेगा, कौन विश्वास करेगा इस पे, तो ये राइट
1: ठीक
0: होनी
1: है,
0: चाहिए
1: आखिर
0: ये सब
1: में
0: कुछ।
1: देविकेनंदन जी, आखिर में मुझे एक सवाल पूछना है। आज के ट्रस्ट की मीटिंग के बाद, अब तक 4 बार मीटिंग हो चुकी है, 2022 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, आज की मीटिंग के बाद आप ये कौन सा निर्णय एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये निर्णय होना चाहिए ताकि भक्तों का विश्वास एक बार फिर राम मंदिर पर जागृत हो? ऐसा कौन सा निर्णय
0: देखिए
1: की अपेक्षा आप करते हैं इस ट्रस्ट की मीटिंग के बाद?
0: मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा, एकदम से कोई बहुत बड़े की फैसले की आशा तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो जाना चाहिए जिससे हम सनातनियों की भावना बनी रहे, टूटे ना, ऐसा ना हो कि हम लोग ये सोचना, या मेरा तो मैं तो कथावाचक हूं, मुझे तो हर जगह रामकृष्ण की कथा करनी, लेकिन ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से सनातनी फिर सनातनी पे मतलब आगे बढ़ना, राम जी पे, कृष्ण जी पे, इन सब विषयों पे बोलना भी एक लगे कि तुम लोग तो अलग तरीके के लोग हो, कोई हम लोगों को भी चोर ना बोलना शुरू कर दे, तो ऐसे लिए एक निर्णय यहाँ पे, ये निर्णय होना वर्तमान में, ये निर्णय होना बहुत बड़ी जरूरत है, यही मील का पत्थर साबित होगी आज जो निर्णय होगा।
1: देवकीनंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा निर्णय हो कि जिसके वजह से एक बार वो आस्था जो टूट चुकी है या बिखर गई है वो एक बार फिर प्रस्थापित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी
0: धन्यवाद
1: आपकी
0: जोशी
1: भूमिका
0: जी,
1: आज तक के दर्शकों के सामने रखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय राठी हमारे साथ में है। विजय राठी, आपने सुना देवकीनंदन ठाकुर भी यहां पर क्या कह रहे थे, आमितोष पारिक को भी आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में यह है कि नृत्य गोपाल दास चिट्ठी लिखते हैं, अध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, और आखिर में वो कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए।
2: देखिए साहिल जी ऐसा है, अब आप तय करना कि कौन राजनीति कौन कर रहा है इस पे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब से मामला चला है, धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि जो जोर शोर से उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे अमितोष पारी के और हैं आजकल, ये जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं तो बोलने ही नहीं देते हमको। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये भी मुझे सुने। देखिए अगर पैसा चोरी हो रहा है और उसको बाहर अगर समाजवादी पार्टी ने भंडा फोड़ कर दिया तो उसको चोरी बोलते हैं। अगर जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्थाओं के साथ मंदिर की छत के नीचे रोज ये लोग उनकी आस्थाओं के साथ बलात्कार करके छोड़ दिया तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट ना करते शायद ये चीज बाहर भी नहीं आती। देखिए इंतजाम इन्होंने बहुत तकड़ा किया था, ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ट्रस्ट बना, सरकार इनकी, केंद्र में और राज्य में सब कुछ इनका, तो इनको ये घमंड हुआ, इनको ये गुमान हुआ कि हमारी कोई जांच नहीं कर सकता और चीज निकल के भी नहीं आएगी, और कोई जानकारी मांगेगा तो जानकारी से भी नहीं, हम मतलब हम लोग जानकारी नहीं देंगे। लेकिन ये तो प्रभु श्री राम की इच्छा है कि वो पता चल गया। हम लोग पहले क्या कहानियों में पढ़ते थे कि कोई चोर है डाकू है वो सड़कों पर लूट लेता है, गांव लूट लेता है, बारात लूट लेता है, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना कि मंदिर लूट लेता। जैसे मंदिर लूटने की बात सुनी तो मध्यकालीन भारत से थोड़ा सा पहले चले जाएं, 1026 जनवरी सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनवी ने, लेकिन उसे भी 1001 में आया और 1026 में 25 साल लगे 17वीं बार आक्रमण करके लूटने में। लेकिन ये तो गजब है भाई, 2020 में बनना शुरू हुआ तो 40% कमीशन के साथ, और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद पैसा ही लूट लिया, मतलब गजब है, 5 साल के अंदर अंदर एक ही बार में लूट लिया।
1: अमितोष आप इसका जवाब देंगे
3: राम गोपाल यादव,
1: लेकिन राठी जी जरा बताइएगा कि आज जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है उससे आपको क्या उम्मीद है?
2: पूरा 1000 साल बाद
1: राठी जी
2: जी
1: जी, ये तो भूमिका हो गई, लेकिन
3: किसी से उम्मीद का जवाब भी देंगे,
1: लेकिन जरा बताइए
3: किसी से उम्मीद नहीं है।
1: एक मिनट अमितोष जी, एक मिनट, लेकिन विजय जी जरा ये भी बता दीजिएगा आज जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है?
2: देखिए मैं आपसे बता दूं, ये जो है ना, ये जो मामला चल रहा है, ये बीजेपी आरएसएस अपनी प्रतिष्ठा पे ले रही है। इनको ये लग रहा है कि इसी मुद्दे पर तो सरकार में आए और राजनीतिक फसल काटी, किसी भी तरीके से इसको दबाया जाए इससे। लेकिन एक चीज निकल करके आई है, ये इसे दबाए निकाले कुछ भी करे, एक चीज इससे देश के सामने तय हो गई कि जिस भगवान के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने आस्था दिखा करके इस हिंदुस्तान को लूटा, वो चेहरा इनका सामने आया कि उस भगवान में आस्था नहीं है।
1: ठीक है अमितोष जी,
2: ये रिजल्ट लोगों के सामने आ गया,
1: बहुत मुश्किल है
2: कोशिश कर ले इस चीज।
1: सिर्फ ट्रस्ट की एक मीटिंग से तो नहीं होगा, 15 जुलाई का हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि पूरे एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद शायद दोबारा मीटिंग हो सकती है, वो अभी तक उसकी कोई जानकारी है नहीं किसी के पास। लेकिन अमितोष जी आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद जरा मैं आशुतोष जी के पास भी चलूंगा।
3: धन्यवाद साहिल भाई। देखिए जब मैंने मेरी बात रखी तो मैं सर सरमान के साथ आज किसी पे आक्षेप और कटाक्ष करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मेरा कोई ऐसा प्रारूप भी नहीं था। मुझे लगा ट्रस्ट की बैठक है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, वो गंभीर विषय है। और लेकिन मेरे मित्र विजय राठी के पेट की बात पची नहीं और उन्होंने मेरा नाम लेके इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। मैं बताता हूं क्या राजनीति हो रही है पहले दिन से आज तक ले लीजिए, दो पक्ष साफ है साहिल। पहला पक्ष है जो एक तरीके से एसआईटी बनाता है, एफआईआर करता है, जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, अरेस्ट करता है, अक्यूज से रिकवरी करता है और आज भी आपको कह रहा है कि जाइए जितना आप इसको चुनौती दे सकते हैं दीजिए, एसआईटी से ऊपर जांच करवानी करवाइए, जो भी ऊपर से नीचे लिप्त पाया जाए उसको करिए, बड़ी मछली छोटी मछली करने वाले ये लोग नहीं थे। लेकिन एक जगह है जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता पीसी करके अपने आपको बड़ा सनातनी बताते हैं, उसी दिन दूसरे मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य राम का मजाक बना देते हैं, वही कांग्रेस सरकार त्रिपुरा से अपना ट्वीट कर देती है, कृष्ण जन्मभूमि में चुप हो जाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि निरंतर रूप से, मैंने फिर सवाल करता हूं आपके माध्यम से, मैं कृष्ण जन्मभूमि पे आज सवाल नहीं उठाना चाहता, मुझे पता ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज राम जन्मभूमि पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो सीबीआई प्रोब का निर्णय लिया कि ये पीआईएल खारिज करी, अब आप इनसे सवाल करिए कि क्या हाईकोर्ट पे भी इनका भरोसा है या हाईकोर्ट पे भी इनका भरोसा टूट गया, बहुत स्पष्ट सवाल है मेरा साहिल।
2: अमितोष जी
1: पीआईएल किस वजह से खारिज हुई,
2: के पीछे छुपने
1: पीआईएल खारिज होने के कारण क्या है?
2: इससे
3: इलाहाबाद लखनऊ बेंच सीबीआई प्रोब पीआईएल डिसमिस बाय लखनऊ
1: बेंच, क्या है
3: विजय राठी क्या कहते हैं?
2: मैं जवाब दे दूं?
1: ठीक है राठी जी जवाब दीजिए पहले।
2: साहिल जी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया, अब उससे पहले भी ये इस चोरी की बचाव कर रहे थे, उससे पहले भी कभी इन्होंने नहीं माना कि हाँ चोरी हो गई और नैतिकता के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, या फिर उसी का कोर्ट का इंतजार करने लगे कि क्या डिसीजन उस चीज का है, कोर्ट क्या बोल रही है उसका पूरा डिसीजन पढ़िए उसके बाद यहां बताइएगा। अभी सबसे पहले आप ये देखें कितने दिन बाद आपने एफआईआर करी, 20 दिन आपको एफआईआर करने में लग गए, एसआईटी आपने बना दी, किनके अंडर आपने एसआईटी बनाई वो खुद अगर आप ढंग से जांच करेंगे वो सारे लोग इसी में इन्वॉल्व मिलेंगे, इन्हीं छत के नीचे काम चल रहा है, आप किसका बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये आम आदमी का बेवकूफ नहीं बनेगा, ये सबको दिख रहा है कि आप लिपापोती करना चाहते हैं। जब इतनी बार सुनिए, आप ही बोलना
1: कौन कितना बड़ा सनातनी है ये चर्चा का विषय नहीं है, और ना ही मैं इस चर्चा में पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं इस चर्चा में जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस चर्चा को जारी रखना चाहता हूँ कि आखिरकार ट्रस्ट के भीतर जो हो रहा था ये कोई निजी प्राइवेट ट्रस्ट तो है नहीं कि जिसके आधार पर करोड़ों लोग यहां पर आकर जो पैसा दे रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कोई किसी को ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानने के लिए तैयार है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अमित जी, चार सवाल मेरे आपके पास आपके लिए है, और उसके बाद वही सवाल मुझे बाकी लोगों से भी पूछने हैं। अगर इसके जवाब होंगे तो हम इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। पहला सवाल यह है कि क्या किसी को पता था कि ट्रस्ट में जो गोपाल राव की जो भर्ती है वो नियुक्ति किस तरीके से हुई है? क्या आपको जानकारी है इस बारे में? हम में से किसी को जानकारी नहीं, कैसे हुई भर्ती, कैसे हुई नियुक्ति मालूम है आपको? ट्रस्ट में जो टिन्नू यादव है उनकी भर्ती कब और कैसे हुई, क्या इसकी जानकारी है किसी को? है ट्रस्ट के कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति और नियमावली क्या है, किस नियमावली के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये नियमावली कब बनी है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए, किस तरीके से बनाया गया है, क्या इसकी इसकी कोई जानकारी है आपके पास? बताइए अमितोष जी।
3: साहिल, हाँ साहिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितनी भी चीजें ट्रस्ट के डीड के अंदर में है या ट्रस्ट डीड के अंदर में कोई लूप होल है या लेक्यूना है उस पर आज निर्णय होने और उस पर तय भी होना है। दूसरी बात यह भी आती है कि
1: नहीं है जानकारी
3: के दायरे में क्यों नहीं है। आपने एक बात गलत कही साहिल, मैं समझता हूं साहिल, आप एक बात समझिए, उस पर भी आ जाएंगे। आरटीआई के दायरे में ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है। और मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। पहला एग्जाम्पल तो है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का
1: सवाल है,
3: पीपल वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस
1: यही तो सवाल है,
3: कमीशन
1: करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर का ट्रस्ट प्राइवेट क्यों है, क्यों है? और इसी वजह से वहां पर कोई गोपाल राव वहां पर आ जाते हैं और भर्ती नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं। किसी को नहीं पता किस तरीके से भर्ती होती है।
3: मैं जवाब दे रहा हूँ, सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में। उसमें पब्लिक अथॉरिटी क्या है उसकी डेफिनेशन में ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जीरो फंडिंग है और इसके गवर्नमेंट की तरफ से ट्रस्टी का सुओ मोटो नोटिस।
1: क्या ये जानकारी बाहर नहीं निकले? इसीलिए इसीलिए इस सेक्शन के तहत ट्रस्ट बनाया गया था। क्या ट्रस्ट के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी किसी को नहीं चले पता चले, इसीलिए ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया था, इसीलिए इस सेक्शन के तहत ट्रस्ट बनाया गया था। ये सवाल उठ सकता है आज तो,
3: प्राइवेट ट्रस्ट सही है कि नहीं है? गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है उसमें साहिल भाई, उसमें गवर्नमेंट फंडिंग
1: क्या इसीलिए आशुतोष बनाया गया था ट्रस्ट इस तरीके से?
2: देखिए,
1: किसी को जानकारी नहीं है कि गोपाल राव की भर्ती नियुक्ति कैसे हुई है, ट्रस्ट में टिन्नू यादव की भर्ती कब कैसे कहां हुई, किसके आदेश पर हुई, किसी को जानकारी नहीं है।
2: साहिल देखिए, सारी समस्या की जड़ में यह है कि पूरे के पूरे राम मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। सिर्फ उनके अध्यक्ष महोदय का बयान देख लीजिए, उनके जो कोषाध्यक्ष उनका बयान देख लीजिए, जो कोषाध्यक्ष है उनको ही नहीं मालूम। अब आप सोच लीजिए, इसका मतलब यह कि जो वहां जनरल सेक्रेटरी थे वो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से चला रहे थे और अब उनको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। अगर यही काम विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति ने नहीं या उनके उनसे जुड़े किसी संघ ने नहीं, अगर किसी और पार्टी के लोगों ने किया होता, अब तक क्या होता इस देश के अंदर आप समझ सकते हैं। सिर पर उठा लिया गया होता विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने। लेकिन आज अगर कोई बोल रहा है तो दत्तात्रेय हाउसबोले जी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या नृपेंद्र मिश्रा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या विनय कटियार षड्यंत्र कर रहे हैं? कौन षड्यंत्र कर रहा? प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर क्यों चलाया जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल इसमें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वहां सिर्फ चढ़ावा की चोरी नहीं हुई थी, वहां रिक्रूटमेंट में चोरी हो रही थी, वहां जमीनों का खरीद फरोख्त में चोरी हो रही थी, वहां पे और तमाम जो स्पेशल दर्शन थे उसमें घुस ली जा रही थी। क्या वो किसी बड़े व्यक्ति के बगैर सब खो रहा था? एक ड्राइवर को खुली एक्सेस थी कि वो जहां पे काउंटिंग हो रही थी वहां पे अंदर बाहर हो सकता था। क्या ड्राइवर को इतनी एक्सेस होनी चाहिए थी? क्या उसके लिए चंपत राय जिम्मेदार नहीं है? लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है एसआईटी गठित कर दी गई। आप कानून को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। 4 तारीख को जब चंपत राय को पता चला एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया, 5 तारीख को जब उन्होंने बरामद ये करे तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया, 20 दिन तक वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, जबकि चोरी का पहला कानून यह है कि जैसे ही कहीं चोरी होती है वहां फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
1: यही तो बात है,
2: बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और 20 दिन का वक्त दिया गया सारे साक्ष्य उठाने के लिए।
1: कोई ज्यादा उम्मीदें किसी को भी नहीं है, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता है कि ये टिन्नू यादव मतलब ड्राइवर से लेकर बाकी सारे लोग, और अभी ये ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है, गोपाल राव उनके बगल वाले कमरे में बैठे हुए हैं, किस हैसियत से बैठे हुए हैं किसी को नहीं पता है, क्यों बैठे हैं वहां पर।
2: देखिए, आपको याद होगा कि जब ये मामला सामने आया गोपाल राव वहां गए थे बेंगलोर, दत्तात्रेय हाउसबोले साहब से उन्होंने मुलाकात की है। वो बहुत पावरफुल लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं
4: गोपाल राव
3: मेरे से सवाल कर रहा है जी, आपके पास बहुत अंदरूनी बातें एसआईटी को दीजिएगा, यहां बैठ के मीडिया के अंदर एलिगेशंस मत लगाइए।
4: वो अयोध्या ना छोड़े, वो अयोध्या छोड़ के बेंगलोर जाते हैं, दत्तात्रेय होसबोले साहब से मुलाकात करते हैं, कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा?
3: साहिल भाई पर जवाब दे दो आशुतोष की बात का।
1: ठीक है अमितोष, अमितोष जवाब दीजिए, उसके बाद अतुल लोंडे के पास भी चलूंगा मैं। अमितोष जी
3: देखिए साहिल, बहुत हैरानजनक बात यह है, जो नए नए सूडो सनातनी लोग बने हैं, मैं इस पे बार बार आने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया आशुतोष ने, अगर इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आज रामगोपाल यादव देखते हो 20,000 करोड़ की चोरी बता रहे, एसआईटी को जाके क्यों नहीं देते? इनको इस सब पता है कि वहां पर ऑर्डर था तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जाके बताइए। देर इज नथिंग विच इज ब्लैक एंड व्हाइट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, जो अनऑफिशियल उसको ऑफिशियल बनाना है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, क्यों एसआईटी की जांच जो है केरला हाईकोर्ट के द्वारा करी जाती है और 8 जने प्रोसिक्यूशन में सीपीएम के पाए जाते हैं गुरु सबरीमिला मंदिर में, आशुतोष वहां आवाज क्यों नहीं उठाते? तिरुपति में 1.3 kg गोल्ड का जब आरोप लगता है और आवाज उठाई जाती है, इतना अरेस्ट होता है, आशुतोष सब सवाल क्यों नहीं उठाते? गुरु अय्यप्पा मंदिर के अंदर में आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मुझे लगता है कि देर वॉज अ ग्रीन विद एनवे साहिल, जो ट्रस्ट के अंदर में हुआ है और जो चोरी हुई है, जो अपराध है उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, वो विषय नहीं है। लेकिन राम जन्मभूमि एक सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, उसको टारगेट करके सेक्युलराइज अपने आपको क्लीन चिट देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकलाइजेशन है जिसपे हम सबको सतर्क रहना चाहिए।
4: साहिल मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा
1: है, जो है ना इसी बात को लेकर सवाल है आशुतोष जवाब, उसके बाद अतुल लोंडे पाटिल जी।
4: ये विश्व हिंदू परिषद का जो ये आक्रामकता आप देख रहे हैं, मतलब जहां कहीं शर्म आनी चाहिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर आंदोलन किया गया, राम मंदिर का निर्माण कराया गया, आज वहां शर्म नाम की चीज नहीं है, उल्टे दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा। आलोक आलोक कुमार जी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं आप फलाने से पूछताछ करिए, उनके पास सबूत है सबूत नहीं। अरे चोरी जिन लोगों ने की है उनके नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही, यही मैं कह रहा हूं। अगर राम मंदिर के इस मामले में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए अगर लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा होता, किसी और संगठन के लोगों का आरोप लगा होता, आप देखते देखते क्या क्या कहा जाता सिर आसमान।
1: पांडे सबसे पहली बार आरोप लगाते
4: को देखकर हैरानी हो रही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ।
1: 7 जून को ठीक है, 7 जून को पवन पांडे आरोप लगाते हैं, 9 जून को
3: सनातन
1: ठीक ठीक ठीक है, 7 जून को पवन पांडे आरोप लगाते हैं, 9 जून को पीयूष सरकार के मंत्री आकर ये कहते हैं, पीयूष गोयल आकर कहते हैं कि भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 13 जून को एसआईटी गठित की जाती है, 23 जून को रिपोर्ट आती है, 25 जून को एफआईआर दर्ज होता है और उसी दिन 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद 15 जुलाई तक एसआईटी को अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वक्त दिया जाता है। अतुल लोंडे पाटिल, जिस तरीके से यह ट्रस्ट चल रहा है, आरटीआई के दायरे से बाहर, अभी अभी कहा उन्होंने कि क्यों आरटीआई के ट्रस्ट के बाहर है, आरटीआई के दायरे से बाहर है, क्या इसीलिए आपके कर्नाटक में आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस को रजिस्टर कर लेना चाहिए? ये जो आप अभी नया शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसके पीछे क्या राजनीति है?
5: ये नया नहीं है, ये 1949 से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले उनको कहा था, लिख के दिया था, सांस्कृतिक संगठन है ये, लिख कर दिया था, बैन लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तब से ये बात है, आज की बात नहीं है। बात यह है अगर चोरी को और चोर को बचाने की कोशिश करेगा वो भी उसमें उतना ही शामिल होगा और वो भी चोर कहलाएगा। अब ये हैप्पी जोन ऑफेंडर है, विश्व हिंदू परिषद निर्मोही आखाड़ा ने 1400 करोड़ कार सेवकों का पैसा बीजेपी खा गई, ये आरोप उन्होंने किया था, ये तो कोई स्टूडियो सनातनी उन्होंने किया था। 1200 करोड़ की 1200 रत्नजड़ित शिलाएं जो है वो चोरी हुई 2012 में, ये आरोप इन्होंने किया था, हमने तो नहीं किया था। जमीन जो है उसमें इनको तब सनातनी नहीं दिखता है, अंसारी और पाठक दो मिलके आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेच देते हैं, तब इनको वो चोरी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए केदारनाथ मंदिर में चोरी, वहां कहते कि नहीं लोगों ने दिया था, वो पीतल है सोना नहीं है, वहां के साधु संत कह रहे कि सोने की चोरी हो गई। अभी बद्रीनाथ का भी किस्सा सामने आ रहा, दूसरा किस्सा महाकुंभ का भी आ रहा, नासिक के महाकुंभ में साहिल आपको तो पता है मंत्री अपना ये मंत्रालय में ओएसडी जो है वो
3: सबरीमाला
5: पकड़ा गया। पाशु अमित बीच में बोला नहीं था मैं आपको, बाद में जो बोलना है बोलिए, इधर उधर की बात मत
3: करो,
5: बीच में बोला नहीं मैं, बीच में बोला नहीं
3: क्योंकि
5: चोर को बचाने की चोर की कोशिश है,
3: आप लोगों ने एक्सेप्ट लगा,
5: चोर मचाए शोर रही है,
1: क्या उम्मीद है ट्रस्ट की मीटिंग से, क्या उम्मीद है आपको? एक मिनट अतुल लोंडे पाटिल स्पेसिफिक बताइएगा, ट्रस्ट की मीटिंग से क्या उम्मीद है आपको
5: मुझे बताओ? जो मध्य प्रदेश का सीएम है पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की जमीन चोरी करता है, उससे कोई उम्मीद है क्या? क्या क्या हो रहा है उसके इंक्वायरी का? सबके सब चोर बैठे हैं और कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। राम भक्त के क्या प्रभु रामचंद्र ऐसे को अपना
1: विशाल मिश्रा
5: प्रभु रामचंद्र कभी ऐसे लोगों को
1: मंदिर के भीतर क्या चोरी हुई? सभी लोगों ने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया। मंदिर के भीतर क्या चोरी हुई? सभी ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिया। और ट्रस्ट का संविधान देखिएगा,
5: अरेस्ट नहीं करते क्या? एक मिनट साहिल,
1: ठीक है, एक मिनट अतुल लोंडे, जरा ट्रस्ट का संविधान देखिएगा, ट्रस्ट का संविधान देखिएगा, बायलॉज देख लीजिएगा।
5: 5 सेकंड साहिल,
1: अतुल लोंडे बात अपनी खत्म करिए, 10 सेकंड।
5: देखिए क्या है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, बोले तो मैं सुना भी देता हूँ। कहते हैं कि कुत्ता अगर भूखे नहीं चोरी पे, तो वो कुत्ता जो है वो चोरी में शामिल है। बस यही बात हो रही है, यही बात हो रही है कि चोरी में सब शामिल है और ये सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो प्रभु रामचंद्र के ऐसे लोग कभी भक्त नहीं हो सकते।
1: विशाल मिश्रा, ट्रस्ट के संविधान देखिएगा, ट्रस्ट का संविधान देखिएगा, और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब जो मैंने अमितोष जी को भी पूछे थे, यही सवाल है कि ट्रस्ट में गोपाल राव की भर्ती या नियुक्ति कैसे हुई? क्या आपको पता है तो बता दीजिएगा। ट्रस्ट के भीतर टिन्नू यादव जो दरअसल ड्राइवर है, उनकी भर्ती कब और कैसे हुई वो भी अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। ट्रस्ट के कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति, उसकी नियमावली क्या है, किन नियमों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी, क्या उसके लिए कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई थी? अगर नहीं है तो फिर ये नियुक्तियां कैसे हुई, और फिर इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार कौन है? जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन है?
6: साहिल जी, जो आपने सवाल पूछे उसके तहत जो भारतीय न्यास अधिनियम है उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो न्यास की परिभाषा है उसके अंतर्गत ये ट्रस्ट का गठन हुआ है, और इसके जो सदस्य हैं न्यासी हैं उनका एक दूसरे के ऊपर अपना विश्वास है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको जोड़ना चाहता हूँ। आपने कई सारे सवाल आए यहाँ पे, बार बार BHP और बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेके अनर्गल टिप्पणी
1: की जा रही है। सर
6: साहिल जी, मेरा सख्त ऐतराज है, नहीं, आई ऑब्जेक्ट, मैं इस बात की ऑब्जेक्शन करता हूँ।
1: राष्ट्रीय
6: सेवक संघ और हिंदू परिषद का नाम इसको खींचा जा रहा है, नहीं
1: कह रहे हैं कि सवाल करता हूँ,
6: ये जो चार सेवकों पर गोविंदगिरी
1: जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गिनती कैसे की जाती है,
6: जो अयोध्या को लांछित करते थे, अपमानित करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो जो कहते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, जो कहते थे कि अयोध्या के दशरथ जी के जो है कितने कमरे कहां जन्म हुआ था, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, आज इनके अंदर बहुत प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम लगा हुआ है।
1: एक मिनट, पॉलिटिकल बहस हम कई बार कर सकते हैं, कौन सनातनी है, किसे सवाल उठाने का अधिकार है, कौन सवाल नहीं उठा सकता, कौन धन का रक्षक है, कौन धन का भक्षक है, इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। प्रोफेसर मिश्रा, इस पर हम दोबारा चर्चा कर लेंगे, हम इस पर दोबारा चर्चा कर लेंगे। आज सवाल एक ही है प्रोफेसर मिश्रा, इस पर आज का सवाल एक ही है,
6: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक
1: आज का सवाल एक ही है कि आप जो कह रहे हैं ट्रस्टियों का एक दूसरे पर विश्वास, शांत करिए सबको,
6: तो यहाँ पर
1: शांत करिए सबको PCR सबको शांत करिएगा। प्रोफेसर मिश्रा, आज का सवाल एक ही है, मेरी आवाज आप सुन सकते हैं, मेरा सवाल एक बार फिर वही है, आप जो कह रहे हैं कि ट्रस्टियों का एक दूसरे पर विश्वास था, ट्रस्टियों का विश्वास नहीं है। गोविंद गिरी जी आज एक दिन पहले आकर कहते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पर दान पेटी की गिनती किस तरीके से होती थी, उसका क्या SOP है, क्या प्रोसीजर है, मुझे नहीं बताया गया था। आप उस पर जवाब दीजिएगा, प्रोफेसर मिश्रा की आवाज बढ़ाइएगा,
6: आपको
1: ये ज्ञान नहीं होगा अभी, प्रोफेसर मिश्रा जी ये ज्ञान नहीं होगा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा,
6: आपके सवाल का जवाब
1: दिया। कैसा विश्वास है?
6: भारतीय
1: नहीं दिया
6: अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत
1: मैंने वही कहा
6: हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, यह ट्रस्ट एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था है, इसलिए यह ट्रस्ट RTI में नहीं है। नंबर 3, आवश्यकता पड़ेगी तो बाईलाज अमेंड किया जाएगा। माननीय सर कारवाजी ने भी कहा है कि सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे,
1: सब हो जाएगा,
6: प्रबंधन की बात
1: चोरी के बाद
6: यदि आवश्यकता होगी तो
1: भर्ती कैसे हुई वो बताइएगा, किस विश्वास पर भर्ती की गई थी,
6: अलग हो जाएगा, क्या
1: कौन सा SOP था,
6: जांच होने
1: की कौन सा नियम था,
6: बोर्ड की
1: कौन सी नियमावली थी,
6: जो आवश्यक निर्णय होगा लिया जाएगा,
1: कौन सी नियमावली थी,
6: जो भी कल्पित होंगे
1: क्या उनके ऊपर, कौन सी नियमावली थी, क्या उसके लिए इश्तेहार निकाला गया था, अखबारों में कहा गया था कि लोग आइए हम भर्ती करना चाहते हैं, किस आधार पर भर्ती की गई थी, कौन लोग थे वो भर्ती करने वाले?
4: साहिल यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है, इतना कस के शोर मचाओ,
7: शोर क्यों,
4: इतना कस के शोर मचाओ,
7: जबकि हाजिर है कि किसके पास जो भी आरोप है, आप जाइए आरोप रखिए, जांच कराइए, किसने रोका आपको, लेकिन यहाँ बैठकर अनर्गल आरोप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और वो आरोप इनकी पार्टी कहा करती थी, ओ मेरी नानी कहा करती थी और नानी याद आती थी, आज तो नानी भूल गई, बहुत याद आ रहा है प्रभु श्री राम जी के लिए, वाह
4: साहिल क्या मैं कहते थे
7: बोल सकता हूं। ये देखिए प्रेम, यही लोग हैं,
1: स्पेसिफिक सवाल स्पेसिफिक जवाब, आज पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज राजनीतिक चर्चा पे नहीं जा रहे हैं,
7: मिले थे ऐसे,
1: जब मंदिर बना तब उसका श्रेय तो आपको मिला ना
4: साहिल,
1: जब मंदिर बना तब श्रेय मिला कि नहीं मिला,
4: इम्पोर्टेंट
1: मिला ना आपको श्रेय
4: कि राम मंदिर का निर्माण
1: मिला कि नहीं मिला, एक मिनट अतुल लोंडे, एक मिनट आशुतोष जवाब दीजिए
4: ना। देखिए साहिल इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और 2 साल के अंदर वहां चोरी की बात सामने आ गई, 2 साल मैनेज नहीं कर पाए, आप सोच लीजिए इस बारे में, यानी आप कैसे इनके ऊपर भरोसा किया जाए कि राम मंदिर सुरक्षित है इन लोगों के हाथों में, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए और जो भी लोग चंपत राय को, गोपाल राव को या मिश्रा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतने ही भागी उस आरोप लगा रहे हैं
7: दक्षिण भारत के, और यही
4: ये मद्रास
7: ये चिल्ला के
4: अपने अपराध को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
7: मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या SIT गठित हुई कि नहीं हुई, प्राइमा फेसी रिपोर्ट आई, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार व विश्व हिंदू परिषद, किसने नहीं कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो,
1: बताइए कोई बताया, पुरानी बातें निकाली जाती है, व्हाट अबाउटरी की भी कोशिश होती है कि अगर वहां हुआ था तब क्या हुआ था, लेकिन जिस आस्था से यह मंदिर बनाया गया था, जिस मेहनत से यह मंदिर का श्रेय लिया गया था, उसके बाद जब चोरी हुई है तो सभी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आखिरकार इस ट्रस्ट की मीटिंग के बाद क्या जिम्मेदारी तय होती है, उस पर नजर बनाए रखेंगे। थोड़ी देर में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाए, गोविंद गिरी जो ट्रेजरर है उन्होंने कहा है कि वो मीडिया से रूबरू होंगे और इस ट्रस्ट की मीटिंग के भीतर क्या हुआ उसकी जानकारी हमारे सामने रखेंगे। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
1: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक, the mustard specialist since 1933.
9: सरसों से सरसों।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
4: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
5: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अक्ल अक्ल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
6: परमिशन लेनी चाहिए ना,
5: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
7: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
5: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।
8: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूँ। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
9: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
8: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
9: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
8: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
9: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
8: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
9: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
8: जॉन मैकेनरो।
9: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज़्यादा जोशीले हो जाते। आई लव

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमाक, the mustard specialist since 1933.
10: सरसों से सरसों। We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए, मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
1: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की NDA गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
0: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
2: कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा
3: हुई।
2: अभी सीट शेयरिंग नहीं, आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
0: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
4: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
0: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें SP ने 17 सीटें दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। अरे ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, VHP के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम तेरे बेटे। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं।

0: तो क्या ट्रस्ट देगा भरोसे का संदेश, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप के साथ। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग जारी। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। चंपत राय को लेकर भी बैठक में नाराजगी। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। श्रीराम भारत की आत्मा के मूल स्रोत, भगवान राम का मतलब राष्ट्र। बंगाल के बरुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च। 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 6 आरोपी गिरफ्तार। हथियार और पेट्रोल बॉम्ब बरामद। इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर होगी चर्चा। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का ग्रोह जन आक्रोश का सामना नहीं करता।
1: राम का मतलब राष्ट्र है।
2: ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सर्वे अशोक सिंगल जी की ही परिकल्पना का भाग है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज अयोध्या पर एक और फैसले का दिन है। राम मंदिर ट्रस्ट की बेहद अहम बैठक चल रही है, जहां चढ़ावा चोरी कांड से सवालों के घेरे में आए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला होना है। बैठक को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर नाराजगी के सुर उभरे हैं, ऐसी खबर आ रही है। दोनों ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी कांड के बाद अब उनके मैनेजमेंट में बदलाव होना तय माना जाए। आखिर मंदिर ट्रस्ट, जो ये मंदिर का ट्रस्ट है, वो कौन सा कदम उठाएगा जिससे उस पर टूटा भरोसा वो ट्रस्ट वापस लौटे। इस बीच अखिलेश यादव का दावा है कि चढ़ावा चोरी पर जन आक्रोश का सामना बीजेपी नहीं कर पा रही। उधर आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में मंदिर आंदोलन को चलाने वाले बीएचपी नेता अशोक सिंघल की मूर्ति का अनावरण किया है। क्या चढ़ावा कांड पर अशोक सिंघल का नाम बीजेपी की ढाल बन सकेगा? आस्था को ठेस, ट्रस्ट दे सका भरोसे का संदेश? जो राम को लूटे हैं, क्या वो सब बाहर जाएंगे? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस चढ़ावा कांड का जनाक्रोश तो कम नहीं हो सकता, लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट उस भरोसे को लौटा सकेगा जिसकी उम्मीद उससे की गई थी? चढ़ावा कांड के बाद मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में सदस्यों की ओर से चढ़ावा चोरी पर आहत होने की बात कही गई है। ट्रस्ट की बैठक में ये खास ख्याल रखा गया कि कटघरे में खड़े हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा खुद शामिल ना हो। बैठक में FIR कराने वाले ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने उन वजहों को गिनाया जिससे ये नौबत आई। बैठक में आंदोलन के बाद बने इस राम मंदिर को लेकर लगे कलंक को धोने के उपायों पर चर्चा हुई। आज ही मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उनके शब्द हैं, श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास जताया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी में ये भी लिखा है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने आज भी आस्था के मसले पर बीजेपी को घेरने में चूक नहीं की।
1: संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ने, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान ने, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान ले, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान, चोरों का ग्रोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा।
0: वैसे चढ़ावा चोरी पर चौतरफा दबाव के बावजूद बीजेपी ने अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सामने बैकफुट पर आने का संकेत नहीं दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे अशोक सिंघल ने मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी।
2: प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है।
3: ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सर्वे अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। चारों ओर एक ही गूंज थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सर्वे अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया संघनाद किया था।
0: अयोध्या के मंदिर आंदोलन ने बीजेपी की राजनीति की दिशा तय की है। चढ़ावा चोरी के इस मामले से खुद को बचा पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 2024 चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई थी, इसीलिए 2027 के यूपी चुनाव में चढ़ावा चोरी का मसला राजनीतिक रूप से और संवेदनशील हो गया है। आज तक ब्यूरो
4: अस्तित्व का प्रश्न।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन, आज प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ स्टूडियो में दिल्ली आए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी भी जुड़ी हुई है, जो कि इस पर चर्चा करेंगे और लगातार वो इस मुहिम की तरह इसे उठा रही है, तमाम जो छुट्टियां आ रही हैं एक्सपोजे कर रही हैं। हमारे साथ विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी के भी हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट के तौर पर यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि अभी भी सभी को इंतजार है कि औपचारिक रूप से इस ट्रस्ट की बैठक के बाद करीब ढाई घंटे हो चुके हैं, इंतजार है कि औपचारिक रूप से जानकारी बाहर आए। लेकिन आज योगी जी ने अशोक सिंघल जी की भी भूमिका की चर्चा की है, ये सब अपनी जगह पर है, और बीजेपी ने इस मुद्दे को हमेशा अपनी तरफ से बार बार उठाया, ये भी अपनी तरफ है, लेकिन ये सब या इनमें से कोई एक ये जस्टिफाई नहीं करता जो हुआ है उसे। सुधांशु जी, और अब सबको इंतजार है कि नाराजगी अपनी जगह पर है, इस्तीफा भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी या नहीं इन दोनों के खिलाफ। सुधांशु जी,
5: देखिए, मैं नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से जवाब दूंगा। जो कुछ हुआ है जस्टिफाई करना तो छोड़िए, यह बहुत दुखद है, करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला है और हमारे जैसे लाखों राम भक्त कार्य सेवकों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। अशोक सिंघल जी का उन्होंने उल्लेख किया, 4 या 5 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर रैली हुई थी, जो आज तक की सबसे बड़ी रैली थी। मैं उसमें भी आया था, दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया था, 5 लाख लोग आए थे, वरना सरकार कभी 20,000-25,000 ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी। और विश्व हिंदू परिषद ने कहा था 20 लाख लोग आए। उसमें ये जो योगी जी ने बोला है ना, उसमें नारा लगा था, रितंबरा जी ने लगवाया था कि भारत के हैं राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और उस समय एक एक कार सेवक ये कहता था कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। उस आपदा विपदा के बाद जो मंदिर बना, उसके बाद जो चढ़ावे में हुआ है, वो उनके हृदय पर, करोड़ों हिंदुओं के और लाखों कार्यसेवकों के हृदय पर कितनी बड़ी विपदा बनकर उभरा होगा, वो मुझे लगता है हृदय का आघात। हम भी उन कुछ लोगों में से हैं जिसे समझ सकते हैं। मगर अब अगर बिल्कुल संवैधानिक बात कहें तो भारत में कानूनी प्रावधान यह है कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को सरकार सीधे नहीं हटा सकती है, वो ट्रस्ट ही से हटाया जा सकता है, और जो आजीवन सदस्य है उन्हें ट्रस्ट की बैठक में ही 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, और विशेषकर वह ट्रस्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे बना हुआ हो। क्या उसमें ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन करके सीधे सरकार किन प्रावधानों के तहत हटा सकती है, कृपया हमारे विरोधी ये बता दें। जैसे किसी जज के यहां से अगर करोड़ों रुपया बरामद हो गया तो हटाने की प्रक्रिया यह है कि वो संसद के सत्र में ही एक निश्चित संख्या के सांसदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के ऊपर 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, बाकी सीधे नहीं। उसी प्रकार ट्रस्ट के आजीवन सदस्य, अगर ये मेरे विरोधी कहते हैं टेक्निकल पॉइंट पे, चूंकि आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो किस प्रावधान के तहत सीधे हटाया जा सकता है? नंबर दो, अगर यह कहा जाए कि लोगों को तुरंत क्यों नहीं हटा दिया गया था, तो क्या प्राथमिक एविडेंस के बगैर हटाया जाना चाहिए? सरकार ने उसके बावजूद ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट की पावर को एक तरीके से सबसाइड करते हुए एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट आई, कार्रवाई हुई। अब आप कहेंगे 6 जुलाई को रिपोर्ट, 6 जुलाई की तारीख क्यों तय की गई? 15 जून को एसआईटी ने काम शुरू किया था, तो यदि काम समाप्त होता तो 30 जून को होता, चूंकि 15 दिन और ले लिए गए, तो अगर 1 जुलाई को सरकार के पास रिपोर्ट सबमिट होती तो 2 या 3 जुलाई को वो जनता के पास आती, तो 6 जुलाई की डेट एकदम सही रखी गई थी, क्योंकि अगर सारे ट्रस्ट को भी इस्तीफा देना था या किसी को भी इस्तीफा देना था, वो सिर्फ बोर्ड

0: पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूं, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है?
1: ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से छोटा जवाब फिर सुनील जी।
2: फिर देखिए, मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी तो स्वाति जी को बेहतर होता टेक्निकल जवाब देती। मुझे वो क्लॉज बता दें कि बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, बगैर प्राइमरी फेसिया छोड़िए, फाइनल एविडेंस छोड़िए, प्राइमरी एविडेंस के भी किसी को
0: बताती हूँ
2: गिरफ्तार किया जा
0: एफआईआर।
2: सकता हो। और यह बहुत संवेदनशील मामला है, जब तक कोई सबूत, ठोस सबूत ना आ जाए, किसी को सीधे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य मामला नहीं है, उसको जीवन भर के लिए आप कलंकित करते हैं। सेकेंड थिंग, ये हम पुख्ता सबूतों पे करना चाहते हैं ताकि जिस पे भी चार्जेस फ्रेम हो सुप्रीम कोर्ट तक जाके ना कटे। ये नहीं कि भावनात्मक, जो आपने कहा भावना में 50 लोगों पे एफआईआर कर दीजिए और पहली हियरिंग में 40 साफ। तो यहां पर कोई भावनात्मक राजनीति के तराजू पे तौल कर खेल नहीं करना है, शुद्ध संवैधानिक और लीगल आधार के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ानी है।
1: ठीक है स्वाति जी, थोड़ा सा ठहरिए, अब सुनील
2: जी
1: जी को एक बार बोलने दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत, इस बात आ रही हूँ स्वाति जी, थोड़ा सुनील जी,
3: जी जी
1: कौन से मतलब कौन सी धारा के तहत अरेस्ट कर लिया जाए, पूछ रहे हैं।
3: अंजना जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो आस्था की बात, भगवान राम की बात, मंदिर की बात, परंपराओं की बात, हिंदू हिंदू रीति रिवाज की बात, उससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन महाराज, एक बार तो आप स्वीकार कर लो कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हुई है, और जो चोरी करने वाले लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, या जो अयोध्या वासी हैं, जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम, आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे? और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत, और जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए और उसको छिपाया जा रहा है, बाद में एफआईआर हो रही है, बाद में वो पुलिस दिखा रही कि हम बरामद किए हैं। और जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7 जून को कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, उसके बाद चंपत राय जी आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ तो लिहाज करिए, एफआईआर तो करा सकते हैं आप, चंपत राय को जेल तो भेज सकते हैं, होती रहेगी प्रक्रिया इस्तीफे की, इस्तीफा होने के बावजूद भी तो उनका रास्ता जेल ही है, केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो हिंदू विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं।
1: ठीक है, पॉइंटेड आरोप है, जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे जी।
2: मैंने फिर बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा था कि जेल किस आरोप में, कोई प्राइमरी एविडेंस आएगा और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई अपराध होता है, किसी ने गोली चलाई तो मौके पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार होता है, फिर जांच के सूत्र वहां तक भी पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था या नहीं। तो जो हो रहा नियमानुसार हो रहा है। आज जो कुछ हुआ ऐसा नहीं कि हम लोगों को तो भयंकर दुख है, आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि आप लोग तो उस समय भी हंसते थे कि राम थे नहीं, मगर हम तो उस समय भी रोते थे। मगर आज अंजना जी, मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है, जब मैं सुनील सिंह जी बैठे हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर दिख रहा है, अरे मुझे देख के याद आता हम लोग जब बच्चे थे और राम मंदिर आंदोलन में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज इन लोगों की भक्ति को देखकर मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सबै राम का, पक्का कच्चा सबै राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर हमारे शास्त्रों में और पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर नीर और क्षीर विवेक जनता कर सकती है। पर मुझे बड़ी खुशी है कि आज मंदिर इनके पीछे दिख रहा, और अखिलेश जी ने तो वो शब्द बोल दिया जो शायद कोई भाजपा का नेता बोल देता तो आसमान फट पड़ता। जब हम, ये वो लोग जो 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अखिलेश जी ने कहा रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। अंजना जी आप कल्पना करिए, किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो साहब आरा हिले छपरा हिले वाला गाना था ना, दिल्ली हिले न्यूयॉर्क हिले हो जाता, दुनिया के समुद्रों में सेकुलर सुनामी आ जाती। मगर मैं कह सकता हूं ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश की जनता ने जागरूकता दिखाई है गंगोत्री से गंगा सागर तक। मगर आश्वस्त रहिए, जिस जिसने ये पाप किया है, जो योगी जी ने भी कहा है, देखिए राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर राम के धाम पर राम का नाम लेकर यदि पाप हुआ है तो विधाता भी नहीं काट सकते, उन्हें दंड मिलेगा, राज दंड इस लोक में मिलेगा और हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्म दंड परलोक में मिलेगा, भगवान सुनिश्चित करेंगे। यह निश्चित समझ लीजिए, भगवान के भी नागपाश लगा था और एक बार भगवान भी मूर्छित हुए थे युद्ध में।

0: आज भगवान की आस्था को नागपाश लगा है, उस समय भी लोगों को संदेह उत्पन्न हुआ था, आज भी हुआ है, मगर हर परीक्षा से राम भक्त निकले, इससे भी निकलेंगे।
1: छोटा सा जवाब,
2: हम भी बिल्कुल
1: कह रहे हैं आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आप मंदिर परिसर में बैठे हैं।
2: नहीं, हम लोग तो मंदिर को, मैं तो सुधांशु जी से एक बात कह सकता हूँ, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और आप जानते हैं हम लोग जिस समाज से आते हैं वो पूरा धार्मिक है, लेकिन हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग कभी भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगते, ना वोट चोरी करते हैं ना नोट चोरी करते हैं। आपने एक शब्द कहा भगत, बकुला भगत, तो आप बताइए चोरी उजागर करने वाले को बकुला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? हम तो भक्त निकले, बकुला भगत तो आप निकले,
0: चोरी करने
2: आपके
0: वाला
2: अपने वैचारिक लोग निकले,
0: चोरी करने वाला
2: आपके आरएसएस के लोग, आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग निकले, भाजपा के लोग निकले। आप क्या एक बार भी निंदा किए? आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ गए, वो रथ पर थे और हनुमान जी बना करके बीजेपी का झंडा लेकर के हनुमान जी को आप लोग नचा रहे हैं। आप अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, गोली खाने वाला कहते हैं, हनुमान जी को नचाएंगे आप अपने वोट के लिए, अपने प्रचार के लिए?
0: बिल्कुल, बस एक ही लाइन में जवाब देता हूं। इन लोगों ने कभी, ये सही बात है, इन्होंने कभी राम के नाम पे वोट तो मांगना, इन्होंने राम के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार किया। बस दो फैक्ट बताता हूं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का वीडियो आजकल खूब छाया हुआ है, वायरल वीडियो, दिसंबर 1992 में, कि हमें हिंदू वोट दे अथवा न दे, मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, हम गोली चलाकर जो ऊपर चढ़ा उसे नीचे गिरा दिया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी थी, आज की बात तो छोड़ दीजिए, केवल 2024 की बात कर रहा हूं भाई साहब, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस किसने किया था? इंडी गठबंधन ने, हिंदू धर्म का समूल नाश। हिंदू धर्म मलेरिया है, कोरोना है, वायरस है, एचआईवी है, डेंगू है, यह कहा तमिलनाडु में। और कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अभय दुबे जी जवाब देंगे, सतीश चारकीहोली ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। इन्होंने विश्व स्तर पर कॉन्फ्रेंस की, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वो आकर अगर आज ये कहेंगे, सही बात है, अरे आप राम मंदिर बुलाने पर नहीं गए बल्कि लिख के दिया, मगर बाबर की कब्र पे तीन तीन पीढ़ियां गई, 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। सही बात है, आप बिल्कुल ईमानदार हैं। आपको भगवान राम का वोट तो छोड़िए, भगवान राम
1: जी बोले उसके बाद से मैं आ रही हूँ स्वाति जी और विनोद जी के पास और हर्ष के पास, जल्दी से। अभय दुबे जी, देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप घेरेंगे, कोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो शायद आपका जो कोर वोटर है वो सोचे कि हाँ भाई गंभीर मुद्दे पर वो घेर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इसकी इस हिंदुत्व के आधार पर जो वो अपना वोट डालता है वो बीजेपी से छिटक कर आपकी तरफ आ जाएगा?
3: जघन्य अपराध और पाप है सनातन धर्म में भी, ये काट की मारा डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन हार कपूत, सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया सनातनियों के नाम पर, ये कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, गली गली में शोर है वीएचपी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं, ये अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंगल अशोक सिंगल, ये नोटिस अशोक सिंगल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में, क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया, उस अधिकारी को बिचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का, प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा, अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा, और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के, संजय प्रसाद उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? क्या खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको? तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। और ये भ्रम था सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सोच रहा था सुधांशु जी कि आखिर कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से अवतार क्यों लिया भगवान ने? आज समझ में आता है, क्योंकि विष्णु का जो अवतार हुआ सत्ययुग में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान विष्णु के रूप में, उसके बाद दंत वक्र को और शिशुपाल का कृष्ण जी ने वध किया, उनको दंडित किया, रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ, और आज कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जघन्य पाप और अपराध किया, क्या कहते हैं साक्ष्य चाहिए? अरे पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं पूरी की पूरी रामचरित मानस मैंने सोने की, हमारे जो संचय निधि थी मां की उसको मैंने स्वर्ण जड़ित रामचरित मानस भेंट की, उसकी रसीद नहीं दी, वो गायब है। वो दीनदयाल जी जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो निगरानी करते थे रिटायर्ड इंजीनियर, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खाया गया, तो कहां है वो नपेंद्र मिश्र, उनके खिलाफ क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अरे आर्टिकल निकालते थे आप तो पंचजन्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि ये नपेंद्र मिश्र CIA का एजेंट है, आप कहते थे रक्तरंजित कर दिया सरयू को, और शर्मनाक बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे यात्रा के आगे हनुमान जी को हमारे नचा रहे हैं आप, हनुमान जी के इससे बड़ा अनादर कोई हो सकता है? रावण को भी ये दंभ था कि त्रिलोक में कोई नहीं हरा सकता, एक मुष्ठी का प्रहार में हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया, फिर रावण ने कहा मूर्छा गई दशानन जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम सुनिएगा आप मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, खुद वो कह रहे हैं नपेंद्र मिश्र की ये डाका है डाका, फिर किस पाप पर पर्दा डालना चाहते हो? हजारों करोड़ 10 करोड़ लोगों ने आस्था पूर्वक दर्शन किए, 1,000 रुपए भी देते तो 10,000 करोड़ रुपए दान पात्र में होने थे, कितने बताए 54 करोड़। अरे रत्न जड़ित शिलाएं स्वर्ण की आई विदेशों से, उस समय भी इन्होंने RBI से कहा था विश्व हिंदू परिषद ने कि हम विदेशों से धन मंगाना चाहते हैं, RBI ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में इनकार कर दिया, फिर भी 15 देशों से इन्होंने चंदा मंगाया, और खुद निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के नाम के गायब कर दिए, हजारों करोड़ों की लूट की आपने और हिंदू आस्था की लूट की, देश के सारे मंदिरों में।
1: विनोद बंसल जी को दिखाइए फिर स्वाति जी क्या करना है, मतलब अब सीधा आरोप यह है कि चाहे वो चंपत राय हो अनिल मिश्रा हो, संघ और जो पूरा ये हिंदू संगठन है VHP सबसे करीबी की वजह से उनको बचाया जा रहा है, अन्य लोगों को भी तो अरेस्ट किया गया है, बाद में कई जगहों से बरामदगी हुई है। हर्षी
4: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार थे लेकिन उनकी सरकार के मंत्री और दूसरे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो वो जेल गए, हालांकि मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे, ये विषय अलग है। मूल बात क्या है, आज संयोगवश अशोक सिंघल जी की प्रतिमा का अनावरण अभी योगी आदित्यनाथ ने हमारे शहर प्रयागराज में किया है,
3: अभी भी बचा रहे हैं
4: जो लोग अशोक सिंघल को जानते हैं। अब संघ पर विहिप पर आरोप अलग अलग लगता रहता है, अभी उन्होंने बताया कोई इनकम टैक्स नोटिस का, अब विश्व बंधु जी का और क्या क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन अशोक सिंघल ने अपनी बड़ी हवेली वो समाज के लिए दान कर दी, ठीक कमला नेहरू अस्पताल के सामने प्रयागराज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया ने अपना सिविल लाइन सबसे पॉश इलाका है दान कर दिया। सवाल यह है कि संघ तपस्वियों त्यागियों की वजह से जाना जाता है, आज जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की निगरानी में कमी हुई है यह अग्नि परीक्षा का समय है, इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जिस दिन चंपत राय गए थे पकड़वाने के लिए 70-80 लाख जितना बताया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने पहले FIR क्यों नहीं कराई, यह उनका दोष है, लेकिन वो पकड़वाने गए इसका सीधा सा मतलब उनकी मंशा में दोष नहीं दिखता। अब दिखेगा कहां से, उसके लिए SIT को जांच करना पड़ेगा, उसके लिए प्रमाण लाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, अब वो रामचरित मानस आज तक पर भी दिखा सब जगह दिख गया, वो तो वहीं रखी हुई है, जितने लोग अतिरेक में आकर कह रहे हैं, और जो हिंदू है वो जानता है दान की रकम का हिसाब मांगने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मैंने भी राम मंदिर में दिया होगा, दूसरे लोगों ने भी दिया होगा, कोई हिसाब नहीं मानता है, दान और चढ़ावा वो ईश्वर को किया जाता है, उसका हिसाब कोई नहीं मानता, वो हिंदू नहीं हो सकता।
1: किसी की जेब के लिए थोड़ी दिया जाता है,
4: नहीं लेकिन उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। ये मैं बड़ा आपको रोचक बताऊं,
1: वो अलग है लेकिन दान चोरी की बात
4: है, उस पर हम कहेंगे वो अपराधी है, उस पर कानून के दायरे में भारतीय न्याय संहिता के दायरे में।
1: अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाती है नहीं जाती है कि इन दोनों के इस्तीफे के साथ क्या किया गया, चंपत राय हो तो और अनिल मिश्रा हो तो। आज सवाल यही है ना, देखिए विनोद बंसल जी, कि क्या उन्होंने कहा अग्नि परीक्षा इनकी चल रही है, अरे भाई अग्नि ही गायब है, लग रहा है परीक्षा चल रही है, अब इस्तीफे पर मंथन हो रहा है, इस्तीफा स्वीकारा जाए नहीं स्वीकारा जाए। अरे भाई जो व्यक्ति महासचिव बनकर अति शक्तिशाली वहां पर था उस पर कोई आंच नहीं। विनोद बंसल जी,
5: वंदना जी, आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले मुझे दो बातों को बड़ा संतोष है और एक अच्छा हुआ कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये पीछे वर्चुअल स्टूडियो है, वर्चुअल मंदिर है, कोई फैक्चुअल नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि कैसे हो गया ये, आखिरकार ये समाजवादी पार्टी जिसको लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं उसके पीछे मंदिर कैसे आ गया, अचानक मंदिर दिख रहा है। खैर एनीवे, मुझे ये भी अच्छा लगा कि कम से कम कांग्रेस और सपा दोनों आज रामचरितमानस की बात कर रही हैं। देखिए घटना दुखद है, पीड़ादायक है, लेकिन इसके बीच में जो परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर ये भी समझना पड़ेगा। एक तरफ दुराचारी शक्तियां हैं जिन जो अंदर हैं और जो रह गई उनको अंदर कर देंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है। पूरा देश और समाज एकत्र है, एक मन से काम कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पहले दुराचारी थी, जो दुराचार पर चलती आई, जो रामद्रोह का ठप्पा लगा हुआ है, वो अब स्वयं अपने आप को रामभक्त बनाने चली है। मुझे इस बात का संतोष है। मैं तो आह्वान करूंगा कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी कि चलें, अब राम मंदिर को तो ठीक ठाक हो जाएगा लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी सुधार लेते हैं, उसको भी मुक्ति दिला देते हैं और साथ में मिलकर के काशी विश्वनाथ के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं भाई। अंततोगत्ता इसमें कोई दोराय नहीं है कि हम सारा पांचों हिंदू हैं और एक मत से अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की विजय होगी और वो पवित्र दिव्य भूमि हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी अगर सिर्फ और हम एक मत से हो जाएं। रही बात इसकी कि ट्रस्ट के बारे में, तो ट्रस्ट की मीटिंग अभी आप बता रहे हैं कि खत्म हो गई है, उस बैठक के बाद क्या निर्णय हुआ उसकी डिटेल अभी आ जाएगी हमारे पास। लेकिन एक बात तय है कि ट्रस्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो 15-16 लोग हैं, उसमें कुछ वरिष्ठ श्रेष्ठ संत भी हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम उन पर पूरा भरोसा है, सब पर भरोसा है। लेकिन जब श्रेष्ठतम लोगों का एक समूह वो ट्रस्ट को लीड कर रहा हो तो उस समय किसी पर शंका करना मुझे लगता है एक थोड़ा बेईमानी होगा। हाँ, जो ट्रस्ट तो निर्णय करेगा, कुछ संत जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में सिरोधार्य है।
1: विनोद जी देखिए, जिस पिच पे आप इस वक्त खड़े हैं ना, उस पिच पर दोनों एंड से जाकर बैटिंग करने का ऑप्शन है नहीं। या तो आप मान रहे हैं चोरी हुई है, लाखों लाख रुपया इकट्ठा हुआ है ना, आप मान रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि सवाल मत खड़े करो, तो ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े लोग हैं इसलिए सवाल नहीं खड़े करो स्वाति जी, ये कैसे चलेगा? आप ही ने कहा ना।
5: हमने नहीं कहा, नहीं नहीं
6: ये जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं, ये हर तरफ से खेलना चाहते हैं। एक तरफ हमारी असल में लड़ाई ये है कि किसने राम का नाम बदनाम किया है, किसने चोरी की है, हमारी लड़ाई अभी और कुछ नहीं है। और आप हर तरफ से ये नहीं कह सकते कि कोई सवाल मत उठाओ, हमें बताइए आप कहां से, अगर आप चंपत राय की आज बात कर रहे हैं तो बताइए कि अशोक सिंगल से चंपत राय जितना आप कैसे गिरे, कहां थे अशोक सिंगल और कहां है चंपत राय? और अभी तक उस प्रदेश में जहां बुलडोजर चलते हैं, एफआईआर होते हैं, वहां हमको कोई बता रहा है कि देखिए हाईकोर्ट जज का ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस गलत है। ना ना ना, आप देखिए
5: क्या जिम्मेदारी लेंगे, मिल जाएगी तो
6: घरे में है ना,
5: जब जब मिल जाएगी दिखा देगा तो क्या राइटिंग मतनामा देंगे?
1: विनोद जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे, एक साथ मत चलाइए उनको, पूरा दो लाइन में पूरी कीजिए स्वाति जी।
6: हाँ देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता है उनसे कहिए वो कटघरे में आज वो है, उनको देश को जवाब देना, उनको हिंदुओं का जवाब देना है, वो हमको ना सिखाए कि हिंदुओं को क्या करना है, कैसे करना है, हमें बताए किसने चोरी की और चोरों के खिलाफ क्या कर रहे हैं वो लोग।
1: अब विनोद जी जवाब दीजिए,
5: क्या माफी मांगेंगे, क्या समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी? देखिए अंजना जी, देखिए आपने बाइलिंगुअल कर दिया बेसिकली, मुझे सुनने भी नहीं दिया और मेरी बात नहीं पहुंच पाई, मुझे इस बात का खेद है। मैं एक बात, एक लाइन कहना चाह रहा था, सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं कि मैं कहता हूं कि जो भी आरोप लगे हैं, चाहे पैसे के हैं और या फिर धातु के हैं, कि चोरी हो गए, मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे, रसीद नहीं मिली, ये सब चीजें मिल जाती हैं, क्या आपके चैनल पर ये तीनों की तीनों प्रवक्ता आज जिम्मेदारी लेकर के इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और ये जेल की सलाखों में होंगे बीएनएस की धारा 353 का उल्लंघन करने के लिए, ये स्वीकार करते हैं क्या? बस इतनी सी बात कर रहा हूं मेरे को,
2: इसलिए माफी,
5: ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं,
2: किसी
5: को ने लेटर भेजा, हम कहते हैं एसआईटी को इनको कॉल भी करना चाहिए।
1: अरे जिन्होंने चोरी किया उनके खिलाफ,
5: अगर ये सब चीजें जो आप झूठे आरोप लगा रहे हैं वो अगर
1: मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, आप तो मंदिर से जुड़े हुए लोगों में से थे और मुझे याद है राम मंदिर निर्माण के दौरान
5: सारे सब पे
1: सबसे पहले जानकारी तस्वीरें आप भेज रहे थे। अरे गुस्सा उनके खिलाफ दिखाइए जिन्होंने पैसा चोरी किया, जिन्होंने भगवान, इससे बड़ा रामद्रोह क्या हो सकता है कि जो श्रद्धालु वहां पर चढ़ा रहे उसको कोई चोरी करके उससे जमीन घर गाड़ी खरीद रहा था। कुमार अभिषेक बैठक खत्म हो गई, जल्दी से बताया आ रही हूँ अभय जी। अभिषेक, क्या कुछ फैसला हुआ है इनके इस्तीफे पर?
7: बिल्कुल अंजना, देखिए देखिए फैसले, देखिए अंजना फैसला अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं वो निकल चुके हैं, उनके पीछे कई और ट्रस्टी हैं वो भी निकल चुके हैं। अभी आपको इस वक्त जो 11 नंबर गेट है जहां पर जहां से तमाम जो ट्रस्टी हैं अंदर गए थे, हम उसका दृश्य दिखा रहे हैं। लेकिन फैसला क्या हुआ है ये कुछ मिनटों में सामने आएगा। अभी गोविंद देव गिरी प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं कुछ मिनटों में, और तब ये पता चलेगा कि क्या दोनों इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं या नहीं। जो जानकारी थी उसके मुताबिक यह महज औपचारिकता थी, बिल्कुल आखिर में इस एजेंडे को रखा गया है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि आखिर गोविंद देवगिरी इस पूरे मामले पर कहते क्या हैं। लेकिन मीटिंग खत्म हो चुकी है, एक एक करके तमाम ट्रस्टी बाहर निकल रहे हैं। अंजना,
1: कुछ जानकारी आ रही थी कि अंदर नाराजगी दोनों पर दिखाई गई है। बात नाराजगी में ही सलटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि आज माना यही जा रहा था कि जिस तरह का एक दबाव बना है इन दोनों की भूमिका को लेकर, इस्तीफा सीधा मंजूर होगा। आपको क्या लगता है अभिषेक?
7: देखिए शुरुआत में जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि पहली बार सब एक दूसरे के आमने सामने थे, अलग अलग मुलाकातें पहले से चल रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कब महंत नृत्य गोपाल दास आए थे, लेकिन आज वो आए, पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है फिर भी आए। जितने भी जो दूसरे ट्रस्टी हैं खासकर साधु संत, सभी के भीतर गुस्सा था। लोगों ने बातें की हैं, जोर जोर से आवाजों में बातें हुई हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, तकरीबन 15 मिनट के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ है, नॉर्मल हुआ, और उसके बाद फिर बातें रखी गई। तो न तो चंपत राय अंदर थे और ना ही अनिल मिश्रा, तो ये मान लिया गया कि शायद अगर वो होते तो पता नहीं किसका गुस्सा किस कदर किस तरीके से फूटता। तो एक वजह यह भी है कि ये दोनों इस मीटिंग में बुलाए नहीं गए थे, इनके इस्तीफे पर फैसला लिया जाना था, इसलिए भी इनको अनुमति नहीं थी, या फिर ये लोग आए नहीं। लेकिन आधे घंटे के बाद जो कह सकते हैं ना कि अंदर की बातचीत नॉर्मल थी।
1: एक आखिरी सवाल अभिषेक, जल्दी से ये कौन कौन आज था, क्योंकि अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास तो थे ही, अनिल मिश्रा चंपत राय नहीं थे, लेकिन जो और एक्स ऑफिशियो सदस्य हैं, मैं सिर्फ कोषाध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, गोविंद देवगिरी, लेकिन ये जो डीएम अयोध्या, ये सारे जो इस ट्रस्ट में शामिल हैं, क्या ये लोग थे? क्या संजय प्रसाद इस बैठक में थे जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, अपर मुख्य सचिव के तौर पर सदस्य हैं, ये लोग थे? प्रशांत लोखंडे,
7: देखिए डीएम इस बैठक में शामिल थे, संजय प्रसाद वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। ये बात भी सामने आई है कि अभी टेम्पररी तौर पर, जब तक एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक, जिसे कहते हैं कि एक अंतरिम व्यवस्था की जाएगी जिसमें डीएम को ज्यादा पावर दिया जा सकता है। हालांकि ये बात भी अभी जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उसमें पता चलेगा। निश्चित तौर पर अब ये दोनों इसके एक्टिव सदस्य तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। अब जो अंतरिम व्यवस्था है उसमें किसे ये जगह दी जाती है, ये देखना होगा। क्या गोविंद देव गिरी ही देखेंगे या फिर कई और नाम सामने आ रहे हैं जिनको की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जब तक ये पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर ये ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग वीसी के जरिए जुड़े, और ज्यादातर लोग, तकरीबन 14 में 9 लोग जो जुड़े हैं वो यहाँ पर इस बैठक में आए थे। अंजना,
1: ठीक है, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अभिषेक, जैसे ही कोई और जानकारी होती है आप इशारा कीजिएगा, सीधा आपका रुख करेंगे। सभी को इंतजार है कि अयोध्या से अब इस बैठक के बाद ट्रस्ट को लेकर क्या फैसला होता है। आपको नहीं लगता है सुधांशु जी कि ये ट्रस्ट अब कम से कम इस ट्रस्ट में जो मौजूदा स्वरूप है उसमें किसी को अब भरोसा विश्वास नहीं रहा है, ये ट्रस्ट का पूरी तरह से जिसको कहते हैं डिसॉल्व होना जरूरी है?
0: देखिए ये सत्य बात है, विश्वसनीयता के लिए एक चुनौती उत्पन्न हुई है, मगर जैसा कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, संभवतः इस प्रकरण का पटाक्षेप बहुत शीघ्र होने वाला है। जहां तक चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी नहीं आए, अब नैतिक आधार पे वो स्वयं नहीं आए या नहीं बुलाया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उनका उपस्थित न रहना भी मुझे लगता है तकनीकी और नैतिक आधार पे उचित था कि जिनके बारे में विचार हो रहा हो वो वहां पर नहीं रहे, बाकी सारे लोग वहां पर उपस्थित रहे। यह प्रक्रिया में एक और बात कहना चाहता हूं, सिर्फ टेक्निकल बात जो अभय दुबे जी ने कही थी, उन्होंने कहा ट्रस्ट को डिसॉल्व कर देना चाहिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, जरा प्रक्रिया बताएं और नियम बताएं किस प्रक्रिया के तहत डिसॉल्व डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है ट्रस्ट केवल उसकी बोर्ड की मीटिंग में जब सारे सदस्य दो तिहाई बहुमत से डिसॉल्व होने की बात कहें तब हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रक्रिया होती हो तो जरा ईमानदारी से बता दें। और जब ये बोलने का प्रयास करते हैं तो मैं फिर एक और बात याद दिला दूं, आज बहुत अच्छा अभय दुबे जी विद्वान है तो उन्होंने कुछ चौपाइयां श्लोक भी कोट कर दिए, पर मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं अभी 2024 के लोकसभा में क्या राहुल गांधी ने शपथ ली तो ईश्वर के नाम की तो शपथ ही नहीं ली, अंग्रेजी में शपथ ली आई सोलेमली अफर्म, जबकि 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी। चलो कोई हमेशा से लेता हो निष्ठा की शपथ मान सकते हैं, मतलब 2014 में जो व्यक्ति आस्तिक था वो 2024 में नास्तिक हो गया और उसके प्रतिनिधि आकर आज यहां पर आस्था का इतना बड़ा गुणगान करें। और एक फैक्ट अभय दुबे जी ने कितना अच्छा बोला कि राम मंदिर के ट्रस्ट को विदेश से पैसे लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही बात। मगर मैं पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी, अभी कर्नाटक में अभी पिछले महीने एक ट्रस्ट है द टिमोथी इंस्टीट्यूट जो धर्मांतरण में लिप्त था उसका एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास 24 इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड थे और उनके द्वारा वो विड्रॉ करता था 92 करोड़ रुपए। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ईडी ने उस पर
8: इतने लोगों को तो कॉपी देनी चाहिए। हाँ इशू आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान श्री राम लला के इस विशाल मंदिर के निर्माण के अत्यंत आनंददायी पर्व के पश्चात आज एक असाधारण स्थिति निर्माण हो गई और उस असाधारण स्थिति में हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे और श्रीमान नहीं एक नाम और जुड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज ये भी उपस्थित थे, दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज ये सब उपस्थित थे और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वह अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना, इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत है, हम दुखी है। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई यह बात हम लोगों के लिए बाद में आती है, पहले इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ इसी से हम आहत हैं, किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं यह त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस, जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया, उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं, इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ हैं, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये पांच तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक SIT की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसका उसकी जो तलाश करनी है वह SIT कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बनाई नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आवाहन करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। यह किया जाने वाला, खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आवाहन है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखे। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु, आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए, तो उस वस्तु को दिखाएंगे। और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें,
9: और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखे। भारत माता की जय, जय जय श्री राम।
1: तो आप इसी ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि दोनों का ही इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, चाहे वो चंपत जी हों या फिर उनके साथ साथ अनिल मिश्रा, दोनों का ही इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को अगली बैठक होनी है और इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा विश्वास है, इस देश का विश्वास है राम मंदिर पर, उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर मत हिलिएगा, अडिग रहिएगा। और जो चेहरा आप देख रहे हैं, आपको बता दें कृष्ण मोहन कौन है, दान चोरी मामले के शिकायतकर्ता है ये, इनको अब पूरा का पूरा काम दिया जा रहा है बेवजह अफवाहों पर। मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी और दे दें। अब कृष्ण मोहन जी ही बोल रहे हैं, सुनिए।
10: जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन, जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन न्यासी आज इस बैठक में, जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी, जब तक नायक महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास की के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के, ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे, और पुनर इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो संघ के जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता तब न कह करके, पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा, साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी, केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रहता रखा जाएगा, ये आपको मैं निवेदन करता हूं।
1: बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अभी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर कृष्ण मोहन जी दिख रहे थे, जिनको अब महास कृष्ण मोहन जी को आप सुन रहे थे, अब ये इस ट्रस्ट के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ है, कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण मोहन की पूरी जो उनका प्रोफाइल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरी दान चोरी के मामले में वो शिकायत करता रहे हैं। उन्होंने आज भी ये भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि इस ट्रस्ट को लेकर आगे किस तरह से वो काम करना चाहते हैं, और मीडिया को भी बताया कि जो भी प्रश्न होंगे उनका एक जवाब जरूर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ये ट्रस्टी हैं और कृष्ण मोहन जी को ही अब ये जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय वन सेवा IFS में फॉरेस्ट सर्विस में ये पहले थे, उसके बाद 2012 से रिटायर होने के बाद ये RSS में सक्रिय हुए और 1970 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc की थी। अब 22 जुलाई को अगली बैठक होने वाली है, 22 जुलाई को अगली बैठक में क्या चर्चा होती है, लेकिन जिन चीजों पर प्रश्न उठाया जा रहा था वो यहाँ सामने देखिए तस्वीर में दिखाया जा रहा है। एक काकभुसंडी जिसकी चर्चा हो रही थी तो वो सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखा दीजिए। गोविंद गिरी को आप देख रहे हैं जो कि कोषाध्यक्ष है, गोविंद गिरी जी, गोविंद देव गिरी, वो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं काकभुसंडी हो या फिर जो माला है, जो अन्य चीजें जिसको लेकर विपक्ष प्रश्न खड़े कर रहा था वो सब यहाँ पर दिखा दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अनिल जी, मुझे लगता है कि सबसे पहला तो सुनील जी आप ही का रिएक्शन मुझे इस पर लेना चाहिए। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे ये सब, उन्होंने देखिए इस फ्रेम में कोषाध्यक्ष और कृष्ण मोहन जी दोनों देख रहे हैं।
11: वो प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए हैं।

0: चुकाक भुसुंडी जी है वहां पर, ये सब कुछ वहां पर डिस्प्ले पर रख दिया गया है ताकि जो प्रश्न इसको लेकर उठाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लगाया जाए। कुछ और कह रहे हैं, सुनाइए।
1: चढ़ावे के रूप में आए हैं और जो ऑफिस में कार्यालय में जमा किए गए या किसी पदाधिकारी को दिए गए, न्यासी को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, उन सबका तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका यह डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं, उसमें से जो अब चांदी जो आई उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उसे करवाना है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
2: किसने भेजा है?
1: आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है,
3: तीन है, तीन
2: आगे ले लीजिए,
3: अभी ले लीजिए,
2: बैठ गया, बैठ गया।
4: मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन तीन लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को तीन नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे, इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे, उन तीन नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी।
5: आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नजर में वो निर्दोष भी है, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर?
4: देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है, इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
5: एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर?
6: क्या एसआईटी का किसे आप लोग सहमत?
4: एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था।
5: ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं?
4: इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको राम भक्ति जिनके पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है, क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है।
6: सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है क्या उसको और सुधार बनाना?
4: कौन सी बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह FIR भी जो किया जाना चाहिए था वो SBI के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है, हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे।
0: आप कोषाध्यक्ष को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जितने भी आरोप अब तक हम पर लगाए गए हैं उन सभी आरोपों को हम लोग गलत साबित करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच सामने आएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि एक पूरी, हालांकि इस पर अब नए सिरे से चर्चा होगी जिस पर हम लोग कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तो 5 बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ। दूसरी बड़ी बात, एक पूरी लिस्ट और नुमाइश वहां पर ऐसी चीजों की रखी गई है जिसमें काक बुसुंडी से लेकर वो माला सब मौजूद है, जिसको लेकर अभी तक प्रश्न पूछे जा रहे थे कि ये सब कहां है। तीसरी बड़ी बात कि क्या ट्रस्ट के लोगों को बचाने, ट्रस्ट की जवाबदेही बचाने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि SBI की जिम्मेदारी थी, बैंक को यह करना था, लेकिन यहां तो मामला यह भी सामने आया कि जो बैंक से जुड़े लोग हैं उनको निर्देश दिया जाता था कि भाई इन लोगों को आपको रखना है, बैंक के साथ साथ जो थर्ड पार्टी एजेंसी थी वहां पर भी लिस्ट जाती थी कि इन लोगों को नौकरी पर रखे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चौथी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो विपक्ष की मंशा पर एक तरह से सवाल खड़ा किया। नाम नहीं लिया किसी पार्टी का, लेकिन कहा कि जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे आज वो दान चोरी के मुद्दे पर देश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने घेरने की कोशिश की है। वहीं 5वीं सबसे बड़ी बात, कृष्ण मोहन, जिन्होंने पहले भारतीय वन सेवा से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वो अधिकारी रह चुके हैं, 2012 में रिटायर हुए थे, मूल रूप से हरदोई के हैं, और कृष्ण मोहन जी जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी इस मुद्दे पर, वो इनकी इनके बिहाफ पर ये FIR दर्ज हुई थी फाइनली SIT की तरफ, वो अब महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं और वही काम देखेंगे। इसके साथ साथ 3 लोगों की एक कमिटी बनाई गई है जिसमें खास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जिन्होंने शिरडी के साईं बाबा में कई सालों तक जो वहां पर लोगों का चढ़ावा आता था उसको वो मैनेज करते थे। तो इन तमाम बातों के बीच एक बार फिर से सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिखा दीजिए जिनके साथ हम चर्चा शुरू करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, उन्होंने पूरी लिस्ट, अभय जी इसके बाद फॉरन आ रही हूं सर, फॉरन आ रही हूँ, जल्दी से सुनील जी।
7: जी जी देखिए,
0: आप लोग काग भुसुंडी अभी पूछ रहे थे, उन्होंने दिखा दिया उन्होंने।
7: देखिए अंजना जी, काग भुसुंडी हो, चरण पादुका हो, माला हो, ये एक महीने बाद क्यों दिखाई जा रही? हम क्यों ना माने कि ये सब तैयार कर लिया होगा इन लोगों ने? देखिए है क्या, अयोध्या में अंजना जी चोर ही तय कर रहे हैं कि एसआईटी का गठन होगा, वही तय कर रहे हैं एफआईआर किस पे होगा, वही तय कर रहे हैं इस्तीफा कौन देगा, वही तय कर रहे हैं कि अब सामान आ गया है। आप चंपत राय जी का इस्तीफा जरूर हो गया है, तो हम ये मानते हैं कि अगर आज इस्तीफा हुआ है तो कल तक एफआईआर होकर के अब उनका रास्ता दिल्ली और नागपुर का नहीं होगा, अब उनका रास्ता जेल का होगा। जब उनसे पुलिस सख्ती से पूछेगी तो ये जांच यहीं रुकने वाली नहीं। अभी मैं सुन रहा था प्रेस में कि भाई बात खत्म हो गई, अभी खत्म कहां हुई, अभी तो भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है। अब इनसे नाम आएंगे, अभी जो 8 पकड़े गए थे उनसे 2 नाम आए हैं, ये 2 लोग अब बड़े बड़े लोगों का नाम बताएंगे। अगर ईमानदारी से जांच होगी तो बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय, विश्व हिंदू परिषद का मुख्यालय, ये बचेगा नहीं।
0: ठीक है, पर काग भुसुंडी पर कौन अफवाह फैला रहा था?
7: नहीं, हम कह रहे अगर ये बात आई कि ये चीजें गायब हैं, आई तो वहीं से, आप लोगों के चैनलों में भी दिखाई गई, तो हम लोगों ने सवाल पूछा।
0: ठीक है, अभय दुबे जी वो कहा कि बहुत हिंदू धर्म को बदनाम करने की भी कोशिश हुई, क्या इस बात में सच्चाई नहीं? आ रही हूँ विनोद जी, आ रही हूँ।
8: नहीं देखिए, विश्वासघात किया इन्होंने, बार बार कह रहे थे कि हमारा हम पर विश्वास कम हुआ। अरे आपने विश्वासघात किया हिंदू आस्थाओं से, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सत्ता के उद्देश्यों से बनी हुई संस्थाएं हैं, यह हिंदुओं के सरोकार की संस्था नहीं है। 3-4 चीजों को दिखाकर आप, और हमने नहीं, ये उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था जिनको रसीद देने से आपने इनकार कर दिया था, किसी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये आरोप नहीं लगाए थे। 3 वस्तुएं दिखा करके 3,000 करोड़ के पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते। हम हिसाब पूछ रहे हैं कि 10 करोड़ लोग अगर आए तो आपके दान पात्र में कितने पैसे इकट्ठे हुए ये बताइए आप। अगर 10,000 करोड़ रुपए हुए और तुम 54 करोड़ बता रहे हो तो ये पाप और अपराध है, झूठ बोला। ये राम सेतु हम तोड़ रहे थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी का संकल्प है, ये 2000-2001 का बजट है, इसमें फिजिबिलिटी के लिए 4.8 करोड़ रुपए अटल जी ने रखे, तमिलनाडु जाकर घोषणा की कि मैं अन्नादुराई का स्वप्न साकार करूंगा, सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु तोड़ूंगा। आपने शंकराचार्यों तक को अपमानित किया, चंपत राय जी का स्टेटमेंट सुनिएगा, जब शंकराचार्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट मत कीजिए, भगवान का शीश होता है मंदिर का शिखर और मुहूर्त भी नहीं है, तो क्या कहा कि ये तो रामानंदियों का मंदिर है। मतलब हिंदू धर्म के 4 संप्रदायों में भी विभेद पैदा करते हैं, वैष्णव में, शैव में, शाक्त में, स्मार्त में। अरे स्मार्त शंकराचार्य लोगों का तो वो संप्रदाय है जो सभी संप्रदायों को एक करने के लिए बनाया गया था। तो ये सत्ता की भूख
0: चढ़ावा चोरी पर रहते हैं सर, ये चढ़ावा चोरी पर रहते हैं। ठीक है, जल्दी से विनोद बंसल जी, सिर्फ इस्तीफा काफी है क्या? सिंपल
9: अंजना जी, मैं तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, अगर थोड़ी सी भी

0: पूरी नहीं होने दी। मैं कहता हूं जो मैं कह रहा था दोबारा कह रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इन तीनों को तुरंत सादंड प्रणाम करते हुए और ट्रस्ट से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने झूठ परोसा कि ये काकुसुंडी चोरी हो गई, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, सारी सारी चीजें ट्रस्ट में मौजूद है। ये इनके मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो बसपा सपा जो भी अपने जो अपना आम आदमी पार्टी है और मेरी बहन बेटी है स्वाति जी, इनको भी माफी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, अगर राम भक्त अपने आप को मानते हैं तो निस्संदेह इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए कि राम भक्तों का हृदय इन्होंने दुखाया है जबरदस्त तरीके से। देखिए जांच में कोई आंच नहीं आएगी, निस्संदेह जो पापी हैं पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ महाराज जी ने जो बातें कही हैं ये इनको समझ लेना चाहिए। इनका गाल मुझे लाल नजर आ रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं, मुझे पता है बेशर्म लोग हैं।
1: स्वाति जी
2: माफी नहीं मांगूंगी और मुझे बिल्कुल कोई सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कोई एक ऑडिट होना चाहिए, ये ट्रस्ट में किसी को विश्वास नहीं रह गया है। ये हमको पुराना खाना परोसा जा रहा है किसी को।
0: जो बेशर्म लोग होते हैं वो शर्म की बात नहीं करते।
1: विनोद जी बारी बारी से
2: एक मिनट देखिए मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ, मैं ना किसी रिलीजियस उसकी हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक राम भक्त हूँ और मैं कहती हूं कि आपकी बातों में किसी को कोई विश्वास नहीं है। एक ऑडिट होना चाहिए, ये पूरी ट्रस्ट हटनी चाहिए। और जहां तक माफी मांगने की बात है, आप लोगों ने शर्मनाक चोरी की है, आपको माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने राम का नाम बदनाम किया है।
1: हर्षवर्धन जी,
3: अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो सब कुछ गोविंद देव गिरी ने जस का तस बताया, तो एक तो ये ठीक बात है कि सारी बातें सामने, लेकिन मुझे एक बड़ा रोचक लगा, स्वाति जी ने अभी तक की डिबेट में दो बार कहा कि मैं हिंदू हूं और राम भक्त हूं। पहले तो उन्होंने ये भी कहा था पत्रकार से पहले मैं हिंदू हूं। मैं आपको बताऊं 15 साल पहले मैं एक न्यूज रूम में था तो संपादक ने कहा कि ही इज आवर बेस्ट रिसोर्स पर्सन इन न्यूज रूम, लेकिन उसके आगे कहा कि लगता है कि संघी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हम राम मंदिर के पक्ष में बात कर रहे थे कि राम मंदिर क्यों बनना चाहिए, आज अच्छा है कि स्वाति चतुर्वेदी जैसे पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि पत्रकार से पहले हम राम भक्त हैं। ये बदला है देश का मानस, और इसीलिए और जरूरी है कि जिस राम मंदिर ने देश का मानस बदला है वहां किया हुआ हर अपराध उन अपराधियों को दंड मिले।
1: स्वाति जी
2: ना मुझे जवाब देने दीजिए। मैं कभी ना लेफ्टिस्ट थी और ना कभी लेफ्टिस्ट हूं, और आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझ पे ना थोपे। देखिए आप पर्सनल मत होइए, मुझ पे मत थोपिए। आपके साथ जो हुआ हो, जिसके साथ हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू, आपसे मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं अपने हिंदू होने की, और अपने अपने आपके जो भी एक्सपीरियंसेस
0: थोपिए,
2: पर्सनल मत होइए। आपके साथ जो
3: नहीं, मैंने तो सिर्फ रेफरेंस दिया।
1: विषय पर रहते हैं जल्दी से एक बार कुमार अभिषेक को दिखाई, उसके बाद से आ रही हूँ। विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी अभिषेक क्या माने, मतलब जो एक तरह से पक्ष रखा गया, तीन बड़ी बातें जो दिख रही हैं, कृष्ण मोहन जी को अब बना दिया गया है महासचिव, लेकिन कैसे ये ट्रस्ट क्या इसी तरह से काम करेगा, मतलब क्या है अल्टीमेट, बड़े डिसीजन क्या लिए गए हैं? एक तीन लोगों की कमिटी भी बनाई गई है।
4: देखिए ये अंजना, देखिए ये पूरे डिसीजन जो है फिलहाल इंटरिम है। 22 मुझे लगता है जुलाई को जब ये अगली बार बैठेंगे तब इसमें कुछ ठोस फैसले होंगे पूरे इस ट्रस्ट के गठन को लेकर, रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के। तब उसमें नया महासचिव कौन होगा और अलग अलग पदों पे कौन आएंगे, मुझे लगता है इसकी चर्चा लगातार चल रही है। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के कई जो ऐसे चेहरे जो गुमनाम है लेकिन इन दिनों अयोध्या में है, तो मुझे लगता है बैक रूम चर्चा वो इस वक्त चल रही है। अब बड़ी बात जो निकल करके आई वो तो साफ साफ सबके सामने हो गया। इस बार ट्रस्ट की तरफ से ये बताने और दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से हुई कि गलती हुई है, और ऐसी गलती हुई है कहने को तो लोग इसे अचम्भ में कह रहे हैं। और चंपत राय को का इस्तीफा बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसे शब्दों में कहा गया कि भाई एक बार इस्तीफा दे दिया तो हो गया। उनके उनके योगदान को भी याद किया गया, लेकिन सभी को इस बात का सभी को ये बात मालूम है कि चंपत राय की लापरवाही रही हो, चंपत राय का अनजानापन रहा हो, चाहे जो भी वजह रही हो, उनके नाक के नीचे ये चीजें हुई हैं, इसलिए इससे किस तरीके से निकलना था। तो आज की मीटिंग में ये भी उस बायलॉज का हवाला दिया गया कि बायलॉज अपने आप में कहता है कि जिसने इस्तीफा दे दिया उसका इस्तीफा मान्य हो गया। हालांकि अगर बायलॉज में ये था तो पहले दिन भी ये चीजें सामने आ सकती थी, लेकिन किस तरीके से चंपत राय को भी ग्रेसफुल एग्जिट देना था ये भी एक दिखाई दिया।

0: हाँ ये जरूर है कि ट्रस्ट थोड़ा अग्रेसिव इस बात पर दिखाई दिया कि जो तमाम लोग अपने इन दिनों आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों को कि वो जो है वो अपने अपने सामानों को आकर के देख सकते हैं, कहीं कोई चढ़ावा चोरी और नहीं हुआ है। यहां तक कि गोविंद गिरिजी महाराज ने विपक्ष की तरफ भी बोला कि भाई जिन लोग रामद्रोही हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, वो अब इस बात को क्लेम कर रहे हैं, वो सनातनी हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बातें अमूमन पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन शायद ये जो ट्रस्ट है इतना बुरी तरीके से घिर चुका कि अब साधु संतों को भी इस तरह के बयान देने पड़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, मुझे समझ में आ रहा है अंजना, वो ये कि 22 तारीख के पहले अभी जो कृष्ण मोहन है, जो कि दलित बिरादरी से भी आते हैं, दलित समाज से आते हैं, IFS अधिकारी रहे हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने ही FIR दर्ज कराई है, उनके चेहरे को ही आगे रखा गया है। बकायदा उनको जो महासचिव का कार्यकारी पद है तब तक के लिए दिया गया है। मुझे लगता है इनका पद लंबा जाएगा। तीन जो अफसरों की कमेटी बनाने की बात की गई है वो फिलहाल इस पूरे ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। मुझे लगता है इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। ज्यादा पावर अधिकारियों को फिलहाल होंगे, जैसा हम लोगों ने बताया था कि DM को ज्यादा पावर होंगे, तो इसमें इन तीन अधिकारियों में DM अयोध्या का पद बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके जरिए ही जो प्रशासनिक निर्णय होंगे या प्रशासनिक चीजें होंगी वो होंगी। और बहुत हद तक जैसे कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, फिलहाल हम लोगों ने शुरू से ये कहा था कि जब तक नया ट्रस्ट गठन नहीं होगा, नए तरीके से इसका पूरी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, तब तक कोई नए सदस्य इसमें नहीं शामिल किए जाएंगे। तो अब ये मान लीजिए कि DM और कृष्ण मोहन ये दो बहुत अहम इसके कह सकते हैं चेहरे होंगे जो आने वाले दिनों में फिलहाल इस ट्रस्ट को चलाएंगे, जब तक नए स्वरूप में नए स्ट्रक्चर में ये पूरा ट्रस्ट सामने नहीं आता। अंजना,
1: ये तीन लोग जो शामिल किए गए हैं, कमिटी जिनकी बनाई गई है, जिनमें एक व्यक्ति ऐसे भी है जो शिरडी साईं बाबा के मंदिर को काफी दिनों तक वहां पर उन्होंने चलाया है, क्या ये तीन लोग ही अभी ट्रस्ट का काम चलाएंगे, देखेंगे गिनती का काम वो कौन करेगा, क्या इस पर क्लैरिटी आई अभिषेक?
2: ऐसे चला गया भाई
1: अभिषेक, लगता है उनसे कांटेक्ट हट गया, जैसे ही वापस होता है वापस उनके पास चलेंगे, वापस विषय पर ही रहते हैं, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट करने से बचते हुए। जल्दी से अभय जी अपनी बात कहिए। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली कानूनी कार्रवाई भी हुई, ट्रस्ट की बैठक में भी हटा दिया गया है, एक कमिटी बनाई गई है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, कृष्ण मोहन जी को महासचिव बनाया गया है जिनका भारतीय वन सेवा में जो काम कर चुके, आपको लगता नहीं ये स्वागत योग्य है?
3: नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं वो पदाधिकारी, आपने खुद ने उल्लेख किया, मंदिर से इनका सरोकार क्या था? असली में क्लेमेंट तो निर्मोही अखाड़ा था, 1855 से उसने मुकदमा अंग्रेजों के समय से लगा रखा था, उनको स्ट्रेटेजिकली इन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चंदा की भूख थी इनको खाने की राम के नाम पर। मैंने कहा प्रामाणिक रूप से निर्मोही अखाड़े ने विस्तृत चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी, इन सारे पापियों को प्रधानमंत्री जी ने मौन समर्थन दे रखा है और आदित्यनाथ जी ने मुखर समर्थन दे रखा है। हो ही नहीं सकता था इतना बड़ा स्कैम हजारों करोड़ रुपए का, अगर ये पहले दिन इसका संज्ञान ले लेते, जब निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी 1400 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया, जब 2020 में सबने कहा और नवंबर में तो खुद ट्रस्ट का ऑडिट करने वाली रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है, ये सार्वजनिक कर दे, उन्होंने इस बात की आशंका नहीं जाहिर की थी क्या? जब 825% बढ़ाकर जमीन के घोटाले हुए थे तब भी प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलते, 135 बार उन्होंने मनमानी बात मन की बात की, लेकिन क्या कभी पर बोले, क्या कभी मणिपुर पर बोले, क्या कभी लखीमपुर खीरी पर? राम जी के लिए तो बोल दीजिए प्रधानमंत्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में डाका हुआ है, कम से कम आज तो बोल दीजिए।
4: अंजना जी इनकी तकरीर पूरी है वो तो मैं बोलूं। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये तो संघी है, अरे भाई संघ में कौन नहीं है? एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके कम से कम आज तो एक्सेप्ट कर लो, देश का प्रधानमंत्री संघी, देश का गृहमंत्री संघी, देश का रक्षा मंत्री संघी, देश का कैबिनेट संघी, देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री संघी, उनके कैबिनेट संघी, और मुझे बताइए देश के कई सारी संस्थाओं पर जो संघ के संचालक हैं, अधिकांश चारों तरफ संघ के संचालक हैं, और आपका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका, ये संघ को गाली देते देते ही आपका रसातल में गया है। अभी कम से कम आपको सुधर जाओ, आप तो कम से कम माफी मांग लो, आज तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए कम से कम। आप जो झूठ बोल रहे थे, आप जो झूठ बोल रहे थे वो झूठ आज उजागर हो गया। वो सारी की सारी चीजें खुद महाराज जी ने सामने कर दी। और आप देखिए कि संघ को गाली जितनी बार दोगे ना उतनी बार संघ आगे बढ़ेगा, यही बात ध्यान रखना। और उतनी बार आप अंदर जाओगे, आप देखिए आपका राजनीतिक धरातल जो पूरी तरह रसातल में जा चुका, अब संघ को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अरे संघ की अच्छी बात है देखो, अरे ढाका डाला आपके लोगों ने, अभी पता लग जाएगा। वो जो यादव कनेक्शन आ रहा है ना जी, आपको पता है टुन्नी यादव, अगर टोंटी यादव, मुझे नहीं पता वो सारे यादव,
1: सुनील जी वो आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं।
5: ट्रस्ट में कोई बदलाव हो गया हो, लेकिन सच ये है कि भगवान राम के मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रहा आम सनातनियों का। अब बीजेपी के लोग कुछ बोले, आरएसएस के लोग कुछ बोले, बंसल जी कुछ बोले, इनका संगठन विश्व हिंदू परिषद कुछ बोले, अभी हम प्रेस देख रहे थे, मतलब साधु संत होकर के भी आप पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साधु के लिए तो कोई दल नहीं, कोई विचारधारा नहीं, वो तो सबको एक नजरिए से देखता है। इस मंदिर में जब तक आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के विचारधारा के लोग बैठे रहेंगे, भगवान राम का मंदिर लूटता रहेगा और हम लोग लूटने नहीं देंगे। बंसल जी किस बात की माफी मांगे, हम
4: मंदिर पर
5: किस बात की माफी मांगे,
4: फिर कहोगे
5: बीजेपी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने मिलकर के करोड़ों सनातनियों की आस्था लूट ली, भगवान राम का मंदिर लूट लिया, किस बात के लिए, किस बात के लिए मांगे माफी, किस बात के लिए मांगे?
4: ट्वीट पर लिखा था
5: आप जात के आधार पर आरोप लगा रहे हैं
4: कि ये खो गया,
5: अगर
4: ये नहीं मिल रहा, ये
5: मैं अगर जो लोग फंसे हैं इसमें अगर जात के आधार पर बोलने लगूं, हम लोग जात के आधार पे नहीं, लूट के आधार पर आरोप लगा रहे हैं।
4: जनता नहीं छोड़ेगी,
5: आप लोगों ने लूटा है इस बात को इस्तीफे ने भी स्वीकार कर लिया,
4: खुल चुकी है।
5: अब आप बताइए आपके जो ये जगत गुरु हैं चंपत राय बंसल, ये जेल कब जा रहे हैं?
4: भगवान जी का गले का हार,
5: कब जेल जा रहे हैं?
4: चांदी की वो भी मिल गई है।
5: और आप एक बार तो हनुमान जी को सड़क पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने नचाते हुए एक बार तो आप निंदा कर दीजिए ना। लूट पे आप बोलेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, ना जो आहत हुई हैं भावनाएं उस पर बोलेंगे, ना हनुमान जी पर बोलेंगे। अरे बंसल जी, बंसल जी, बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बड़े हैं भगवान राम,
4: चोरों को नहीं छोड़ेंगे,
5: उनसे बड़े हैं हनुमान जी, उनसे बड़ी है हमारी आपकी संस्कृति और सभ्यता। हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है कि आप लूटने वाले हैं, हम लुटेरों को सबके सामने लाने वाले हैं, यही तो अंतर है केवल, और कौन सा अंतर है?
4: अभी तक मिली है और मिलेगी
5: आगे। नॉन स्टॉप आप बोलते रहेंगे, आपको लग रहा हम लगातार बोलेंगे तो भगवान राम के लुटेरे जो हैं वो बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। कोई बदलाव कर लीजिए, हम लोगों को संविधान पे भरोसा है, संविधान सजा देगा, भगवान राम सजा देंगे।
1: एक प्रश्न है कि क्या इस पूरे मामले में
5: जी
1: स्वाति जी, एक बार स्वाति जी से पूछ लूं, खुद ही पुलिस ने लगभग 70-80 जितना मुझे याद आ रहा है 79 लाख की बरामदगी, किसके घर से कितना मिला, अविनाश शुक्ला के घर से कितना मिला, किसके घर, सब दिखाया। उसके बाद से ये जो काक भुसुंडी जी और अन्य लोगों पर जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी वो भी आज मंदिर ने दिखाया है। क्या वजह है कि अभी भी शक हो रही है इस पूरी जांच की प्रक्रिया पर? क्योंकि सुधांशु जी अब तो नहीं है बीजेपी से कोई यहां पर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ये प्रश्न है कि कौन सी धारा के तहत चंपत राय को अरेस्ट कर लिया जाए, ये वो पूछ रहे हैं।
6: बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं एक पत्रकार की तरह जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले तो जो बीएचपी के प्रवक्ता है उनका जो अहंकार है, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है जो देश के साथ हुआ है। और जो आप कह रही हैं कि वो सामान मिल गया है, वो सामान दिख गया, वो शिकायत लोगों ने की थी कि उनको रसीद नहीं मिली, उनको पता नहीं था कहाँ है, वो मीडिया ने उजागर की थी। और दूसरी बात, ये तो मिल गया है, भगवान जाने क्या क्या नहीं मिला, अभी हमें कोई ऑडिट नहीं हुआ है। ये वही ट्रस्ट है, मतलब एक तरह से चोरी और सीना चोरी हो रही है। अरेस्ट अंजना, अभी तो सिर्फ इस्तीफा हुआ है, अरेस्ट इसलिए होना चाहिए कि पता तो चले कि कितनी कितना बड़ा लूट है। कोई ऑडिट हुआ, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने देखा, ये ट्रस्ट हटाई गई, हम कैसे विश्वास कर ले? जिसने एक बार राम के घर में चोरी की है, हम उन लोगों की बात मान ले और इस ऐसे अहंकार से मांग ले कि हमसे माफी कह रहे हैं कि हम लोग माफी मांगे? माफी इनको मांगनी चाहिए। लूटा किसने? राम के घर को किसने लूटा? इन्होंने लूटा। राम का नाम किसने बदनाम किया? इन्होंने किया। और ये इनमें इतना अहंकार आ गया कि कह रहे हैं कि पूरा देश संघीय, तो
1: कि
6: हम
1: माफी
6: लोग
1: आप
6: नहीं है। अरे भाई,
1: माफी उन लोगों को
6: चाहिए?
1: मांगना चाहिए जिन्होंने चोरी की
4: करते
1: है।
4: हैं हिंदू समाज की आस्था और विश्वास के ऊपर आघात करते हैं आप।
6: कहां से
4: चोरों को नहीं
6: किया?
4: छोड़ेंगे
6: आपने
4: और चोरों के षड्यंत्रकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके जैसे सिपा सालार को भी नहीं छोड़ेंगे।
6: अरे भैया,
4: हमने नहीं किया, आप जैसे लोगों ने किया है। हिंदू समाज पर आघात किया है, बार बार कह रहे 20,000 करोड़, 2,000 करोड़, काकभूषण जी और वो सोने की ईंट है, चांदी के ये और रामचरित मानस, सब चीज मिल गई। अब भैया आप तो माफी मांगो यार, हम तो आप
6: क्या नहीं मिला?
4: आधा घंटे पहले स्वाति जी आपने ही कहा था कि सब चोरी हो गया, आप माफी मांगो ना। आप
6: मैंने नहीं कहा था, लोगों ने कहा था जिन्होंने दान दिया था, मैंने नहीं कहा था, मेरा नाम
4: आप झूठ बोले थे,
6: लोगों ने कहा था,
4: बिल्कुल आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था, आप झूठे हैं, पकड़े गए पत्रकार के नाम पर, पत्रकार तक छोड़ दीजिए आप, झूठों के साथ
1: आराम से। विनोद जी, विनोद जी देखिए, मैंने पहले भी कहा है, तथ्य पर बात कीजिए, तथ्य पर बात कीजिए, अब शब्दों का इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि फिर दूसरे के मुंह पर किसी का हाथ तो लगा नहीं है, वो भी आपको उसी मात्रा में लौटाएगा। फिर मेरा ये काम तो है नहीं कि आप लोगों को बस मैं भाषा पर लेसन सिखाऊं। प्लीज विनोद जी, अपशब्द मत बोलिए, फिर आपको भी वापस उसी तरीके से आएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इससे ट्रस्ट पर ट्रस्ट वापस आ जाएगा?
7: देखिए अंजना जी, पहला चरण है और सबसे जरूरी चरण था, जो मेरा मानना है कि देर हुई, लेकिन क्या देर दुरुस्त होगा, इसको न्यास को अभी देश के सामने, राम भक्तों के सामने साबित करना है, प्रमाणित करना है।
1: कैसे
7: ये
1: होगा?
7: जो कुछ था जिसको
1: आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि चंपत राय जी बड़े भोले थे, इसलिए आसपास के लोगों ने उनका इस्तेमाल कर लिया।
7: नहीं, अगर
1: ऐसे तो व्यवस्था नहीं चल सकती ना,
7: ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकती। और अगर उस भोलेपन की वजह से करोड़ों राम भक्तों
1: ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बताया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है।
7: हाँ बिल्कुल ठीक बात, जिस तरह की स्थिति बनी, तो अगर उस भोलेपन की वजह से बनी तो वो भोलापन भी, और इसीलिए मैंने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दिया था। लेकिन दो पक्ष है, एक पक्ष है जो अतिरेक में लगातार कि हमने दान दिया, हमने दान दिया और सब गायब हो गया, तो अच्छा है कि हमने उसको पहले भी कहा था कि विश्व हिंदू परिषद को यहां पूछने की बजाय न्यास को पूछना चाहिए और न्यास ने उसकी जिम्मेदारी ली, बताया। लेकिन अब उसके आगे की जो बात है, जो कृष्ण मोहन जी अब अंतरिम कार्यकारी महासचिव के तौर पर वहां बैठेंगे, उनकी यह जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता के साथ मंदिर प्रबंधन कैसे चल रहा है, चढ़ावा कैसे आ रहा है, दान की राशि कैसे आ रही है, उसमें काम करने वाले लोग किस आधार पर रखे जा रहे हैं, बैंक के साथ किस तरह की व्यवस्था है, वो सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताए, जब तक कि या वो स्वयं या कोई दूसरा महासचिव न बन जाए। लेकिन आज जो न्यास की प्रेस वार्ता है वो ट्रस्ट की दिशा में पहला कदम है, मुझे लगता है, जो बेहद जरूरी था। अगर सिर्फ ली जाती तो मैं फिर कहता कि न्यास न्याय की तरफ नहीं बढ़ रहा है।
3: अंजना जी, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, जितने नए अपॉइंटमेंट हुए ये पूरा का पूरा नेक्सस था। 1,00,000 लोग, 5,00,000 गांव गए, 12.5 करोड़ घरों से 3,500 करोड़ रुपए एकत्रित किया, ये खुद इनकी प्रेस रिलीज बताती है। चलिए, जो निगरानी करने वाले इंजीनियर थे दीनानाथ जी, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन में भी 40% पैसा खाया गया। कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन कौन? नपेंद्र मिश्री जी। आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलवा लीजिए ऑडिटर से कि जो टेंपल का बना है उसमें कितना पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा है, तो चौंक जाएंगे जान करके। आप एक बार कराइए तो सही, पर कौन कराएगा बताइए? गंभीर आरोप अगर लगे हैं, 54 करोड़ रुपए क्या सिर्फ 900 दिनों में कलेक्शन हो सकता है दान पात्र में? दान पात्र में कितने? आप तो कह रहे थे कि कुंभ में ऐसे कैमरे लगाए कि हमने 49 करोड़ लोगों की गिनती कर ली कि जो कुंभ में स्नान करने आए थे। फिर यहां सीसीटीवी क्यों बंद हो गया साहब? यहां भी असेस कर लेते, दान पात्र के स्पेसिफिक एरिया के सीसीटीवी फुटेज ला दीजिए, कितने करोड़ लोग आए हैं यहां पर। बहुत बड़ा स्कैम है
1: बंसल जी, ऑडिट में क्या प्रॉब्लम है? दिखाकर
3: सिर्फ अपने पाप पर
1: बंसल जी, ऑडिट में क्या प्रॉब्लम है? आप भी आहत होंगे, पता तो चले जी।
4: कोई
1: एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, चंपत
4: हुआ नहीं,
1: राय का इस्तीफा मंजूर और कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई है इसका, जब वहां पर कोषाध्यक्ष ने ऐलान किया है। आइए वो हिस्सा आपको सुना देते हैं, क्योंकि आज ट्रस्ट की बैठक हुई, लंबी चली बैठक, और उसमें एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को अगली बैठक भी होगी और फिलहाल चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सुनिए,
8: वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
1: चलिए जल्दी से एक बार अभिषेक हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुछ जानकारी और आ रही है। अब देखिए, कोषाध्यक्ष गोविंद वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है उस पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी की भूमिका को लेकर भी कई प्रश्न उठ रहे थे कि भाई कोषाध्यक्ष थे, इनको पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं अभिषेक जिसका जवाब अभी नहीं मिला है।
0: नहीं बिल्कुल, कोषाध्यक्ष इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो जाए, 79,75,000 से ज्यादा कैश बरामद हो जाए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी सामने आ जाए, और जो कोषाध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो, इस पर तो सवाल उठते हैं। लेकिन गोविंद गिरी जी अयोध्या रहते नहीं है, बहुत कम ही आते हैं, वो कहीं भी जिसे कहते हैं सिग्नेटरी नहीं है। बकायदा उन्होंने 2 पन्ने की अपनी चिट्ठी जारी करके और अपनी भी सफाई पेश की थी अभी से 2 दिन पहले, जब उन पर सवाल उठ रहे थे कि वो कोई सिग्नेटरी नहीं है, उनका कोई इसमें लेन देन नहीं है, पूरा काम जो चंपत राय देखते हैं उनके जरिए ही होता है। तो देखिए, चूंकि कोषाध्यक्ष हैं, पद ऐसा है, उन पर सवाल उठना लाजमी है और वो भी सवाल उठे हैं। लेकिन आज ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या वो जो ट्रस्ट का ट्रस्ट था, क्या आस्था का पर जो चोट पहुंची है, क्या वापस उसे ट्रस्ट वापस लौटा पाएगा। ये बात तो ठीक है कि आप उन तमाम सामानों को, उन तमाम हीरे जवाहरात जो गहने हैं उनको आप दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, लोगों को संतुष्ट करेंगे, लेकिन जो इतना बड़ा डेंट लगा है इसको बहुत आसान नहीं होगा इसको वापस लाना। ये जरूर है कि गोविंद गिरी जी महाराज के बयान भी अगर आप देखें,
1: खुद गोविंद गिरी जो कि कोषाध्यक्ष है वो ये चिट्ठी दिखा देते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष नहीं हूं, सारा का सारा काम चंपत राय देखेंगे। फिर वही गोविंद गिरी भोलेपन का एक सर्टिफिकेट भी चंपत राय जी को दे देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत गड़बड़ लग रही है ना भाई। आप अगर एक कमेटी बना रहे हैं, SIT को समर्पित कर रहे हैं कि भाई SIT इस पर रिपोर्ट लेकर जब आएगी तब 22 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं, तो ये इस तरह का रवैया क्यों है, ये रुख क्यों है? मतलब चंपत राय को ऑल पावरफुल, ऑल भोलापन का सबसे बड़ा कैरेक्टर, ऑल मतलब रिस्पेक्टफुल, ये सब इस बैठक के बाद वाली PC में भी स्थापित करने की एक कोशिश दिखाई देती है। इसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या वजह है।
0: देखिए अंजना, चंपत राय को कुछ नहीं होगा ये तो तमाम लोग कह रहे हैं, भाई अभी देखिए सारे जो चोर हैं वो पकड़े गए, सब पर FIR हुई, लेकिन चाहे चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, इनकी भूमिका अभी तक SIT ने भी तय नहीं की है कि आखिर इनकी भूमिका क्या थी। भाई आपकी लापरवाही की ही भूमिका मान लें, आपके नाक के नीचे अगर इतना बड़ा इतनी बड़ी चोरी हो गई उसमें भी भूमिका मान लें तो नाम तो आता है ना, लेकिन जो बात हम लोग कह रहे हैं कि एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि अशोक सिंघल के बाद किसी ने राम जन्मभूमि को लेकर के खड़े होकर मंदिर बनवाया है तो चंपत राय हैं। अब चंपत राय की लोग कहते हैं कि उनकी इंटीग्रिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, जो शख्स एक धोती कुर्ते में जीवन जीता हो, एक कमरे में रहता हो, उसी कमरे में उसका खाना पीना सब कुछ है, वो अपने लिए पैसा क्या करेगा। जहां के रहने वाले हैं बिजनौर, उनका घर दिखाया गया कि भाई देखिए बिल्कुल आज भी पूरा परिवार गरीबी की हालत में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इतनी बड़ी आस्था जहां से जुड़ी हो, करोड़ों लोगों ने जहां चंदा दिया हो, करोड़ों लोगों ने जहां चढ़ावा चढ़ाया हो, वो सब आपके आपके नाक के नीचे हुआ है। और चंपत राय का एक स्वभाव बहुत अक्खड़पने का स्वभाव रहा है, जिद्दीपने का स्वभाव रहा है, उन्होंने किसी की नहीं सुनी है। आज अगर अयोध्या में सबसे ज्यादा उनकी मुखालफत हुई है तो उसकी वजह भी रही है। आप अगर जो संघ से जुड़े हुए या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए संत या साधु हैं उनको छोड़ दें और बाकी दूसरों की बात कर लें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि चंपत राय को लेकर के बहुत रिजर्वेशन लोगों के रहे हैं।
1: बिल्कुल, जो और अभी आप ही की बात से देखिए अभिषेक, बारिश हो रही है, दिलचस्प है कि आपने ये अक्खड़पना शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया और ट्रस्ट की तरफ से उनके लिए भोलेपना शब्द इस्तेमाल किया गया। तो अब सवाल यही है कि ये मंदिर था जो लोगों के पैसे से बना था और ये मंदिर पर चढ़ावा भी लोग ही दे रहे थे पैसे का, लेकिन कुछ लोग क्या मंदिर से बड़े हो गए, क्या मंदिर से भी ज्यादा ताकतवर हो गए और क्या उनकी वो ताकत बरकरार दिखती है? आज प्रश्न सिर्फ इतना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
7: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
6: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह।
8: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
9: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: पापा।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया है।
11: हाँ, ओ ले ला भाई मेरा बैट।
13: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
14: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
15: ओ ले बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: We are over, Jimmy.
23: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
24: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
25: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
26: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
27: कुछ तो बात है इस दिल में।
28: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
27: कुछ तो बात है इस दिल में।
29: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तर की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तर पर।
4: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
5: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
6: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
7: परमिशन लेनी चाहिए ना,
6: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
8: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
6: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन अब नए महासचिव बनाए गए हैं, वही इस काम को देखेंगे। इस बीच ट्रस्ट की तरफ से गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि न्याय इस पूरे मामले में होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: Dunkey matlab vector.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए, मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
1: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
0: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
2: कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा
3: हुई।
2: अभी सीट शेयरिंग नहीं, आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
0: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
4: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
0: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें एसपी ने 17 सीटें दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: सरसों से सरसों।
12: मुंबई से सटे वसई विरार में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वसंत नगरी और मधुबन इलाका चारों तरफ पानी से घिरा दिखाई दे रहा है। कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। वहीं वसई में एक सोसाइटी के कंपाउंड वॉल गिरने से बाहर खड़ी करीब 15 बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी। दूसरी घटना में गोम्स गार्डन बिल्डिंग के रिफ्यूज एरिया का छज्जा गिरने से पार्किंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के बांद्रा और गोरेगांव में भी भारी बारिश के बीच बड़े पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। पेड़ गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बांद्रा में 3 खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं पुणे में विशाल पेड़ गिरने से कई वाहन दब गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवी मुंबई के पास मेट्रो पिलर के समीप लैंडस्लाइड होने से मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खारघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। वाशिम में लगातार बारिश के कारण शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने और स्थायी समाधान की मांग की है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
13: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी
14: जी।
13: लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है। वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है। उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
15: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफ़ी कैलिब्रेटेड रहा है और काफ़ी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: मंदिर चंदा मामले के बाद चंपत राय की छुट्टी। बैठक के बाद गोविंद गिरी बोले, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को बनाया गया न्यास का अंतरिम महासचिव। ट्रस्ट को धूमिल छवि ठीक करने का जताया भरोसा। सामने लाई गई मंदिर में चढ़ाई गई बहुमूल्य चीजें। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरा जोरी। अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार। योगी बोले, मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। एक महीने पहले अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। कल एक महीना पूरा होता उससे पहले आज करीब 3 घंटे तक राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक चली है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर फैसला हुआ। 5 बड़ी खबरें पहले आपको बता दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बैठक में ट्रस्टी के पराशरन ने कहा था कि त्याग पत्र देते ही इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। अब 22 जुलाई को अगली मीटिंग ट्रस्ट की बुलाई गई है। वहीं आज बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि उनकी नजर में चंपत राय बेदाग हैं, वो अपराधी नहीं है, हालांकि उनसे लापरवाही की गलती जरूर हुई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि ट्रस्टी बोर्ड को पूरा किया जाएगा। नाम सुझाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, आलोक कुमार जी। आलोक जी, ये जो पहली आज बैठक ये हुई चंदा मामले के बाद, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार होता है, इसे हम पहला कदम माने या निष्कर्ष माने? आलोक जी,
1: निष्कर्ष तो ये हो ही नहीं सकता, पर इसको पहला कदम माने इसके बारे में भी मेरे को शंका है, क्योंकि जब इसके खबरें आई और इसकी जांच शुरू हुई तो कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त की कि अगर चंपत जी और अनिल जी अपने पदों पर बने रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते, गवाहों को या प्रमाणों को, और इसलिए उनके रहते हुए जांच शुद्ध नहीं होगी। इस तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए इन दोनों ने त्याग पत्र दिया और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए त्याग पत्र स्वीकार हो गया। ये निष्कर्ष इसलिए नहीं है कि जब तक सब अपराधी पकड़े नहीं जाते, जांच पूरी नहीं होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट में दंडित होकर के वो सजा भुगतने के लिए जेल में नहीं जाते, तब तक निष्कर्ष हो गया ये मानना ठीक नहीं है। वहां तक जाना और जल्दी जाना, सालों में नहीं, कुछ महीनों में जाना, इस वर्ष की समाप्ति के पहले उनका जेल में जाना, ये होगा तब हिंदू मन को शांति मिलेगी।
0: आलोक जी, एक और आशंका है लोगों की, और उस आशंका पे मैं आपकी राय जानना चाहती हूं। वो ये कि कभी भी अमूमन देखा जाता है कि कोई जांच अगर चलती है, जांच की शुरुआत होती है, तो जब तक हर एक व्यक्ति जो उसके दायरे में है उसको लेकर जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ माना नहीं जाता, स्वीकार नहीं किया जाता, कहा जाता जांच जारी है। लेकिन आज ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ सदस्यों ने जब ये कहा कि चंपत राय की केवल लापरवाही, तो क्या ये जांच से पहले उनको क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं हुई?
1: ये उनकी राय है, उन्होंने अपनी राय दी। जो लोग जांच कर रहे हैं वो गंभीर लोग हैं, वो इधर या उधर की किसी भी राय से प्रभावित नहीं होंगे।
0: पर क्या कोई बड़ा व्यक्ति अगर ऐसी राय देता है तो उसको जांच में प्रभाव नहीं होगा, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं?
1: मैं आशा करूंगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो SIT के लोग हैं वो बहुत वरिष्ठ पदों के बहुत अनुभवी और विद्वान लोग हैं, पुलिस प्रोफेशनल है, इसलिए उन्होंने किसी छोटे मोटे अधिकारी को IO नहीं बनाया है। अयोध्या के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसका IO बनाया है, और फिर वो मैं और हम सब लोग कह रहे हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, आरोपों की जांच होनी चाहिए, सब आरोपों की, और किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए। तो यहां तो किसी को बचाने की चेष्टा ही नहीं है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सुप्रीम कोर्ट किसी सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई, तो कराए ना। सुप्रीम कोर्ट कहेगी सिटिंग जज से कराओ, मॉनिटर कराओ, करा लो। सुप्रीम कोर्ट कहेगी रिटायर्ड जज से कराओ, करा लो। सीबीआई से कराओ तो वो करा लो। कुछ छुपाना नहीं, किसी को बचाना नहीं। जैसे जांच का तरीका तय करते हैं वैसे होना। और सच में सही दोषियों को पहचानना, जेल में भेजना, इसके बारे में हम सब स्पष्ट हैं।
0: आलोक जी, कुछ लोगों की अगर ये राय है कि क्या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है, तो कुछ लोगों की ये भी राय है जो कह रहे हैं कि इसमें सियासत इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो एक इशू को, एक मुद्दे को हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संतों ने भी, कई संत समाज के लोगों ने भी इस तरह की राय दी है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ये डर है कि कहीं इसके जरिए एक ये बात न कहने की कोशिश हो कि मंदिरों में तो ऐसा ही चलता है?
1: ऐसा भी कहा जा रहा है। और दो धाराएं हैं, 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत इस बारे में जो जो कहा जा रहा है, उसमें एक धारा है जो सोचती है कि चंपत जी पर बहुत बोल लिए, ठीक है, पर जब तक हम संघ को और परिषद को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। तो वो हमको इम्प्लीकेट करना चाह रहे हैं, तुम जिम्मेवार हो। अरे भाई, जिस दिन निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मंदिर बनाना चलाना हमारा काम नहीं है, और हमने इसको निभाया। प्रधानमंत्री आए प्राण प्रतिष्ठा पर, राष्ट्रपति जी आई, हम में से कोई मंच पर नहीं था, पर वो ये कह रहे हैं कि तुम जिम्मेवार हो। तो ये संस्था के तौर पर बदनाम करने की चेष्टा, ये एक प्रयत्न है। और दूसरा प्रयत्न है कि इसके बारे में एक नैरेटिव गढ़ना। हिंदू तो अपना मंदिर चला ही नहीं सकते, सरकार को दे दो मंदिर, या हिंदू मंदिर में कुप्रबंधन होगा ही होगा, मंदिरों में तो ये चलता ही है। ये जो दूसरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव हिंदुत्व को आहत करने के लिए है। और इसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे सूडो सेकुलर लोग शामिल हैं।
0: मंदिर का ट्रस्ट जो है, उसके स्वरूप को बदलने को लेकर संतों का भी एक वर्ग है जो आज ये कह रहा है कि अखाड़ों को प्रतिनिधित्व दो उसमें, जो संत समाज के काबिल लोग हैं और जिनकी उम्र ऐसी है कि वो एक्टिवली इसका हिस्सा बन सकें, उन सबको शामिल होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या इससे बेहतर हो सकता है अगर संत समाज और अखाड़ा, अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, उन सबको हिस्सा बनाया जाए?
1: मैं समझता हूं कि स्वाभाविक स्थितियों में परिवर्तन होते रहेंगे। अभी जो लोग हैं राम जन्मभूमि के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले, देश के शीर्षस्थ संत हैं, हमारे आपके सबके मन में आदर है महंत नित्य गोपाल दास जी के लिए, युग पुरुष परमानंद जी के लिए, शंकराचार्य वासुदेवाचार्य जी के लिए, गोविंद देव गिरी जी के लिए, और अभी तो ट्रस्ट में गृहस्थ ही कहिए, बाकी संत हैं। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो, और वो किसी परिवर्तन का आधार नहीं बन सकता।
0: आलोक जी, ये जो पूरा विवाद है उसमें कुछ, जैसा कि हमने चर्चा भी की, कि षड्यंत्र के भी कुछ एंगल हो सकते हैं, आपको लगता है इसका प्रभाव होगा? लोगों के मन की शंका दूर होगी या और गाढ़ी रहेगी?
1: ये इस पे निर्भर करेगा कि शुद्ध जांच होती है कि नहीं। जांच होकर के दोषी पकड़े जाए, स्पेशल कोर्ट में या फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज मुकदमा चले, और 2026 का सूरज डूबने से पहले कोर्ट का निर्णय आकर के दोषी जेल में चले जाएंगे तब लोगों को लगेगा

0: कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बताया है कि ट्रस्ट की हर कमी को दूर किया जाएगा। आज पूरी बैठक के दौरान क्या हुआ, किसने क्या कहा, सब कुछ आपको हम अब बताते हैं।
1: अयोध्या में सोमवार दोपहर 3 बजने से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शीर्ष पर लहराता भगवा ध्वज चढ़ावा चोरी को लेकर हुई बैठक का गवाह बनता है। जब राम मंदिर परिसर के जगतगुरु रामानुजाचार्य गेट के बाहर हलचल शुरू होती है, महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष ट्रस्ट पहुंचते हैं। गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, बैठक में शामिल होने के लिए आते हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज सदस्य हैं, स्वामी परमानंद गिरी सदस्य हैं, कृष्ण मोहन भी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, शशांक त्रिपाठी जिलाधिकारी अयोध्या ये भी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पहुंचते हैं। वहीं महंत दिनेंद्र दास जो सदस्य हैं, कुल मिलाकर 8 लोग राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मौजूद होते हैं। जबकि इसी मीटिंग में प्रशांत लोखंडे केंद्र सरकार के पदेन अधिकारी, नृपेंद्र मिश्रा चेयरमैन निर्माण समिति, पद्मश्री के परासरण सदस्य के तौर पर और संजय प्रसाद राज्य सरकार के पदेन अधिकारी के तौर पर ऑनलाइन बैठक में मौजूद होते हैं।
2: महंत नृत्य गोपाल दास के अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हुई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बकायदा पूरे मीटिंग का एजेंडा सामने रखा और गोविंद देवगिरी ने ही दोनों इस्तीफों पर विचार का भी प्रस्ताव रखा, चंपत राय और अनिल मिश्रा। और आखिर में चंपत राय और इन दोनों के इस्तीफे पर लंबा विचार विमर्श हुआ है।
1: बैठक शुरू होते ही पता चलता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम को लेकर काफी विरोध है। बैठक में कई सदस्यों ने सीधे चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और इसके बाद सीधे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में मंजूर माना गया, क्योंकि गोविंद गिरी के मुताबिक यही नियम है ट्रस्ट का।
3: गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। यह सोच करके उन्होंने स्वयं यह त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के परासरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
2: ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने सबसे पहले FIR दर्ज करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि जब चोरी का मामला सामने आया, जब अनियमितताएं सामने आईं, तो फिर FIR कराना जरूरी था। इसके बाद इसी FIR के आधार पर आगे की जांच की गई है, जिसमें अभी तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
1: इस बैठक में फिर चर्चा होती है कि ट्रस्ट में बदलाव करके ही वापस जनता का भरोसा जीता जा सकता है, जहां ऑफलाइन मौजूद 8 और ऑनलाइन बैठक में शामिल 4 कुल 12 सदस्यों सभी ने चढ़ावा चोरी से खुद को आहत बताया।
4: ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है, आघात हुआ है। उन्होंने कहा कि लापरवाही तो हुई है, ध्यान दिया गया होता तो सुधारा भी जा सकता था और जो इसमें संलिप्त हैं उन्हें दुरुस्त भी किया जा सकता था। यानी कि आसान भाषा में गोविंद गिरी, जो खुद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, वो इस बात को अब मानते नजर आ रहे हैं।

0: हैं, कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया, दिया होता तो आस्था को ठेस ना पहुंचती, इस बात को स्वीकारता ट्रस्ट, यानी कि बड़े कार्रवाई आगे दिखाई पड़ती है।
1: सबसे बड़ा दुख यह था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की, और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है, पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ इसी से हम आहत हैं।
2: इसकी वजह यह रही कि अब तक की जांच में यह सामने आ चुका है कि न सिर्फ चढ़ावा चोरों को चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी होने की वजह से काम मिला, बल्कि इन्हीं लोगों का करीबी होने की वजह से आंख भी व्यवस्था मुंह दे रही।
1: चोरी तो चोरी है और उसमें उसका जो उसकी जो तलाश करनी है वह SIT कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं।
3: ट्रस्ट के संविधान अनुसार अगर इस्तीफा देते ही वो मंजूर हो जाना था तो फिर किस आधार पर आज ट्रस्ट की बैठक में ये मुख्य एजेंडा था? क्या इस्तीफा मात्र देने भर से जांच के दायरे से चंपत राय और अनिल मिश्रा दूर हो जाएंगे, या फिर SIT की जांच के दायरे में आगे आएंगे?
0: ट्रस्ट की बैठक में स्वामी परमानंद गिरी ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हम सभी का पहला कर्तव्य है। जब कोई धार्मिक स्थल से जुड़ता है तो पहला कर्तव्य होता है कि उस धार्मिक स्थल की रक्षा करना और उन करोड़ों भक्तों की आस्था की रक्षा करना। यहां चूक हुई है, धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की थी और ये बनी रहेगी। जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करना होगा और एक निर्णायक फैसला लेकर जितने राम भक्त हैं उनके सामने एक नजीर पेश करनी होगी।
2: इस विश्वास की बात इसलिए उठी है क्योंकि चांदी की ईंटें हो, काक भुशुंडी हो या फिर सोने की परत वाली रामचरितमानस, जो कुछ दान में आया वो सब सुरक्षित ही रखा हुआ है। लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी की बात आते ही इसको लेकर दान देने वालों के मन में शंका पैदा हुई, इसीलिए चोरी ने सबके विश्वास को चोट पहुंचाई। इसीलिए ट्रस्ट की तरफ से बैठक के बाद सार्वजनिक तौर पर राम मंदिर को दान में मिली उन चीजों को सामने लाकर दिखाया भी जाता है जिनके गायब होने की आशंका और आरोप लगाए गए। इसीलिए सोने की रामचरितमानस, भगवान के चरण चिन्ह, काक भुशुंडी हो, ऐसी 2800 चीजों को सामने लाकर रख दिया गया।
1: हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काक भुशुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं।
4: स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना एक कलंक है। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। बैठक में मौजूद तमाम संत सदस्यों ने ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया।
2: जबकि सोमवार दोपहर ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी जारी करके पहली बार चढ़ावा चोरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा, चोरी से मैं आहत हूँ, जिसने भी ये पाप किया उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही भरोसा जताया, मोदी योगी हैं तो सब सही होगा, न्याय मिलेगा। वहीं एक सदस्य ने इस घटना को कलंक तक बैठक में बताया।
4: ट्रस्ट की बैठक के दौरान एक बात साफ दिखी, ट्रस्ट का हर सदस्य आहत दिखा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के लिए ट्रस्ट के सदस्यों की नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महंत दिनेंद्र दास ने साफ कहा कि हम सभी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कार्यों के लिए वर्षों का योगदान रहा है।
2: इसके बाद ट्रस्ट की बैठक में तय हुआ कि चंपत राय के इस्तीफे की वजह से अब उनकी जगह ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया जा रहा है।
1: अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे।
3: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि जिन चीजों के गायब होने का दावा किया गया वो सुरक्षित हैं। ट्रस्ट का दावा है कि नकद दान के अलावा श्रद्धालुओं ने भेंट अर्पित की। अब तक ऐसी 2900 से ज्यादा भेंटें प्राप्त हुई हैं। इन सभी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सभी उपहारों का भौतिक सत्यापन करती है। ट्रस्ट की बैठक के बाद गतिविधियां अब हर संदेह को दूर करने के लिए तेज हो चुकी हैं। आज शाम को राम मंदिर में SSP अयोध्या पहुंचे। SSP गौरव को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बुलाया गया। खबर है कि मंदिर परिसर की सुरक्षा, ट्रस्ट में काम करने वाले सेवादारों के वेरिफिकेशन संबंधी निर्देश के लिए SSP को बुलाया गया था। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दो जांच चल रही है, एक SIT की, एक अयोध्या पुलिस के द्वारा। तो SSP अयोध्या को वहां पर बुलाना किस क्रम में था, क्या जांच के लिए या फिर सुरक्षा के लिहाज से?
5: देखिए श्वेता, जिस तरीके से आज ट्रस्ट की बैठक हुई और ट्रस्ट की बैठक में दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हो गई। चंपत राय और अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट से पूरी तरीके से बाहर हो गए। नई व्यवस्था, फिलहाल अंतरिम व्यवस्था लागू हो गई, जो कृष्ण मोहन है उनके साथ साथ कुछ अधिकारी लगाए गए हैं और उनके चुनिंदा लोग, जो कि जब तक ये फुल फ्लेज एक ट्रस्ट सामने नहीं आता, रीस्ट्रक्चर ट्रस्ट सामने नहीं आता, तब तक ये व्यवस्था देखेंगे। उसी क्रम में सीनियर SP जो अयोध्या है या फिर जो DM मौजूद थे, तमाम लोगों ने एक बार फिर से इसका जायजा लिया है। कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि ये जो अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो चुका, इसके बाद से अब नए तरीके से हर चीज को दोबारा किया जाएगा, खास करके सुरक्षा को लेकर के नए तरीके से इसकी समीक्षा होगी। सुरक्षा में भी जो दान पात्र है, जहां चढ़ावा जाता है, फिर वहां से आज भी उसकी गिनती होती है, फिर उसको बैंक ले जाया जाता है, तो इसको लेकर के एक नए सिरे से पूरी समीक्षा। इसी क्रम में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंचे हैं नए तरीके से। अगले 22 तारीख तक या उसके आगे तक, जब तक नया बोर्ड गठित नहीं होता है, नया ट्रस्ट गठित नहीं होता है, तब तक या इसमें कुछ रिस्ट्रक्चर नहीं होता है, तब तक यह व्यवस्था चलेगी। इसी वजह से, और हम लोगों ने बताया था कि अब DM को ज्यादा अधिकार होंगे फिलहाल, इसलिए जब तक नए ट्रस्ट की नई रिस्ट्रक्चर नहीं होती है, तब तक इस तरह की चीजें आपको और देखने को मिलेंगी। दो जांचें चल रही हैं SIT की। SIT की जांच भी 22 तारीख के पहले पूरी हो जाएगी। आज ट्रस्ट के मेंबर्स ने भी कहा कि उसके बाद वो मीटिंग करेंगे। और दूसरी पुलिस की जांच, जो लगातार उन आरोपियों को, उन चोरी करने वाले लोगों को लगातार जेल से निकाल करके पूछताछ शिनाख्त कर रही है, वो दोनों का एक तरीके से जब मिला जुला एक समीक्षा रिपोर्ट आएगी, तब बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। ट्रस्ट का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरीके से लोगों का भरोसा ट्रस्ट पर वापस लौटे, और यही सबसे अहम है। श्वेता,
3: बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक अयोध्या से यह जानकारी हमें दे रहे थे। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब सवाल सियासत का है। अयोध्या पर होती वो राजनीति जहां राम के नाम पर BJP को ही अखिलेश यादव घेरने लगे, जिसके खिलाफ पिछले 25 दिन से लेकर आज तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक रणनीति से विपक्ष को जवाब दे रहे हैं।
6: राम का मतलब राष्ट्र है।
7: चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का ध्रोह, जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे।
8: एक हरियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते।
7: BJP के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं,
6: भारत की आस्था पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं।
7: इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
2: बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट की गलती से हुई श्री राम चढ़ावा चोरी का मामला जल्द सिमटा नहीं तो 2027 में अयोध्या को लेकर विपक्ष भारी पड़ सकता है, क्योंकि चढ़ावा चोरी कांड की वजह से हिंदू आस्था को चोट की बात कही जाने लगी, संघ परिवार पर सवाल उठने लगे, सरकार को विपक्ष घेरने लगा, हिंदू श्रद्धालु सवाल करने लगे, पुराने कार सेवक पूछने लगे गोली खाने के बदले क्या यही मिला, राम मंदिर में दान करने वाले अपने दान की रसीद पूछने लगे कहाँ है। क्या यही कारण है कि जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की चढ़ावा चोरी कांड पर बैठक होती है, जब अयोध्या में ट्रस्ट के लोग बैठक करके चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला करते हैं, तब अयोध्या से 3 घंटे की दूरी पर प्रयागराज में अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं एकता के सूत्र में केवल राम ही बांध सकते हैं।
6: भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है वह राम का नाम है।
2: एकता के सूत्र में बांधने वाले इकलौते नाम राम की बात क्या मुख्यमंत्री को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जब चुनाव में 8 महीने से कम का वक्त बचा है तब चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव लगातार आक्रामक है।
7: सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का ग्रोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा।
2: आक्रोश ऐसा नहीं कि सड़क पर दिख रहा है लेकिन अयोध्या के चढ़ावा चोरों की वजह से सवाल राम भक्तों के दिल और दिमाग में जरूर आया है।
9: चोरी करी है, चोरी करने के बाद उन पे से पूरा विश्वास उठ गया। ऐसे लोगों को ना तो कमेटी के मेंबर में रखना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए और बाकी भक्तों की आस्था पूरी है श्री राम जी पे।
10: जब वो पता चलता है कि चोरी हो जा रहा है तो बहुत ही हर्टिंग है, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं और इतनी चेकिंग हो रही है हर जगह पे तो चोरी हो रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होगा।
11: ये घटना सुनकर के बहुत खराब लगा कि लोगों की आस्था पे बहुत ज्यादा विश्वासघात किया गया, ये चोरी नहीं होनी चाहिए।
2: इस बात को बीजेपी समझ रही है इसीलिए मुख्यमंत्री पिछले 25 दिन में लगातार एक तरफ न्याय दिलाने की बात करते हैं, दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा देते हैं तो राम मंदिर आंदोलन याद कराने में जुट जाते हैं।
6: राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था। जहां जाओ उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में एक ही नारा हर व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा था। जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, चारों ओर एक ही गूंज थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है।
3: अब बात मानसून की मूसलाधार बरसात की जिसने महाराष्ट्र में हाहाकार मचा रखा है।

0: चार दिन में हो गई महीने भर की बारिश।
1: जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल चार दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है,
0: बारिश और भूस्खलन से झरना बना 6,500 करोड़ का एक्सप्रेसवे। नासिक में बादल फटने की आशंका, चिंता में डूबी सरकार।
1: लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा।
0: बारिश मूसलाधार, महाराष्ट्र खबरदार।
2: देश के कई हिस्से बारिश के इंतजार में हैं। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में इतनी बारिश हो रही है कि सरकार कह रही है कि जरूरी हो तभी घर से निकलो। इसकी वजह भारी बारिश के साथ हाईवे पर हो रहा भूस्खलन। कब कहां से पत्थर हाईवे पर गिर जाएगा कोई नहीं बता सकता। मुंबई को गोवा और पुणे से जोड़ने वाले दो हाईवे भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसात हो रही है। मुंबई का बुरा हाल है, जहां 17 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, वहीं 365 फ्लाइट देर से उड़ पाई। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में 26 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार साल 2000 के बाद मुंबई में सबसे भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बरसात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब मुंबई भारी बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है और ज्यादा बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग दे रहा है।
0: महाराष्ट्र में इस वक्त बारिश कहर बनकर बरस रही है। मुंबई, पालघर, रायगढ़ और ठाणे में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अलर्ट नासिक को लेकर है, जहां बादल फटने की आशंका है।
1: नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है, कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा।
0: महाराष्ट्र में आसमान से पानी कहर बनकर बरस रहा है। कहीं बारिश से खबरदार किया जा रहा है तो कहीं भूस्खलन से। कुदरत ने राज्य के कई जिलों की शक्ल बदल कर रख दी। सुबह जब महाराष्ट्र और देश सोकर उठा तो उसने हजारों करोड़ रुपए में बने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की ये बदहाली सोमवार को देखी। भारी बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला एग्जिट के पास बड़ा लैंडस्लाइड होता है, जिससे सड़क पर भारी मलबा जमा होने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ठप हो जाता है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन बारिश से हुई लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवाल उठा दिया।
3: इस वक्त हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर हैं। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए। तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहां पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है इस पूरे मलबे को निकालने के लिए।
0: महाराष्ट्र में बीते 3-4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है।
3: लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है इस पूरे मलबे को निकालने के लिए।
0: महाराष्ट्र में बीते 3-4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे, नासिक समेत आसपास के कई जिलों में हाहाकार जैसे हालात हैं। रेल, सड़क, यातायात बुरी तरह प्रभावित। सरकार का कहना है महीने भर की इकट्ठा बारिश कुछ दिनों में हो जाने से हालात ऐसे हो गए।
1: 8 जगह लैंडस्लाइड हुआ और मुंबई गोवा जो हाईवे वो बंद हुआ, उसको शुरू करने का प्रयास चल रहा है बहुत बड़े पैमाने।
0: अब पुणे की तस्वीर देखिए, यहाँ भारी बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी उफान पर है। आलंदी को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा हुआ है। पुणे का चाकन इलाका भारी बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ अचानक इतना पानी बरसा, 70 से 80 लोग फंस गए, जिन्हें बचाव दल ने कंधों पर बैठाकर बचाया। महाराष्ट्र के सातारा में मानसून की वजह से भले ही चारों तरफ हरियाली दिख रही हो, लेकिन लगातार होती बारिश ने कोयना डैम का जलस्तर बढ़ा दिया, आसपास के इलाके को खतरनाक स्थिति में डाल दिया। उजड़ी वाटरफॉल अब पूरी क्षमता से बह रहा है। सतारा रत्नागिरी में तेज बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट है। इन सब के बावजूद पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। झरने की तेज धार, उड़ते पानी के छींटे और पूरे इलाके में फैला घना कोहरा इस जगह को खूबसूरत बनाता है। इसी नजारे को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। सातारा जिले के महाबलेश्वर के वेड़ा झील क्षेत्र में वेड़ा नदी पर बना एक छोटा पुल भारी बारिश की वजह से टूट गया। इससे सड़क के दूसरी ओर बने होटल में ठहरे कई पर्यटक फंस गए। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए। वहीं फंसे हुए वाहनों को क्रेन की मदद से दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। महाबलेश्वर में बीते 24 घंटे में 513 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से वेणा झील और लिंगमाला क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस वजह से प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
1: और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बस्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी, इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। विशेष रूप से रायगढ़ जिला, पालघर जिला, सातारा जिला, मुंबई, ये सारा जो और पुणे, ये जो सारा इलाका है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। और ये बारिश जो है, ये हम लोग जानते हैं कि जब हमारा मॉनसून शुरू हुआ तब से लेकर पहले 20-25 दिनों में बारिश नहीं हुई और करीब करीब 3 दिनों में ये बारिश हो रही है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत हैवी इस प्रकार की इंटेंसिटी है।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा लोगों से अपील की गई कि वो सतर्क रहें और इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
2: मुंबई में 6 जुलाई यानी आज तक इस मौसम में लगभग 1240 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 26 सालों में इस तारीख तक की सबसे अधिक बारिश है। ये सामान्य जुलाई की शुरुआत में होने वाली बारिश से लगभग 1.7 गुना ज्यादा है, जिसने साल 2006 में बने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। पुणे में 2 मंजिला इमारत बारिश के बाद गिर गई है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बारिश का सितम जिस रूप में दिख रहा है उसमें देखिए किस तरीके से एक इमारत गिर गई।
0: महाराष्ट्र के कई जिलों की सूरत बिगड़ने के लिए भले ही राज्य सरकार मानसून को दोष दे रही हो, लेकिन बारिश ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता तक पर सवाल या निशान लगा दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लैंडस्लाइड मलबा गिरने से सुरक्षा दीवार ढह गई, तो वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बारिश की वजह से पानी भरने के कारण यातायात प्रभावित हो गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई।
4: रोड बंद आहे, त्याच्यामुळे आम्ही रोड डायव्हर्शन करत आहोत। जे इमर्जन्सी जाणाऱ्या गाड्या आहेत त्या आम्ही खोपोली मार्ग ॲम्ब्युलन्स असू दे, आणि काही पेशंट असू दे, शाळेच्या मुलाच्या असू दे, त्या आम्ही खोपोली मार्गे हळूहळू सोडत आहोत। बाकी मोठे वाहन आहेत त्यांना आम्ही सूचना देत आहोत की आपण पार्किंगमध्ये वाहन पार्क करावे, म्हणजे चहाची पाण्याची आम्ही नाश्त्याची काही तर सोय करून आम्ही कळमळी वाचू शकत असते। आणि त्या गाड्या थोडा रस्ता चालू होणे झाल्यानंतर त्यांनी त्या एक्सप्रेसने जायला काही हरकत नाही।
0: हावे की तरह मुंबई के रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे हुए हैं। 20 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेन फंस गई, वहीं लोकल ट्रेन प्रभावित होने से मुंबई का बुरा हाल हुआ। मुंबई और पुणे के बीच हाईवे ही बारिश और भूस्खलन से प्रभावित नहीं हुआ, रेल मार्ग भी ठप हो गया। ये देखिए इस टनल के पीछे ही भूस्खलन होने से दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक प्रभावित हुआ।
5: भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से मुंबई और पुणे के बीच जो रेल यातायात है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई है। आपको बताएं देर रात ठाकुरवाड़ी कैबिन और मंकी हिल कैबिन जो कि लोनावला के पास है वहां पर भूस्खलन हुआ। जो मलबा है वो ट्रैक्स पर आ गया, मिट्टी पत्थर, इसके वजह से जो रेल यातायात है वो ठप हो गई। आपको बता दें करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज प्रभावित हुए हैं और बहुत से ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है, बहुत सी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है।
0: सरकार की दलील है कि मुंबई की शक्ल इसलिए बिगड़ी क्योंकि 4 दिन में ही महीने भर की बारिश हो गई, इसलिए मुंबई डूब गई।
1: मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है, और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज्यादा न रहे इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शन उसमें है।
0: मानसून के आते ही मुंबई की हर बार हालत ऐसी ही हो जाती है, ज्यादातर इलाके डूब जाते हैं, सड़कें नदियां बनती हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है। मुंबई में कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से मौसम विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। संदेश साफ है कि हालात और बिगड़ सकते हैं।
6: मुंबई रायगढ़ पालघर थाने के लिए जो है मौसम विभाग द्वारा है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पहले ये ऑरेंज अलर्ट था लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका ने कल ही एहतियातन तौर पर मुंबई के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन जो ऑफिसेज हैं, जो काम पर जाने वाले लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं काम पर।
0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लोगों से खुलकर अपील कर रहे हैं मौसम से खबरदार रहें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।
1: इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेज को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम का है, और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा।
0: देश की आर्थिक राजधानी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है, इसीलिए अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के चलते मुंबई में 350 पेड़ अब तक गिर चुके हैं।
1: विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली, और उसके कारण मुंबई के मानसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मानसून बहुत तगड़ा होता है तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं।
0: मुंबई में इस वक्त बारिश और तेज हवा के चलने से घर से निकलना खतरनाक हो चुका है। गोरेगांव का ही उदाहरण लीजिए जहाँ 2 महिलाएं पेड़ गिर जाने से घायल हो गयी। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। जैसे ही महिला छाता खोलकर मार्केट से सड़क पर आई ऊपर से पेड़ गिर जाता है, कोई नहीं बच पाया।
2: वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Papa!
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। हाँ
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
11: गहरी सफाई।
12: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
11: गहरी खुशबू
12: और प्यार भरी भी।
11: कैसे?
12: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
13: इसीलिए फेना ही लेना।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
18: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
19: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
20: वाह वाह वाह वाह।
19: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
21: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
22: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
23: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
24: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
26: वी आर ओवर जिमी।
27: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
28: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
29: कुछ तो बात है इस दिल में।
30: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
31: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
32: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
33: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
34: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
35: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
34: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
35: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
6: गहरी सफाई,
5: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
6: गहरी खुशबू
5: और प्यार भरी भी।
6: कैसे?
5: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
7: इसीलिए फेना ही लेना।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: सरसों से सरसों।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: हमने तब भी सवाल किया था,
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
16: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
18: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
19: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
20: परमिशन लेनी चाहिए ना,
19: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
21: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी,
19: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: समाचार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर आखिर पत्थर क्यों मारे गए। जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था तब भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अब क्यों? ईरान की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में उमड़ी भीड़ ने एक पोस्टर लगाया था जिस पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा था, वी विल किल ट्रंप। तेहरान की मुख्य सड़क पर इस बैनर को लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप को शैतान बताया गया और उन पर कंकड़ पत्थर बरसाए गए। इसे स्टोनिंग ऑफ द डेविल यानी शैतान को पत्थर मारने की हज वाली रस्म का एक प्रतीकात्मक दृश्य माना जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि इस जनाजे में आयतुल्लाह खामेनेई के तीन बेटे मुस्तफा, मेसम और मसूद तो नजर आए, लेकिन मुश्तबा खामेनेई रात 9 बजे तक अपने पिता के जनाजे में नहीं दिखाई दिए। आगे अगर वो आते हैं तो हम आपको फौरन बताएंगे। आयतुल्लाह खामेनेई के साथ उनके दामाद, उनकी बेटी, पोती, मुश्तबा खामेनेई की पत्नी का शव भी वहां रखा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि आयतुल्लाह खामेनेई की पत्नी कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो जनाजे में क्यों नहीं दिखी? अगर जिंदा नहीं है तो उनका जनाजा कहाँ है? और यहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर उनकी तबीयत खराब है क्या? क्या अब भी उनका इलाज चल रहा है? आखिर माँ और बेटे दोनों इस जनाजे से दूर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर कुछ और? इसके बाद आपको बताएंगे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे हंगामे के बीच आज मंदिर ट्रस्ट ने बड़ी बैठक की। आज सवाल यह है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर हो जाने के बाद ट्रस्ट का खोया हुआ भरोसा वापस लौट पाएगा? क्या अब राम मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता, प्रोफेशनलिज्म की गारंटी मिलेगी? आज आपको बताएंगे कि किसी भी मंदिर और उसके प्रबंधन से कुछ खास लोगों के चहेते हटेंगे तभी चढ़ावा बचेगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर नाबालिगों के खिलाफ अपराध अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? क्या पुलिस का ढीला रवैया, अदालतों में सालों खिंचते मुकदमे और इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता मासूमों के लिए काल बन रही है? पश्चिम बंगाल में 12 साल की मासूम के साथ हुए यौन अपराध के मामले ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर क्या पथराव हुआ है। जब पहली बार हमने ये तस्वीरों को देखा तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, लगा कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाया गया होगा। आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। उदाहरण के लिए जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था तब भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हमें लगा कि जब युद्ध के दौरान ईरान के लोगों ने ऐसा नहीं किया था तो अब भी वहां ऐसा क्यों किया जाएगा? इन्हीं सारी बातों के कारण हमने इस पत्थर मारने वाले वीडियो को लेकर तफ्तीश की और इसके लिए ईरान के मीडिया में चलाई जा रही खबरों को भी देखा। सारी पड़ताल करने के बाद ये वीडियो असली निकला, यानी इसमें जो दिख रहा है वो सच में हुआ है और सच में राष्ट्रपति ट्रंप को शैतान बताकर उन पर पत्थर मारे गए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी लिखती है कि ये पोस्टर शहीद इमाम आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में शामिल हुए कुछ लोगों ने खुद लगाया था। उन्होंने ये बड़ा पोस्टर तैयार किया जिसमें एक तरफ फारसी भाषा में लिखा था, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे यानी वी विल किल ट्रंप। इन विवादित नारों के साथ ये बड़ा सा बैनर तेहरान की मुख्य सड़क पर लगाया गया और इसके बाद आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए लोगों ने कहा कि उनके रहबर को इस शैतान यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने मारा है। देखिए, अब पूरी दुनिया इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से स्टोनिंग ऑफ द डेविल से जोड़कर देख रही है, जिसका मतलब होता है शैतान को कंकड़ या पत्थर मारना। यह रस्म हज यात्रा के दौरान निभाई जाती है जिसे रमी अल जमरात कहा जाता है। अब इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मीना के नाम के स्थान पर जाते हैं और वहां दीवार पर पत्थर या कंकड़ जो भी होता है वो मारते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराह के मुताबिक अल्लाह ने हजर इब्राहिम साहब को आदेश दिया था कि वो अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे। जब इब्राहिम साहब इसके लिए तैयार हो गए तो रास्ते में उन्हें शैतान ने 3 अलग अलग जगहों पर रोकने और बहकाने की कोशिश की। जब अब शैतान ने हजरत इब्राहिम साहब को रोका
तो उन्होंने हर बार शैतान पर सात सात कंकड़ और पत्थर फेंके और हर बार शैतान वहां से गायब हो गया। जब शैतान कामयाब नहीं हुआ तो हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के आदेश का पालन करने की तैयारी की और जब वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने लगे तभी अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। इसी के बाद अल्लाह ने उन्हें एक मेंढा भेजा जिसकी कुर्बानी दी गई और आज इसी घटना को याद करके बकरीद मनाई जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म में शैतान वो होता है जो मुसलमानों को उनके असली मकसद से रोकता है और यहां ईरान में राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा ही शैतान साबित करने की कोशिश हुई, पत्थर मारे गए। तस्वीर बदलिए। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में आपको लाखों लोगों की भीड़ के बीच एक बैनर नजर आएगा जिस पर लिखा था किल ट्रंप। जो लोग इस बैनर को लाए थे वो आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे से ज्यादा दूर नहीं थे। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ईरान के लोगों में राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की भावना मजबूत की जा रही है। आयतुल्लाह खामेनेई का ये अंतिम विदाई कार्यक्रम इसका जरिया बना और हम सिर्फ एक पत्थर मारने वाले वीडियो और इस एक तस्वीर के आधार पर क्या ऐसी बात कही जा सकती है? तेहरान में जहां भी लोग शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे उन्होंने डाउन विथ यूएसए, देयर विल बी ब्लड और वी विल अवेंज जैसे पोस्टर्स और बैनर्स लहराए। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेरी वांस और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीरों पर यह लिखा गया था देयर विल बी ब्लड। इसका मतलब होता है खून बहेगा या हिंसा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मारने की इतनी खुली धमकी सामने आई है जिस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ईरान के लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं और ये कहते हुए लगाए हैं कि अमेरिका ने भी तो राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में उनके रहबर आयतुल्लाह खामेनेई को मारा है। यानी ईरान की दलील यह है कि आपने हमारे नेता को मारा तो हम आपके राष्ट्रपति को मारेंगे। देखिए

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित कार्यक्रम बन गया है, जबकि प्रेस टीवी का कहना है कि यह सदी में हुआ पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतने करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरे। अब सोचिए इन सारी बातों से क्या समझ आता है। इनसे यही पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई को मारकर आयतुल्लाह खामेनेई को और भी महान बना दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि अगर वो आयतुल्लाह खामेनेई को मार देंगे तो दुनिया उन्हें महान कहेगी कि भाई ट्रंप महान है, कसीदे पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के शान में कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार तो गारंटी से इसके बाद मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी सोच रहे होंगे क्योंकि उन्हें लगता था कि आयतुल्लाह खामेनेई से ईरान के लोग नफरत करते हैं और ईरान उन्हें उनकी गद्दी से हटाना चाहता है, और ऐसा वो कहते भी रहे कि ईरान के आम लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा सोचकर बुरे फंस गए। अब यही होता है, खुद को महान बनाने के चक्कर में राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई को इतना महान बना दिया कि आज ये भीड़ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और सिर्फ ये भीड़ क्यों, दुनिया के 30 से ज्यादा देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक नेता और इमाम ईरान पहुंचे हैं। जानते हैं, इस विशाल भीड़ को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप को खुद विश्वास नहीं हो रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को उन्होंने बताया है कि वो ईरान के पूर्व लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार देख रहे थे, जिस पर उन्हें हैरानी हुई। वो शब्दशः कहते हैं कि उन्हें लगता था कि ईरान के लोग आयतुल्लाह खामेनेई से नफरत करते हैं, लेकिन अब जब वो उनकी याद में रो रहे हैं तो उन्हें हैरानी होती है। और वो आगे भी कहते हैं कि उन्हें तो ये आंसू नकली लगते हैं। ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, शब्दशः एक्सियोस से हमने कोट करके आपको बताया। मतलब यहां भी कमाल ही हो गया। कमाल इसलिए हो गया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को सही दिखाने के लिए इस पूरी भीड़ के आंसुओं को ही झूठा बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, जरा ये भी समझिए। हर इंसान, चाहे आम हो बड़ा नेता हो, यही सोचता है कि उसकी मौत के बाद लोग उसे कैसे याद करेंगे। अगर सिर्फ वैश्विक नेताओं की बात करें तो ये भावना उनमें भी होती है। कई नेता तो अपनी मौत से पहले अपनी ओबिचुरी तक लिखवाते हैं। ओबिचुरी का मतलब होता है शोक संदेश, जिसमें उन्हें महान बताया गया हो, जिनमें उनकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा हो। अब इसी में एक और चीज ये होती है कि जो नेता एक दूसरे के समकक्ष और विरोधी होते हैं, वो कतई नहीं चाहते कि उनके विरोधी को दुनिया महान माने। जैसे यहां राष्ट्रपति ट्रंप और आयतुल्लाह खामेनेई एक दूसरे के समकक्ष थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही सोचकर आयतुल्लाह खामेनेई को मरवाया कि ईरान के लोग उनसे नफरत करते हैं, और उन्होंने कहा कि आम लोग रिजीम चेंज चाहते हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो खामेनेई को मरवा देंगे तो वो ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महान बन जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज महान आयतुल्लाह खामेनेई दिख रहे हैं। उनकी मौत के बाद दुनिया भर के नेता, सरकारें उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कम से कम महान बनने वाली लड़ाई में तो राष्ट्रपति ट्रंप की निश्चित हार हुई है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे की इन तस्वीरों को दिखाकर ये कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा भीड़ नहीं आई। अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता भी है क्योंकि इनमें ज्यादा लोग नजर नहीं आते, जितने लोग दिखते हैं उतनी भीड़ तो कई देशों में दिख जाती है। लेकिन यहां भी एक समझिए फेर है। तेहरान के जिन इलाकों से अंतिम यात्रा निकाली गई, वहां की तस्वीरों को कुछ लोग जानबूझकर नहीं दिखा रहे, जबकि इन तस्वीरों में लोगों को विशाल हुजूम नजर आता है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में कम भीड़ आई। हालांकि यहां एक सवाल यह जरूर है कि क्या इस विशाल भीड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साल 1989 में
जब इस्लामिक ईरान के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई थी, तब उनके अंतिम जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और तब उस भीड़ ने रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर है, जो आज रात 9 बजे तक अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए। हम आपको इस बुलेटिन के शुरुआत तक आई खबर के हिसाब से ही ये जानकारी दे रहे हैं। अगर आगे मुश्तबा खामनेई आते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आयतुल्लाह खामनेई के 3 बेटे मौजूद रहे, जिनमें मुस्तफा खामनेई, मेसम खामनेई और मसूद खामनेई का नाम शामिल है। लेकिन मुश्तबा खामनेई इसमें नजर नहीं आए। ये भी तब हुआ जब इस जनाजे में सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई का

खैर, यह इस तस्वीर को भी जरूर देखा जाना चाहिए। हमारे देश में सोशल मीडिया पर खूब अभियान चला कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान क्यों नहीं गए। कमाल तो तब हो गया जब कुछ लोगों ने यह दलील दी कि प्रधानमंत्री मोदी इसराइल को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए ईरान नहीं जा रहे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि प्रधानमंत्री मोदी को आज से 11 तारीख तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, जिसके कारण उनका ईरान जाना संभव नहीं था और ये पहले से तय कार्यक्रम था। आज ही प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां आप इस बात को भी याद रखिएगा कि ईरान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भी आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने राजदूत को इस कार्यक्रम में भेजा और खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ईरान नहीं गए, लेकिन वहां कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा। और सोचिए, इससे पता चलता है कि हमारे देश में अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कैसे करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, ये काम भी धर्म के नाम पर होता है। ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई किस चीज की है? धर्म की लड़ाई है। यानी ये लोग अपनी बात करते हैं, सच क्या है वो प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे से हम आपको बताना चाहते हैं। इस देश के बारे में भी बताएंगे, इस देश की मुस्लिम आबादी के बारे में भी बताएंगे और कैसे वजह धर्म नहीं है। यहां ये भी देखिए कि आज जब प्रधानमंत्री का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तब उसी समय इंडोनेशिया की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया, यानी सुरक्षा के लिए उड़ान भरी साथ में। ऐसा सम्मान देने और मजबूत संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। और यहां यह भी मत भूलिएगा कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। जी हां, जिस इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान कर रहा है। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ये बार बार फैलाता है कि मुसलमानों को मोदी से खतरा है। देखिए,

प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो सोशल मीडिया पर एक वर्ग बहुत एक्टिव दिखता है। कहता क्या है? कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश दौरों पर जाने की जरूरत क्या है। जरा ये लोग इस खबर को देखें। खबर है कि इस विदेश दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील हो सकती है, यानी हम जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं उसे इंडोनेशिया हमसे खरीद सकता है। ये जानकारी हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने दी है। इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस का पूरा पैकेज खरीदना चाहता है, जिसमें मिसाइल्स के साथ मोबाइल लॉन्चर्स, रडार, मेंटेनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट पैकेज शामिल होगा। इससे पहले हमने फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर 375 मिलियन डॉलर की डील की थी और अब ऐसे ही डील इंडोनेशिया, वियतनाम, इन दोनों देशों के साथ भी हो सकती है। और ये दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आते हैं, जहां चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसे आप भारत की टिट फॉर टैट रणनीति भी कह सकते हैं। देखिए, चाइना ने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे सभी पड़ोसी जो देश हैं उनको अपने हथियार बेचे। इनमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने 80% जो हथियार है वो किससे खरीदता है? चाइना से। बांग्लादेश किससे खरीदता है? 72% हथियार चाइना से खरीदता है। म्यांमार जैसा देश, वो भी 26% हथियार चाइना से ही खरीदता है। लेकिन अब भारत भी यही कर रहा है। चाइना ने हमारे पड़ोसी देशों को अपने हथियार बेचे, तो अब हम भी चाइना के आसपास मौजूद देशों को अपने हथियार बेच रहे हैं और इसीलिए इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि चढ़ावा चोरी में घिरा राम मंदिर का ट्रस्ट क्या खोया हुआ ट्रस्ट वापस लौटा सकेगा।

0: और क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा? और क्या राम मंदिर का जो ये ट्रस्ट है उसको लेकर पिछले एक महीने से चल रहा कोहराम आज के बाद थमने लगेगा? आज ये सारे सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद उठे हैं। चढ़ावा चोरी कांड के बाद मंदिर ट्रस्ट की पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। पहला, ट्रस्ट महासचिव पद पर रहे चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। दूसरा, महासचिव पद के लिए अंतरिम जिम्मेदारी दलित समुदाय से आने वाले उन कृष्ण मोहन जी को दी गई जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं कृष्ण मोहन जी और उनकी नियुक्ति राम मंदिर शिला पूजन की ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद सितंबर 2025 में ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर हुई थी। हरदोई के वो रहने वाले हैं, भारत वन सेवा में काम कर चुके हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। आज का तीसरा फैसला, ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमिटी गठित की गई है। समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े नाम का नाम शामिल किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को अब होगी और 22 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, इन सब पर फैसला हो सकता है। अब मैं राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक के संदेशों और संकेतों को आपको जरा समझाना चाहती हूँ। तो चढ़ावा चोरी कांड में कटघरे में आए चंपत राय और अनिल मिश्रा आज बैठक में शामिल ही नहीं हुए और हमारे रिपोर्टर अभिषेक के हवाले से यह खबर आई कि जहां ये बैठक चल रही थी उसके बाहर खूब आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी काफी गहमा गहमी हुई और काफी नाराजगी जाहिर की गई। अब दोनों के बैठक में शामिल नहीं होने का संकेत यह था कि इन पर लगे लांछन से ट्रस्ट दूरी बरत रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, चंपत राय नहीं दिखे, लेकिन बैठक के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस बीएचपी से जुड़े इन दोनों व्यक्तियों को अकेले मझधार में छोड़ने का जोखिम लेने को ट्रस्ट तैयार नहीं है। अब वो कैसे? तो ये जो कोषाध्यक्ष है राम मंदिर के, गोविंद देवगिरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अयोध्या में कम पुणे में ही ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने आरोप लगने पर कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे हस्ताक्षर से कुछ नहीं होता है, वही कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खास तौर पर मंदिर आंदोलन और अयोध्या से चंपत राय के जुड़ाव के लिए उनका जिक्र किया। गोविंद देवगिरी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें चंपत राय की नियत पर कोई संदेह नहीं है, उन्हें भोला तक बता रहे हैं। सुनिए,
1: ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना, ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात।
0: मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद उनका बचाव किया गया और उनका बचाव ये साफ बता रहा है कि कम से कम उन पर कानूनी आंच शायद ही अभी आए। मंदिर ट्रस्ट से आज दान चोरी मसले पर हो रही राजनीति पर पलटवार करने की कोशिश भी की। मंदिर ट्रस्ट चांदी की काकभुशुंडी जी, सोने की रामचरितमानस और चांदी की हार समेत उन 5 बहुमूल्य दान वस्तुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आया था जिनकी चोरी का दावा किया गया था। चांदी की जिन चीजों को भारत सरकार के टकसाल में गलाकर उनकी छड़े बनाई गई हैं, उसका बुरा प्योरा प्रमाण पत्र के साथ मौजूद है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दावा हुआ है कि दान के रूप में 2,926 वस्तुएं मिली हैं, जो दान की गई तारीख और पूरे ब्यौरे के साथ मौजूद है। दान देने वाला व्यक्ति खुद अयोध्या जाकर इसकी पुष्टि कर सकता है। इसी के साथ मंदिर ट्रस्ट ने यह आरोप भी मढ़ दिया कि कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण मामले को रामलला मंदिर, मंदिर ट्रस्ट और हिंदू आस्था को कमजोर करने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट आज की बैठक से चढ़ावा चोरी कांड से उबरने की कोशिश करता ही दिखाई दिया, तो वही यह संयोग है या कुछ और। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ अशोक सिंघल की प्रतिमा का भी आज लोकार्पण किया। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम का मतलब राष्ट्र है और अयोध्या में राम का मंदिर अशोक सिंघल के संकल्प का नतीजा।
2: सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदे अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सर्वे अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है।
0: तो आज हम एक और मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा है मंदिरों के प्रबंधन में अपने खास, अपने चहेते लोगों को तैनात करना। और ये मुद्दा पहले राम मंदिर में उठा, हमने आपको सबरीमाला के मंदिर में भी सोना चोरी की पूरी खबर दिखाई थी, जिस पर बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। लेकिन सबरीमाला मंदिर हो तो, राम मंदिर हो तो, और अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर जहां पर चोरी के यही आरोप लग रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में चोरी का यह आरोप पहली बार 2 जुलाई को लगा। इसलिए लगा क्योंकि इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो मंदिर का दान पत्र होता है उससे पैसे निकालकर उनमें गड़बड़ी की जा रही है। अब यहां आप कहेंगे कि जब चोरी का वीडियो ही मिल गया तो चोरी तो आप साबित हो गई। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहां एक पेच फंस गया। जो मंदिर समिति है उसने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की, वो इसको संदिग्ध मान रहा है। वीडियो को संदिग्ध मान लिया गया और उसके आधार पर जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये वीडियो असली है या वीडियो नकली है। और क्योंकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई इसलिए अभी चोरी का ये मामला साबित नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा विवाद यह है कि मंदिर में जो 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी को बदल दिया गया है। इससे यह सवाल उठता है कि जिन कैमरों में चोरी पकड़ी जानी थी क्या वही कैमरे बदल दिए गए। ये सवाल मंदिर समिति से भी पूछा गया, जिस पर यह सफाई दी गई कि एक श्रद्धालु ने बद्रीनाथ मंदिर को 32 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे दान में दिए थे, जिसके बाद पुराने कैमरों को हटाकर नए कैमरे लगा दिए गए। लेकिन सोचने वाली बात है, 1 जुलाई को कैमरे बदले गए, इसके पहले अगले ही दिन 2 जुलाई को मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा। इससे ऐसा लगता है कि शायद मंदिर में कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही, और ऐसा तो नहीं है कि आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएं कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश है। देखिए, उत्तराखंड में भैरव सेना नाम का एक संगठन है जो खुद को देवभूमि की संस्कृति, धार्मिक पहचान की रक्षा करने वाला समूह बताता है। अब इस संगठन ने खुद मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह आरोप लगाया है कि बद्रीनाथ मंदिर का चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, और यह भी दावा है कि इस चोरी में मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सचिव खुद शामिल है। यह आरोप बद्रीनाथ धाम में कई लोग लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वो उनका निजी सचिव नहीं है बल्कि मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है, और इस चोरी में उनका नाम घसीटकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब ये दलील अपनी जगह है, लेकिन मंदिर समिति पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर है। इतने गंभीर है कि इन्हें खारिज करने से चोरी का ये दाग हटेगा नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे बदले गए, जब चोरी का वीडियो वायरल हुआ और उसके आधार पर यह मांग की गई कि मंदिर समिति को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच होनी चाहिए, तो अब मंदिर समिति की तरफ से अलग ही बात कही जा रही है। कहा गया कि उसने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देख लिया है, लेकिन इनसे उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि चोरी हुई या चोरी नहीं हुई, यानी मंदिर समिति को वीडियो देखने से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो सच कैसे सामने आएगा। और अब जबकि इस पर सवाल उठ रहे हैं और ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, तब मंदिर समिति ने 4 सदस्यों की एक जांच टीम बनाई है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्यों मंदिर का चढ़ावा चोरी हो सकता है और ये आरोप सही तो नहीं है। शक का पहला कारण है हुंडी, जिसे दान पत्र कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर हुंडी की सील मजबूत ना हो तो उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। शक का दूसरा कारण है ट्रांसपोर्ट, यानी जब हुंडी से चढ़ावे का पैसा निकालकर काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता है तब भी यह चोरी संभव है। यह भी संभव है कि चढ़ावे की चोरी गिनती के वक्त हुई। ठीक वैसी ही बातें आ रही है जो राम मंदिर में आई थी। ठीक उसी तरह जैसे हमने आपको बताया मंदिर के मुद्दे में, राम मंदिर के मुद्दे में अयोध्या में यही सब आरोप लगे। आरोप तो ये भी लग रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर में जो चढ़ावा आया उसके रिकॉर्ड में ही हेर फेर करके चोरी की गई। नहीं, चढ़ावा ज्यादा आया लेकिन लिखा कम गया, बाकी पैसे पार कर दिए गए। और पांचवा आरोप ऑडिट को लेकर लग रहा है जिससे शक है कि ये चोरी अब तक पकड़ी नहीं की गई है। अब ये देखिए कि इतने बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावे की ये चोरी हो कैसे जा रही है, हमारी सरकारों को इसमें क्या करना चाहिए। अगर बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो इसका प्रबंधन बद्री केदार टेम्पल कमिटी द्वारा किया जाता है। ये कमिटी इतनी विशाल है कि इसके अधीन सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर नहीं आता, जो केदारनाथ मंदिर है उनके चढ़ावे की निगरानी और प्रबंधन भी यही समिति करती है। और सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर ही नहीं, उत्तराखंड के 45 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन इसी समिति के पास है। और इसके मुताबिक इन 45 से ज्यादा मंदिरों में हर साल 80 से 85 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान आता है। राम मंदिर को मिले 153 करोड़ रुपए के चढ़ावे और दान से कम है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ज्यादा। अगर ये चढ़ावा चोरी साबित हो गया तो आस्था कुछ ठेस और पहुंचेगी। पिछले साल 51 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आए थे, 17,68,000 लोगों ने श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए, 16,60,000 लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए। और यहां उत्तराखंड की सरकार ये नहीं कह सकती कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री ही करते हैं। और उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इससे सरकारों को भी ये देखना होगा कि उनके बनाए सिस्टम में ये चोरी कैसे हो रही है, कितने गंभीर है ये मुद्दे और कितने मंदिर ऐसे हैं जहां ये हो रहा है। राम मंदिर के बारे में तो आप सब सुन ही रहे हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, 4 से 5 किलो सोना चुरा लिया गया। हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई और अब देखिए बद्रीनाथ मंदिर का नाम आ रहा है। बड़ी बात तो यही है ना कि ऐसे ज्यादातर मंदिरों के संचालन की अध्यक्षता अलग अलग जो लोगों के साथ की जा रही है वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। और यही आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है कि वीएचपी हो तो आरएसएस हो तो ऐसे संगठनों से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात सबरीमाला पर सही नहीं बैठती, जहां पर जो दो आरोपी बताए गए हैं वो सीपीएम से जुड़े हुए बताए गए हैं, वाम दलों से जुड़े हुए बताए गए हैं। और ये तो खुद कोर्ट ने किया है। बहरहाल राम मंदिर के मामले में चंपत राय और बाकी सदस्य संघ से हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के इस मामले में भी मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी संघ से जुड़े हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी वो रह चुके हैं। देखिए

0: जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
1: बैठक करके एक लेटर जो है बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह नागर जी को हमने भेजा है, जिसमें हमने कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि यदि यदि सिर्फ कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन को सड़कों पर उतरकर आकर प्रदर्शन करना पड़ेगा।
2: अब जानते हैं जिन मंदिरों के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा और जिन मंदिरों में चढ़ावा आज भी सुरक्षित है उनमें बड़ा अंतर क्या है। आप सोच रहे होंगे कि वहां सुरक्षा ज्यादा होगी, तो ये एक बात तो है कि भाई जहां पर ज्यादा पारदर्शिता है, जहां पर सुरक्षा ज्यादा है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये कारण है मंदिर के प्रबंधन में विविधता ना होना, यानी राजनीतिक

0: यानी राजनीतिक और अलग अलग संगठनों की पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों पर मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सौंप देना और ये लोग लेना, ये सोच लेना कि भाई अब कोई बेईमानी नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी चूक है या कहिए भूल साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन मंदिरों में चढ़ावा सुरक्षित रहता है वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हवा हवाई बात नहीं कर रहे, आप इस उदाहरण को देख लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि क्यों मंदिर में चहेते हटाओ चढ़ावा बचाओ की मुहिम जरूरी है। इनमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, पूरे देश में सबसे ज्यादा चढ़ावा, सबसे ज्यादा दान इन्हीं मंदिर को मिलता है, लेकिन इस मंदिर का प्रबंधन सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं है, इसकी जगह यहां सबसे मजबूत संस्थागत ढांचा काम करता है। मंदिर प्रशासन का बोर्ड होता है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त लोग शामिल होते हैं, फिर एक फाइनेंस स्टाफ अलग से होता है, सरकारी और बैंक कर्मचारी चढ़ावे की गिनती के लिए अलग अलग से मौजूद होते हैं और रोटेशन पर काम करना होता है। सबसे बड़ी बात, यानी कोई भी वहां पर गोटियां नहीं बैठा सकता, यह सुनिश्चित करना है। यानी ऐसा नहीं होता कि कुछ सरकारी कर्मचारी या कुछ बैंक कर्मचारी हर बार चढ़ावे की गिनती के लिए आए, इन्हें निर्धारित समय पर बदलना होता है और इनकी भी कड़ी निगरानी की जाती है। यानी आंख बंद करके किसी चहेते पर भरोसा नहीं करना है। फिर आता है उड़ीसा का श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। जब इस मंदिर की दान पेटियों को खोला जाता है तो उस दौरान मंदिर के प्रशासन, सरकारी अधिकारी, एक गजेटेड ऑफिसर, एक गवाह सब मौजूद रहता है और दान पेटियों को खोलने से पहले और बाद में सील किया जाता है। तीसरा बड़ा मंदिर जम्मू का श्री वैष्णो देवी मंदिर है। यहां हुंडियों यानी दान पेटियों को तभी खोला जाता है जब हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी है, प्रबंधक है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सब मौजूद होते हैं। चढ़ावे का पैसा बैंक तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होता है और चढ़ावे तक जिन लोगों की पहुंच होती है वो बदलते रहते हैं, उनकी निगरानी होती है, उनको मॉनिटर किया जाता है। और इसके बाद आता है मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, जहां हर गुरुवार को दान पेटियों को खोला जाता है। यहां दान पेटियों को खोलते वक्त जो ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्टी, बैंक्स के प्रतिनिधि, ऑडिटर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब मौजूद होते हैं और हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई सीसीटीवी कैमरों के आगे खड़ा हो जाए, चढ़ावे की चोरी कर ली जाए, इस तरह से नहीं हो सकता है। अगर किसी कारण से सीसीटीवी कैमरों में चढ़ावे की गिनती साफ साफ दिख नहीं रही होती हो तो चढ़ावे की गिनती साफ रोक दी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग होती है सीसीटीवी से जितनी देर गिनती चलती है, चढ़ावा फिर से सील कर दिया जाता है अगर कोई भी फुटेज में प्रॉब्लम हो, और जब सब कुछ सही हो जाए, कैमरा ठीक काम करे, बराबर निगरानी हो, तब चढ़ावे की गिनती होती है। लेकिन जिन मंदिरों में यह व्यवस्था नहीं है वहां इसके कारण चढ़ावे की चोरी आसान हो जाती है। और भगवान राम मंदिर में भी हमने यही देखा, बद्रीनाथ में आरोप लग रहे हैं, सबरीमाला में अलग जांच चल रही है। ये भी तो सोचे कि हमारे देश में ये लोग इन मंदिरों में बेईमानी कर कैसे लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए, जो देव स्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिए विख्यात, वहां धन प्राप्ति के लिए आरोप लग रहे हैं। आरोपों के मुताबिक भगवान बद्री के चरणों का चढ़ावा चुरा लिया, और यह भी तब हुआ 5 में से 2 दान पेटियां भगवान बद्री के गर्भगृह में लगी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों में 12 और 13 वर्ष की मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या की 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। इन वारदातों ने एक समाज के तौर पर सबकी नजर झुका दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक 12 साल की बच्ची को गैंग रेप के बाद मार दिया गया। इस वारदात ने लोगों को इतना भड़काया कि उन्होंने एक आरोपी को खुद ढूंढ निकाला और फिर बीच सड़क पर पीट पीट कर मार डाला। ये दोनों ही घटनाएं न सिर्फ समाज के तौर पर हमारे पतन को दिखाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी दिखाती हैं कि पुलिस प्रशासन सरकार खौफ खत्म हो चुका है, कानून का एक बाल नहीं है, और इसी वजह से इन बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म हो रहा है। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक आरोपी पीड़ित बच्ची का पीछा करते हुए दिखा। इसी सीसीटीवी में दिखा कि पीड़ित बच्ची उसी व्यक्ति के साथ कहीं जाती नजर आती है। 12 साल की इस लड़की, ये जो बच्ची थी, उसका शव अगले दिन एक तालाब में मिला। शनिवार शाम को ये बच्ची अपने एक दोस्त का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रात में ही बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। खोजबीन के दौरान उन्हें पता चला कि 4 लोगों ने उसे किडनैप किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस केस में गंभीरता नहीं दिखाई। शनिवार रात को ही बच्ची की तलाश कर रहे लोगों ने खुद ही इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। कुछ लोगों ने आदमी को पहचान लिया, बच्ची को अपने साथ ले गया था जो व्यक्ति, और फिर रविवार सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में लोग उस आरोपी के घर पहुंचे। गुस्से से लोग तप रहे थे। उस आरोपी ने तुरंत उस तालाब के बारे में बताया जहां पीड़ित बच्ची को फेंका गया था। इसी आरोपी ने बताया कि वारदात में 4 लोग शामिल थे। जिस आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया था, लोगों ने उसे बुरी तरह मारा, लेकिन पुलिस ने फिर उसे बचाया किसी तरह। पुलिस इंद्रजीत नाम के एक अन्य आरोपी को नहीं बचा पाई। भीड़ ने उसे पहचान लिया और पीट पीट कर मार डाला। अब 6 सदस्यों वाली SIT जो है वो अब जांच कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। सुनिए,
1: 4 आदमी के खिलाफ FIR हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए कहूंगा। उनका गाड़ी जिनका पिताजी के साथ काली बात हुआ, इसमें कोई कुछ ए नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है, और गार्डियन का साथ शायद मेरा काल मुलाकात भी हो जाएगा, वो जो जो बोलेगा करूंगा।
0: अभी कुछ दिन पहले, अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी इसी तरह की वारदात सामने आई, जिसमें 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची को ई रिक्शा चलाने वाले ने धोखे से एक होटल संचालक को बेच दिया। अब इस होटल वाले ने मासूम बच्ची को सेक्स रैकेट के दलदल में ढकेल दिया। 5 दिनों तक ये बच्ची सेक्स रैकेट चलाने वालों के चंगुल में फंसी रही और 32 आरोपियों ने इसे अपना शिकार बनाया। गैंगरेप की इस घटना ने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस केस में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें होटल मालिक, मैनेजर, ई रिक्शा चालक, कुछ अन्य लोग शामिल हैं। लोगों का गुस्सा लेकिन देखिए, और ये गुस्सा देखकर स्थानीय प्रशासन ने उन होटल्स पर भी बुलडोजर चलवा दिए हैं जिनमें ये वारदात अंजाम दी गई थी। बरुईपुर और श्रीगंगानगर की ये दोनों वारदात नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों का स्याह सच है। पिछले कुछ वर्षों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, सरकार सबके इकबाल पर यह इतना बड़ा सवाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के करीब 1,62,000 मामले दर्ज हुए थे। साल 2023 में बढ़कर करीब 1,77,000 हुए, फिर 2024 में 6% बढ़कर 1,87,000 को पार कर गए। साल 2024 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि नाबालिगों के खिलाफ हर दिन 514 यानी हर घंटे 21 अपराध हो रहे हैं। ये दुखद भी है और उतना ही ज्यादा डरावनी बात भी है। बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनमें 40% मामले किडनैपिंग के हैं, करीब 37% मामले रेप के हैं, यौन शोषण के हैं। ये रिपोर्ट्स बताती है कि नाबालिगों के खिलाफ रेप और यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। सोचिए, ये तब है जब हमारे देश में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में फांसी तक का प्रावधान है, पॉक्सो। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत कार्रवाई होती है, पॉक्सो कहा जाता है। साल 2019 में इस कानून को ज्यादा सख्त बनाया गया, संशोधन करके नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में फांसी तक का प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन फिर भी इन अपराधियों के मन में खौफ नहीं, बावजूद इसके नाबालिगों के खिलाफ संख्या बढ़ी है और ये चिंता का विषय है। दिल्ली NCR में मॉनसून ने इस बार अभी तक केवल टीजर ही दिखाया है, लेकिन मुंबई में पूरी फिल्म रिलीज हो गई है और इस फिल्म का रिस्पॉन्स ऐसा है कि त्राहिमाम है। मुंबई शहर का शायद ही ऐसा कोई भी इलाका बचा होगा जहां जल भराव की स्थिति ना बनी हो। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया और बताया है कि अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार भी देखिए 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले 24 घंटों के अंदर ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में 200 से 300 mm बारिश हुई। पिछले 5 दिनों के अंदर मुंबई में 700 मिलीमीटर बारिश हो गई है, 700 से 800 समझिए। जुलाई महीने में होने वाली कुल औसतन जो बारिश है उसका 80% बारिश हो चुका। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉनसून में आमतौर पर 2 से 6 जुलाई के बीच 350 mm बारिश होती है, तो आप कल्पना कीजिए 700 से 800 डबल बारिश। पिछले 26 वर्षों में यानी साल 2000 के बाद से मॉनसून में 1 जून से 6 जुलाई के बीच इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस बार 1 जून से 6 जुलाई के बीच 1240 मिलीमीटर बारिश हुई है। अपने आप में ये एक नया रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड तोड़ बारिश का असर नजर भी आ रहा है मुंबई में। देखिए भीषण बारिश का असर समझाने के लिए ये तस्वीरें देखिए। अंधेरी हो, वसई विरार, नाला सुपारा, गोरेगांव, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश का बुरा असर दिख रहा है। और इसके अलावा समंदर में हाई टाइड भी है तो लोगों को समंदर किनारे जाने से रोका जा रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बना ये बहुचर्चित मिसिंग लिंक अपनी पहली बारिश में भी इसको झेल नहीं पाया है। पहली बारिश को उद्घाटन के तीसरे महीने में ही इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी बारिश की वजह से मिसिंग लिंक टनल के पास लैंडस्लाइड हो गया, पानी का झरना फूट पड़ा है। इसकी वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बाधित हो गया। यह हैरानी की बात है कि इस मिसिंग लिंक को शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना बताया गया था। बारिश की वजह से अब तक करीब 17 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, 31 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है, 10 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को छोटा किया गया है। बारिश इतनी ज्यादा है, भारी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, 365 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। तो इससे आप गंभीरता समझ सकते हैं इस बार की बारिश का। मुंबई के मशहूर डिब्बा वालों ने भी एक दिन के लिए अपनी सर्विस बंद कर दी। स्कूल हो, कॉलेज हो, छुट्टियां कर दी गई हैं। ऑफिस जाने वालों को भी वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि जितना हो सके वो घर में रहे, बाहर ना जाए। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी अगले दो दिन मुंबई वालों को और संभल कर बिताने होंगे।

0: और हर साल की तरह इस साल भी मुंबई डूब गई। हर साल की तरह इस साल भी सारे दावे धरे के धरे रहे।
1: भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से मुंबई और पुणे के बीच जो रेल यातायात है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई है।
2: इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचार देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Right field, and it will...
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: मैं करता हूँ ना,
8: मैं करूँगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
10: फेना पावर वॉश, अब है और शक्तिशाली।
11: गहरी सफाई,
10: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
11: गहरी खुशबू
10: और प्यार भरी भी।
11: कैसे?
10: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
12: इसीलिए
13: ही लेना। We are over, Jimmy.
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: बीजेपी के अध्यक्ष लखनऊ में मलिहाबादी आम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे वो लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए, मगर हल्की फुल्की इन तस्वीरों के पीछे बीजेपी का खास मकसद है। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं 27 के समर को साधने के लिए। नितिन नवीन ने पहले बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और 27 में जीत का भरोसा जताया।
4: और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
3: इसके बाद नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि सहयोगियों को सीटों के हिसाब से कैसे साधा जाए। ये अलग बात है कि बीजेपी के एक सहयोगी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
5: कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें, इस पे चर्चा। अभी सीट शेयरिंग नहीं, आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पे वही आगे भी।
3: लेकिन ओपी राजभर के मन में क्या है, वो बार बार कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार उन्हें 25 सीटें चाहिए। उनके बयान से ये लग भी रहा है।
6: लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा।
3: ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 5 जिलों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब उन्हें एसपी ने 17 सीटें दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजभर ने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि इस बार उनकी बार्गेनिंग कितनी काम आएगी और बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर मनाएगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और ज्ञान का भ्रम ऐसा है कि 2 मिनट की क्लिप देखकर लोग उन किताबों पर बहस कर रहे हैं जिन्हें लिखने में वर्षों लगे। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: दर कलंक कांड के बाद चंपत राय की छुट्टी। बैठक के बाद गोविंद गिरी बोले, हम सब बहुत बुरी तरह से आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती। कृष्ण मोहन बने अंतरिम महासचिव। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज करने की पूरी जानकारी। अयोध्या में चोरी पर जारी है राजनीतिक जोरा जोरी। अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार। योगी बोले, मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें श्री राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता का कैंडल मार्च। 12 वर्ष की बच्ची के रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवाई। जकार्ता में भव्य स्वागत। रक्षा, आर्थिक समेत कई महत्वपूर्ण समझौते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी करेंगे पीएम दौरा।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और दस्तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सारे डिटेल्स बताए गए हैं। पूरी रिपोर्ट है जिसमें मामले से जुड़ा पूरा ब्यौरा विस्तार से दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में जांच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाक्रम को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में जांच की दिशा, प्रमुख निष्कर्ष और संबंधित जानकारियों का समग्र उल्लेख किया गया है। मतलब यह हुआ कि ये रिपोर्ट में एक एक चीज दर्ज कर दी गई है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लखनऊ आपको लिए चलते हैं। समर्थ, इस विस्तृत प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण है, किस पर सवाल खड़े करता है? समर्थ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता से हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। और जब नोटों की गिनती होती है तो वहां पर नोट छिपाते हुए नजर आए हैं। गबन के 70 सबूत जो कि चोरी की है, उसके 70 सबूत एसआईटी की रिपोर्ट में मिल गए हैं। और एक बार फिर से हम समर्थ से बात करने का प्रयास करते हैं। समर्थ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: बिल्कुल सही, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हमारे पास एसआईटी की वो प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें कई राज खुलते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अनिल मिश्रा, जो कि ट्रस्ट के बहुत अहम मेंबर थे। कहा जाता था कि ट्रस्ट में चंपक राज अनिल मिश्रा के बिना पहिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनका रोल पूरी तरीके से इस रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कई ऐसे मसले थे जिनको समय रहते सुलझाया जा सकता था। कई उनकी शिकायतें थी जिन पर अनिल मिश्रा अगर चाहते तो समय रहते हरकत कर सकते थे, लेकिन वैसा कोई भी काम उनके द्वारा फिलहाल नहीं किया गया है। तो अनिल मिश्रा का जो नाम है वो पूरी रिपोर्ट में सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और संदिग्ध पर निकल कर आ रही है, सीसीटीवी फुटेज एसआईटी की टीम अयोध्या में खंगाले हैं तो ये पाया गया कितने आरोपी हैं। लक्षित मिश्रा, अविनाश वगैरह तमाम जो आरोपी हैं उनका संलिप्तता पाई गई है कि वो नोटों की गड्डी लेकर एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, कई जगह वो नोटों को छुपा रहे हैं, वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो सारे सीसीटीवी फुटेज एसआईटी के पास तक मौजूद है।
0: अच्छा, समर्थ जी, सही समर्थ, अनिल मिश्रा का नाम तो आपने लिया, क्या कोई ऐसा और बड़ा नाम है जो एसआईटी के इस प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया हो?
1: प्रारंभिक रिपोर्ट में सही फिलहाल अनिल मिश्रा सबसे बड़ा नाम का मेंबर से है, जिनके फॉर्म और शिथिलता दिखाने का आरोप लगा, यानी कि उनको फ्रिस्किंग की या फिर कहीं घेरा फेरी अगर हो रही है उसकी सूचना थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को हरकत में नहीं आए, उसके बाद भी उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा जिन नामों का इसमें जो उल्लेख है वो कोई नाम नवलेश है, आपके तमाम जो आरोपी इस वक्त जो है जेल में है उनके नामों का उल्लेखनीय वर्जन इसमें किया गया है। लेकिन बड़े नामों की अगर आप बात करेंगे तो अनिल मिश्रा के नाम की बात यहाँ पर है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिथिलता बरती गई है, यानी कि अगर शिथिलता नहीं बरती गई थी तो शिकायतें हेर से किया।
0: तो अनिल मिश्रा पर क्या आरोप है समर्थ रिपोर्ट में?
1: देखिए, अनिल मिश्रा में अगर आपको आसान भाषा में दर्शकों के लिए अपने आपको समझा दूं यहाँ पर, तो मेरे पास सबसे बहुत की कॉपी अनिल मिश्रा का वो रोल जो है वो लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ सहयोगियों के स्तर पर परिवेक्षित होता है, उनके संबंध में उत्तरदायित्व किस आधार पर निर्धारित होता है, उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी चीजों को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित उनकी तरफ से नहीं की गई है। ये बहुत अहम
0: ठीक है। अच्छा समर्थ, ये बताइए कि पूरी रिपोर्ट हम दिखा भी रहे हैं टीवी पर और वो आपके हाथ में भी इस समय है, इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें, हम पढ़ें, तो इसमें क्या हमें पता चलता है, कौन दोषी है कौन नहीं? क्या ये जो अभी तक पकड़े गए 8 जो जेल में है वही, या कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो अभी तक आपकी हमारी दृष्टि में नहीं था वो सामने आया है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि एसआईटी इस बात को मानती है कि ट्रस्ट के वरिष्ठ मेंबर रहे अनिल मिश्रा, जो तमाम बड़े राम मंदिर के जितने बड़े इवेंट वो उनमें शामिल रहे हैं, वो उनकी संलिप्तता इस मामले में दिखाई पड़ती है। शिथिलता की बात उसमें कही जा रही है, इस तरीके से जो है उनके पास जानकारी जब पहुंचती है, लेकिन इसमें और भी तमाम चीजें लिखी है।
0: ठीक है, क्या क्या क्या समर्थ आप ये कह सकते हैं कि एसआईटी की इस अंतरिम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये हुआ है, या कुछ खास नहीं मिला?
1: देखिए, जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, एसआईटी कॉपी का जितना वर्जन इस रिलीज में दिया गया है उसमें एक बात साफ है कि जो अनिल मिश्रा का रोल इसमें निकल कर आ रहा है वो सबसे ज्यादा अहम है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी बात की खुली रही है कि नकद जिस तरीके से बरामद हुआ है, उसके जो जितने आरोपी हैं किस तरीके से छुपा रहे हैं, ये तो बताया गया कि जो लोग थे संदिग्ध व्यक्ति थे उनका आना जाना काउंटिंग वाले एरिया में बहुत आराम से था, वो मोबाइल फोन से बकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। आखिर ये सारी चीजें किस तरीके से पॉसिबल थी, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा एसआईटी की इस रिपोर्ट में हुआ है।
0: समर्थ रिपोर्ट में कोई इस तरह की बात कि इतना चंदा चोरी हुआ है, इतना सोना चांदी गायब हुआ है, इतने गहने गायब हुए हैं, कुछ इस तरह की बातें?
1: ये सही अभी जितनी कॉपी मौजूद है हमारे पास, आभूषणों का बहुत जिक्र नहीं है, लेकिन इतना सही उसमें कहा गया है कि कैश का हेर फेर हुआ है, यानी कि जो आरोपियों के नाम भी आपने बता दूं जो इस रिपोर्ट में लिखे गए हैं, वो अगर मैं एक बार जल्दी से दर्शकों के लिए पढ़ दूं तो इन्होंने कुछ आरोपियों के नाम भी लिखे हैं जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा,
0: ये तो वही लोग हैं जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो जेल में हैं इस समय। समर्थ
1: बिल्कुल सर, ये वही नाम है जो इस वक्त जेल के अंदर है। और बड़ी बात ये है कि ये लिखा गया है कि बार बार फुटेज में चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों और कई नोटों को हटाते छिपाते ये लोग दिखाई देते हैं। इतना ही अनुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे।
0: समर्थ आप हमारे साथ रहिए, हम आपसे लगातार बात करेंगे। हमारे एक और संवाददाता आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आशीष, आपने भी एसआईटी की रिपोर्ट देखी, समर्थ से भी हम इसी पर बात कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट के सामने आई?
2: देखिए सही, सबसे बड़ी जो बात इस रिपोर्ट में है, अगर तो बात के चलिए कि फुटेज जो मिली है, उन फुटेज में ये लिखा गया कि कैश रूम के कर्मचारी करेंसी नोटों की गड्डियों को खोल कर पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय नोटों को अपनी जेब में रख लेते थे। आप सोचिए कि या मोजों में रख लेते थे, यही नहीं निजी स्थानों पर भी छुपा देते थे, यानी कि पॉकेट, जेब, मोजे और निजी स्थान, वहां पर ये नोटों की गड्डियां छुपाई जाती थी और सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है उसको छेड़छाड़ की जाती थी और डिलीट भी की जाती थी। यानी पूरी तरीके से संदिग्ध, पूरी तरीके से इसमें एक साजिशन कार्य किया जा रहा था, तो मोडस ऑपरेंडी इनकी बिल्कुल।
0: आशीष, ये वही लोग हैं जो पहले से हम बात करते हुए आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा बड़ा नाम, क्या कोई ऐसा खुलासा जो चौंकाने वाला हो?
2: देखिए सबसे बड़ी बात है, नाम तो वही आठ लोगों के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जब पहले से ही ये करते थे कि काउंटिंग रूम में पहुंच जाते थे और निगरानी को वहां पर पहले से निगरानी रेकी कर लेते थे कि कौन कौन आएगा, तो कहीं
0: ना कहीं बहुत धन्यवाद आपका आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव, हमारे दोनों संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग की। आज चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई घंटे चली बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने प्रेस वार्ता की। गोविंद गिरी ने चंपत राय को लेकर जो कहा, चढ़ावे की चोरी को लेकर जो समझाया, आज उसे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई? क्या आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की स्वीकृति ही काफी है?

0: खोता बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान

0: लक्ष्मी नारायण। अप्रैल 2024 में पूर्व आईएएस ने सोने और चांदी की बनी रामचरितमानस दान में दी थी, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। आरोप यही था कि ट्रस्ट की तरफ से कोई रसीद नहीं दी गई और कुछ महीनों के बाद मंदिर परिसर से रामचरितमानस गायब हो गई। रामचरितमानस को लेकर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने रामचरितमानस के चोरी होने की आशंका जाहिर की थी। आरोपों पर जवाब देते हुए ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया है कि लक्ष्मी नारायण द्वारा भेंट की गई सोने से युक्त श्री रामचरितमानस पूरी तरह सुरक्षित है। पहले इसे उनकी इच्छा के अनुसार श्री रामलला के गर्भगृह के सामने रखा गया था, बाद में गुट मंडप स्थित आभूषण कोठरी में सुरक्षित रख दिया गया। इसका विवरण मंदिर के रजिस्टर में भी दर्ज है, वे किसी भी समय आकर इसे देख सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने कबूल किया है कि गर्भगृह से रामचरितमानस को हटाकर आभूषण कोठरी में रखा गया है। ट्रस्ट की सफाई के बाद पूर्व आईएएस ने क्या कहा, सुनिए।
1: भगवान तो कलयुग में नीचे उतर के तो आएंगे नहीं हमारे सामने, मैं तो अल्प मनुष्य हूँ, मगर मेरे को लग रहा है मीडिया के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सब उन्होंने जो काम वो चाह रहे थे वो मैं चाह रहा था कि रामचरितमानस का जो स्थान है वो प्राप्त हो, ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें, उसके प्रति अपने भक्ति प्रकट कर सकें, उस जगह रखवा दिया।
0: लक्ष्मी नारायण का सीधा आरोप है कि ट्रस्ट का प्रबंधन देखरेख करने वाले जिम्मेदार लगातार राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। ये तब है जब उन्होंने आरएसएस चीफ से शिकायत की थी।
1: सर, आज सवेरे मेरे पास जिस आरएसएस कार्यकर्ता मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास, वो उन्होंने ही भेजा है कि उसकी पूजा चालू हो गई है और वापिस उधर स्थापित हो चुकी है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे पूरे परिवार वाले खुश हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उसको रखवाया था, जिस आदर और जिस भावना के साथ रखवाया था, उसकी पूरी हो गई। क्योंकि नहीं तो पहले 5 महीने तक उसकी रोज पूजा होती रही, फिर उसको कहीं गार्ड रूम में डंप कर दिया गया, फिर हमारे बहुत गुहार हुए उनके मेरे तरफ से, उस सब का अनदेखा हुआ, किसी ने सुना नहीं। फिर मैं आरएसएस चीफ के पास गया, उन्होंने जरूर सुना, वो बड़े कृपाबंद होकर बोले कि मैं मदद करूंगा। मेरे को लग रहा शायद उनका भी सुना नहीं। तो आखिर भगवान हनुमान जी ने सबक सबको सिखा दिया जो इसके खिलाफ थे, और आज उन्होंने स्थापित कर दिया।
2: रामचरितमानस सुरक्षित है, लेकिन चढ़ावा चोरों के गैंग ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे की। चढ़ावे की चोरी करने वाले चोरों ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया है।

0: चढ़ावा चोरों की मंडली की खोली पूरी कुंडली, चढ़ावा चोरी की रकम से प्रेमिका को आईफोन, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी का मिला था संरक्षण, सीक्रेट कोर्ट से गिनती रूम में होती थी चोरी। आरोपियों से पूछताछ के दौरान चढ़ावा चोरी के सीक्रेट कोर्ट का खुलासा हुआ है। गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोर सिर्फ इशारे में करते थे बात, पेशेवर अपराधियों की तर्ज पर की चढ़ावे की चोरी। गिनती के वक्त आपस में कोई बातचीत नहीं करते, सभी आरोपी यही दिखाते कि एक दूसरे को नहीं जानते, किसी को शक न हो लिहाजा अनजान बनने का नाटक करते। चोरी की गई रकम को बाकायदा बाथरूम में छिपाया जाता, बाथरूम में रकम छिपाने के बाद इशारों में बात होती थी, इशारा मिलते ही दूसरा गुर्गा रकम को ठिकाने लगा देता। बीते दिन 5 आरोपियों से जेल के अंदर 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी अविनाश ने मकान खरीदने के साथ साथ गाड़ी खरीदी, यही नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख का आईफोन तक गिफ्ट में दिया था। सोचिए, अविनाश की सैलरी 15,000 रुपए महीने थी, लेकिन खर्च लाखों में था। अब जांच टीम आरोपियों के दिल में दफन राज को उगलवाने में जुटी है।
1: आरोपियों से जेल में की गई पूछताछ के बाद अब पुलिस टीमें बाहर निकल रही हैं। जो पुलिस टीम जो है वो अभी इस समय देखिए अयोध्या जेल से बाहर निकल चुकी हुई है। ये इस केस के जांच अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी या त्रिपाठी।

0: और ये निकल रहे हैं। लगभग करीब 11:30 बजे के लगभग ये अंदर गए थे और कई घंटे की पूछताछ के बाद जो 5 आरोपी इस पूरे मामले में जिनसे पूछताछ के लिए अर्जी दी गई थी उन 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद अब देखिए ये निकल रहे हैं और 4:30 बजने को है। लगभग 5-5.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब ये पुलिस टीम बाहर निकल रही है और 5-5.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब ये टीम बाहर निकली है उन 5 आरोपियों से जिसमें रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, मनीष यादव और उसके साथ साथ लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे शामिल थे। इन सभी आरोपियों से लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद अयोध्या जेल में पूछताछ की गई। अब ये अयोध्या पुलिस बाहर निकली है। कहा जा रहा है कि आज हुई इस पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अयोध्या पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी कोर्ट में अर्जी डालेगी।
1: जेल में हुई पूछताछ में जांच टीम को कई सुराग मिले हैं। आरोपियों ने कबूल किया है कि कुछ महीने पहले चढ़ावे की गिनती में चल रही हेराफेरी की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद पकड़े जाने का डर था लेकिन ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के दखल से बच गए थे। मतलब यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को चढ़ावे में हो रही चोरी के बारे में पता था। यही नहीं, पदाधिकारियों के करीबी होने के नाते उनसे कोई पूछताछ नहीं होती थी और न ही तलाशी। दूसरी तरफ आरोपी टिन्नू यादव ने चढ़ावा चोरी के लिए अनिल मिश्रा के सिर पर ठीकरा फोड़ा है। टिन्नू का कहना है कि भले ही दान पेटियों की चाबियां उसके पास थी लेकिन चढ़ावे की गिनती से लेकर जमा करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के कंधों पर थी। तो क्या चढ़ावा चोरी का पूरा सच तभी सामने आएगा जब अनिल मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसेगा?
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे खामनेई की विदाई, ट्रंप ने कैसे खिल्ली उड़ाई। अब देखते रहिए दस्तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: Accuje, the number one Korean skincare brand.
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Now in India.
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
12: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
13: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
12: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
13: अर्ज किया है
12: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
14: वाँ वाँ वाँ वाँ।
12: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
15: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
16: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
20: पीमाक, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
21: सरसों से सरसों। इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
24: वी आर ओवर जिमी।
25: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
26: हमने तब भी सवाल किया था।
27: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
26: हम आज भी सवाल करते हैं।
27: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
26: ऑपरेशन अग्नि,
27: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
26: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
28: In association with
29: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
30: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुमा कुरैशी।
31: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
32: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल अकल नहीं है। इसमें जो बहुत फेमस सीन है वो जो
33: परमिशन लेनी चाहिए ना,
32: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
34: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
32: आई, फिर अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: मानसून की पहले ही बारिश में माया नगरी मुंबई डूबने लगी है। शहर में जल निकासी के जितने दावे किए गए थे सब धराशायी हो गए। मुंबई में अगर कुछ है तो पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी। बीते 4 से 5 दिनों में मुंबई का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में आफत की भी दस्तक हुई है। शहर के VVIP इलाके भी डूबने लगे। अंधेरी ईस्ट हो, वेस्ट हो, विले पार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, कुर्ला, हर जगह एक सा हाल है। भारी बारिश की वजह से बीती रात मुंबई के मानखुर्द में एक इमारत गिर गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये 3 मंजिला चौल थी। रात में पानी इतना बरसा कि इमारत की बुनियाद ही खिसक गई और इसमें रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर। तस्वीर में देख सकते हैं ये वही ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा था जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे करीब जो है ढह गया। घटना के बाद से यहाँ पे जो है चीख पुकार मच गई थी। तुरंत ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और BMC के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
0: कहने को तो मुंबई भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे धनाढ्य नगर पालिका है। अरबों का बजट है। बारिश और उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हर साल खूब रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके मॉनसून में नागरिकों की जान जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आज मुंबई के सभी स्कूल बंद हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। अब जरा मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें भी देखिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही दिखेगा। यहाँ कोई नदी नहीं है, न ही बाढ़ आई है, ये बारिश का पानी है। मूसलाधार बरसात से पालघर पानी पानी हो गया है। वसई पूर्व, वसंत नगरी, मधुबन जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। ये नवी मुंबई का उरण इलाका है। जहाँ पानी में घर है या घर में पानी, ये बताना मुश्किल है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने नाले चोक कर दिए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया रहता है।
2: सांप तो बहुत आते हैं यहाँ पे। कल तो हम लोगों ने कम से कम 10-12 सांप मारे यहाँ पे ही। बहुत सांप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी को बाई चांस काट लिया तो हम लोग इतने पानी में से कहाँ पे लेके जाएंगे।
0: और अब पुणे की तस्वीरें भी देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे का भूसी बांध ओवरफ्लो कर रहा है। एहतियातन पर्यटकों के लिए बांध को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से लोनावला में झरने फूट पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे की ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेन के पहिए थम गए हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मलबा आ गया है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। एजाज खान, मुंबई आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
2: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब बात आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम को लेकर आई ट्रंप की धमकी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान जब ईरान की टॉप लीडरशिप एक साथ एक जगह जुटी थी उसी दौरान हमला करके हम सभी को मार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ट्रंप की बात माने तो ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर बातचीत चलती रही, इसीलिए उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमला नहीं किया। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप के दिमाग में शांति नहीं, युद्ध चल रहा है? आखिर जिस समय ईरान में लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई के लिए जुटे हैं, उस समय ट्रंप की इस धमकी का मतलब क्या है?
3: खामेनेई के जनाजे पर ट्रंप की नई धमकी, क्या अंतिम संस्कार के बाद फिर होगा युद्ध? क्या ट्रंप की हिट लिस्ट पर है मुश्तबा? क्या हमले के डर से सामने नहीं आए मुश्तबा? क्या 10 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है? ईरान का ऐलान महायुद्ध के लिए तैयार है। ये तस्वीरें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम की हैं। आज खामेनेई की अंतिम यात्रा तय रूट से आगे बढ़ रही है। अंतिम यात्रा में अपने नेता को विदाई देने के लिए लाखों लोग जुटे हैं, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मुश्तबा खामेनेई नजर नहीं आए। अली खामेनेई की अंतिम विदाई में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप नजर आई। राष्ट्रपति से लेकर तमाम मंत्री और सांसद दिखे, ईरानी सेना के टॉप कमांडर नजर आए। खामेनेई के जनाजे में तीन बेटे मुस्तफा, मीसम और मसूद दुआ करते नजर आए। हालांकि चौथे बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई वहां नहीं पहुंचे। तो क्या मुश्तबा अमेरिका या इजरायली हमले के डर से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए? क्या मुश्तबा के सामने नहीं आने के पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी? क्योंकि खामेनेई के अंतिम संस्कार में मौजूद टॉप लीडरशिप को लेकर ट्रंप ने यही कहा है कि वो चाहें तो एक हमले में सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला रहे लिहाजा अमेरिका ने हमला नहीं किया। सबसे पहले सुनिए अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है। दोनों पक्षों ने अंतिम संस्कार खत्म होने तक बातचीत में एक हफ्ते का ब्रेक लेने का फैसला किया है। इस बीच कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा। वो सब नहीं है वन शॉट जो उन सबको खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा। ईरान और अमेरिका ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए हैं, बावजूद इसके दोनों पक्षों में दो राउंड हमले हो चुके हैं। यानी शांति समझौता दोनों मुल्कों के बीच शांति की गारंटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर ट्रंप की धमकियों को लेकर ईरानी नागरिकों का आक्रोश अंतिम संस्कार में साफ नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर एक, ट्रंप का पुतला लटकाया गया। ये तस्वीरें खामेनेई के अंतिम संस्कार की हैं। आप देख सकते हैं कि फांसी के फंदे से झूलता ट्रंप का पुतला लटक रहा है। ईरान में ट्रंप को लेकर यही गुस्सा है। ईरानी बदला चाहते हैं, बदला ये कि ट्रंप को भी मौत के घाट उतारा जाए।
4: اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست، قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست.
3: تصویر نمبر دو، ترامپ اور نتنیاهو کا تابوت. اب پوسٹر کو دیکھیے، पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीरें हैं। पोस्टर के ऊपर लिखा है वांटेड, नीचे दो ताबूत हैं जिन पर लिखा हुआ है कमिंग सून, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर टारगेट का निशान है। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर ईरानी नागरिकों का यही आक्रोश अंतिम संस्कार में नजर आ रहा है। इस गुस्से की वजह है ट्रंप का ईरान विरोधी एजेंडा।
5: The Cold War left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave him a week off for a funeral because we're nice.
3: ट्रंप के यही तेवर ईरान के सीने में चुभ रहे हैं, क्योंकि ईरान के धैर्य को अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जीत समझ रहे हैं। ट्रंप ईरान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये तब है जब दोनों मुल्कों के बीच स्थायी समाधान के लिए वार्ता शुरू हो चुकी है।
5: Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our Actually, I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
3: खामिनई के अंतिम संस्कार से चंद दिन पहले ईरान पर हुए अमेरिकी हमले को भी उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा गया। तो क्या ट्रंप नहीं चाहते थे कि ईरानी नागरिकों के दिलों में बसी खामिनई की लोकप्रियता दुनिया देखे, क्योंकि ट्रंप ने अली खामिनई को किसी खलनायक की तरह दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ बताने को काफी है कि अली खामिनई ईरान के सबसे बड़े नायक थे। अंतिम संस्कार में मौजूद लाखों की भीड़ ने ट्रंप के नैरेटिव का दम निकाल दिया। नम आंखों से आज पूरा ईरान अपने नेता को विदाई दे रहा है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान ईरान के लोग ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और राष्ट्रपति को रोते हुए देखा गया। इस पर ट्रंप ने अंतिम संस्कार में ईरानियों के रोने पर तंज कसते हुए कहा, मैं ये देखकर हैरान हूं कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खामिनई से नफरत करते थे, हालांकि बहुत मुमकिन है कि ये नकली आंसू हों। ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए ईरानी दूतावास ने लिखा, ट्रंप इन बातों को नहीं समझते, क्योंकि ना तो आपके पास सभ्यता है, ना इतिहास और ना ही सम्मान है। आपने आयतुल्ला खामिनई को मार डाला, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ी जिसकी खुशबू आज हर जगह फैल गई। यही नहीं, ईरान के कट्टरपंथी अखबारों ने अली खामिनई की हत्या का बदला लेने का आह्वान किया, जिनमें से कुछ ने ट्रंप और नेतन्याहू को खामिनई की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए ईरानी सेना से बदला लेने को कहा है। हमें अपने नेता की हत्या करने वाले को क्यों नहीं मार देना चाहिए? मतलब यही है कि वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी सुलह का रास्ता निकलने की संभावना कम बची है। तो क्या अंतिम संस्कार के बाद 10 जुलाई को युद्ध फिर शुरू हो सकता है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ नए हमलों के संकेत दिए हैं। इजरायली मीडिया I-24 न्यूज में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प अभी भी विचाराधीन है, मतलब ईरान पर फिर हमला संभव है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है, भविष्य में कोई भी ईरानी नेता जो इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामिनई के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ेगा। खामिनई की हत्या इसराइल द्वारा की गई क्योंकि उन्होंने इसराइल को नष्ट करने की योजना को अंजाम दिया और उसका नेतृत्व किया। हत्यारे की हत्या कर दी गई है। कोई भी ईरानी नेता जो फिर से इसराइल को नष्ट करने की योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे भी नाकाम कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बदला लेने की मांग शर्मनाक है और आयतुल्ला शासन की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है, लेकिन इसराइल सतर्क है और किसी भी समय और किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। अमेरिका और इसराइल की धमकी के बीच ईरान ने भी अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि फिर हमला हुआ तो ईरान भी विनाशकारी पलटवार के लिए तैयार है। ईरान के लोगों या नेतृत्व के खिलाफ कोई भी साजिश की गई तो उसका जवाब देने में देरी नहीं की जाएगी। ईरानी सेना पूरी मजबूती और दृढ़ता से ऐसे किसी भी हमले का जवाब देगी। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर फिर हमला करने की गलती करते हैं तो ईरान भी महायुद्ध के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।
2: आइए समय हम आपको सीधे ईरान की राजधानी तेहरान लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुमित मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि इस समय ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का आयोजन चल रहा है और इसी बीच ट्रंप भी सुमित लगातार धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में ईरान के अंदर अभी क्या माहौल है, विस्तार से हमें बताइए।
6: सही इस समय अगर आप देखें कि भले ही देखिए तीसरा दिन था जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया हो लगातार आजादी स्क्वायर पर, कल कुंभ लेके जाया जाएगा, लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी अभी तेहरान की या फिर आप पूरे ईरान की वैसी ही है जो युद्ध के दौरान थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान देने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ये बात उकसाने वाले बयान देने के बाद, इसराइल के धमकी देने के बाद कि उनके सबसे बड़े टारगेट लिस्ट में मुस्तफा खामनेई है, ईरान की तरफ से कई कदम उठाए गए। मुस्तफा खामनेई को उन्हीं के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, आईआरजीसी ने रोक दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पूरे इलाके में अभी नो एयर स्पेस यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया, कोई भी चीज अभी फ्लाई नहीं कर सकती। अगले 24 घंटे और ऐसे हैं जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ईरान का मानना है कि देखिए इसराइल कोशिश करेगा इस आग को भड़काने की, इस जंग को भड़काने की, और अमेरिका को मजबूरन उसके साथ आना पड़ेगा। तो परिस्थितियां अभी बहुत ज्यादा गंभीर है, ऐसा नहीं है कि ईरान भी चुप बैठा, ईरान ने तैयारी कर रखी है, ईरान से वक्त इंतजार कर रहा है 9 जुलाई का। ईरान को लगता है कि 9 जुलाई तक ये सारे कार्यक्रम, ये सारी चीजें खत्म हो, क्योंकि 125-130 दिन हो जाएंगे सुप्रीम लीडर की बॉडी को सुपुर्द खाक करने के लिए, सिर्फ इंतजार तब तक का हो रहा है। उसके बाद ईरान अपने दोबारा से उसी रूप में, अग्रेसिव रूप में आएगा जो हमने पिछले कई दिनों में जंग के दौरान और दौरान उसके बाद MOU साइन करने के दौरान जो ईरान का रवैया देखा था, ईरान का जो आप कह सकते हैं अग्रेसिव रवैया था जिसने अमेरिका को भी मजबूर कर दिया, वही रवैया हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगा।
2: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा हुआ है। 2 दिनों की श्रद्धांजलि के बाद तीसरे दिन तेहरान में खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। अनुमान है कि तेहरान में एक समय पर 50 लाख से अधिक लोग सड़कों पर थे। खामनेई को लेकर उनके पुश्तैनी शहर यानी उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। ईरान में इमाम रजा की दरगाह में खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज तक की टीम तेहरान में मौजूद है, खामनेई की अंतिम यात्रा की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में कैसे पूरा ईरान सड़क पर उतर आया।

0: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। कई शहरों में लोगों ने लाल झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन किए। ईरान में लाल झंडे को शहादत और बदले के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की मौत का बदला लेने और देश में एकता बनाए रखने की अपील की। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। प्रशासन ने लोगों से अंतिम यात्रा मार्ग पर बने रहने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
1: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। लगातार जो सैंक्शन ईरान पर लगाए गए थे, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर को मारा गया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं मिनाब का इंसिडेंट हुआ, उसने ईरान को जरूर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ईरान एक बार फिर से मजबूत है, एक साथ खड़ा है और शायद यहाँ पर हर शख्स के हाथ में वही संदेश भी है, चाहे वो आप कह सकते हैं उनके झंडों के हिसाब से आप ले लीजिए, आप उनके फ्लैग के हिसाब से ले लीजिए, या फिर वो मैसेज या फिर फोटो जो सुप्रीम लीडर की वो अपने अपने सीने से लगाए घूम रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीर आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं। और अगर आप देखें कि आपको इसी तरीके की तस्वीरें लगातार ईरान के हर कोने से, खासतौर पर तेहरान के हर कोने से नजर आ जाएगी।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
1: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबल को यहां पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है। दरअसल आजादी स्क्वायर अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक, आप उनके ईरानियन रेवोल्यूशन के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें की अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। और शायद इसीलिए, क्योंकि उनके इसी हाथ को उनकी पहचान के तौर पर देखा जाता था। आपको याद होगा कि जब उनको 28 फरवरी को मारा गया, एयर स्ट्राइक की गई, तब उनके हाथ की वजह से, उनके अंगूठी की वजह से ही उनकी पहचान की गई थी, उनके पार्थिव शरीर की। और शायद अब उसी को उनकी पहचान, उनकी सिंबॉलिक या फिर उनकी ताकत मान लिया गया है। और आज तेहरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आजादी स्क्वायर पर इस बड़े, आप कह सकते हैं, सिंबल को हमेशा के लिए यहाँ पर प्लेस किया गया है।
2: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
4: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: get The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों। वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में। और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
9: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है ना। इसमें अलग अलग पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: B-Mark,
4: the mustard specialist since 1933.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मैम भी मौजूद हैं। मैम खुद यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई थी। भारत की संस्कृति या सभ्यता के साथ ईरान का जो जुड़ाव रहा है, सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पहुंची थी। मैम, आपका ये विजिट पहला विजिट था ईरान का, क्या कुछ रहा आपका, क्योंकि आप 2 से 3 दिन तक लगातार ईरान में मौजूद रहीं, ईरान के साथ एक जुड़ाव रहा है भारत का, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
8: आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था और बहुत ही दुखी था, बिकॉज आपने देखा ईरान के लोग बहुत गमजदा हैं, मौन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि जो इमाम खामनाई साहब की जो शहादत हुई है, उसने न सिर्फ ईरान को इकट्ठा किया, जोड़ के रखा, बल्कि जो पूरी जो दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको भी एक साथ लाया और लोगों को, यहाँ के लोगों को उनकी शहादत ने इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने अमेरिका जैसा सुपर पावर उसको घुटनों पे लाया और दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर या कोई बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप में डिटर्मिनेशन होगा, रिजिलियंस होगा, तो आप बहादुरी से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। एंड दैट्स समथिंग, यू नो, मुझे लगता है पूरी दुनिया में और हमको भी सीखना चाहिए कि अगर आप किसी भी मुश्किल जो अगर आप आ सकती है, तो आपका हिम्मत से अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो जीत ज़रूर आपकी होगी।
7: मैम, एक और बात, क्योंकि आपने क्योंकि अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के तमाम देशों के लिए अलग अलग रहता है और ख़ासतौर पर भारत के लिए भी जो दोस्ती थी वो टूट गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा कड़ा रुख उन्होंने अपनाया। ईरान का एग्जाम्पल आपने सेट किया, क्या भारत को भी कुछ स्टैंड ईरान की तरह लेना चाहिए, खासतौर पर जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं अमेरिका को हैंडल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को करना चाहिए अभी मौजूदा हालात में?
8: मैं समझती हूँ ईरान हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है, साइज़ में भी, आबादी के हिसाब से भी। हमारा जो मुल्क इंडिया है वो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना ज़्यादा मैन पावर है, हमारा मार्केट इतना बड़ा है, तो हम उसका शायद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक जगह खड़ा कर दिया, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे मुल्क के पास, तो हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं अमेरिका के सामने? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी रह गई है।

0: आज एक बार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना, चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बने अंतरिम महासचिव बनाया गया। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरदोरी, अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी के कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवाई, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी करेंगे दौरा।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक सिया और सोनम को छोड़ दें तो हाल के वक्त में जितनी भी पत्नियों ने अपने पति के कत्ल किए हैं, उन सब के कत्ल करने के तरीके और आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर उन्हें ये कातिल आइडिया आता कहाँ से। अब इस सवाल का जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बीच हरियाणा के रेवाड़ी की एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का जो तरीका अपनाया, वो कातिल आइडिया हाल के वक्त में न इससे पहले कभी देखने को मिला न ही सुनने को। दौर सोशल मीडिया का है और खबरें पत्नी या मंगेतर के हाथों मारे जा रहे पतियों की सुर्खियों में। खासकर जब से पुणे की सिया की कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड ऐसे वीडियो या रील्स की बाढ़ सी आ गई।
1: मैंने अपने पति को रात में सोते हुए ही हमेशा के लिए सुला दिया।
0: रील बनाने वाले चुन चुन कर ऐसे कातिल कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में कैद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे ज्यादातर रील या वीडियो में जो चेहरे सबसे नुमाया है वो है मुस्कान, सोनम, निकिता, प्रियंका, सिया और रूबी। बेशक ये सारे वीडियो या रील मजाक में बनाए गए हैं, लेकिन जाने अनजाने इस रील में एक बेहद खास बात छुपी है। इनमें से एक दो को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ये चेहरे आप देख रहे हैं, उन सब के कत्ल का अंदाज और आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। किसी ने कत्ल करने के बाद पति को नीले ड्रम में डाल दिया, किसी ने इंग्लिश स्टाइल में प्रपोज करने के नाम पर जिंदा जला दिया, किसी ने कत्ल के बाद पति को बाथरूम में दफनाकर ऊपर टाइल्स लगा दिया, किसी ने सारा ठीकरा चोर के सिर फोड़कर खुद ही पति को निपटा दिया। बस एक सोनम और सियाही अकेली ऐसी थी जिन्होंने कत्ल का बिल्कुल एक जैसा तरीका अपनाया, पति और मंगेतर को ऊंचाई से खाई में धक्का देने का तरीका। यानी साफ है, पहले सोनम ने अपने पति को हनीमून पर धक्का दिया था, इसीलिए कह सकते हैं कि सिया ने अपने मंगेतर केतन को धक्का देने के लिए सोनम के कत्ल के तरीके की कॉपी की। अब जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से पति कत्ल हो रहे, ऐसे में जाहिर है कत्ल के तरीके के आइडिया भी शायद कम पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि कत्ल के बाद पुलिस से बचने के लिए अब ऐसे पति पत्नी और प्रेमी नए नए आइडिया पर काम करने लगे हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल है हरियाणा के रेवाड़ी की ये तनु। ये वो सबसे ताजा और नई नई पत्नी है जिसने अपने पति का कत्ल किया है, लेकिन पति का कत्ल करने के लिए इसने जो आइडिया अपनाया, इससे पहले देश में किसी भी पत्नी ने इस आइडिया के साथ कत्ल नहीं किया। हालांकि ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों मर्डर केस हुए होंगे जिनमें कत्ल को खुदकुशी दिखाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट ने आखिर में भेद खोल दिया। लेकिन तनु अपने पति मोनू को इस तरह मारना चाहती थी कि चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें कहीं से भी कत्ल की बात आए ही नहीं, मौत बस खुदकुशी ही कहलाए। जानते हैं फिर इसके लिए तनु ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस आइडिया पर काम किया, तो चलिए बताता हूँ। तनु को अपने पति मोनू को ऐसी मौत देनी थी जिससे ये लगे कि उसने पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। अब मोनू को न तो खुदकुशी करनी थी न पानी में कूदना था, तो फिर ये काम कैसे होता? तो साजिश कुछ यूं रची गई कि मोनू को पानी में डालने से पहले उसे बेहोश कर दिया जाए, फिर बेहोशी के उसी आलम में उसे नदी में फेंक दिया जाए। इससे होगा ये कि जब पोस्टमार्टम होगा तो मौत की वजह पानी में डूबना सामने आएगा, जबकि अगर उसे गला घोंटकर, जहर देकर, गोली या चाकू मारकर पानी में फेंका जाए तो मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पकड़ लेगी। हैरानी ये कि सचमुच तनु का ये आइडिया काम कर गया। मोनू की लाश जब पानी से बाहर आई और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मौत की वजह डूबना ही दिखा था, जिस्म पर चोट के कोई निशान भी नहीं थे, तो शक की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई। पुलिस ने भी खुदकुशी का मामला बताकर केस खत्म कर दिया। सोनू का अंतिम संस्कार भी हो गया। पत्नी तनु 7 दिनों तक ससुराल में सबके साथ आंसू बहाने वालों में भी शामिल हो गई। तो अब आप पूछेंगे कि जब पूरी साजिश कामयाबी हो गई तो ये कैसे पता चला कि तनु ने अपने पति मोनू का कत्ल किया है, उसने खुदकुशी नहीं की। तो इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि जिस तरह तनु ने कत्ल का नायाब तरीका ढूंढा, ठीक उसी तरह सोनू के घर वालों ने खुद पुलिस वाला बनकर अपने आप कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। यह हरियाणा में रेवाड़ी में रहने वाला मोनू का परिवार है। इसी साल इस परिवार के बेटे मोनू की शादी हुई पास के गांव की तनु से। शादी को अभी बहुत दिन नहीं बीते थे। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि शादी हो जाने के बाद तनु सिर्फ 10 दिन ही ससुराल में रही थी, फिर वो मायके चली गई और वहीं रह रही थी। तनु ने शादी तो कर ली थी घर वालों की वजह से, लेकिन असल में उसे मोनू पसंद ही नहीं था क्योंकि वो सोनू से प्यार करती थी। अब वापस सोनू से शादी करने के लिए उसे पति मोनू को रास्ते से हटाना जरूरी था, लिहाजा तनु ने अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। शायद हाल के वक्त में पत्नियों के हाथों जितने भी पति के कत्ल हुए और कत्ल के बाद कातिल का जो अंजाम हुआ वो तनु और उसके प्रेमी को भी पता था, लिहाजा दोनों ने मिलकर ऐसे कातिल आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया जिससे पकड़े जाने की कोई गुंजाइश न रहे। इसी कातिल आइडिया के बाद तनु ने अपने पति मोनू को फोन कर 8 जुलाई को मिलने के लिए बुलाया। उसने ये भी कहा कि आते वक्त वो उस महीने की सैलरी भी अपने साथ लेकर आए। मोनू अपनी स्कूटी से घर से ये बहाना बनाकर निकलता है कि उसके पेट में दर्द है और वो डॉक्टर को दिखाने जा रहा है। तब रात के करीब 9 या 9:30 बजे थे।
2: वो 8 तारीख को नाइट को गया था यहाँ से 9:30 बजे के आसपास, और घर वालों को बता गया कि पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ। तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद तो घर वालों ने बाद 2 बजे के आसपास देखा कि अभी तक नहीं आया वापस, तो हम डॉक्टर के देख के आए वहाँ गाँव में, वहाँ भी नहीं मिला। फिर सुबह हम 2 दिन तक तलाश करते रहे, और सुबह लड़की वाले के वहाँ फ़ोन किया तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरी तो वहाँ बात ही नहीं हुई अब तक, 2-4 दिन से कुछ बात ही नहीं हुई मेरी तो उससे। तो और उसके भाई और वो चाचा का लड़का है, चाचा है ऐसे, वो साथ ढूंढवाने भी आए थे, उसके पापा भी आया था, 2 दिन तक यहीं हमारे साथ ही थे ढूंढवाने के लिए। और 10 तारीख को फिर हमारे पास कॉल आई कि यहाँ ऐसे ऐसे नहर में बॉडी मिली है, तो देखी तो बॉडी मैच कर रही थी।
3: 9 तारीख को कंप्लेंट आई थी रतिराम आरो जड़थड़ की कि उसका लड़का मोनू 8 तारीख की शाम को स्कूटी लेके घर से निकला था और अब तक घर वापस नहीं आया है, तो हमें शक है कि वो कहीं गायब है। इस पे तुरंत कसोला थाना पुलिस ने FIR दर्ज की और काफ़ी गहनता से तलाश की उसकी, और उसी तलाश के दौरान उसकी डेड बॉडी ये अपने आसड़वास नहर के नाम से एक जगह है इसमें बरामद की गई, और स्कूटी भी नहर के किनारे ही खड़ी हुई पाई गई थी।
0: लाश मिल चुकी थी, स्कूटी भी नहर किनारे खड़ी मिली। इससे साफ हो गया कि मरने वाला मोनू ही था। अब चूंकि जिस्म पर चोट के निशान भी नहीं थे तो पुलिस और परिवार दोनों ने मान लिया कि मोनू ने खुदकुशी की है, लिहाजा पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
3: उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया, डेड बॉडी जो परिजन है उनको सौंपी गई। उसके बाद मामले में और गहनता से जांच की गई तो ये मामला प्रथम दृष्टि ये लग रहा था कि शायद सुसाइड का मैटर हो सकता है, लेकिन
4: पुलिस ने डेड बॉडी निकलवाई है, पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, सुसाइड घोषित करके यहाँ पे पुलिस वाले ने कह दिया सुसाइड लग रहा है, आत्महत्या केस लग रहा है, दाह संस्कार कर दिया।
0: उधर पति की मौत की खबर मिलते ही रोती बिलखती तनु मायके से ससुराल पहुँचती है। शादी के कुछ महीने में ही उसके विधवा होने पर हर किसी को उससे हमदर्दी थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। पति की मौत के बाद सारी रस्में निभाने के लिए 7 दिनों तक वो ससुराल में ही रही। अब तक पूरा परिवार यही मान रहा था कि मोनू ने सचमुच खुदकुशी की है, लेकिन तभी मोनू का मोबाइल पुलिस वाले उसके घर वालों को सौंप देते हैं। मोबाइल खोलते ही घर वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि मोनू के मोबाइल का सारा डेटा सिर्फ चैट नहीं बल्कि कॉल डिटेल तक डिलीट था। तब पहली बार घरवालों को शक हुआ। इसी के बाद घरवालों ने सबसे पहले तो खुद ही अपने एक जानकार से मोनू के मोबाइल के डिलीट किए गए डेटा को वापस हासिल किया। अब डेटा उनके सामने था, डेटा के साथ कॉल डिटेल भी। इस कॉल डिटेल में एक चीज देखकर घर वाले हैरान रह गए। दरअसल 8 जून की रात मोनू डॉक्टर के पास जाने के लिए कहकर घर से निकला था। उसके बाद अगले 2 दिनों तक वो नहीं मिला। तब उसे हर जगह ढूंढा गया था। इसी दौरान घर वालों ने मोनू की पत्नी तनु से भी पूछा कि क्या वो उससे मिलने आया था या उसने फोन किया था। तब तनु ने कहा था कि उसकी मोनू से पिछले 3-4 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही वो उससे मिला है। जबकि मोनू का कॉल डिटेल ये बता रहा था कि 8 जून को तनु और मोनू ने एक दूसरे को 49 कॉल किए थे। तो फिर सवाल ये था कि तनु ने झूठ क्यों बोला। अब घर वालों को पहली बार तनु पर शक होना शुरू हुआ, पर पुलिस के पास जाने से पहले वो खुद मामले की तह तक पहुंच

0: अब चूंकि गिरफ्तारी और पूछताछ का हक तो पुलिस को ही है, लिहाजा पुलिस ने पहले सोनू और फिर तनु को पूछताछ के लिए बुलाया। थोड़ी देर की पुलिसिया पूछताछ में ही दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। असल में शादी को कुछ वक्त ही हुआ था और तनु ससुराल में या अपने पति के साथ ज्यादा रही नहीं, तो किसी को सोनू और उसके रिश्तों के बारे में पता ही नहीं चला।
1: वो दो तीन बार तो सारी आई थी यहाँ पे, दो बार या तीन बार आई है शादी के बाद में, पांच पांच सात सात दिन तो रुकी है। इतना डिटेल से ये भी ना जान पाए उसको, ना वो इनको जान पाए, लड़के को भी नहीं पता हुआ, शक भी नहीं हुआ कोई सी, मतलब इस तरह का कोई शक नहीं हुआ। काफी टाइम यहाँ रहे, जब तो कोई शक हो जाए किसी तरह।
2: तो ये मोनू है लड़का, इसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी तनु नाम की लड़की जो कसौली की रहने वाली है, और ये लड़की इसको पसंद नहीं करती थी और इसका एक पुराना दोस्त था सोनू नाम का लड़का, तो इन्होंने बाद में मिलके प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगाते हैं, और इसके लिए इन्होंने सोनू ने अपने दो दोस्तों हरिओम और अमन का सहारा लिया।
0: तनु और सोनू ने तब जो खुलासा किया, खुद पुलिस हैरान रह गई। इन दोनों ने बताया कि वो मोनू को इस तरह मारना चाहते थे कि न लाश पर कोई चोट के निशान दिखे, न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल वाली कोई बात आए। तब उन्हें ये आइडिया आया कि अगर किसी को बेहोश कर बेहोशी की हालत में ही नहर में फेंक दे तो मौत बेहोशी से नहीं बल्कि डूबने से होगी। इसके बाद प्लान के तहत 8 जून की रात तनु ने मिलने के बहाने मोनू को अकेले बुलाया नहर के करीब, पर वहां सोनू और उसके दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने अचानक मोनू को पकड़ लिया और उसके कान नाक और मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने चेक किया, तब भी उसकी सांसें चल रही थी। फिर उसी बेहोश मोनू को नहर में फेंक दिया। उनका आइडिया तो काम कर गया पर एक गलती कर दी। मोनू का मोबाइल साथ ले नहीं जा सकते थे, इसलिए उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब कोई शख्स ऐन मरने से पहले अपने मोबाइल को साफ क्यों करेगा? बस इसी एक चीज ने तनु के इस परफेक्ट मर्डर वाले आइडिया को नाकाम कर दिया। देशराज सिंह, रेवाड़ी, आज तक। रेवाड़ी की पत्नी ने तो अपने पति को नहर में फेंक दिया था, लेकिन आगरा की एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को घर के बाहर तक जाने नहीं दिया, बल्कि घर के अंदर बाथरूम में ही उसे दफना दिया और फिर उस पर टाइल्स भी लगा दी। इसके बाद अगले 1.5 महीने तक वो उसी बाथरूम में नहाती रही। रेवाड़ी से करीब 225 किलोमीटर दूर यह आगरा के एक दूसरी पत्नी का घर है और ये उसी घर के बाथरूम की तस्वीर। इस वक्त यहाँ खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी है। भीड़ इंतजार कर रही है कि पुलिस यहाँ जिस लिए आई है, क्या सचमुच वो सच इस घर के बाथरूम से बाहर आ पाएगा? करीब 40 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार बाथरूम के इस फर्श से वो सच बाहर आ ही गया। अब फर्श से बाहर आए इस सच को सुने उससे पहले इस घर की कहानी सुन लेते हैं। हुआ यूं कि 18 मई की रात इस घर में एक साथ 5 लोग सोए थे। सुरेंद्र, उसकी पत्नी रूबी, दोनों की दो बेटियां और सुरेंद्र की माँ। लेकिन सुबह एक शख्स गायब था और वो था घर का मुखिया 44 साल का सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र अक्सर देर से सोकर उठता था और अलग कमरे में पत्नी रूबी के साथ सोता था, पर इससे पहले कि घर वालों को सुरेंद्र की गुमशुदगी की खबर मिलती, सुरेंद्र की माँ और उसकी दोनों बेटियां सुबह सुबह सुरेंद्र के बड़े भाई के साथ उसके घर चली गई भरतपुर। 2-4 दिन तो किसी ने सुरेंद्र की खबर नहीं ली, मगर इसके बाद रूबी ने अपने जेठ को फोन कर कहा कि सुरेंद्र कई दिनों से घर नहीं लौटा है। यह सुनकर सुरेंद्र का भाई फौरन आगरा आता है और रूबी को साथ ले जाकर 26 मई को पुलिस में सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस भी रिपोर्ट लिख तो लेती है पर सुरेंद्र को तलाश नहीं करती। वक्त बीतता जाता है। इधर पुलिस रिपोर्ट के बाद पड़ोसियों को भी पता चल चुका था कि सुरेंद्र गायब है। लोग अफसोस जताने आते और रूबी हमेशा उनके सामने रोने लगती। अब महीना से ऊपर हो चुका था। इधर रूबी की दोनों बेटियां और सास भी अब घर लौट आई थी, मगर सुरेंद्र की अब भी कोई खबर नहीं थी।
3: 45 दिन से 50 दिन के लगभग हो गए तो इनकी पत्नी ने बोला था कि मेरे पति मुझसे लड़ कर के चले गए हैं और कहां लापता हो गए कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद में एफआईआर

0: वगैरह भी कराई थी और उनके लापता के पोस्टर भी बना करके चिपकवाए थे।
1: कहाँ पे चिपकवाए थे?
0: ये जगह जगह चिपकाए थे, यही आगे स्कूल वगैरह है और चौराहे वगैरह पे इन पर चिपकाए थे और रेलवे स्टेशन वगैरह यहाँ पे भी चिपकवाए थे। उसके बाद में ये स्कूल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा उनको जाँच पड़ताल भी की गई थी कि किस समय किस दिन निकले थे, लेकिन उनका जानकारी नहीं मिली।
2: सुरेंद्र की माँ को पेंशन मिलता है, पेंशन की रकम एटीएम से निकाली जाती थी और एटीएम कार्ड सुरेंद्र के पास ही होता। सुरेंद्र के भाई ने जब बैंक जाकर पता किया कि क्या पेंशन के पैसे अब भी निकल रहे हैं, बैंक खाता देखकर वो हैरान रह गया। कोई पैसे अब भी बैंक से निकाल रहा था। सुरेंद्र के भाई को शक होता है, वो इस बारे में रूबी से फोन पर पूछताछ करता है, रूबी कुछ बता नहीं पाती। फिर 3 जुलाई को अचानक रूबी अपने जेठ को फोन करती है और उसे घर आने को कहती है। रूबी परेशान थी, वो रोने लगी। रूबी का जेठ उससे कहता है कि अगर तुम्हें सुरेंद्र के बारे में कुछ पता है तो बता दो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रूबी उसकी बातों में आ जाती है और फिर सच बता देती है। वो कहती है कि उसने 18 मई की रात सुरेंद्र को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर मार डाला। जेठ जब पूछता है कि लाश कहाँ है, तब वो उसे बाथरूम में ले जाती है और फर्श की तरफ इशारा करती है।
3: यह है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं, तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा या वो तुझसे कुछ कह के गया तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया, फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास।
4: हाँ,
3: ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया, मैंने उससे पूछा मैंने कि कहाँ है, बोले यही है घर पे। मैंने घर पे कहा, बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाहिए है, बोली है बाथरूम में लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है।
2: ये सुनते ही रूबी का जेठ सीधे पुलिस स्टेशन भागता है और पुलिस को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है। ये उसी वक्त की तस्वीर है, खुदाई के दौरान अंदर से कंकाल बाहर आता है। पुलिस रूबी को गिरफ्तार कर लेती है।
5: 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को जो कि मृतक की पत्नी है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
2: पूछताछ में रूबी फिर पूरी कहानी सुनाती है। रूबी और सुरेंद्र की शादी 2010 में हुई थी, दोनों की 2 बेटियां हैं। सुरेंद्र को शराब पीने की आदत थी, शराब पीने के बाद वो अक्सर रूबी से झगड़ा करता और मारता पीटता भी। रूबी की यह शिकायत थी कि उसकी शादी झूठ कहकर की गई थी। उसे बताया गया था कि सुरेंद्र पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है, मगर ये सब झूठ था। 18 मई को फिर उसका सुरेंद्र से झगड़ा हुआ। उसी रात गुस्से में उसने खाने में जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी, फिर सुबह सास और दोनों बेटियों को जेठ के घर भेज दिया। घर में अब वो लाश के साथ अकेली थी। उसने बाथरूम में खुद ही गड्ढा खोदा, लाश घसीट कर गड्ढे में ले गई, फिर 500 रुपए की मिट्टी मंगवाई और गड्ढे को भर दिया। इसके बाद अगली सुबह 2 बोरी सीमेंट लाई और मजदूरों को बुलाकर उसी गड्ढे के ऊपर नई टाइल्स लगवा दी। इसके बाद वो, उसकी सास और दोनों बेटियां अगले 1.5 महीने तक उसी बाथरूम में नहाती रही जिसके नीचे सुरेंद्र की लाश दफन थी। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।
6: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

0: राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बने अंतरिम महासचिव बनाया गया। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरदोरी, अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार, योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी के कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतरी टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगुवाई, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी करेंगे दौरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, सरकार की लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। मुंबई में भारी बारिश से हवाई यातायात प्रभावित हुआ, 17 उड़ानें रद्द की गई, 365 से ज्यादा उड़ानों में देरी। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश के कारण पहाड़ी का हिस्सा ढहने से टनल के एग्जिट पर गिरा था मलबा, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। नवी मुंबई में तेज बारिश और आंधी से आरबीआई कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ और मलबा गिरा, सड़क बंद होने से यातायात पूरी तरह से बाधित। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, निचले इलाकों में भर गया है पानी, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला में पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कार्ला के पास बाढ़ जैसे हालात है, सड़क किनारे जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। पालघर में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के वसई और विरार में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, दीवान मान, मधुबन और सनसिटी जैसे निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक भर गया पानी। मूसलाधार बारिश और वसई विरार में पूरी तरह से बस्तियां डूबी हुई हैं, सड़कों पर जलभराव से कई गाड़ियां जलबंग हैं, राहत सामग्री लेने के लिए बोट पर निकले हैं लोग। फिल्म फुकरे के बाद फिर से लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म में दोनों साथ होंगे। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी कि रणवीर सिंह को दिए जन्मदिन की बधाई, शेर रणवीर के लिए शेयर किया है स्पेशल पोस्ट। 8 जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज किया जाएगा उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं का मैं ट्रेलर रिलीज किया गया, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार कर रहे हैं डेब्यू। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक हुआ है रिलीज, कोर्ट रूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का, 18 सितंबर को रिलीज होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई और महानगर पालिका का बजट 7 राज्यों से ज्यादा है मुंबई की महानगर पालिका का, और यह सच है कि मुंबई में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, लेकिन यह भी सच है कि सालाना 80,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी के इंतजाम पूरी तरह से नाकाफी हैं। वहीं जिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक का उद्घाटन 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, आज सुबह लैंडस्लाइड के बाद मिसिंग लिंक एक झरने में तब्दील हो चुका है। अब विपक्ष तंज कस रहा है कि बीजेपी न बीएमसी को संभाल पा रही है और न ही महाराष्ट्र को, लेकिन सरकार कह रही है ऑल इज वेल।

0: और हर साल की तरह इस साल भी मुंबई डूब गई। हर साल की तरह इस साल भी सारे दावे धरे के धरे रहे।
1: भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से मुंबई और पुणे के बीच जो रेल यातायात है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई है।
2: जिस तरीके से यहाँ पर जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
3: रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिला झोपड़ा जो है भर भरा कर गिर गया।
0: बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पाए। मुंबई डूबती रही, पानी भरता रहा, सड़कें नाला बनती रही। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट था, फिर भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो आज डूबा ना हो। वसई, विरार, अंधेरी, विलेपार्ले, जुहू, बांद्रा, बोरीवली सब डूब गए। लोकल के ट्रैक पर पानी भर गया। मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भूस्खलन की वजह से बंद करना पड़ा। पिछले 3 दिन से इतनी भयंकर बारिश हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने को कह दिया गया। जरा देख लीजिए कि मुंबई में इन 3 दिनों की बारिश में कितना नुकसान हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़े हैं। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। मुंबई पुणे हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। नया बना मिसिंग लिंक बंद करना पड़ा। फिलहाल ट्रैफिक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा मुंबई गोवा हाईवे पर भी पानी भर गया जिसकी वजह से कई घंटों तक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा। इस हाईवे पर हजारों यात्री फंस गए हैं। पालघर और वसई विरार इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुजरात से मुंबई आने वाली रेलवे लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित है और पैसेंजर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 को डाइवर्ट करना पड़ा, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी, 15 ट्रेन को छोटी दूरी के लिए चलाया गया जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर और हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से मुंबई की व्यवस्थाएं चरमराई हैं। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। वसई से विरार तक लोकल लाइन पर जगह जगह जलभराव है। कुछ स्टेशनों पर तो पटरियां कई फीट तक पानी में डूबी हैं। ये बात सही है कि बाढ़ बारिश कुदरती आपदा है, लेकिन क्या सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक आपदा के ऊपर ठीकरा फोड़कर बच सकता है? क्योंकि मुंबई में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने वाली बीएमसी पूरी दुनिया के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है। हर साल मॉनसून आने से पहले ही बीएमसी कई तरह के प्लान बनाने लगती है। हजारों करोड़ रुपया इसी से निपटने के लिए अलग कर लेती है। 2026 में मॉनसून के लिए बीएमसी ने 25,362 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। पिछले साल बीएमसी का मॉनसून का बजट 16,321 करोड़ रुपए का था।
4: बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार।
0: यानी हजारों करोड़ का बजट है, इतना बजट तो कई सारे छोटे राज्यों का भी नहीं है जितना बीएमसी का मॉनसून और क्लाइमेट बजट है। और फिर भी ग्राउंड पर रिजल्ट जीरो है और इसकी साफ वजह है घटिया क्वालिटी और करप्शन। उदाहरण के लिए इसे देखिए, ये वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक है जिसका उद्घाटन सिर्फ 2 महीने पहले ही हुआ था। इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन देखिए क्या हाल हो गया। आज सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुआ और मिसिंग लिंक एक झरने में बदल गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क पर ही झरना फूट गया हो। पूरी तरह से मिसिंग लिंक डैमेज हो गया है।
2: इस वक्त हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर हैं। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे दोपहर के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम है, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं।
0: अब हालात ये हैं कि इस मिसिंग लिंक को बंद करना पड़ा है और इसका ट्रैफिक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर डाइवर्ट करना पड़ा है। हालांकि इंजीनियर दावे कर रहे हैं कि मिसिंग लिंक की टनल को नुकसान नहीं पहुंचा है।
2: ये पूरा जो टनल है वो अब इस्तेमाल करने लायक रह नहीं गया है। अभी इसको फिलहाल देख लीजिए कितना मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। जब तक ये पूरा मलबा नहीं निकलता है तब तक इसको ठीक ठाक करके यहाँ पर इस्तेमाल के लिए नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे इस टनल को देखें तो दरअसल यहाँ पे ऊपर में पहाड़ का जो पूरा ओवरलोड है वो काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 120 मीटर्स का है। लेकिन अगर आप देखें तो जो भूस्खलन ताकि ना हो उसको रोकने के लिए जो बनाया गया है जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सिर्फ 10 मीटर टनल के आप ऊंचाई पर से देखिए खाली 10 मीटर ऊपर तक लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बात की थी, आईआईटी बॉम्बे ने जो उनको सजेशंस दिए थे उसके अनुसार ही ये पूरे टनल का काम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये जो भूस्खलन है, क्योंकि आप देखिए ऊपर से जो पानी का झरना है वो एक बहुत तेज़ बहाव में है, और क्योंकि तेज़ बरसात हो रही है, तेज़ बरसात के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, तो तेज़ बारिश के बीच में वो पूरा का पूरा जो मिट्टी है ऊपर से पत्थर और मिट्टी लेकर वो नीचे की तरफ आ गया।
0: और हाईवे भी सुरक्षित नहीं है, ये मुंबई गोवा हाईवे है जहाँ खेड़ तालुका के कशड़ी घाट पर नए गोवा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी दरार आ गई। सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़ और पत्थरों के साथ साथ भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, यातायात रोक दिया गया, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मुंबई से विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
5: आज तक मुंबई पुणे रेल मार्ग पर खंडाला घाट के मंकी हिल और ठाकुरवाड़ी केबिन के बीच हुए लैंडस्लाइड वाली जगह पर भी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंच गया। आज तक हादसे वाले स्पॉट पर पहुंचने वाला एकमात्र चैनल है, क्योंकि भारी बारिश के बीच हमारी टीम पहाड़ी घाट सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर घटना स्थल तक पहुंची है। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर 85 से ज्यादा ट्रेन सेवाएं इस भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
6: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी जो है ये राहत रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल और ठाकुरवाड़ी केबिन के बीच में, जो जहां पर भूस्खलन हुई है, जहां पर लोनावाला खंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन हुई है, वहां पर हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। और आपको दिखा रहे हैं कि जो राहत कार्य है, जो रिलीफ वर्क है, वो अभी भी चल रहा है। भारी बरसात के वजह से जो रिलीफ वर्क था वो इफेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटे में बरसात हुई है। भारी मात्रा में लेबर लगाए गए हैं, मशीनें लगाई गई हैं, रेलवे की पूरी मशीनरी किसी तरीके से जो मुंबई और पुणे के बीच की रेल यातायात है उसे शुरू करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि अभी ये जो मालगाड़ी है ये जो सहायक मंडल अभियंता की आपातकालीन यान है उसे यहाँ पर लाया गया, और उसे उसमें भी बहुत ज्यादा जो डेबरी है उसे लोड करके ले जाया जा रहा है। कुछ लेबर उस तरफ के सेक्शन में जा रहे हैं, जो टनल है उसे पार करके उस सेक्शन में जा रहे हैं और लोनावाला की तरफ जा रहे हैं। मिडल सेक्शन जो है उसे क्लियर किया जा रहा है। ऐसे 3 और स्थल है, और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है, इस स्पॉट पर पहुंचा है। ये किसी रोड से इस स्पॉट पर आया नहीं जा सकता, सिर्फ रेलवे ट्रैक से चलकर ही 10 से 11 किलोमीटर आने के बाद ही इस स्पॉट पर पहुंचा जा सकता है खंडाला घाट से। आपको बताएं कि ये घाट सेक्शन में लोकेट है और यहीं पर भूस्खलन हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भूस्खलन इस ट्रैक पर जो हुआ था ये अभी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। ये मिडल सेक्शन है, इसे किसी तरीके से साफ किया गया है, पर जो डाउनवर्ड सेक्शन है वहां पर अभी भी राहत कार्य चल रहा है। देख सकते हैं भारी मात्रा में मशीनें लगाई गई हैं और लेबर भी भारी मात्रा में लगाए गए हैं ताकि रेल यातायात शुरू की जाए। रेलवे की मशीनरी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, भारी कोशिश कर रही है ताकि रेल यातायात मुंबई पुणे के बीच में शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिव्येश सिंह, लोनावला, आज तक।
5: मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार को एक 3 मंजिला चौल गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मां अपने बच्चों के लिए खाना बनाने पहुंची और तभी यह दर्दनाक हादसा घट गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
7: इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में हैं, जहां पर कि एक अचानक से एक बड़ी सी इमारत जो है पत्थरों के ऊपर का जो घर था उसमें उस पर गिर गई और अचानक से तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। दरअसल रविवार को तेज बरसात मुंबई पूरे शहर भर में हो रही थी और मानखुर्द में भी तेज बरसात हो रही थी और हमने देखा अक्सर ईस्टर्न सबर्ब्स में ज़्यादा बरसात हो रही है इस बरसात के दौरान, पूरे मौसम के दौरान। और ये समय अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पत्रे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे, इसकी वजह से वो कंक्रीट की जो इमारत है वो और साथ ही यहाँ पर जो झोपड़े बने थे उस पर उनको भी क्लियर कर दिया गया था, उनको लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोग निकल जाइए। लेकिन दरअसल पूरी जो परिवार है बाहर था, पूरी तेज़ बरसात भी थी और शाम तक जब कुछ नहीं हुआ तो जो परिवार की जो महिला थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने जाएंगी। उनके 4 बच्चे और बगल के घर से एक आलिया नाम की एक बच्ची जो उनके बच्चों के साथ खेल रही थी, वो सब के सब एक साथ इस जो अपने घर के अंदर घुसे। वो घर का पत्थरों का बना हुआ था तो ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया है। जैसे ही ये कंक्रीट की इमारत गिरी वैसे ही वो सारे के सारे लोग उसके नीचे दब गए। अब परिवार में सिर्फ एक मोहम्मद मोइन करके एक इंसान है जिसका पूरा परिवार था, जो बच्चे थे, आलिया जो बगल से बच्ची आई थी वो और उसकी पत्नी, वो सब के सब जो खाना बनाने के लिए खाने के लिए अंदर घर के अंदर घुसे थे वो उसी समय अपनी मौत का सामना कर गए।
5: मौसम विभाग ने मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और उसके बाद रेड अलर्ट में भी उसे बदल दिया गया। अलर्ट के बाद मुंबई, नवी मुंबई, पालघर जैसे इलाकों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, तेज बारिश की वजह से 500 से ज्यादा पेड़ गिरने की घटनाएं भी दर्ज हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को आसमानी आफत से राहत मिलने वाली नहीं है।

0: ये हाल है मुंबई का। चलती फिरती मुंबई स्विमिंग पूल और तालाब बन गई है। देखिए कैसे कमर कमर तक पानी भरा है। ये मुंबई का आउटर एरिया है, नाला सोपारा और वसई विरार। कमर तक पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। हालांकि महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घूम रही हैं ताकि कोई हादसा हो तो वो बचाव कर सके।
1: दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं पर मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मान खुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को।
0: लेकिन हालात खराब बने हुए हैं। वसई विरार में इतना पानी भर गया है कि सड़कों पर ट्रैक्टर और नाव उतारनी पड़ी है। पैदल चलना संभव ही नहीं है। लोगों के वाहन डूब गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। लोकल की पटरियां पानी में डूबी हुई हैं, जो नजर ही नहीं आ रही। लेकिन अभी ये बारिश थमी नहीं है, बल्कि मौसम विभाग ने ऑरेंज के बजाय अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। यानी अभी मुंबई में और तेज बारिश की आशंका है।
2: वसई विरार के आगे जो है काफी जलजमाव ट्रैक्स पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चर्चगेट से वसई तक की ट्रेनें जो है वो चल रही हैं। लेकिन वसई के आगे जो नाला सोपारा हो, विरार हो, पालघर हो, वहां तक ट्रेनें चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए काफी कम या ना के बराबर ट्रेनें जो है उस लाइन पर चल रही हैं। फिलहाल मुंबई, रायगढ़, पालघर, थाने के लिए जो है मौसम विभाग द्वारा है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पहले ये ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका ने कल ही एहतियातन तौर पर मुंबई के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी।
0: सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। कल के लिए नासिक को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। ये भी आशंका है कि भारी बारिश से बादल भी फट सकता है। नासिक बेल्ट में त्र्यंबकेश्वर के पास 300 मिलीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। कल इस इलाके में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा रायगढ़ में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। महाराष्ट्र की पूरी कोस्टल बेल्ट पर भारी बारिश का अलर्ट है।
3: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है और पिछले 24 घंटे में मुंबई, खासतौर से राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में 21 सेंटीमीटर उसके ज्यादा की वर्षा दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल भी जो मध्य महाराष्ट्र का जो घाट एरियाज हैं वहाँ पर कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पर 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा देखी गई है महाबलेश्वर उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो वहाँ पर वर्षा के स्पेल आगे आने वाले 24 घंटे में बना रहेगा और कल से जो है मुंबई उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं देखने को मिलती रहेंगी और इसलिए वहां कल ऑरेंज है और परसों से फिर वहां पर येलो कलर है।
4: इसी तरीके का बाढ़ का अलर्ट क्योंकि लगातार बारिश
3: जो मुंबई उसके आसपास के जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी जमा होने की संभावना है। गुजरात में भी कमोबेश वैसी स्थिति है। हमारी फ्लैश फ्लड की जो चेतावनी है उसके हिसाब से भी जो महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, छत्तीसगढ़ ये सब पॉकेट्स में फ्लैश फ्लड जो है भी देखने को मिल सकता है और अर्बन फ्लडिंग भी शहरों क्षेत्रों में हो सकती है। और जो मुख्य चेतावनी हमारी है वो हाईवेज के लिए भी है, खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों के जो हाईवेज हैं वहाँ पर भी अधिक भारी वर्षा के दौरान विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए वाहन जो है बहुत सावधानी से चलाने की जरूरत है।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर स्थित वेणा नदी पर बना एक छोटा पुल भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पुल टूटने से सड़क के दूसरी ओर स्थित होटलों में ठहरे कई पर्यटक फंस गए। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटा है। वहीं फंसे हुए वाहनों को क्रेन की मदद से दूसरी ओर ले जाया जा रहा है। बीते 24 घंटों में महाबलेश्वर में 513 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के सतारा और रत्नागिरी जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सतारा में कोयना डैम में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। वेणा लेक भी ओवरफ्लो हो गई है। यहां सतारा में हो रही बारिश लगातार नुकसान कर रही है। ये कराड़ पाटन मार्ग है जहां विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। कराड़ पाटन और कोयना नगर की ओर जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और कई यात्री फंस गए हैं। आज तक ब्यूरो।
5: भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की अपील भी की है। फिलहाल 5 दिन में मुंबई में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिस पर विपक्ष अब हमलावर है।
6: डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है, तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज्यादा न रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शन उसमें है।
7: महाराष्ट्र में मॉनसून का कहर इतना है कि आज सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। हमारे साथ यूबीटी सेना से विधायक और नेता वरुण सरदेसाई है, जो बांद्रा ईस्ट से आते हैं, मतलब बांद्रा जो क्वीन ऑफ सबर्ब्स कहा जाता है, वहां से सबर्बन शुरू होता है और सिटी की लिमिट खत्म होती है। आप बीचों बीच आते हैं मुंबई के, मुंबई की फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज का ही असर है।
8: नहीं, बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजप और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। मैं आपके द्वारा सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे पूरी जानकारी है, वो आकर बताएंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बीएमसी में 3 महीने पहले ही आई, पर ऐसी ये गलत बात है। 2022 से पिछले 4 सालों से बीएमसी का पूरा कंट्रोल ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था, जिसमें खुद बीजेपी थे और शिंदे थे। यानी पिछले 4 सालों से जो कुछ मिसमैनेजमेंट इस पूरे मुंबई शहर में हो रहा है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बीजेपी और शिंदे जी की है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि जब कोई भी क्रेडिट लेने की बात आ जाती है, तब सबसे पहले मेयर हो या फिर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर मंत्री हो, वो आगे आ जाते हैं, बीजेपी और शिंदे सेना के नेता आगे जाते हैं। और जब कोई दुर्घटना घटती है, जैसे पिछले 5 दिनों में 10 से ज्यादा डेथ हो गई है, और ये डेथ के कारण अगर हम सुनेंगे तो सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ लोगों पे गिर रहे हैं, इसलिए लोग मर रहे हैं।
5: और इसी के साथ हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। सालों तक सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन के चक्कर में यह फिल्म फंसी रही और उसके बाद इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया था, लेकिन विवादों में फंसने के बाद इसे ओटीटी से भी हटा दिया गया है।
12: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया, और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
13: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
12: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
14: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
12: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
15: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
12: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे हम। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी, हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना पड़ा चंपत राय को भारी, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी घमासान, अखिलेश का बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की पीएम की अगवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत होंगे कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी करेंगे दौरा।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत। इंडोनेशिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियाई लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। जकार्ता में होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा था जनसैलाब। लगे भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को भी मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर होगी चर्चा। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा नियमों के तहत चंपत राय और निल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। गोविंद गिरी का चंपत राय पर हमला। कहा अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती। धान चोरी से हमें बुरी तरह से सबाहत हुए हैं, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को बनाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव। कृष्ण मोहन वही है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज करवाई थी FIR। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने का जताया भरोसा। बोले जो भी हुआ उससे सभी आहत। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर गाज गिरी। गोपाल राव को भी पद से हटाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला। सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। चोरी के आरोपों के बीच मंदिर ट्रस्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान से मिले सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और अन्य वस्तुएं भी सार्वजनिक की गई। चढ़ावा चोरी के मामले में SIT की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी सामने आई। CCTV में चोरी के मिले हैं प्रमाण। 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया है फंड का पूरा हिसाब किताब। बताया दान के लिए मिले 3,264 करोड़ रुपए में से 2,370 करोड़ रुपए हुए खर्च। संचालन के लिए मिले दान का भी हिसाब दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहने ये पुजारी। चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ। प्रेरणा स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का लोकार्पण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले श्रीराम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। भगवान राम का मतलब है राष्ट्र। अखिलेश यादव के दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी का हमला। बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करें राम की बात। और भगवान परशुराम पुरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम। योगी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने की मंजूरी। जम्मू के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क में बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। टीएमसी ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का दिया है जवाब। सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का खंडन किया। ममता खेमे में चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे गए। कहा पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति 2027 तक वैध है और ममता बनर्जी असली टीएमसी प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग शरीफ हत्या के मामले में ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली न्याय की मांग करते हुए निकाला कैंडल मार्च। बारुईपुर में नाबालिग शरीफ और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल की 3 की गिरफ्तारी। 3 से पूछताछ जारी। बरुईपुरी में रेप और हत्या के मामले में बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा की। बोली एक और बेटी खो दी, नई सरकार पीड़िता परिवार के साथ है, न्याय करेगी। नासिक TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले में आरोपी निदा खान को मिल गई है जमानत। गर्भावस्था का हवाला देकर राहत मिली। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगी स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसस लैस हो। हिमाचल के मंडी में अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ किया। 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। ISI और शहजाद भट्टी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 6 आरोपी गिरफ्तार। हथियार और पेट्रोल बम बरामद। 91 साल के हुए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा लेह के जवित साल में मनाया गया जन्मदिन। तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सभा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके बर्थडे पर शुभकामनाएं दी। पोस्ट करके लिखा, दलाई लामा का शांति सद्भाव और मानवता का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। सरकार की लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। मुंबई में भारी बारिश से हवाई यात्रा प्रभावित हुई है। 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 365 से ज्यादा उड़ानों में देरी। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड। भारी बारिश के कारण पहाड़ी का हिस्सा ढहने से टनल के एग्जिट पर गिर गया था मलबा। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। नवी मुंबई में तेज बारिश और आंधी से आरबीआई कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ और मलबा गिरा। सड़क बंद होने से यातायात बाधित। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में भर गया है पानी। आम जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला में पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कार्ला के पास बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क किनारे जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। पालघर में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। सड़कों पर जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के वसई और विरार में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। दीवानमान मधुबन और सनसिटी जैसे निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक भर गया है पानी। मूसलाधार बारिश से वसई विरार में पूरी की पूरी बस्तियां डूब गई हैं। सड़कों पर जलभराव से कई गाड़ियां जलमग्न हुई। राहत सामग्री लेने के लिए बोट पर निकले थे लोग। वसई विरार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रेल ट्रैक पर भारी जलभराव से लोकल सेवा भी ठप हुई है। यात्री पैदल चलने के लिए मजबूर। नाला सोपारा के आसपास के इलाकों में बाढ़ में फंस गए लोग। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद पालघर में केलवा बांध का जलस्तर बढ़ा। लगभग 3,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में घुसा पानी। पालघर में 4 गांवों से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। हालातों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी बारिश की वजह से फ्लाईओवर की सड़क धसी। लोहे की सरिया बाहर निकल आने की वजह से कई वाहनों के टायर पंचर हुए। एनएचएआई ने कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में वैष्णो देवी वैणा नदी पर बना छोटा पुल भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। सड़क के दूसरी ओर बने होटल्स में ठहरे कई पर्यटक फंसे। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए जताई है बारिश की संभावना। जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के खराब मौसम के बावजूद धूमधाम से चार धाम यात्रा जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मॉनसून के चलते बद्रीनाथ में उफान पर है अलकनंदा नदी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन तुरंत मार्ग खोलकर यात्रा जारी रखने में जुटी हुई है टीम। भोपाल में बारिश के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने की तैयारियां। बड़े तालाब में हुई मेगा मॉक ड्रिल से रेस्क्यू टीमों को दिए गए अलग अलग टास्क। ग्रेटर नोएडा में एक मकान में एसी कंप्रेशर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। लाखों का घरेलू सामान जलकर खाक हुआ। सोनीपत में केएमपी हाईवे पर बड़ा हादसा। 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी। मौके पर चालक की गई जान। यूपी के झांसी में नाइट्रोजन गैस टैंकर से लीक हुआ गैस। गैस फैलने से हड़कंप मच गया था। गुजरात से बिहार जा रहा था यह टैंकर। गुरुग्राम में अडानी ऑयस्टर सोसाइटी में बड़ा हादसा। टला बेसमेंट पार्किंग की छत का लिंटर और कंक्रीट अचानक से भरभराकर गिरा था। कई कारें क्षतिग्रस्त। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक मैरिज होम में 6 दबंगों ने युवक को घेर कर पीटा। जमीन पर गिराकर बरसाए थे लात घूंसे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव के कारण बड़ा हादसा। 4 गाड़ियां आपस में ही टकराई। बुजुर्ग दंपति घायल हुए। सहारनपुर में टाइम ओवर होने के बाद शराब न मिलने पर लाइन मैनों ने ठेके की काट दी थी बिजली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। श्रीगंगानगर में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया। वन विभाग ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मांस और अवशेष भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की बेरहमी से पिटाई का फुटेज सामने आया। सीढ़ियों पर घसीटते हुए नजर आए ससुराल वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के नवादा में ट्रेन की सीट को लेकर विवाद हुआ। मनचलों ने दरोगा दंपति से मारपीट की। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित महिला ट्रेन इंजन के आगे बैठ गई। हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा। शिवपुराण कथा के दौरान कूलर से करंट लगने से पुजारी की मौत हुई। मेरठ में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदा। 60 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा युवक। इलाज के दौरान मौत। अलवर में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद। इंदहाड़ी युवक ने कारोबारी पर हमला किया। 3 ही आरोपी मौके से फरार। यूपी के फतेहपुर में पत्नी ने सो रहे पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद और पति की रोजाना की मारपीट से परेशान थी। एमपी के सीहोर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 की मौत। 4 लोग घायल हुए।
राजस्थान के बारा में चूहे पकड़ने के पिंजरे में फंसा जहरीला काला नाग फन फैलाए बैठे नाग को देखकर मच गई थी दहशत, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। गुजरात के भावनगर में शख्स पर शेर ने हमला बोला, शिकार का लाइव वीडियो सामने आया, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गुजरात के जामनगर में हिट एंड रन के मामले में 10वीं के छात्र की मौत हुई, टक्कर के बाद बस चालक फरार। गुजरात के अमरेली में पानी की धारा में फंस गया था युवक, 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बचाया गया। महाराष्ट्र के जालना में सब्जी विक्रेता का गड्ढे के गंदे पानी में आलू धोते हुए वीडियो वायरल हुआ, नागरिकों की लापरवाही, विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 नॉटिंघम में खेला जाएगा यह मैच। आज मैच के समय में बदलाव हुआ है, भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा मैच, 9:30 बजे पर होगा टॉस। 5 मैचों की सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए तैयार है, पहला मैच बारिश में धुल जाने के बाद दूसरे मैच में मिली थी हार, फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका। फिल्म फुकरे के बाद लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की जोड़ी, नई कॉमेडी फिल्म का ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी कि रणवीर सिंह को दिए जन्मदिन की बधाई, शेर रणवीर के लिए स्पेशल पोस्ट किया। 8 जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगा उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक, राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर रिलीज किया गया, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार कर रहे हैं डेब्यू। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का, 18 सितंबर को रिलीज होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से रूस का बड़ा हमला, 11 से ज्यादा लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल हुए, यूक्रेन का आरोप रिहायशी इमारतों पर निशाना बनाया गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, का दबाव महसूस कर रहे हैं पुतिन, साथ ही का यूक्रेन युद्ध है समाधान के करीब। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के तंज पर दिया जवाब, कहा जरूरी नहीं है कि अमेरिका उपराष्ट्रपति की हर बात पर मैं सहमत रहूं, भारत है उनका बड़ा मित्र। हमास ने गजा में अपनी सरकार को भंग करने का ऐलान किया, फिलिस्तीन के टेक्नोक्रेट्स को सत्ता सौंपने का दिया संकेत। ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा, 9 जुलाई को आयतुल्लाह खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में किया जाएगा सुपुर्द खाक। चीन के द्वारा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में जापान ने जताया है कड़ा एतराज, का गंभीर चिंता का विषय है चीन का मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी दी, कहा अगर एआई को शक्तिशाली बनाना है तो सुरक्षा नियम जरूरी है, बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समान नियम बनाने के भी। श्रीलंका की नुगाम्बो की एक जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, 3 ऑफिसर्स समेत 25 की मौत की खबर, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, घायलों में पुलिस के साथ की गई कैदी भी शामिल। यूरोप के कई देशों में जंगलों में भीषण आग लगी है, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, अल्बानिया में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर आखिर पत्थर क्यों मारे गए। जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था तब भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अब क्यों। ईरान की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में उमड़ी भीड़ ने एक पोस्टर लगाया था जिस पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा था, वी विल किल ट्रंप। तेहरान की मुख्य सड़क पर इस बैनर को लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप को शैतान बताया गया और उन पर कंकड़ पत्थर बरसाए गए। इसे स्टोनिंग ऑफ द डेविल यानी शैतान को पत्थर मारने की हज वाली रस्म का एक प्रतीकात्मक दृश्य माना जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि इस जनाजे में आयतुल्लाह खामेनेई के तीन बेटे मुस्तफा, मेसम और मसूद तो नजर आए, लेकिन मुश्तबा खामेनेई रात 9 बजे तक अपने पिता के जनाजे में नहीं दिखाई दिए। आगे अगर वो आते हैं तो हम आपको फौरन बताएंगे। आयतुल्लाह खामेनेई के साथ उनके दामाद, उनकी बेटी, पोती, मुश्तबा खामेनेई की पत्नी का शव भी वहां रखा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आयतुल्लाह खामेनेई की पत्नी कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो जनाजे में क्यों नहीं दिखी, अगर जिंदा नहीं है तो उनका जनाजा कहाँ है? और यहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर उनकी तबीयत खराब है क्या, क्या अब भी उनका इलाज चल रहा है? आखिर माँ और बेटे दोनों इस जनाजे से दूर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर कुछ और? इसके बाद आपको बताएंगे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे हंगामे के बीच आज मंदिर ट्रस्ट ने बड़ी बैठक की। आज सवाल यह है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर हो जाने के बाद ट्रस्ट का खोया हुआ भरोसा वापस लौट पाएगा? क्या अब राम मंदिर के प्रति प्रबंधन में पारदर्शिता, प्रोफेशनलिज्म की गारंटी मिलेगी? आज आपको बताएंगे कि किसी भी मंदिर और उसके प्रबंधन से कुछ खास लोगों के चहेते हटेंगे तभी चढ़ावा बचेगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर नाबालिगों के खिलाफ अपराध अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? क्या पुलिस का ढीला रवैया, अदालतों में सालों खिंचते मुकदमे और इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता मासूमों के लिए काल बन रही है? पश्चिम बंगाल में 12 साल की मासूम के साथ हुए यौन अपराध के मामले ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर क्या पथराव हुआ है। जब पहली बार हमने ये तस्वीरों को देखा तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, लगा कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाया गया होगा। आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। उदाहरण के लिए जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था तब भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हमें लगा कि जब युद्ध के दौरान ईरान के लोगों ने ऐसा नहीं किया था तो अब भी वहां ऐसा क्यों किया जाएगा? इन्हीं सारी बातों के कारण हमने इस पत्थर मारने वाले वीडियो को लेकर तफ्तीश की और इसके लिए ईरान के मीडिया में चलाई जा रही खबरों को भी देखा। सारी पड़ताल करने के बाद ये वीडियो असली निकला, यानी इसमें जो दिख रहा है वो सच में हुआ है और सच में राष्ट्रपति ट्रंप को शैतान बताकर उन पर पत्थर मारे गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी लिखती है कि ये पोस्टर शहीद इमाम आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में शामिल हुए कुछ लोगों ने खुद लगाया था। उन्होंने ये बड़ा पोस्टर तैयार किया जिसमें एक तरफ फारसी भाषा में लिखा था, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे यानी वी विल किल ट्रंप। इन विवादित नारों के साथ ये बड़ा सा बैनर तेहरान की मुख्य सड़क पर लगाया गया और इसके बाद आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए लोगों ने कहा कि उनके रहबर को इस शैतान यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने मारा है। देखिए, अब पूरी दुनिया इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से स्टोनिंग ऑफ द डेविल से जोड़कर देख रही है, जिसका मतलब होता है शैतान को कंकड़ या पत्थर मारना। यह रस्म हज यात्रा के दौरान निभाई जाती है जिसे रमी अल जमरात कहा जाता है। अब इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मीना के नाम के स्थान पर जाते हैं और वहां दीवार पर पत्थर या कंकड़ जो भी होता है वो मारते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराह के मुताबिक अल्लाह ने

हजर इब्राहिम साहब को आदेश दिया था कि वो अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी ले। जब इब्राहिम साहब इसके लिए तैयार हो गए तो रास्ते में उन्हें शैतान ने 3 अलग अलग जगहों पर रोकने और बहकाने की कोशिश की। जब अब शैतान ने हजरत इब्राहिम साहब को रोका तो उन्होंने हर बार शैतान पर 7-7 कंकड़ और पत्थर फेंके और हर बार शैतान वहां से गायब हो गए। जब शैतान कामयाब नहीं हुआ तो हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के आदेश का पालन करने की तैयारी की और जब वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने लगे तभी अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। इसी के बाद अल्लाह ने उन्हें एक मेंढा भेजा जिसकी कुर्बानी दी गई और आज इसी घटना को याद करके बकरीद मनाई जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म में शैतान वो होता है जो मुसलमानों को उनके असली मकसद से रोकता है और यहां ईरान में राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा ही शैतान साबित करने की कोशिश हुई, पत्थर मारे गए। तस्वीर बदलिए। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में आपको लाखों लोगों की भीड़ के बीच एक बैनर नजर आएगा जिस पर लिखा था किल ट्रंप। जो लोग इस बैनर को लाए थे वो आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम जनाजे से ज्यादा दूर नहीं थे। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ईरान के लोगों में राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की भावना मजबूत की जा रही है। आयतुल्लाह खामनेई का यह अंतिम विदाई कार्यक्रम इसका जरिया बना और हम सिर्फ एक पत्थर मारने वाले वीडियो और इस एक तस्वीर के आधार पर क्या ऐसी बात कही जा सकती है? तेहरान में जहां भी लोग शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे उन्होंने डाउन विथ यूएसए, देयर विल बी ब्लड और वी विल अवेंज जैसे पोस्टर्स और बैनर्स लहराए। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेरी वांस और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीरों पर यह लिखा गया था देयर विल बी ब्लड। इसका मतलब होता है खून बहेगा या हिंसा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मारने की इतनी खुली धमकी सामने आई है जिस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ईरान के लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं और ये कहते हुए लगाए हैं कि अमेरिका ने भी तो राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में उनके रहबर आयतुल्लाह खामनेई को मारा है। यानी ईरान की दलील यह है कि आपने हमारे नेता को मारा तो हम आपके राष्ट्रपति को मारेंगे। देखिए

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित कार्यक्रम बन गया है, जबकि प्रेस टीवी का कहना है कि यह सदी में हुआ पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतने करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरे। अब सोचे इन सारी बातों से क्या समझ आता है। इनसे यही पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई को मारकर आयतुल्लाह खामेनेई को और भी महान बना दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि अगर वो आयतुल्लाह खामेनेई को मार देंगे तो दुनिया उन्हें महान कहेगी कि भाई ट्रंप महान है, कसीदे पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के शान में कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार तो गारंटी से इसके बाद मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी सोच रहे होंगे क्योंकि उन्हें लगता था कि आयतुल्लाह खामेनेई से ईरान के लोग नफरत करते हैं और ईरान उन्हें उनकी गद्दी से हटाना चाहता है, और ऐसा वो कहते भी रहे कि ईरान के आम लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा सोचकर बुरे फंस गए। अब यही होता है, खुद को महान बनाने के चक्कर में राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई को इतना महान बना दिया कि आज ये भीड़ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और सिर्फ ये भीड़ क्यों, दुनिया के 30 से ज्यादा देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक नेता और इमाम ईरान पहुंचे हैं। जानते हैं इस विशाल भीड़ को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप को खुद विश्वास नहीं हो रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को उन्होंने बताया है कि वो ईरान के पूर्व लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार देख रहे थे जिस पर उन्हें हैरानी हुई। वो शब्दशः कहते हैं कि उन्हें लगता था कि ईरान के लोग आयतुल्लाह खामेनेई से नफरत करते हैं, लेकिन अब जब वो उनकी याद में रो रहे हैं तो उन्हें हैरानी होती है। और वो आगे भी कहते हैं कि उन्हें तो ये आंसू नकली लगते हैं। ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है शब्दशः, एक्सियोस से हमने कोट करके आपको बताया। मतलब यहां भी कमाल ही हो गया। कमाल इसलिए हो गया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को सही दिखाने के लिए इस पूरी भीड़ के आंसुओं को ही झूठा बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, जरा यह भी समझिए। हर इंसान चाहे आम हो बड़ा नेता हो, यही सोचता है कि उसकी मौत के बाद लोग उसे कैसे याद करेंगे। अगर सिर्फ वैश्विक नेताओं की बात करें तो यह भावना उनमें भी होती है। कई नेता तो अपनी मौत से पहले अपनी ओबिचुरी तक लिखवाते हैं। ओबिचुरी का मतलब होता है शोक संदेश जिसमें उन्हें महान बताया गया हो, जिनमें उनकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा हो। अब इसी में एक और चीज ये होती है कि जो नेता एक दूसरे के समकक्ष और विरोधी होते हैं वो कतई नहीं चाहते कि उनके विरोधी को दुनिया महान माने। जैसे यहां राष्ट्रपति ट्रंप और आयतुल्लाह खामेनेई एक दूसरे के समकक्ष थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही सोचकर आयतुल्लाह खामेनेई को मरवाया कि ईरान के लोग उनसे नफरत करते हैं, और उन्होंने कहा कि आम लोग रिजीम चेंज चाहते हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो खामेनेई को मरवा देंगे तो वो ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महान बन जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज महान आयतुल्लाह खामेनेई दिख रहे हैं। उनकी मौत के बाद दुनिया भर के नेता सरकारें उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कम से कम महान बनने वाली लड़ाई में तो राष्ट्रपति ट्रंप की निश्चित हार हुई है। देखिए सोशल मीडिया पर कुछ लोग आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे की इन तस्वीरों को दिखाकर ये कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा भीड़ नहीं आई। अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता भी है क्योंकि इनमें ज्यादा लोग नजर नहीं आते, जितने लोग दिखते हैं उतनी भीड़ तो कई देशों में दिख जाती है। लेकिन यहां भी एक समझिए फेर है। तेहरान के जिन इलाकों से अंतिम यात्रा निकाली गई वहां की तस्वीरों को कुछ लोग जानबूझकर नहीं दिखा रहे, जबकि इन तस्वीरों में लोगों को विशाल हुजूम नजर आता है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में कम भीड़ आई। हालांकि यहां एक सवाल यह जरूर है कि क्या इस विशाल भीड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साल 1989 में
जब इस्लामिक ईरान के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई थी, तब उनके अंतिम जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और तब उस भीड़ ने रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर है, जो आज रात 9 बजे तक अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए। हम आपको इस बुलेटिन के शुरुआत तक आई खबर के हिसाब से ही ये जानकारी दे रहे हैं। अगर आगे मुश्तबा खामनेई आते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आयतुल्लाह खामनेई के 3 बेटे मौजूद रहे, जिनमें मुस्तफा खामनेई, मेसम खामनेई और मसूद खामनेई का नाम शामिल है। लेकिन मुश्तबा खामनेई इसमें नजर नहीं आए। ये भी तब हुआ जब इस जनाजे में सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई का पार्थिव शरीर नहीं रखा गया है, उनके साथ उनके दामाद डॉक्टर मिसबा अल होदा, उनकी बड़ी बेटी सैयदे बोशरा हुसैनी खामनेई, उनकी 14 महीने की पोती जहरा, उनकी बहू जहरा हद्दाद आदेल जो उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की पत्नी है, और उनका शव भी इस जनाजे में रखा गया है। लेकिन मुश्तबा खामनेई फिर भी अब तक इस अंतिम विदाई कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं और पश्चिमी मीडिया इसके पीछे इसराइल को बड़ी वजह बता रहा है। इसराइल की इतनी चर्चा क्यों है ये भी समझ लीजिए। रिपोर्ट बीबीसी की है जो ये कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्ध विराम बहुत नाजुक है और इसमें इसराइल को भी शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है तो समझौते की बाध्यता इसराइल पर लागू नहीं होती। इसराइल अगर चाहे तो वो भी हमला कर सकता है और यही वजह है सुरक्षा कारणों से शायद मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने परिवार के लोगों के अंतिम जनाजे में अब तक गैर मौजूद रहे। और यहां यह भी देखिए कि आयतुल्लाह खामनेई की पत्नी मंसूरे खुजास्ते बागेर जादे कहां है। शुरुआत में खबर आई थी कि 28 फरवरी के हमले में उनकी भी मौत हो गई, लेकिन फिर ईरान के ही मीडिया ने बताया कि वो घायल है और उनकी मौत नहीं हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मुश्तबा खामनेई की भी घायल होने की खबर बताई गई। लेकिन अब जब आयतुल्लाह खामनेई को दफन करने की रस्में पूरी की जा रही हैं, तब उनकी पत्नी यानी आयतुल्लाह खामनेई की पत्नी को भी किसी ने नहीं देखा है, और इससे उनके और मुश्तबा खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह अंतिम जनाजा है। और जब इस अंतिम जनाजे में दुनिया के कई देशों के नेताओं ने शिरकत की है तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि उनके बेटे, उनकी पत्नी ही अब तक इसमें क्यों दिखाई नहीं दी। देखिए

खैर, यह इस तस्वीर को भी जरूर देखा जाना चाहिए। हमारे देश में सोशल मीडिया पर खूब अभियान चला कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान क्यों नहीं गए। कमाल तो तब हो गया जब कुछ लोगों ने यह दलील दी कि प्रधानमंत्री मोदी इसराइल को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए ईरान नहीं जा रहे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आज से 11 तारीख तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, जिसके कारण उनका ईरान जाना संभव नहीं था और ये पहले से तय कार्यक्रम था। आज ही प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां आप इस बात को भी याद रखिएगा कि ईरान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भी आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने राजदूत को इस कार्यक्रम में भेजा और खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ईरान नहीं गए, लेकिन वहां कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा। और सोचिए, इससे पता चलता है कि हमारे देश में अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कैसे करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, ये काम भी धर्म के नाम पर होता है। ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई किस चीज की है? धर्म की लड़ाई है। यानी ये लोग अपनी बात करते हैं, सच क्या है वो प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे से हम आपको बताना चाहते हैं। इस देश के बारे में भी बताएंगे, इस देश की मुस्लिम आबादी के बारे में भी बताएंगे और कैसे वजह धर्म नहीं है। यहां ये भी देखिए कि आज जब प्रधानमंत्री का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तब उसी समय इंडोनेशिया की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया, यानी सुरक्षा के लिए उड़ान भरी साथ में। ऐसा सम्मान देने और मजबूत संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। और यहां यह भी मत भूलिएगा कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। जी हां, जिस इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान कर रहा है, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ये बार बार फैलाता है कि मुसलमानों को मोदी से खतरा है। देखिए,

0: प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो सोशल मीडिया पर एक वर्ग बहुत एक्टिव दिखता है। कहता क्या है? कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश दौरों पर जाने की जरूरत क्या है। जरा ये लोग इस खबर को देखें। खबर है कि इस विदेश दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील हो सकती है, यानी हम जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं उसे इंडोनेशिया हमसे खरीद सकता है। ये जानकारी हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने दी है। इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस का पूरा पैकेज खरीदना चाहता है, जिसमें मिसाइल्स के साथ मोबाइल लॉन्चर्स, रडार, मेंटेनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट पैकेज शामिल होगा। इससे पहले हमने फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर 375 मिलियन डॉलर की डील की थी और अब ऐसे ही डील इंडोनेशिया, वियतनाम, इन दोनों देशों के साथ भी हो सकती है। और ये दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आते हैं, जहां चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसे आप भारत की टिट फॉर टैट रणनीति भी कह सकते हैं। देखिए, चाइना ने हमारे साथ क्या किया? उसने हमारे सभी पड़ोसी जो देश हैं, उनको अपने हथियार बेचे। इनमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने 80% जो हथियार है वो किससे खरीदता है? चाइना से। बांग्लादेश किससे खरीदता है? 72% हथियार चाइना से खरीदता है। म्यांमार जैसा देश, वो भी 26% हथियार चाइना से ही खरीदता है। लेकिन अब भारत भी यही कर रहा है। चाइना ने हमारे पड़ोसी देशों को अपने हथियार बेचे, तो अब हम भी चाइना के आसपास मौजूद देशों को अपने हथियार बेच रहे हैं और इसीलिए इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि चढ़ावा चोरी में घिरा राम मंदिर का ट्रस्ट क्या खोया हुआ ट्रस्ट वापस लौटा सकेगा, और क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा, और क्या राम मंदिर का जो ये ट्रस्ट है उसको लेकर पिछले एक महीने से चल रहा कोहराम आज के बाद थमने लगेगा? आज ये सारे सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद उठे हैं। चढ़ावा चोरी कांड के बाद मंदिर ट्रस्ट की पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। पहला, ट्रस्ट महासचिव पद पर रहे चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा, दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। दूसरा, महासचिव पद के लिए अंतरिम जिम्मेदारी दलित समुदाय से आने वाले उन कृष्ण मोहन जी को दी गई, जिन्होंने जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं कृष्ण मोहन जी और उनकी नियुक्ति राम मंदिर शिला पूजन की ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद सितंबर 2025 में ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर हुई थी। हरदोई के वो रहने वाले हैं, भारत वन सेवा में काम कर चुके हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। आज का तीसरा फैसला, ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े नाम का नाम शामिल किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को अब होगी और 22 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, इन सब पर फैसला हो सकता है। अब मैं राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक के संदेशों और संकेतों को आपको जरा समझाना चाहती हूं। तो चढ़ावा चोरी कांड में कटघरे में आए चंपत राय और अनिल मिश्रा आज बैठक में शामिल ही नहीं हुए, और हमारे रिपोर्टर अभिषेक के हवाले से यह खबर आई कि जहां यह बैठक चल रही थी उसके बाहर खूब आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी काफी गहमा गहमी हुई और काफी नाराजगी जाहिर की गई। अब दोनों के बैठक में शामिल नहीं होने का संकेत यह था कि इन पर लगे लांछन से ट्रस्ट दूरी बरत रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, चंपत राय नहीं दिखे, लेकिन बैठक के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस वीएचपी से जुड़े इन दोनों व्यक्तियों को अकेले मझधार में छोड़ने का जोखिम लेने को ट्रस्ट तैयार नहीं है। अब वो कैसे? तो ये जो कोषाध्यक्ष है राम मंदिर के, गोविंद देव गिरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अयोध्या में कम पुणे में ही ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने आरोप लगने पर कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे हस्ताक्षर से कुछ नहीं होता है, वही कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने खास तौर पर मंदिर आंदोलन और अयोध्या से चंपत राय के जुड़ाव के लिए उनका जिक्र नहीं है। अब वो कैसे? तो ये जो कोषाध्यक्ष है राम मंदिर के, गोविंद देव गिरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अयोध्या में कम पुणे में ही ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने आरोप लगने पर कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे हस्ताक्षर से कुछ नहीं होता है। वही कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खास तौर पर मंदिर आंदोलन और अयोध्या से चंपत राय के जुड़ाव के लिए उनका जिक्र किया। गोविंद देवगिरी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें चंपत राय की नीयत पर कोई संदेह नहीं है, उन्हें भोला तक बता रहे हैं। सुनिए,
1: ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात।
0: मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद उनका बचाव किया गया और उनका बचाव ये साफ बता रहा है कि कम से कम उन पर कानूनी आंच शायद ही अभी आए। मंदिर ट्रस्ट से आज दान चोरी मसले पर हो रही राजनीति पर पलटवार करने की कोशिश भी की। मंदिर ट्रस्ट चांदी की काकभुशुंडी जी, सोने की रामचरितमानस और चांदी की हार समेत उन 5 बहुमूल्य दान वस्तुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आया था जिनकी चोरी का दावा किया गया था। चांदी की जिन चीजों को भारत सरकार के टकसाल में गलाकर उनकी छड़े बनाई गई हैं, उसका बुरा प्योरा प्रमाण पत्र के साथ मौजूद है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दावा हुआ है कि दान के रूप में 2,926 वस्तुएं मिली हैं, जो दान की गई तारीख और पूरे ब्योरे के साथ मौजूद हैं। दान देने वाला व्यक्ति खुद अयोध्या जाकर इसकी पुष्टि कर सकता है। इसी के साथ मंदिर ट्रस्ट ने यह आरोप भी मढ़ दिया कि कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण मामले को रामलला मंदिर, मंदिर ट्रस्ट और हिंदू आस्था को कमजोर करने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट आज की बैठक से चढ़ावा चोरी कांड से उबरने की कोशिश करता ही दिखाई दिया, तो वही है सहयोग है या कुछ और। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ अशोक सिंघल की प्रतिमा का भी आज लोकार्पण किया। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम का मतलब राष्ट्र है और अयोध्या में राम का मंदिर अशोक सिंघल के संकल्प का नतीजा।
2: सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदे अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदे अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है।
0: तो आज हम एक और मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा है मंदिरों के प्रबंधन में अपने खास, अपने चहेते लोगों को तैनात करना। और ये मुद्दा पहले राम मंदिर में उठा, हमने आपको सबरीमाला के मंदिर में भी सोना चोरी की पूरी खबर दिखाई थी जिस पर बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। लेकिन सबरीमाला मंदिर हो तो, राम मंदिर हो तो, और अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर जहां पर चोरी के यही आरोप लग रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में चोरी का यह आरोप पहली बार 2 जुलाई को लगा, इसलिए लगा क्योंकि से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो मंदिर का दान पत्र होता है उससे से पैसे निकालकर उनमें गड़बड़ी की जा रही है। अब यहां आप कहेंगे कि जब चोरी का वीडियो ही मिल गया तो चोरी तो आपने आप साबित हो गई। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहां एक पेच फंस गया। जो मंदिर समिति है उसने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की, वो इसको संदिग्ध मान रहा है। वीडियो को संदिग्ध मान लिया गया और उसके आधार पर जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह वीडियो असली है या वीडियो नकली है। और क्योंकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई इसलिए अभी चोरी का यह मामला साबित नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा विवाद यह है कि मंदिर में जो 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी को बदल दिया गया है। इससे यह सवाल उठता है कि जिन कैमरों में चोरी पकड़ी जानी थी क्या वही कैमरे बदल दिए गए। यह सवाल मंदिर समिति से भी पूछा गया जिस पर यह सफाई दी गई कि एक श्रद्धालु ने बद्रीनाथ मंदिर को 32 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे दान में दिए थे, जिसके बाद पुराने कैमरों को हटाकर नए कैमरे लगा दिए गए। लेकिन सोचने वाली बात है, 1 जुलाई को कैमरे बदले गए, इसके पहले अगले ही दिन 2 जुलाई को मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा। इससे ऐसा लगता है कि शायद मंदिर में कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही, और ऐसा तो नहीं है कि आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएं कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश है। देखिए, उत्तराखंड में भैरव सेना नाम का एक संगठन है जो खुद को देवभूमि की संस्कृति, धार्मिक पहचान की रक्षा करने वाला समूह बताता है। अब इस संगठन ने खुद मंदिर समिति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह आरोप लगाया है कि बद्रीनाथ मंदिर का चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, और यह भी दावा है कि इस चोरी में मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सचिव खुद शामिल है। यह आरोप बद्रीनाथ धाम में कई लोग लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वो उनका निजी सचिव नहीं है, बल्कि मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है, और इस चोरी में उनका नाम घसीटकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब ये दलील अपनी जगह है, लेकिन मंदिर समिति पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर है। इतने गंभीर है कि इन्हें खारिज करने से चोरी का ये दाग हटेगा नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे बदले गए, जब चोरी का वीडियो वायरल हुआ और उसके आधार पर ये मांग की गई कि मंदिर समिति को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच होनी चाहिए, तो अब मंदिर समिति की तरफ से अलग ही बात कही जा रही है। कहा गया कि उसने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देख लिया है, लेकिन इनसे उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि चोरी हुई या चोरी नहीं हुई, यानी मंदिर समिति को वीडियो देखने से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो सच कैसे सामने आएगा। और अब जबकि इस पर सवाल उठ रहे हैं और ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, तब मंदिर समिति ने 4 सदस्यों की एक जांच टीम बनाई है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्यों मंदिर का चढ़ावा चोरी हो सकता है और यह आरोप सही तो नहीं है। शक का पहला कारण है हुंडी, जिसे दानपत्र कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर हुंडी की सील मजबूत ना हो तो उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। शक का दूसरा कारण है ट्रांसपोर्ट, यानी जब हुंडी से चढ़ावे का पैसा निकालकर काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता है तब भी यह चोरी संभव है। यह भी संभव है कि चढ़ावे की चोरी गिनती के वक्त हुई। ठीक वैसी ही बातें आ रही है जो राम मंदिर में आई थी, ठीक उसी तरह जैसे हमने आपको बताया मंदिर के मुद्दे में, राम मंदिर के मुद्दे में अयोध्या में यही सब आरोप लगे। आरोप तो यह भी लग रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर में जो चढ़ावा आया उसके रिकॉर्ड में ही हेर फेर करके चोरी की गई। नहीं, चढ़ावा ज्यादा आया लेकिन लिखा कम गया, बाकी पैसे पार कर दिए गए। और 5वां आरोप ऑडिट को लेकर लग रहा है, जिससे शक है कि यह चोरी अब तक पकड़ी नहीं की गई है। अब ये देखिए कि इतने बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावे की ये चोरी हो कैसे जा रही है, हमारी सरकारों को इसमें क्या करना चाहिए। अगर बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो इसका प्रबंधन बद्री केदार टेम्पल कमेटी द्वारा किया जाता है। ये कमेटी इतनी विशाल है कि इसके अधीन सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर नहीं आता, जो केदारनाथ मंदिर है उनके चढ़ावे की निगरानी और प्रबंधन भी यही समिति करती है। और सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर ही नहीं, उत्तराखंड के 45 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन इसी समिति के पास है, और इसके मुताबिक इन 45 से ज्यादा मंदिरों में हर साल 80 से 85 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान आता है। राम मंदिर को मिले 153 करोड़ रुपए के चढ़ावे और दान से कम है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ज्यादा। अगर ये चढ़ावा चोरी साबित हो गया तो आस्था कुछ ठेस और पहुंचेगी। पिछले साल 51 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आए थे, 17,68,000 लोगों ने श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए, 16,60,000 लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए, और यहां उत्तराखंड की सरकार ये नहीं कह सकती कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री ही करते हैं, और उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इससे सरकारों को भी ये देखना होगा कि उनके बनाए सिस्टम में ये चोरी कैसे हो रही है, कितने गंभीर हैं ये मुद्दे और कितने मंदिर ऐसे हैं जहां ये हो रहा है। राम मंदिर के बारे में तो आप सब सुन ही रहे हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, 4 से 5 किलो सोना चुरा लिया गया। हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई और अब देखिए बद्रीनाथ मंदिर का नाम आ रहा है। बड़ी बात तो यही है ना कि ऐसे ज्यादातर मंदिरों के संचालन की अध्यक्षता अलग अलग जो लोगों के साथ की जा रही है वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, और यही आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है कि वीएचपी हो तो आरएसएस हो तो ऐसे संगठनों से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात सबरीमाला पर सही नहीं बैठती, जहां पर जो दो आरोपी बताए गए हैं वो सीपीएम से जुड़े हुए बताए गए हैं, वाम दलों से जुड़े हुए बताए गए हैं, और ये तो खुद कोर्ट ने किया है। बहरहाल, राम मंदिर के मामले में चंपत राय और बाकी सदस्य संघ से हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के इस मामले में भी मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी संघ से जुड़े हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी वो रह चुके हैं। देखिए,

0: जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
1: बैठक करके एक लेटर जो है बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह नागर जी को हमने भेजा है जिसमें हमने कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि यदि अति सिर्फ कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन को सड़कों पर उतरकर आकर प्रदर्शन करना पड़ेगा।
2: अब जानते हैं जिन मंदिरों के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा और जिन मंदिरों में चढ़ावा आज भी सुरक्षित है उनमें बड़ा अंतर क्या है। आप सोच रहे होंगे कि वहां सुरक्षा ज्यादा होगी तो ये एक बात तो है कि भाई जहां पर ज्यादा पारदर्शिता है जहां पर सुरक्षा ज्यादा है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये कारण है मंदिर के प्रबंधन में विविधता ना होना, यानी राजनीतिक

0: यानी राजनीतिक और अलग अलग संगठनों की पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों पर मंदिर की पूरी जिम्मेदारी सौंप देना और ये लोग लेना, ये सोच लेना कि भाई अब कोई बेईमानी नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी चूक है या कहिए भूल साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन मंदिरों में चढ़ावा सुरक्षित रहता है वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हवा हवाई बात नहीं कर रहे, आप इस उदाहरण को देख लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि क्यों मंदिर में चहेते हटाओ चढ़ावा बचाओ की मुहिम जरूरी है। इनमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, पूरे देश में सबसे ज्यादा चढ़ावा, सबसे ज्यादा दान इन्हीं मंदिर को मिलता है, लेकिन इस मंदिर का प्रबंधन सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं है, इसकी जगह यहां सबसे मजबूत संस्थागत ढांचा काम करता है। मंदिर प्रशासन का बोर्ड होता है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त लोग शामिल होते हैं, फिर एक फाइनेंस स्टाफ अलग से होता है, सरकारी और बैंक कर्मचारी चढ़ावे की गिनती के लिए अलग अलग से मौजूद होते हैं और रोटेशन पर काम करना होता है। सबसे बड़ी बात, यानी कोई भी वहां पर गोटियां नहीं बैठा सकता, ये सुनिश्चित करना है। यानी ऐसा नहीं होता कि कुछ सरकारी कर्मचारी या कुछ बैंक कर्मचारी हर बार चढ़ावे की गिनती के लिए आए, इन्हें निर्धारित समय पर बदलना होता है और इनकी भी कड़ी निगरानी की जाती है। यानी आंख बंद करके किसी चहेते पर भरोसा नहीं करना है। फिर आता है उड़ीसा का श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। जब इस मंदिर की दान पेटियों को खोला जाता है तो उस दौरान मंदिर के प्रशासन, सरकारी अधिकारी, एक गजेटेड ऑफिसर, एक गवाह सब मौजूद रहता है और दान पेटियों को खोलने से पहले और बाद में सील किया जाता है। तीसरा बड़ा मंदिर जम्मू का श्री वैष्णो देवी मंदिर है। यहां हुंडियों यानी दान पेटियों को तभी खोला जाता है जब हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी है, प्रबंधक है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सब मौजूद होते हैं। चढ़ावे का पैसा बैंक तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होता है और चढ़ावे तक जिन लोगों की पहुंच होती है वो बदलते रहते हैं, उनकी निगरानी होती है, उनको मॉनिटर किया जाता है। और इसके बाद आता है मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, जहां हर गुरुवार को दान पेटियों को खोला जाता है। यहां दान पेटियों को खोलते वक्त जो ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्टी, बैंक्स के प्रतिनिधि, ऑडिटर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब मौजूद होते हैं और हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई सीसीटीवी कैमरों के आगे खड़ा हो जाए, चढ़ावे की चोरी कर ली जाए, इस तरह से नहीं हो सकता है। अगर किसी कारण से सीसीटीवी कैमरों में चढ़ावे की गिनती साफ साफ दिख नहीं रही होती हो तो चढ़ावे की गिनती साफ रोक दी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग होती है सीसीटीवी से जितनी देर गिनती चलती है, चढ़ावा फिर से सील कर दिया जाता है अगर कोई भी फुटेज में प्रॉब्लम हो, और जब सब कुछ सही हो जाए, कैमरा ठीक काम करे, बराबर निगरानी हो, तब चढ़ावे की गिनती होती है। लेकिन जिन मंदिरों में यह व्यवस्था नहीं है वहां इसके कारण चढ़ावे की चोरी आसान हो जाती है। और भगवान राम मंदिर में भी हमने यही देखा, बद्रीनाथ में आरोप लग रहे हैं, सबरीमाला में अलग जांच चल रही है। ये भी तो सोचे कि हमारे देश में ये लोग इन मंदिरों में बेईमानी कर कैसे लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए, जो देव स्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिए विख्यात, वहां धन प्राप्ति के लिए आरोप लग रहे हैं। आरोपों के मुताबिक भगवान बद्री के चरणों का चढ़ावा चुरा लिया, और यह भी तब हुआ, पांच में से दो दान पेटियां भगवान बद्री के गर्भगृह में लगी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों में 12 और 13 वर्ष की मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या की दो बड़ी वारदातें सामने आई हैं। इन वारदातों ने एक समाज के तौर पर सबकी नजर झुका दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक 12 साल की बच्ची को गैंग रेप के बाद मार दिया गया। इस वारदात ने लोगों को इतना भड़काया कि उन्होंने एक आरोपी को खुद ढूंढ निकाला और फिर बीच सड़क पर पीट पीट कर मार डाला। ये दोनों ही घटनाएं न सिर्फ समाज के तौर पर हमारे पतन को दिखाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी दिखाती हैं कि पुलिस प्रशासन सरकार खौफ खत्म हो चुका है, कानून का एक बाल नहीं है, और इसी वजह से इन बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म हो रहा है। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक आरोपी पीड़ित बच्ची का पीछा करते हुए दिखा। इसी सीसीटीवी में दिखा कि पीड़ित बच्ची उसी व्यक्ति के साथ कहीं जाती नजर आती है। 12 साल की इस लड़की, ये जो बच्ची थी, कहीं जाती नजर आती है। 12 साल की इस लड़की, ये जो बच्ची थी, उसका शव अगले दिन एक तालाब में मिला। शनिवार शाम को ये बच्ची अपने एक दोस्त का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कहीं जाती नजर आती है। 12 साल की इस लड़की, ये जो बच्ची थी, उसका शव अगले दिन एक तालाब में मिला। शनिवार शाम को ये बच्ची अपने एक दोस्त का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रात में ही बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। खोजबीन के दौरान उन्हें पता चला कि 4 लोगों ने उसे किडनैप किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस केस में गंभीरता नहीं दिखाई। शनिवार रात को ही बच्ची की तलाश कर रहे लोगों ने खुद ही इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। कुछ लोगों ने आदमी को पहचान लिया, बच्ची को अपने साथ ले गया था जो व्यक्ति, और फिर रविवार सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में लोग उस आरोपी के घर पहुंचे। गुस्से से लोग तप रहे थे। उस आरोपी ने तुरंत उस तालाब के बारे में बताया जहां पीड़ित बच्ची को फेंका गया था। इसी आरोपी ने बताया कि वारदात में 4 लोग शामिल थे। जिस आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया था, लोगों ने उसे बुरी तरह मारा, लेकिन पुलिस ने फिर उसे बचाया किसी तरह। पुलिस इंद्रजीत नाम के एक अन्य आरोपी को नहीं बचा पाई। भीड़ ने उसे पहचान लिया और पीट पीट कर मार डाला। अब 6 सदस्यों वाली SIT जो है वो अब जांच कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। सुनिए,
1: 4 आदमी के खिलाफ FIR हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए कहूंगा। उनका गाड़ी जिनका पिताजी के साथ काली बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गाड़ियान का जो जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है, और गाड़ियान का साथ शायद मेरा काल मुलाकात भी हो जाएगा, वो जो जो बोलेगा करूंगा।
0: अभी कुछ दिन पहले, अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी इसी तरह की वारदात सामने आई, जिसमें 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची को ई रिक्शा चलाने वाले ने धोखे से एक होटल संचालक को बेच दिया। अब इस होटल वाले ने मासूम बच्ची को सेक्स रैकेट के दलदल में ढकेल दिया। 5 दिनों तक ये बच्ची सेक्स रैकेट चलाने वालों के चंगुल में फंसी रही और 32 आरोपियों ने इसे अपना शिकार बनाया। गैंगरेप की इस घटना ने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस केस में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें होटल मालिक, मैनेजर, ई रिक्शा चालक, कुछ अन्य लोग शामिल हैं। लोगों का गुस्सा लेकिन देखिए, और ये गुस्सा देखकर स्थानीय प्रशासन ने उन होटल्स पर भी बुलडोजर चलवा दिए हैं जिनमें ये वारदात अंजाम दी गई थी। बरुईपुर और श्रीगंगानगर की ये दोनों वारदात नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों का स्याह सच है। पिछले कुछ वर्षों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, सरकार सबके इकबाल पर यह इतना बड़ा सवाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के करीब 1,62,000 मामले दर्ज हुए थे। साल 2023 में बढ़कर करीब 1,77,000 हुए, फिर 2024 में 6% बढ़कर 1,87,000 को पार कर गए। साल 2024 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि नाबालिगों के खिलाफ हर दिन 514 यानी हर घंटे 21 अपराध हो रहे हैं। ये दुखद भी है और उतना ही ज्यादा डरावनी बात भी है। बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनमें 40% मामले किडनैपिंग के हैं, करीब 37% मामले रेप के हैं, यौन शोषण के हैं। ये रिपोर्ट्स बताती है कि नाबालिगों के खिलाफ रेप और यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। सोचिए, ये तब है जब हमारे देश में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में फांसी तक का प्रावधान है, पॉक्सो। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत कार्रवाई होती है, पॉक्सो कहा जाता है। साल 2019 में इस कानून को ज्यादा सख्त बनाया गया, संशोधन करके नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में फांसी तक का प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन फिर भी इन अपराधियों के मन में खौफ नहीं। बावजूद इसके नाबालिगों के खिलाफ संख्या बढ़ी है और ये चिंता का विषय है। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने इस बार अभी तक केवल टीजर ही दिखाया है, लेकिन मुंबई में पूरी फिल्म रिलीज हो गई है और इस फिल्म का रिस्पॉन्स ऐसा है कि त्राहिमाम है। मुंबई शहर का शायद ही ऐसा कोई भी इलाका बचा होगा जहां जल भराव की स्थिति ना बनी हो। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया और बताया है कि अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार भी देखिए 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले 24 घंटों के अंदर ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में 200 से 300 mm बारिश हुई। पिछले 5 दिनों के अंदर मुंबई में 700 मिलीमीटर बारिश हो गई है, 700 से 800 समझिए। जुलाई महीने में होने वाली कुल औसतन जो बारिश है उसका 80% बारिश हो चुका। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉनसून में आमतौर पर 2 से 6 जुलाई के बीच 350 mm बारिश होती है, तो आप कल्पना कीजिए 700 से 800 डबल बारिश। पिछले 26 वर्षों में यानी साल 2000 के बाद से मॉनसून में 1 जून से 6 जुलाई के बीच इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस बार 1 जून से 6 जुलाई के बीच 1240 मिलीमीटर बारिश हुई है। अपने आप में ये एक नया रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड तोड़ बारिश का असर नजर भी आ रहा है मुंबई में। देखिए भीषण बारिश का असर समझाने के लिए ये तस्वीरें देखिए। अंधेरी हो, वसई विरार, नाला सुपारा, गोरेगांव, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश का बुरा असर दिख रहा है। और इसके अलावा समंदर में हाई टाइड भी है तो लोगों को समंदर किनारे जाने से रोका जा रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बना ये बहुचर्चित मिसिंग लिंक अपनी पहली बारिश में भी इसको झेल नहीं पाया है। पहली बारिश को उद्घाटन के तीसरे महीने में ही इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी बारिश की वजह से मिसिंग लिंक टनल के पास लैंडस्लाइड हो गया, पानी का झरना फूट पड़ा है। इसकी वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बाधित हो गया। यह हैरानी की बात है कि इस मिसिंग लिंक को शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना बताया गया था। बारिश की वजह से अब तक करीब 17 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, 31 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है, 10 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को छोटा किया गया है। बारिश इतनी ज्यादा है, भारी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, 365 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। तो इससे आप गंभीरता समझ सकते हैं इस बार की बारिश का। मुंबई के मशहूर डिब्बा वालों ने भी एक दिन के लिए अपनी सर्विस बंद कर दी। स्कूल हो, कॉलेज हो, छुट्टियां कर दी गई हैं। ऑफिस जाने वालों को भी वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि जितना हो सके वो घर में रहे, बाहर ना जाए। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी अगले दो दिन मुंबई वालों को और संभल कर बिताने होंगे।

0: और हर साल की तरह इस साल भी मुंबई डूब गई। हर साल की तरह इस साल भी सारे दावे धरे के धरे रहे।
1: भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से मुंबई और पुणे के बीच जो रेल यातायात है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई है।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और ज्ञान का भ्रम ऐसा है कि 2 मिनट की क्लिप देखकर लोग उन किताबों पर बहस कर रहे हैं जिन्हें लिखने में वर्षों लगे। नमस्कार।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है?

0: खोदा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं ये त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चहाबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।

0: टनल बंद हो गई, बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब दो महीने पहले ही चालू हुआ था। 6695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
1: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। दो महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखुर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
2: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
3: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
4: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है, और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
6: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है, क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधमरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
7: घर से उठा लाए थे पुलिस।
8: कौन उठा लाया था?
7: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
8: फिर
7: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
8: किस बात में उठा के लाए थे?
7: एक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
9: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। समझा मोरे लड़का का मारो है।

0: सब पुलिस वाले पूरे मारू है, मेरे हल्के का दरोगो मारू है, अपना बता बताए और कुतवाल मारू है, सब पूरे मारू।
1: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है, एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवा कर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी, कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी। नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
2: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
3: दिलजीत दोसांझ की यह फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
4: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने कहा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
3: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
5: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
3: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई।
6: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
3: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
1: 2 दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं।
7: let's rope Geronimo's. Let's rope Geronimo's.
1: ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामेनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
8: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
1: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
8: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
1: आपको बता दें कि खामेनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

कार चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

0: खोता बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यह सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के परासरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चहाबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता यह चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधभरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाया था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग उन्हें मारा।
11: किस बात में उठा लाए थे?
10: फेक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो भाई सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दरोगा वो मारो है, नौना बतावत है, और कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
14: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
15: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
14: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी?
16: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
14: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
17: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास
13: क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
14: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
8: पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है, वहां आजादी की मांग हो रही है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ के खिलाफ जोरदार नारेबाजियां हो रही हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान से आजादी चाहता है और इस आजादी के लिए वहां की आवाम सड़कों पर है।
17: ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ा देने वाली हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की गवाही देती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आसिम मुनीर के जुल्म को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर गुस्से से उबल रहा है। एक दिन पहले आयोजित भारी विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है और कई घायल हैं। इस बीच विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को जबरदस्त और निर्णायक कदम उठाया जाएगा। एक बयान में कमेटी ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कमेटी ने पीओके के लोगों के साथ ही विदेश में रह रहे कश्मीरियों से भी अपील की है कि 9 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शनों में वो शामिल हों। पीओके तन कर खड़ा है, पाकिस्तानी हुक्मरान इस विद्रोह से डरे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
14: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
18: समय हम तेहरान में मौजूद हैं। अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीर आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था। आज आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया, जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
18: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का है। और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है, तो इस सिंबल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहां इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

कार चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

0: खोता बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के परासरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर एक, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर दो, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर चार, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर पांच, जवाब के बजाय चाहबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफतकाल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए, वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा, हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड

0: हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
1: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
2: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधमरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
4: घर से उठा लाए थे पुलिस।
5: कौन उठा लाया था?
4: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
5: फिर
4: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
5: किस बात में उठा के लाए थे?
4: फेक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
6: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
7: कौन मारे?
6: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दर होगा, वो मारो है, ना बता बता है, कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते

0: हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी, कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी। नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
1: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
2: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
3: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
2: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
4: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
2: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई।
5: आपको बता दें कि जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
2: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: 2 दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं।
6: Let's
0: ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामेनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
6: तेहरान में मौजूद है और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
6: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामेनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरा जोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम के अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है?

0: खोता बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यह सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं ये त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर एक, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर दो, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर चार, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर पांच, जवाब के बजाय चाहबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेसवे पर बारिश कहर बनकर बरसी है तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा, हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधभरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाया था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
11: किस बात में उठा के लाए थे?
10: फेक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है, मेरे हल्के का दरोगा वो मारो है, ना बतावा दे और कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
14: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
15: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने उसे कहा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई CD बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
14: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी?
16: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके? जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
14: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
17: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास
13: क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
14: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
17: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
17: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिम्बॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

दवा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

0: खोटा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोल मोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी, तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चहाबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गए। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा, हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के बसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है। ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने

0: भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
1: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधमरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
3: घर से उठा लाए थे पुलिस।
4: कौन उठा लाए था?
3: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
4: फिर
3: आगे थाने के अंदर सब लोग उन्हें मारा।
4: किस बात में उठा के लाए थे?
3: फिर बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
5: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
6: कौन मारे?
5: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दरोगा मारो है, अपना बता बता और कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवा कर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक।
2: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
7: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
8: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने कहा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं, पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई।

0: ਭਾਈ ਸੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹ ਉੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ
1: ਅਬ ਫਿਲਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੜੀ
2: ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਕੇ ਉਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸਕੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਅਗਰ ਤੋ ਕੋਈ ਖੁਦ ਖਾੜਕੂ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਆ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤੋ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕੇ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ
1: ਆਖਿਰ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੋ ਬੈਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ
3: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन्होंने मास क्रिमेशंस 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे
1: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसविंद सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो
4: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है
5: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं
6: तेहरान में मौजूद है और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है मातम है लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था आज आजादी लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का लोग अभी सड़कों पर बने हुए हैं
5: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है
6: वी मस्ट राइज वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है, और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है, तो इस सिंबल को यहां पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
5: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहां इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।

चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है?

0: खोटा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी दो लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं ये त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के परासरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर एक, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर दो, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर चार, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर पांच, जवाब के बजाय चाहबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: कैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधभरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाया था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग उन्हें मारा।
11: किस बात में उठा लाए थे?
10: एक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतारकर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दरोगा वो मारो है, नौना बतावत है, और कोतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
14: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
15: आई नो बहुत सारे लोग सोचते संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
14: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी?
16: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके? जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
14: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
17: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास
13: क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
14: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
17: समय हम तेहरान में मौजूद हैं। अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीर आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
17: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

दवा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाएं तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

0: खोदा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चाहवा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मॉनसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर हैं। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए। तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के वसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधभरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाए था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
11: किस बात में उठा के लाए थे?

0: पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
1: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
2: कौन मारे?
1: सब पुलिस वाले पूरे मारो है, मेरे हल्के का दर हो गए, मारो है, अपना बता बताए मारो है, सब पूरे।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है, एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी, कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक।
3: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
4: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
5: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई सीडी बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
4: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
6: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
4: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई।
7: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
4: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: 2 दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों

0: लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि खामेनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
1: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
1: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामेनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

दवा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोरा जोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम के अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है?

0: खोदा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यह सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोलमोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं ये त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चाहबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा, हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के बसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि बसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधबरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाए था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले, चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग ने मारा।
11: किस बात में उठा के लाए थे?
10: एक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े थे बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दरोगा वो मारो है, अपना बता बताए कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इससे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
14: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
15: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूंगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ए पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई CD बना के रख ली मैं था। बात थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
14: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी?
16: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
14: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
17: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास
13: क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
14: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
0: दो दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
17: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी दो दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज आजादी स्क्वायर लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अब भी सड़कों पर बने हुए हैं।
0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
17: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है तो इस सिंबल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

0: खोटा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।
1: वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की तरफ से बुलाई गई मैराथन बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के अंदर क्या हुआ, इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। बैठक खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज की बैठक और प्रेस वार्ता का सारांश यही है कि चंपत राय दूध के धुले हैं। जांच और संपूर्ण SIT रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रस्ट की बैठक में क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या बैठक ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को बचाने के लिए बुलाई गई थी? सवाल बड़ा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने ये नहीं बताया कि चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, कौन कौन शामिल था, लेकिन राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे पर सवाल उठाए। जवाब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को देना था कि उनकी नाक के नीचे राम का धन चोरों ने कैसे लूट लिया, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर उठते सवालों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं
1: कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना।
0: यहाँ सवाल राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात का है। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की नाक के नीचे हुई चोरी का है, तो सवाल भी जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है राम मंदिर ट्रस्ट में आने और जाने वाली पाई पाई का हिसाब रखना, लेकिन गोविंद गिरी 2 लाइन की सफाई देकर अपनी भूमिका से बच निकलना चाहते हैं। ठीक यही काम चंपत राय और अनिल मिश्रा कर रहे हैं। मतलब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, मामला सुलझ गया, चोर पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सोने और चांदी के आभूषणों को दिखाकर यही बताना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावे की चोरी पर गोल मोल जवाब क्यों दिया?
1: SBI को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो SBI के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है।
0: राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गोविंद गिरी ने मीडिया को जो बताया, जो समझाया, उसी बयान ने चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गोविंद गिरी का दावा सुनिए।
1: उन्होंने स्वयं यह त्याग पत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना यह हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
0: अगर ट्रस्ट का संविधान कहता है कि इस्तीफा देते ही पदाधिकारी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो ट्रस्ट की तरफ से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो ट्रस्ट ने इस्तीफे को मंजूरी देने के लिए बैठक क्यों बुलाई? क्या चढ़ावा चोरी कांड में जांच की आंच से बड़े पदाधिकारियों को बचाने के लिए बैठक का नाटक किया गया? सवाल नंबर 1, क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? सवाल नंबर 2, ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? सवाल नंबर 4, कोषाध्यक्ष गिरी की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी तो जांच के दायरे में वो क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, जवाब के बजाय चहाबा चोरी कांड पर उठे सवालों पर एंटी हिंदुत्व का लेबल क्यों।
2: और अब बात करेंगे बारिश में डूबती मुंबई के बारे में, क्योंकि मानसून की एक ही बारिश में मुंबई की दुर्गति हो जाती है। इस बार भारी बारिश से मुंबई में इतना बुरा हाल है कि अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

0: फिर डूब गई मुंबई, लग गया आफत काल।
1: रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को आधे आधे घंटे का पूरा अपडेट हम दे रहे हैं कि आप मत बाहर आइए।
0: सरकार बदल गई, मुंबई की नियति नहीं बदली। सिस्टम में भ्रष्टाचार के लीकेज से कब तक डूबेगी मुंबई?
2: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है।
0: मुंबई की बारिश में 13 लोग मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी।
3: अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो।
0: ये पिछले कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई और उससे सटे इलाकों का हाल है। ट्रेन की पटरियां पानी में गुम हो गई हैं। एक्सप्रेस वे पर बारिश कहर बनकर बरसी है, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी है। और हर साल की तरह इस डूबती मुंबई में दावे ध्वस्त हो रहे हैं। न बीएमसी कुछ कर पाई, न महाराष्ट्र सरकार मानसून की बारिश में आफत काल को रोक पाई। सवाल यही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुंबई कैसे डूब गई? मुंबई को बारिश से बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट था, फिर भी मुंबई की ये दुर्गति कैसे हो गई? कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज मुंबई की त्रासदी बन रहा है? और यही वजह है कि मुंबई की बारिश का इतिहास आज भी जस का तस है। आज विपक्ष बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की दुर्गति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है।
2: देखिए 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: और ये देखिए बारिश ने कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि मिसिंग लिंक पर टनल बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भर भरा कर हाईवे पर आ गिरे और पूरा हाईवे बंद हो गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मिसिंग लिंक भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया?
4: इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की सवेरे 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है।
0: मुंबई के मानखोर्द इलाके में बारिश के चलते एक चौल ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी चौल मलबे में बदल चुकी है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा।
5: अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गए। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफी सारे पार्ट्स जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे।
0: आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही पूरी मुंबई में 523 पेड़ उखड़ गए। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
6: एक सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझता हूँ शासन ने उचित निर्णय लिया है और काम घर से करने का निवेदन सबको किया गया है।
7: बहुत ही बुरा मिसमैनेजमेंट ये भाजपा और शिंदे इनकी जो गवर्नमेंट है इनके तरफ से हो रहा है। सच में मुंबई इंटरनेशनल सिटी है क्या, ये सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि मैनहोल में गिर के लोग मर रहे हैं।
0: मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर रहें, वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क न करें और समुद्र तट व जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।
8: क्या बारिश से बचने की एडवाइजरी जारी करके और बारिश के वक्त लोगों को घरों में रहने की सलाह देने के बाद बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जिस बारिश के प्रकोप को मुंबई झेल रही है, क्या इसके पीछे सिस्टम में भ्रष्टाचार की लीकेज नहीं है? मुंबई के हालात ऐसे हैं कि जमीन से आसमान तक यातायात ठप है।
0: मुंबई में औसतन 2200 से 2500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। शहर में एक दिन में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था। इसके विपरीत अंग्रेजों के जमाने में भी यहां 1940 के दशक में भीषण बाढ़ के मामले सामने आए थे। मुंबई के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा 19वीं सदी यानी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय के अनुसार इसे प्रति घंटे 25 मिलीमीटर तक की बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण यहां कई बार एक घंटे में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी महीने भर की बारिश अब कुछ ही घंटों में दर्ज हो जाती है और नतीजा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है।
3: जैसे बंबई के रस्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे। अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो, क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में।
0: बारिश ने सबसे बड़ा आफतकाल तो मुंबई से सटे पालघर जिले में लगाया है। जी हाँ, पालघर के बसई, विरार और नाला सुपारा में जैसे सब कुछ डूब चुका है। ये देखिए कैसे आपको पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक डूबा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म के पास भी रेलवे ट्रैक पर समंदर सा बह रहा है। लोनावला करजत सेक्शन पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद बहुत सी ट्रेनें कैंसिल की गईं या डाइवर्ट की गई हैं। कुल 17 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 31 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा है, 18 ट्रेनें छोटी दूरी में ही टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, 15 ट्रेनों को छोटी दूरी के लिए चलाया गया, जबकि 4 ट्रेन रीशेड्यूल हुई हैं। मुंबई से अहमदाबाद, पुणे, नांदेड़, इंदौर, बेंगलुरु, ग्वालियर, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट, अजमेर, मैसूर, हैदराबाद जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करना पड़ा है। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और ये देखिए कैसे लोगों ने नीले ड्रम से जुगाड़ की नाव बना रखी है। आपको बता दें कि वसई विरार पालघर जिले का एक शहर है, ये मुंबई के उत्तर में स्थित है। मौसम विभाग ने पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। पालघर में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कई जगह रोड धंसने से बड़े बड़े गड्ढे और सुराख हो गए और लोहे का सरिया बाहर निकल आया।
9: सबसे ज्यादा वर्षा आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आने वाले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है।
0: सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे पुणे, गोंदिया और रत्नागिरी में भी बारिश कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब आपको यूपी में हमीरपुर पुलिस की बेरहमी दिखा देते हैं। पुलिस वालों ने एक बेकसूर को वांछित अपराधी बताया, उठा लिया, उसे थाने में मार मार कर अधमरा कर दिया। बाद में पता ये चला कि वो वांछित अपराधी था ही नहीं बल्कि उसका हमनाम था। हमीरपुर की ही दूसरी तस्वीर में एक दरोगा की धुनाई हो रही है क्योंकि उसने ट्रक वाले से 20,000 रुपए चुराए थे।
0: इस आदमी को अधबरा कर दिया गया है। इसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां चोट के निशान नहीं है। चेहरा सूजा हुआ है, हाथ खून खून है। अस्पताल की चारपाई पर ये जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि इसकी ये दशा थाने में बंद करके पुलिस वालों ने की है।
10: घर से उठा लाए थे पुलिस।
11: कौन उठा लाया था?
10: मेरे हल्का इंचार्ज, दो पुलिस वाले चार पहिया में लेके आए थे।
11: फिर
10: आगे थाने के अंदर सब लोग हमें मारा।
11: किस बात में उठा के लाए थे?
10: एक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया।
0: हमीरपुर की सदर कोतवाली के मेरापुर क्षेत्र की पुलिस ने गजब कर दिया। दरअसल एक शिवराज नाम का आरोपी था, उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर असली शिवराज को ना पकड़कर उसके हमनाम इस आदमी को पकड़ लिया और इसके बाद इसकी थाने में ये दुर्गति की गई। पीड़ित की बहन कहती है कि उसकी आंखों के सामने थाने के भीतर उसके भाई के सारे कपड़े उतार कर पुलिस वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी।
12: भीतर बांधने पड़े तो बिना कपड़ा के, इतना पीटो है सर, एक भी कपड़ा नहीं था उसके सर, पूरी वो शर्ट उसकी पूरी ब्लड से रंगी पड़ी थी, उसी से बांधा। मोरे लड़का का मारो है।
13: कौन मारे?
12: सब पुलिस वाले पूरे मारो है। मेरे हल्के का दरोगा वो मारो है, अपना बता बताए और कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो।
0: पुलिस वालों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया है, तब उन्होंने इसे छोड़ा, ये कहते हुए कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये आदमी कानपुर में इलाज करा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, गलत आदमी को उठाया और जानवरों की तरह उसे पीटा। मगर हमीरपुर पुलिस की कारस्तानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। हमीरपुर के ही थाना कोतवाली नगर के दरोगा की पिटाई हो रही है। आरोप है कि कानपुर से हमीरपुर आने के लिए इसने ट्रक वाले से मदद मांगी। रास्ते में ट्रक में रखे 20,000 रुपए इसने चुरा लिए। रास्ते में इसने ट्रक रुकवाकर भागना चाहा, मगर पकड़ा गया और अब इसकी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि हमीरपुर के इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? कब उन पुलिस वालों पर कानून का कोड़ा चलेगा जिन्होंने अनजाने में एक आदमी की चमड़ी उधेड़ी? नाहिद अंसारी, हमीरपुर आज तक।
8: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म 5G से हटा

0: बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
1: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी, मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
2: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं। पर ये पता ही सी, एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई CD बना के रख ली मैं था। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताही मैं कल इशारा किया था भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
1: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
3: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया है उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
1: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई?
4: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
1: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा है।
5: 2 दिनों तक श्रद्धांजलि के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा अब तीसरे दिन तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब बताया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में बदले की मांग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाकमी ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। तेहरान में आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी आप तक एक एक जानकारी और तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
6: समय हम तेहरान में मौजूद हैं और अगर आप आजादी स्क्वायर के आसपास का नजारा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर जनसैलाब मौजूद है। लोगों में खासतौर पर यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को खोने का दर्द है, मातम है, लेकिन इसके साथ एकजुट होने की एक खुशी भी है कि ईरान के लोग अब एक बार फिर से इस तरीके से एकजुट हो रहे हैं। आज तक की टीम अकेली आपको ये नजारे या फिर आप तस्वीरें आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि आखिरकार आज का दिन यानी तीसरा दिन यानी 2 दिन तक उनके पार्थिव शरीर को जान मसाला रखा गया था, आज लाया जाएगा और ये नए पड़ाव के अंदर लोगों में उत्साह या जोश किस तरीके का, लोग अभी सड़कों पर बने हुए हैं।

0: ईरान में इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद हजारों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया, जबकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक से लेकर तरबूज भी बांटे। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ अब भी शव वाहन के साथ चल रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक भारी जन सैलाब की वजह से अंतिम यात्रा तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
1: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का है। और आजादी स्क्वायर पर, क्योंकि आज जब उनकी पार्थिव शरीर को ग्रैंड मसल्ला से लेकर आजादी स्क्वायर लाया जा रहा है, तो इस सिंबॉल को यहाँ पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है।
0: आपको बता दें कि खामनेई को उनके पैतृक शहर यानी उत्तरी ईरान के मशहद में दफनाया जाएगा। यहाँ इमाम रजा की दरगाह के अंदर खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उनकी जहर देकर हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए
1: हुमा कुरैशी।
2: ब्रीफ क्या था इस सीन से पहले?
3: अनुराग वाज लाइक कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल अकल वकल नहीं है। इस पे जो बहुत फेमस सीन है वो जो
4: परमिशन लेनी चाहिए ना,
3: तो ही वाज वेरी अपसेट विद मी कि ये मेरा सीन खा गई।
5: टॉक्सिक के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक महिला केंद्रित फिल्म है, लेकिन जब फिल्म के टीजर आए या ट्रेलर जो भी
3: आई फील अभी आपने टॉक्सिक के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो रुक जाइए।

0: माटी का शरीर, माटी की सांसें, माटी की उड़ान, माटी की पांखें, माटी का मेला, माटी का खेला, माटी में मिल गई, माटी की बिटिया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई नहीं रही। वे 70 साल की थी। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थी।
1: वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज

0: दवा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर कलंक कांड के बाद चंपत की छुट्टी, बैठक के बाद गोविंद गिरी ने कहा हम सब बुरी तरह आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, अपने करीबियों पर अति विश्वास करना चंपत राय की गलती, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। अयोध्या में चोरी पर जारी है सियासी जोराजोरी, अखिलेश का बड़ा बयान, दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार, तो योगी बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले न करें राम की बात। बंगाल के बारुईपुर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का कैंडल मार्च, 12 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या को लेकर सड़कों पर उतर आई है टीएमसी। और इंडोनेशिया के आकाश में फाइटर विमानों ने की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी, जकार्ता में भव्य स्वागत, रक्षा और आर्थिक समेत कई अहम समझौते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म 5G से हटा दिया गया है। इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था लेकिन इस सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। पहले इसका टाइटल था पंजाब 95 जिसे बदलकर सतलुज कर दिया गया था।
1: दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म 4 बरस से सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी थी। तमाम बदलावों के बावजूद सतलुज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। अचानक गुपचुप तरीके से शुक्रवार को Zee5 पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और हैरानी इस बात की है कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही घंटों पर इसे Zee5 से रिमूव कर दिया गया, मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। फिल्म के अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं उन्हें आशंका तो थी कि फिल्म बैन होगी मगर इतनी जल्दी बैन होगी ये नहीं पता था।
2: आई नो बहुत सारे लोग सोचते थे संडे फैमिली ना देखेंगे, मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम नहीं होगी, चलो कोई नहीं, पर ए पता ही सी एक्सपेक्टेड सी है भाई। भाई सीडी बना के रख ली मैं था। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताही मैं कल इशारा कीता सी भाई भी ये उड़ सकती है फिल्म।
1: अब फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शिरोमणि अकाली दल सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार को फिल्म बैन क्यों करनी पड़ी।
3: ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो गवर्नमेंट उसको क्यों रोकना चाहती है मुझे नहीं मालूम। अगर तो कोई खुद खाड़कू है, किसी ने कोई आदमी लोग मारे हैं उसकी बात हो रही है, किसी ने देश के विरुद्ध कोई काम किया उसकी बात हो रही है, उसको तो कोई गवर्नमेंट रोके। जो खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था तो वो जो जाति हो रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था।
1: आखिर फिल्म में ऐसा क्या है कि फिल्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई।
4: आपको बता दें कि जसविंद सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मास क्रिमेशंस, 25,000 मिसिंग यूथ और फेक इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब पुलिस द्वारा की गई, इन सब पर सवालिया निशान उठाए थे।
1: ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है जिन्होंने बताया था कि 1994 से 95 के बीच पंजाब पुलिस ने किस कदर निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज को हटाने, गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि जांच की दिशा, जमीन खरीद का ब्यौरा और अलग अलग बैंकों में जमा करोड़ों रूपये की जानकारी भी मिली है। एसआईटी के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से खुले नोट निकालकर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य जगहों पर रखते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी इशारों ही के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते हुए भी नजर आए। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग के बारे में, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चढ़ावे के हिसाब किताब की नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी ही काफी है।

खोदा बैठक वाला पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। हिंदुत्व को ढाल बनाकर चोरी का पाप धुलेगा। सोना चांदी तो दिखाया, चढ़ावे का रिकॉर्ड गुम। इस्तीफा मंजूर, एक्शन खत्म, चढ़ावा है हजम।